ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को माया पर विजय प्राप्त कराई है। इस माया का ज्ञान तो हमें हजारों वर्ष से था। ऋषि मुनि और आचार्यों ने भी इस माया के बारे में बहुत कुछ कहा था, परंतु कोई भी माया को जीतने की विधि नहीं बता पाया था। बस माया को जीतो, यही लोग कहते थे। पर बाबा ने आकर हमारी सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया है, याद दिलाया तुम परम पवित्र आत्मा हो, याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्मा हो, याद दिलाया तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बहुत अच्छी तरह याद दिला दिया कि तुमने अनेकों बार करोड़ों बार इस माया को जीता है। तो सोच लें, हम सभी जिन्होंने करोड़ों बार माया को जीता हो, उनके लिए अब इसे जीतना कितना सरल होगा। तो याद दिलाया तुम विजय माला के मणके हो, तुम विजय रतन हो, तुम तो ऐसे मणके हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो हम स्मृति में लाएं, मैं विजय रतन हूं, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, काम को जीता है, क्रोध को शांत किया है, लोभ से मैं मुक्त हुई हूँ, मोह ममता से मैंने कोई नाता नहीं रखा, और अहंकार को तो मैंने सदा के लिए विदाई दे दी थी। रही बात ईर्ष्या द्वेष घृणा तेरा मेरा व्यर्थ चिंतन, ये सब तो मेरे सब्जेक्ट ही नहीं हैं। तो मैं विजयी हूँ, मुझे पुनः विजयी बनना है, ये नशा हमें हो जाना चाहिए। और हो सके तो आप 108 की माला में अपना नंबर ही फिक्स कर दो, विजन बनाओ, ये मेरा नंबर है, माला देखो इसमें ये मेरा नंबर है। इससे क्या होगा, हमारे पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी। मुझे ये नंबर प्राप्त करना ही है, ये लगन सभी विघ्नों को नष्ट कर देगी और हम अपनी मंजिल की ओर तीव्रता से चल पड़ेंगे। जितना जितना हमें विजय का नशा होता जाएगा, विजय रतन होने की खुमारी चढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी और वो हमें माया को जीत पहनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो माया को जीतने के लिए जहां श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता है, जहां योग बल की आवश्यकता है, वहीं तीसरी चीज स्मृति स्वरूप होने की भी आवश्यकता है। वास्तव में हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। जब हमें स्मृति आ जाती है अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों की, तो आज याद करेंगे बाबा ने मुझे तिलक दिया है विजयी होने का, विजयी भव। सीन सामने लाएंगे, बाप दादा सामने खड़े हैं, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मस्तक पर तिलक लगाया और कहा बच्चे विजयी भव। ये पुराने संस्कार तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे तो असली संस्कार देव संस्कार हैं, विजयी भव। स्वीकार कर लें, बाबा ने हमें माया पर विजय पाने का वरदान दे दिया है, अब हमारी जीत निश्चित है। इसकी स्मृति में रहने लगे तो आज सारा दिन ये विजय का तिलक बाबा से लेते रहेंगे और अशरीरी होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अनेक विकार देहभान से उत्पन्न होते हैं और जैसे जैसे हम अपनी निराकारी स्थिति में रहने लगते हैं, ये विकार सभी छूटने लगते हैं, हम वॉइसलेस बनने लगते हैं, क्योंकि देहभान छूटने लगता है, इससे व्यर्थ संकल्प भी छूटने लगते हैं। तो आज विजय रतन होने के साथ साथ हम निराकारी स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी निराकार हूं, संकल्प करेंगे मेरा देह लोप हो गया,
देह के तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए और बच गई मैं निराकार आत्मा। बस अपने स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देंगे तो सभी संकल्प इस स्वरूप में समा जाएंगे और हमारी स्थिति संपूर्ण रूप से निर्संकल्प हो जाएगी। तो आइए आज से हम विजयी रतन बन जाएं। थैंक यू।

0: रुका रुका ओए रुका ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जिज्ञासु ने पूछा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जब प्रश्न ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? प्रश्न होना चाहिए था, जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है? और उसका उत्तर होता है, वे और अच्छे हो जाते हैं। यह हमारी प्रज्ञा नहीं बल्कि हमारी प्रज्ञा की दिशा है जो हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है, बशर्ते हमें पता हो कि सही प्रश्न कैसे किया जाए। अपनी हर परेशानी पर पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा का उत्तर सुने। खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा की आवाज को दोबारा सुने। अंतर पर ध्यान दें, प्रश्न की सशक्तता को अनुभव करें। प्रश्न में बहुत शक्ति होती है। सही समय पर पूछा गया सही प्रश्न हमारी प्रज्ञा की दिशा बदल सकता है और इस तरह हमारे जीवन की भी। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को उस दिशा में मोड़ देता है जो आपको स्वयं पर तरस खाने की ओर ले जाती है। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि आप यह प्रश्न पूछें, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ, तो आपकी प्रज्ञा आपको उच्चतर परिपक्वता की ओर ले जाएगी। वह मुझे समझ क्यों नहीं रही है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को दूसरों पर दोषारोपण करने और खुद उत्पीड़ित होने की ओर ले जाएगा। इसके बजाय पूछें, वह मुझे समझ सके इसके लिए मैं क्या करूं, तो आप महसूस करेंगे कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है। यह प्रश्न आपको एक ज्यादा सूझबूझ वाला और ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बना देगा।

यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी गति से आप बढ़ सकते हैं, यदि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने वाली नहीं है, यदि आपके सामने ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिन्हें बार बार सामने आना ही है, तो आप यह जान लें कि निश्चित रूप से आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और इसी के चलते आप अपनी प्रज्ञा को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। सीधे सरल प्रश्न जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं, जैसे कि अब क्या करना है, जो मैं अभी तक करता आया हूं उसे और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हमारी प्रज्ञा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है, चाहे वह प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया हो या संसार द्वारा। इसीलिए अपने प्रश्न को ध्यान से चुनते रहें और अपनी प्रज्ञा को रचनात्मकता की दिशा में मोड़ते रहें। अपने आणविक चुंबकीय अनुस्पंदन अन्वेषण के लिए सुविख्यात भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसिडोर आइजेक राबी ने कहा है, मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। ब्रुकलिन में हर यहूदी माँ स्कूल से घर लौटकर आए अपने बच्चे से पूछा करती थी, तो आज स्कूल में तुमने क्या सीखा? लेकिन मेरी माँ ने यह कभी नहीं पूछा। वे हमेशा पूछा करती थीं, बेटा क्या तुमने आज कोई अच्छा प्रश्न पूछा? इस अंतर ने, सही प्रश्न पूछने ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरता है? और इस प्रश्न के बाद दुनिया ही बदल गई। वास्तव में सभी अन्वेषण और सारे आविष्कार किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन ने अपने प्रश्नों से कृष्ण की प्रज्ञा को एक दिशा ही तो दी थी, जो भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास सही प्रश्न है। आपकी प्रज्ञा प्रतीक्षा कर रही है, सही प्रश्न पूछे तो सही उत्तर।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

भले ही आप पर कोई विश्वास न करे, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। भले ही किसी को विश्वास न हो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप कर सकते हैं। और आप खुद पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप खुद से प्रेम करते हो। तो भले ही आपसे कोई प्रेम करे न करे, आपको खुद से प्रेम करना होगा। वास्तव में जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी यह संसार आपसे प्रेम करना शुरू करता है। कुल मिलाकर इस बात से बहुत कम अंतर पड़ता है कि संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हम ऐसा कहकर कब तक खुद को सांत्वना देते रहेंगे, मेरे पिता यदि धूम्रपान करते हैं, पान तंबाकू या गुटखा खाते हैं तो क्या हुआ, वे हैं भी तो बड़े आदमी। हम यह कहकर कब तक खुद को संतुष्ट करते रहेंगे। हमें अपने शिक्षक के चरित्र से क्या लेना देना, वह तो उसका व्यक्तिगत जीवन है, हमें तो उससे पढ़ना है बस। संसार में

क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय करने वाला मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई चीज सार्वभौमिक तौर पर सही या गलत नहीं होती। किसी के द्वारा किए जा रहे चयन में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर भी साहस करके खुद से यह प्रश्न तो कर ही लें, यदि मेरे बच्चे वही ग्रहण कर लें जिसे मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, तो क्या मुझे इससे सुख और खुशी मिलेगी? क्या मैं कभी कह सकूंगा कि मुझे अपने आप पर गर्व है, क्योंकि मुझ में फलां लते और आदतें हैं? क्या मेरी चारित्रिक विशेषताएं अनुसरण के लायक हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा जीवन क्या एक आदर्श होगा या एक खतरा? किसी विशेष अंश रूप में नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण रूप में। हमारे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। हम उनसे जो भी कहते हैं उसकी अपेक्षा वे इस बात से ज्यादा सीखते हैं कि हम क्या करते हैं। नैतिकता पुस्तकों से कभी नहीं सीखी जाती, वह तो अपने आसपास रहने वालों को देख देख कर सीखी जाती है। संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या उपदेश पर।

0: ओए रुका,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

यह एक तथ्य है कि जब कोई गुरु मौन को, शांति को प्राप्त कर लेता है, तब ध्यान लगाने का उसका ध्येय पूरा हो जाता है और फिर उसे वैसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अज्ञानी जिज्ञासु तर्क देता है, जब गुरुजी ही नियमित रूप से ध्यान नहीं लगाते तो मुझे नियमित होने की क्या जरूरत है। इसीलिए भगवद गीता हमें याद दिलाती है, कोई महान व्यक्ति जो कुछ करता है अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित कर देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। दूसरों को उत्प्रेरित करने के लिए हमें कुछ तो प्रेरक कार्य करने ही चाहिए। अपने तर्क वितर्क एक और रखकर हम एक आदर्श बनने योग्य होना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे किया जाना चाहिए और जो करने योग्य नहीं है उसे करना बंद कर दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक, एक बॉस, एक अभिभावक, किसी उद्योग के प्रमुख, किसी परिवार के मुखिया, किसी सरकारी कार्यालय के पदाधिकारी, किसी ऐसे या अन्य रूप में आपको, मुझे और हम में से हर एक को इस तरह से रहना और जीना चाहिए जो दूसरों के अनुकरण व अनुसरण के योग्य मानक स्थापित कर सके। आपका सोचना, बोलना, कार्य करना और रहना ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं कि वे किस प्रकार बोलें, किस प्रकार कार्य करें और किस प्रकार रहें। जिस बात की अपेक्षा हम खुद से करने को इच्छुक नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, उस बात की अपेक्षा हम संसार से कैसे कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपके आसपास का संसार आप ही की कार्बन कॉपी लगने लगता है। इसीलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे मास्टर कॉपी बने जो इस योग्य तो हो कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सके। मार्क ट्वेन ने कहा है, नृत्य ऐसे करो जैसे आपको कोई भी नहीं देख रहा है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जिएं, ऐसे रहें जैसे हर कोई देख रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते

पवित्रता का धान है तुमसे, हर सुकून के अरमान है तुमसे। ब्रह्मा मुख से जो वचन कही है, उन्हीं में जीवन का सार पाया है, उन्हीं में जीवन का

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज़ फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: परिवर्तन इस संसार का नियम है और मैं काल चक्र सदा ही इस बात का साक्षी रहा हूं। समय प्रति समय मानवता के कल्याण के लिए और संसार के तीव्र पतन को रोकने के लिए द्वापर से कलयुग तक अनेक धर्मों की स्थापना हुई, परंतु यह बात गुप्त होने के साथ अत्यंत रोमांचक भी है कि हर धर्म स्थापक की आत्मा अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य आत्मा के शरीर में अवतरित होती है। पहले परम धाम से वह पवित्र आत्मा किसी भिन्न शरीर में प्रवेश करके अपने धर्म स्थापन का कार्य सिद्ध करती है और फिर अपने शरीर द्वारा जन्म लेकर उसी धर्म की पालना भी करती है। इसी प्रकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर कैसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना और पालना का कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं, इस बात पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी। तो आइए आज उनके मुखारविंद से सुनते हैं शिव बाबा के अवतरण की वो अनोखी कहानी।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पालना ली।
2: दीदी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा सृष्टि परिवर्तन कार्य के लिए निमित्त बने हैं, हम हिस्ट्री अगर देखते हैं जब जब भी समय की पुकार हुई है इस संसार में शांति की स्थापना के लिए या मूल्यों को बचाने के लिए, धर्म स्थापक बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को एक धर्म स्थापक के रूप में या फिर एक योगी के रूप में बहुत सारे लोग जानते या पहचानते नहीं है। क्या रीजन हो सकता है या फिर कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं?
3: ओम शांति। मैं ऐसा कहूंगी कि हर चीज लगभग तीन स्टेजेस से क्रॉस होती, सतो रजो और तम, और तमो के पश्चात पुनः सतो प्रधान बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाएगा और बनाने वाला कब बनाएगा और कैसे बनाएगा। इस बात पर विचार करने पर, ये विचारणीय विषय है, लेकिन देखने में आता है कि परमात्मा को कभी बनाने वाला नहीं कहते, उन्हें हमेशा कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। तो जब सृष्टि की स्थिति बिगड़ जाती है वो बिगड़ी को बनाता है, या परमात्मा को कहते पति पावन, अर्थात सृष्टि जब पतित हो जाती है, ऐसी लास्ट पतित तमो प्रधान हो जाती है, तब परमात्मा उन पतितों को पावन करता है, या गिरे को उठाने वाला। इस प्रकार परमात्मा की महिमा हमेशा ऐसे ही की जाती। तो ये प्रश्न, यही मैं बताना चाहती हूँ कि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है और हम सर्व आत्माओं के पिता है, चाहे वो हिंदू धर्म को बिलोंग करे या मुस्लिम, अगर कोई बुद्ध को बिलोंग करे या सिख, किसी भी धर्म को बिलोंग करती है, लेकिन देहों में विराजित आत्माएं, और आत्माओं का पिता परमात्मा है और आत्माएं जब एक दिव्य प्रकाश है, एक ज्योति है, एक शक्ति है, और कहा गया है शक्ति का कभी निर्माण नहीं किया जाता और शक्ति का कभी विनाश भी नहीं होता, शक्ति अविनाशी है। तो जैसे आत्मा अविनाशी है, ठीक इसी प्रकार आत्माओं का जिनके साथ अविनाशी संबंध है वो भी अविनाशी परम आत्मा कहलाते। अब वो परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति, देखिए दिव्य ज्योति को बिगड़ी दुनिया को बनाना या गिरे को उठाना या पतित को पावन करना या तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना, इसके लिए उन्हें अवश्य साकार माध्यम की आवश्यकता पड़ती। जैसे हम आत्मा भी कर्म क्षेत्र पर बिना साकार चोले के कर्म नहीं कर सकते, ठीक परमात्मा को भी कर्म क्षेत्र पर जब सृष्टि बिगड़ जाती है तो सृष्टि पर आकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए उन्हें साकार माध्यम की आवश्यकता होती। क्योंकि हम तो अपना जन्म लेते और जन्म लेकर चोला चलाते हैं फिर शरीर छोड़ते, परमात्मा जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारे, वो मनुष्य दृश्य जन्म नहीं लेते, लेकिन परमात्मा मानवी तन में प्रवेश कर, अब जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन का नाम प्रजापिता ब्रह्मा। किस लिए? क्योंकि उन्हें नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, पावन सृष्टि का निर्माण करना होता है, बिगड़ी सृष्टि को बनाना होता है, तो बनाने का कार्य करने के अर्थ उनको ब्रह्मा नाम दिया है। तो शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के अपनी पहचान भी देते हैं और हमें हमारी पहचान भी देते हैं। और जब हमको पता चलता है कि देह जिसको मिट्टी कहते थे ये सचमुच नश्वर है, मिट्टी की बनी हुई है, पता नहीं किस दिन टूट जानी है या हमसे छूट जानी, तो आत्मा जो शरीर के अंदर है अजर अमर अविनाशी है, वो जब तक चोले में है तब तक तो चोला एक्शन में है, और जब चोले से निकल जाती है तो शरीर तो जड़ हो जाती। तो परमात्मा पिता जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो प्रवेश होकर हमें हमारी पहचान दे, बच्चे तो ये नाश्वर शरीर नहीं, ये पांच तत्वों का बना चोला है तेरा, तू चोले की मालिक चेतन शक्ति आत्मा है और तू चेतन में है, तू जड़ नहीं। और अपनी भी पहचान देते हैं कि मैं कौन, तो सबसे पहले वो हमें हमारी पहचान और स्वयं की पहचान जिस तन द्वारा देते हैं उनका नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। वास्तव में उनका नाम ब्रह्मा नहीं था, उनका नाम तो दादा लेखराज था, लेकिन शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो इनका नामकरण ये हुआ, उन्होंने ही नाम परिवर्तित किया।
2: जैसे आपने कहा कि इस सृष्टि परिवर्तन कार्य के लिए निराकार परमात्मा ने साकारी तन का माध्यम लिया है जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन वो भी एक साधारण मनुष्य थे और उन्होंने इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बने हैं। तो वो ज्ञान क्या है और वो ज्ञान में क्या ताकत है जो मनुष्य देवता बन जाते हैं या मनुष्य की जीवन परिवर्तन हो जाता है?
3: क्योंकि मैं आपको पहले यही बताना चाहूंगी कि जब परमात्मा ने प्रवेश किया इनमें, इनकी अपनी आत्मा तो चोले में विराजमान थी, लेकिन परमात्मा की प्रवेशता होने पर जो परमात्मा इनको ज्ञान सुनाते तो ये सुन रहे हैं, चाहे इनके मुखारविंद से वो बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं, परंतु समझ नहीं रहे कि कौन बोल रहा है। तो कई बार ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि मैं एकांत और शांत में बैठता था और सोचता था कि कौन बोलता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था, और जो बोलते थे उस बातों को मैं जैसे छोटा बच्चा पेंसिल लेके दीवारों पर लकीरें मारता है, मैं, उन्होंने कहा सृष्टि चक्र है, तो मैं बैठ के एक चक्र से बनाता रहता था, या इसके चार युग हैं, तो मैं उसको चार भागों में बांटता रहता। लेकिन कैसे बांटू, क्या करूं, मुझे भी नहीं मालूम था। और फिर मुझे ये भी आता था कि मैं इतना बुजुर्ग हूं, कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं। लेकिन ये मैं दीवारों पर बैठ के चक्र बनाता हूँ और फिर मिटाता हूँ, फिर उसको चार भाग बनाता हूँ, ये सब क्या मैं करता हूँ? तो कर भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। ये तो परमात्मा ने धीरे धीरे बातें स्पष्ट करते चले गए और मैं सुनता रहा। लेकिन सुनकर के कई मुझे घर के बच्चे जो अपने परिवार के मेंबर्स थे तो सामने बैठते थे, तो मैं उनको गीता पकड़कर सुनाती थी। लेकिन गीता तो मेरी हाथ में पकड़ी रहती थी, और जैसे कोई बोल रहा है और मैं सुन रहा, तो जब बोलता था मुख से, सुनता मैं भी था, सुनते सामने वाले भी थे, लेकिन मैं गीता तो बंद कर देता था और कहता था ये कौन बोलता है, तो सामने वाले कहते थे आप ही तो बोलते, क्योंकि मुख तो मेरा ही चल रहा होता था। लेकिन ये मैं समझता था कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे हाथ में गीता है, मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन पढ़ता पढ़ता वो गीता मेरे हाथ में पड़ी रह जाती थी। लेकिन कोई बोलता है और मैं सुनता हूँ और श्रवण करता हूं तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल चाहता है मैं सुनूं, लेकिन सुनाने वाला कौन? और सामने वाले बच्चे यही कहते हैं बाबा आप सुनाते, और बाबा उनको कहते हैं ये मैं नहीं सुना, ये और है, कोई शक्ति है जो ये सुनाती। तो ये धीरे धीरे सुनने वालों से मुझे पता चला कि इनको ऐसी अनुभूति होती है कि मैं सुना रहा हूं, लेकिन मैं सत्यता के आधार पर सुनाता था कि मैं नहीं सुना रहा। आज का मनुष्य अगर कोई उसकी झूठी मेहमा भी कर दे तो उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाबा ने एक दिन भी ये स्वीकार नहीं किया। वो कहते आप बहुत ही अच्छी बातें सुनाते, हमारी आंख खुल जाती हैं, हमारे कान खुल जाते हैं जब आपके मुख से सुनते हैं, और दिल चाहता है सुनते ही रहे। तो बाबा कहता था ये मैं नहीं सुनाता हूं, ये कौन सुनाता है ये मुझे भी नहीं मान। ये तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि कथा चल रही थी, क्योंकि घर में कथा कीर्तन तो होता रहता था, कथा चल रही थी, लेकिन चलती कथा में ऐसे जैसे कोई मुझे खींच रहा है, चलो एकांत और शांत में बैठ। मैं कथा से उठ करके कमरे में चला गया और जाके एकांत और शांत में बैठता हूं। मुझे शांति बहुत अच्छी लगती। इतने में पुत्र वधू देखती है कि कभी भी कथा से ही उठकर जाते नहीं थे, आज कथा से उठकर क्यों चले गए और इतनी देर भी वापस भी नहीं आए। तो वो पीछे आकर देखा और पुत्र वधू भी वापस नहीं आई, तो लौकिक पत्नी ने देखा।

0: हाँ, कि वो भी वापस नहीं आई तो वो भी अंदर आ, और जब वो आके बैठी तो वो बाद में अनुभव सुनाती है बाबा को कि हम जब अंदर आए तो आप गद्दी पर बैठे हो लेकिन चारों तरफ एक सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश था, और आपकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई कितने वार का एक बल्ब जल रहा है, और फिर आपके मुख से शब्द निकले थे, आपने बोला था, और वो बोला था अहम। अब अहम शब्द किस बात का सूचक था? फिर शब्द आया मैं प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवो, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये शब्द कहकर बाबा की आंखें भी बंद हो गई, मुख भी बंद हो गया। पत्नी और बहू ने उन्हें टच नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जब आंखें बंद हुई और बाबा ने आंखें खोली तो आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, ये कौन है, ये कौन है जो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, और कभी कहता है शिवो हम ज्ञान स्वरूपम शिवो हम प्रकाश स्वरूपम शिवो हम, ये कौन कहता है? तब बाबा के पुत्र वधु ने कहा बाबा ये आपने बोला। फिर बाबा की यही शब्द थे, ये मैंने नहीं बोला, मैं भी सुन रहा, कौन बोलता है? तो पुत्र वधु ने कहा कि जब हम आए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, और आपकी आंखों से इस कदर प्रकाश निकल रहा था जैसे कोई बहुत हाई वोल्टेज का बल्ब चल रही है। तो बाबा को वास्तव में देखा जाए तो ये वो दिन था जब परमात्मा अपना परिचय देना कि मैं शिव हूं प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं कल्याणकारी शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, ये वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय उनके मुखारवींद से दिया जा रहा था। लेकिन ना सन्मुख वाले समझ पा रहे थे ना बाबा ही समझ पा रहे। जब पूरा हुआ दृश्य और बहू ने उनको अपना अनुभव भी सुना दिया तो बाबा फिर अपने गुरु जी की सभा में गए, और सभा गुरु जी की जब कार्य पूरा हुआ तो बाबा ने अपना एक्सपीरियंस उनको बताया कि आज इसी प्रकार का मुझे प्रकाश ही प्रकाश का साक्षात्कार होता है, और मेरे मुख से आवाज निकलती है ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम शिवम, शिव नाम दिया जा रहा है प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम। तो गुरु जी ने ऐसा कह दिया, ये कथा कीर्तन जब करवाते हो तो गुरु कृपा होती है, कुछ साक्षात्कार हो जाते। और बाबा ने ये शब्द पीछे कहा कि वो मुझे उनका उत्तर अंदर जचा नहीं कि ये गुरु कृपा है, लेकिन गुरु कृपा में ये सब शब्द मेरे मुख से क्यों निकल रहे हैं और ये प्रकाश का रूप क्या है? तो इस प्रकार शिव बाबा ने उस तन में प्रवेश होकर के आत्मा की पहचान और अपनी पहचान ये दे रहे हैं, लेकिन शिव बाबा की पहचान ब्रह्मा बाबा सुनते हुए बोलते हुए भी समझ नहीं पाए।
1: जैसे जैसे मेरे काल चक्र का पहिया घूमता है, वैसे वैसे जीवन की गुणवत्ता में गिरावट देखने में आती है। कोई भी परिवर्तन का प्रभाव डालने के लिए मुख्य दो शक्तियां आवश्यक हैं, पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति। शिव परमात्मा सत्य गीता ज्ञान और पवित्रता के बल से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करते हैं। जितना जितना हम भी इन शक्तियों का प्रयोग अपनी जीवन शैली में करेंगे तो अपने संस्कारों का रूपांतरण सहज कर पाएंगे।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. हु एम आई, कौन हूँ मैं, ये सवाल हम अभी तक तय कर रहे थे, ये रास्ता तय करते थे, लेकिन उसका जवाब मिला कि मैं एक आत्मा हूँ जो पीस लविंग है, जो शांति प्रिय है, हैप्पी है, प्यार करती है, खुश है. अब आगे बात बढ़ी और हमने कहा कि क्या परमात्मा के साथ हमारा एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तय किया जा सकता है. कौन है परमात्मा? अभी कई और सवाल जुड़े हैं परमात्मा से. तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम याद करें तो यहाँ तक बात पहुँची थी कि एक व्यक्तिगत रिश्ता मैं परमात्मा के साथ स्थापित कर सकती हूँ, एक ऐसा संबंध जो परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, जो मैं सोल मेट की तलाश कर रही थी वो वहाँ ख़त्म होगी. पर बात यहाँ रुकी थी कि परमात्मा को तलाशूंगी कैसे, कौन मुझे उससे तारुफ करवाएगा, कौन परिचय कराएगा.
1: अगर हम आपके परिवार के कुछ सदस्यों को अभी यहाँ बुलाते हैं, ठीक है, योर मदर, हस्बैंड, डॉटर्स, फिर कुछ आपके फ्रेंड्स, कुछ आपके कोलीग्स, सब लोग जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और सबको कहें कि आपका परिचय दें, ठीक है, दे विल टॉक अबाउट वन एंटिटी कॉल्ड कनुप्रिया, ठीक है, तो सभी लोग एक ही हस्ती की बात करेंगे. कोई आपके बहुत क्लोज है, कोई थोड़े दूर है, लेकिन वो फिर भी आपको जानते हैं, राइट, एंड सभी लोग आपके बारे में मुझे बताएंगे या हम सबको बताएंगे, तो क्या वो सब एक ही जैसा इंट्रोडक्शन देंगे?
0: बिल्कुल नहीं दे सकते.
1: बिल्कुल नहीं दे सकते. अच्छा, जो सिर्फ जो सबसे क्लोज है, मदर, डॉटर्स, हस्बैंड, अब ये सब तो आपको उतना ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये सब आपका जो इंट्रोडक्शन देंगे वो एक ही तरह का देंगे?
0: उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता जाएगा, बिकॉज उनके अपने कलर्स, अपना अपना रिश्ता जो मेरे साथ है वो.
1: तो इसलिए जो वो सुनाएंगे आपके बारे में वो सभी एक जैसा नहीं सुनाएंगे. उनमें से कोई भी गलत नहीं होगा.
0: नो,
1: वी कैन नॉट से कि यू नो द हस्बैंड इज रॉन्ग और द डॉटर इज रॉन्ग. नहीं, कोई भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि फर्क आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है सबके इंट्रोडक्शन में, इसका मतलब कोई भी 100% राइट नहीं है. इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में आ रहा है. अब आपका एक्यूरेट परिचय, आप एक्चुअली कौन है, अंदर क्या है, क्या महसूस करती है, क्या सोचती है, आप सारा दिन क्या करती है, आपका सही परिचय कौन देगा? फिर
0: मैं खुद दूंगी.
1: आप खुद देंगे ना? वो सब आपके इतने नजदीक है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं देंगे. सब देंगे, कोई रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कोई भी 100% राइट नहीं होगा. तो आपका 100% राइट इंट्रोडक्शन आप खुद देंगे, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं. हजारों वर्षों से धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, संत आत्माएं, पुण्य आत्माएं, अलग अलग लोगों ने आकर हमें उस एक परमात्मा का परिचय दिया. हर एक ने उसे जिस दृष्टि से देखा, जिस संबंध से उसको पहचाना और जिस समझ से उसको जाना, तो उन सब ने हमें एक ही हस्ती का परिचय दिया था. अलग अलग किसी की बात नहीं कर रहा था कोई भी, वो सब उस एक ही शक्ति का परिचय दे रहे थे. उनमें से कोई भी गलत नहीं था. दैट इज 100% कि जिन्होंने भी परमात्मा का परिचय दिया कोई भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी सबके परिचय में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया. इसका मतलब कोई भी 100%

0: 100% एक्यूरेट नहीं था. उन्होंने जिस दृष्टिकोण से देखा उन्होंने परिचय दिया. तो अब परमात्मा का सही 100% एक्यूरेट परिचय हमें कौन देगा?
1: परमात्मा खुद देंगे.
0: राइट.
1: No, but that's logical, you know.
0: Yeah,
1: but
0: that's
1: then,
0: logic. But everything now that we are discussing is logical. Hmm. It is logical.
1: Okay.
0: कि अगर आपको परमात्मा का सही परिचय चाहिए तो वो आपको तभी मिलेगा जब वो खुद आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा. अगर हम में से कोई भी इंट्रोड्यूस करे तो फिर भी एक थोड़ा सा
1: गैप रहेगा,
0: गैप आएगा, परसेप्शन आएगी. तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, हमने पहले भी आपको एक बार कहा था कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं और ये सारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो डायरेक्ट उस परमात्मा से मिलता है. सबसे पहले अपनी पहचान कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद वो अपना परिचय देता है कि वो खुद कौन है. तो जब वो खुद आकर अपना परिचय देता है वो परिचय बहुत सिंपल होता है, बिकॉज ही जस्ट इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, व्हिच इज वेरी सिंपल. वी मेड इट वेरी कॉम्प्लेक्स. हमने अपना परिचय भी तो कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया था. आत्मा पता नहीं कौन है, कौन सी शक्ति है, अंदर है या बाहर है, ब्रेन है या माइंड है, ऑल सो कॉम्प्लिकेटेड. तो इसी तरह हमने परमात्मा का परिचय भी बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया क्योंकि हम सत्यता को नहीं जानते थे. लेकिन इस सारे सृष्टि चक्र में एक ऐसा समय आता है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, और जब वो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं,
1: दैट इज
0: इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, very easy to understand, 100% accurate. And जब आप 100% किसी को जान लेते हैं फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ना बहुत easy है. जब आप किसी और के अनुभव से सुनते हैं तब थोड़ा सा जोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब वो हमें खुद आकर इंट्रोडक्शन देता है तो इट इज ऑलवेज एक्यूरेट. अब वो कैसे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो हम फिर भी देखेंगे आगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सभी भाई बहने ये सुन रहे हैं वो ये एक ओपन माइंड से ये सारा सुने कि ये सारी बातें, हर एक बात जो हम आपस में अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये परमात्मा के स्वयं अपने द्वारा दिया गया परिचय है जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी पहचान हम सब बच्चों को दी है. क्योंकि अभी तक परमात्मा के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे प्रकृति ही परमात्मा है,
1: एग्जिस्टेंस ये नेचर ये है, ये कोई पार है, यू नो लाइक समवेयर व्हेन वी लुक अप, वी से कि इट्स लाइक सम. जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं भी रखते, जो एथिस्ट भी माने जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि कोई पावर तो है.
0: वो तो ठीक है कि कोई एक शक्ति है, लेकिन जब हम प्रकृति को ही परमात्मा मान लेते हैं, जल को, सूर्य को, सूर्य देव, यू नो, जल की पूजा करना, किसी वृक्ष की पूजा करना, किसी पशु की पूजा करना, यू नो, ये सब जो है कि हमने प्रकृति को ही परमात्मा का रूप देकर प्रकृति की ही पूजा आराधना करनी शुरू कर दी. दूसरी मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा,
1: सो हम
0: हम ही वो हैं, वो हम हैं. तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, कण कण में
1: भगवान, हर ईश्वर की सृष्टि के हर कण में भगवान है, मुझ में, तुझ में, सब में भगवान,
0: कच मच सब में, हर चीज के अंदर भगवान है. फिर भगवान निराकार है, वो नाम रूप से न्यारा है, वो कोई है ही नहीं, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना कुछ, बट वो एक शक्ति है. फिर भगवान है ही नहीं.
1: हाँ,
0: ये भी तो एक कॉन्सेप्ट
1: है
0: कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मैन.
1: और इवोल्यूशन के थ्रू हम आदमी बना कैसे, पर मैन,
0: आत्माओं ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, यू नो, अपने इस पूरे सिस्टम को कन्वीनियंटली चलाने के लिए एक क्रिएशन कर दिया कि कोई एक शक्ति है, भगवान है, बट एक्चुअली भगवान तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इमेजिन.
1: एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम उसकी ही संतान हैं, यू नो, लाइक हम उनका एक अंश
0: है, और फिर हम जाकर उनके अंदर ही जाकर वापस,
1: हमने वही जुड़ना है एक्चुअली,
0: हम उनसे टूटकर ही आए हैं और वापस उन्हीं में जाकर समा जाना.
1: तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ये बिलीफ सिस्टम्स हैं अगेन. Are they right or not? Again,
0: see, again, there is no question of right or wrong.
1: Experiencing.
0: Yes, it is a question of कि ये सारे जो belief systems हैं हमने अभी तक सुने हैं, पढ़े हैं, कोई भी wrong नहीं है. See, again, कोई भी wrong नहीं है, लेकिन कई बार हम उसका सही meaning मिस आउट कर जाते हैं और उसको बहुत एक physical रूप में ले लेते हैं. उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे जो message है, वो रह गया और उसको बहुत ही ग्रॉस फॉर्म में हम ले लेते हैं. जैसे हमने कहा जितनों ने भी परमात्मा का परिचय दिया कोई भी गलत नहीं था, लेकिन कोई भी 100% शायद
1: राइट. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, जो जितने भी ये संत या इवन हमारे उपनिषद या गीता का भी बात अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ सब ईश्वर का परिचय दिया जा रहा है, क्या उन्हें भी ईश्वर ने ही परिचय दिया अपना, जैसा आज ईश्वर?
0: वो हम देखेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे कि ये सृष्टि में हम कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते आए हैं. अच्छा. कब परमात्मा ने आकर अपना परिचय दिया और उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है?
1: अच्छा, कब कब? कभी कभी कभी कभी
0: नहीं, एक ही बार दिया, लेकिन जब दिया फिर वो मैसेज कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ, वील टेक दैट इन द कमिंग एपिसोड्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन पर इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. प्रकृति, नेचर, अभी तक हम कहते हैं कि गॉड इज द क्रिएटर और प्रकृति उसकी रचना है, फिर उसकी रचना को ही रचयिता कैसे हम मान सकते हैं? प्रकृति तो रचना है ना, इट इज द क्रिएशन, दिस होल सृष्टि, फिर उसको ही रचयिता कैसे मान सकते हैं?
1: इफ आई मेक अ पेंटिंग,
0: या माय पेंटिंग, इट्स वेरी डिफरेंट, यू आर द आर्टिस्ट, दैट इज द पेंटिंग. जैसे एक वो यू नो कुम्हार है, वो एक बहुत सुंदर सा मटका बनाता है, उस मटके को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है कि इसको बनाने वाला कौन. इसी तरह सृष्टि को देखकर, इस प्रकृति को देखकर हमें उसकी याद आ सकती है, लेकिन वो नहीं है, वो हम मिक्स नहीं कर सकते. फिर हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा बच्चा है. एक तरफ हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है. तो बच्चा पिता के जैसा हो सकता है यू नो, लेकिन बच्चा ही पिता बन जाए वो तो पॉसिबल नहीं है. हम कहते हैं कि हम ऐसे कुछ काम करें जो हम ही परमात्मा बन जाए. अब परमात्मा कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिग्री थोड़ी है जिसको हमने प्राप्त कर लेना है. परमात्मा तो एक एंटिटी है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हम वो बन कैसे सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम उसके जैसा बन सकते हैं,
1: उसके जैसे डेवलप वैसे हो जाए हमारा डेवलप.
0: जैसे एक बच्चा कहे कि मैं इतना श्रेष्ठ काम करूं कि मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं अपना पिता बन जाऊं,
1: ये नहीं हो सकता. नहीं. पिता तो पिता रहेगा.
0: हाँ, वो किसी और रचना का पिता बन सकता है, लेकिन वो अपना ही पिता नहीं बन सकता, उसका पिता उसका अपना ही रहेगा. फिर जैसे आपने कहा कि उसमें से फ्रैगमेंट होकर कि परमात्मा का ही हम अंश है और परमात्मा में ही हम वापस समा जाएंगे, या जो हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है. आप मानते हैं कण कण में परमात्मा?
1: सी, मुझे ये लगता है कि कण कण में परमात्मा मानने से एटलीस्ट मैं केयर कर लूंगी.
0: हाँ, कंसर्न बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से रहेंगे.
1: हाँ,
0: मेजोरिटी लोग आजकल ये अभी तक ये मानते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा है, और उसके पीछे भी कुछ भाव रहा होगा वो बात को मानने का, लेकिन अपने आप से पूछना होगा. इसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं यूज करें, सबसे पहले अपने आप से पूछे, आप भी अपने आप को अभी पूछना कि डू आई रियली फील कि जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, पवित्रता का सागर है, वो मेरे अंदर बैठा?
1: आई डोंट थिंक सो.
0: अगर वो मेरे अंदर बैठा है तो व्हाट शुड बी माय फीलिंग्स?
1: आई शुड ऑलवेज फील यू नो एनलाइटेंड, आई शुड ऑलवेज फील गुड.
0: अगर ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर आपके अंदर बैठा है, तो क्या क्रोध आ सकता
1: है? नहीं आ सकता ना.
0: आ नहीं सकता ना. दुख आ सकता है, चिंता हो सकती है. जो फीलिंग्स हमारी मेजोरिटी सारा दिन है आज, उसका एक ट्रेस भी नहीं हो सकता, बिकॉज द ओशन ऑफ दोज क्वालिटीज इज सिटिंग इनसाइड.
1: लेकिन when you say कि अगर वो संस्कार जो हमारे मूल संस्कार जो थे वो भी यही जो थे, उनके ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, या इतने संस्कार
0: आत्मा के ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, तो क्या मतलब परमात्मा पर भी धूल मिट्टी जमती गई?
1: नहीं, अगर वो आत्मा ही परमात्मा है, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि कण कण में है, मुझ में तुझ में सब में है.
0: हाँ.
1: वही परमात्मा है, परमात्मा का ही एक अंश हूं मैं. तो अगर मुझ में वो जो मेरी बेसिक जो आई एम दैट सोर्स यू नो, मैं थोड़ा छोटा हूँ क्योंकि मैं यू नो लाइक सुप्रीम नहीं हूँ. तो क्योंकि मुझे मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम सब मिल जाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे, यू नो लाइक द रियल बिग सेंस.
0: सारी जो आत्माएं हैं आज और ये सारी जितने वेरिड संस्कार कैरी कर रही हैं, क्रोध के, काम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, ये सारे मिल के परमात्मा बन जाएंगे.
1: No, but then that has to be separated, na? जब हम उन वो जो गलत जो संस्कार आते गए हैं.
0: परमात्मा को आज हम याद करते हैं.
1: हम
0: मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं.
1: यही तो कंफ्यूजन है.
0: अगर वो हमारे अंदर बैठा है, तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है. जब भी हमें उसकी याद आती है, हमारी ऑटोमेटिकली नजर ऊपर जाती है. ऊपर वाला जाने अब क्या होने वाला, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं. तो ऊपर वाला है ही कौन जब वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है? तो फिर ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं. हम बोले इधर उधर वाले सारे जाने, क्योंकि सबके अंदर बैठा है, मैं ही जानू, मेरे अंदर ही बैठा है.
1: एक्चुअली पता है मुझे ये लगता है, जनरली ये देखा जाए अगर, कि इतनी कंफ्यूजन है गॉड को लेके, इतनी कंफ्यूजन है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके, कि जो जो जब समझ में आता है हम वो मान लेते हैं. जब हमें ये लगता है, जब हम सोच रहे होते हैं, तो ये कहा जाता है कि मुझमें ही भगवान है. व्हेन आई वांट टू फील गुड, आई फील ओके, मुझमें ही तो है गॉड, यू नो, लाइक आई स्टार्ट फीलिंग गुड. व्हेन आई, मेरे से काम नहीं हो पा रहा, कुछ चाहिए, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, यू नो, कि ओह नहीं तुम कहां
0: हो. तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो कभी कभी आता है और कभी कभी चला जाता है.
1: तो
0: अगर इफ गॉड इज, सी दैट्स व्हाट, हमें एक एक अपने बिलीफ को चेक करके ट्रू और फॉल्स करना पड़ेगा. राइट, कि अगर गॉड इज इनसाइड मी, तो वो मोमेंट आ ही नहीं सकता ना जो मैं परेशान हूँ.
1: आई थिंक इट्स हाई टाइम, यू नो, वी स्टार्ट क्लेरिफाइंग,
0: राइट,
1: वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग.
0: तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, तो वो क्षण ही नहीं आ सकता.
1: जब कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो,
0: वो क्षण ही नहीं आ सकता कि जो मुझे दुख हो और परेशानी हो. सर्वशक्तिवान मेरे अंदर बैठा है. यू नो, इवन टू, इवन जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन राइट नाउ, राइट नाउ सिटिंग हियर, अगर हम सब अपने आप से एक मिनट ये क्वेश्चन करें कि इफ रियली, अगर सचमुच में सिर्फ एक क्षण के लिए, सारी उम्र के लिए नहीं, एक क्षण के लिए वो एवर प्योर, वो सर्वशक्तिवान, शांति का सागर एक क्षण के लिए भी मुझके अंदर आकर अगर बैठ जाए, हाउ वुड बी द फीलिंग?
1: It could be too good, too great, actually. You know, it's the thing.
0: Yeah, so we won't even know what's the feeling because we've never experienced it.
1: No, but we can imagine, you know.
0: Yeah, imagine. Now, imagine करके भी तो पता चल रहा है कि reality में और उस imagination में तो बहुत फर्क है. हमने तो कभी ऐसा कोई अनुभव किया ही नहीं है. हम तो इसीलिए कह रहे हैं कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी प्यार. तो परमात्मा अगर बैठा है, तो कभी कभी नहीं हो सकता. अगर हम एक क्षण के लिए ये मान लें कि परमात्मा हम सबके अंदर है, तो आप में भी है, मेरे में भी है, तो सबके अंदर है. वंस इट इज सबके अंदर, देन इट इज एवरीबडी. तो इस दुनिया की हालत कैसी होनी चाहिए?
1: हैप्पी, पीसफुल,
0: परफेक्ट. इट शुड बी परफेक्ट. देन व्हाट इज हैपनिंग जब हम एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, जब हम एक बॉम्ब गिरा के लाखों की हत्या कर देते हैं?
1: लेकिन वो बात तो वही आ जाती है कि जो ईश्वर है हमारे अंदर, उसे हमने कहीं बहुत नीचे दबा दिया है.
0: हमने दबा दिया,
1: हमने इन द सेंस कि वो जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, यू नो, द गॉड, लाइक जो रियल सेंस में हम बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज सप्रेस, हमने छुपा दी, मतलब छुप तो जाते हैं.
0: परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान, हम उसको नहीं दबा सकते. अगर हमने उसको दबा दिया, इसका मतलब हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं. वो तो हम है ही नहीं. तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब हम क्या समझते हैं कि जब अच्छाई, जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब परमात्मा करा रहा है, और जब हमारे से कोई गलत कर्म हो गया, तो परमात्मा है लेकिन हमने उसको दबा दिया. अगर वो है, तो उसकी क्वालिटी है, हम उसको दबा नहीं सकते. आप एक गुलाब का फूल यहाँ ले आओ, वो है, आप कितना भी उस गुलाब के फूल को दबाने की कोशिश करो, आप उसकी खुशबू को दबा नहीं सकते. दैट इज जस्ट गोइंग टू रेडिएट एवरीवेयर. तो शांति का सागर मेरे अंदर है, मैं उसको दबा के गुस्सा नहीं कर सकती. उसकी शांति हर जगह फैलने वाली है. तो ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, जो कभी कभी सही कर्म करती है, कभी कभी मेरे से गलत कर्म हो जाता है.
1: लेकिन यहां देन, मैं अगर आत्मा हूं, मुझ में बेसिक क्वालिटीज जो हमने बात की है, जो सेवन बेसिक मेरे संस्कार जो है, वो तो वही है ना जो परमात्मा,
0: क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है ना. तो आत्मा के संस्कार कैसे होंगे जो उसके पिता के हैं? इसीलिए तो ये बिलीफ कैसे बना कि कण कण में परमात्मा है, इसके पीछे भी कुछ भाव रहा होगा. हजारों वर्ष पहले जब ये, यू नो, दुख, अशांति आरंभ हुई, मनुष्य ने गलत काम करना शुरू किया, तो जो महान आत्माएं थे उस समय, वो उनको बचाना चाहते थे उस गलत काम को करने से. जैसे एक माँ अपने बच्चे को रोकती है कि बाहर नहीं जाना, बाहर ना भूत है. अब बाहर कोई भूत नहीं होता है, लेकिन वो उस बच्चे को बचाना चाहती है. तो वो बचाने का मेथड कौन सा अडॉप्ट करती है? नॉलेज नहीं देती है, फियर क्रिएट कर देती है. आप नॉलेज दो, पूरी समझ दो कि बाहर अंधेरा है, ये होगा, थोड़ा मुश्किल लगता है. तो इजी प्रोसेस क्या है? बच्चे के अंदर डर क्रिएट कर दिया, बाहर नहीं जाना भूत है, तो बच्चा भी डर के बैठ जाता है. लेकिन कितने टाइम तक बैठेगा वो? 3, 4, 5 साल का जब हो जाएगा तब वो एक्सप्लोर करेगा जाके, तब वो जाकर बोलेगा कोई भूत भूत नहीं है बाहर. तो इसी तरह हमें बताया गया कि गलत काम मत करो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि हर एक के अंदर
1: भगवान है.
0: भगवान हर तरफ है, वो तुम्हें देख रहा है कर्म करते हुए. तो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचो, डरो, क्योंकि भगवान तुमको देख रहा है. किसी को दुख मत दो, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है. तो ये जैसे कि उन महान आत्माओं ने हमें गलत करने से बचाने के लिए ये एक समझ दी, ताकि हम कहीं ना कहीं डर कर ये काम नहीं करेंगे. और काफी समय तक ठीक चला, हम संभलते हुए चले, लेकिन फिर हम भी तो
1: 5 साल के हो गए ना.
0: हम भी स्ट्रांग होते गए और हमने सोचा छोड़ो, मुझे तो जो करना है वो मैं करूँ, जो देख रहा है वो देखता रहे.
1: लेकिन अगेन सिस्टर शिवानी, अल्टीमेटली बात यही आती है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सपीरियंस करने का ही है.
0: हाँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं पिता की संतान हूँ, तो इसलिए जो उसके गुण है वो सारे मेरे गुण है. इसलिए वो शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप हूँ. अब मैं उस पिता को याद भी करती हूँ, जैसे हमने देखा हम सब परमात्मा को याद करते हैं, तो मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण है, मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है. मैं आत्मा अपने पिता की तरह बन सकता हूं, लेकिन वो पिता ही मेरे अंदर आकर बैठा है. दिस आई नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि अगर वो सारा दिन मेरे अंदर आकर बैठा है तो फिर तो मेरी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एंड जो दुनिया की स्थिति है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. जैसे सन है, सूर्य है, अब सूर्य की रोशनी तो
1: चारों
0: पूरी सृष्टि पर है. सूर्य तो एक ही है, उसको हर जगह तो नहीं प्रेजेंट होना पड़ता है अपनी लाइट और वार्म्थ देने के लिए, लेकिन वो एक पोजीशन से भी अपनी शक्ति उस किरणों के द्वारा हर तरफ फैला रहा है.
1: और हर चीज जो लाइट दे रही है वो सूरज नहीं है एक्चुअली.
0: यस एब्सोल्युटली. अब वो सूर्य की किरणें, सूर्य की लाइट एंड उसकी जो हीट एनर्जी है वो सब तक पहुंच रही है. जो जितना नजदीक होगा उसको उसका अनुभव
1: ज्यादा
0: होगा, लेकिन सूर्य हर जगह प्रेजेंट नहीं है. इसी तरह परमात्मा के गुण और शक्ति हर आत्मा में है. जो आत्मा जितना ज्यादा याद करेगी उसके अंदर वो गुण उतने ज्यादा दिखाई देंगे.
1: वो एहसास है एक्चुअली, यू नो,
0: फीलिंग.
1: हाँ, फील, वी फील मोर सन, वी फील लेस सन, सिमिलर. ओके,
0: सेम थिंग. तो हम जितना प्यार से उस परमात्मा को याद करेंगे, जैसे हमने कई बार लगता, मुझे तो लगता है बस वो मेरे साथ ही है, यू नो, तो वो एक्चुअली फिजिकली नहीं मेरे साथ है, लेकिन मेरी याद इतनी स्ट्रांग है. जैसे मीरा इतनी स्ट्रांग भक्ति की, इतना उसको एक कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने कहा मैं जहां भी देखूं मुझे तो तू ही तू दिखाई देता है, पर बाकियों को तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका वो भाव ये था, तो उसको हर जगह वो ही दिखाई देता है. तो परमात्मा अगर हम समझें कि हरेक के अंदर है, दिस इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन.
1: हाँ, कि मैं तो करी ना, मुझमें ईश्वर है, तो हाँ,
0: तो मतलब जो भी गलत हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, उसकी जिम्मेवारी. मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो बैठकर करवा रहा है, तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्मों की वो तो खत्म ही हो गई. और दूसरा, मुझे कुछ मेहनत करके कुछ अपने आप को परिवर्तन करना है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट हूँ, परमात्मा ही मेरे अंदर बैठा
1: है. अनदर एस्पेक्ट इज लेट एग्जिस्टेंस टेक इट्स ओन, यू नो, एक्शन. एक ये कॉन्सेप्ट कही है कि एग्जिस्टेंस जो है वो सुप्रीम है, जो भी एग्जिस्टेंस है, और उसके फ्लो में फ्लो करते जाओ. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू नो, डोंट ट्राई टू फाइट आउट. व्हाट एग्जैक्टली?
0: बिकॉज़ एवरीथिंग इज नेचुरल, प्रकृति के नियम अनुसार और आध्यात्मिकता के नियम अनुसार. जैसे एक लॉ ऑफ नेचर होता है और एक है स्पिरिचुअल लॉज, तो हर चीज जो चल रही है वो अपने स्पिरिचुअल लॉज के मुताबिक सब चल रही है. हमें उसके साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना होता है क्योंकि स्पिरिचुअल लॉ जैसे एक स्पिरिचुअल लॉ है, जो हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा. तो अब हमें जो मिल रहा है उसके साथ स्ट्रगल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसी का रिजल्ट है जो हमने किया. सो नाउ टेक इट इजी, जस्ट फ्लो विद इट, बट साइड बाय साइड पे अटेंशन टू द नेक्स्ट एक्शन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ताकि अब हमारे से कोई गलत कर्म नहीं हो जाए. तो एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस स्पिरिचुअल लॉज. तो ये भी जो एक मान्यता है ना कि भगवान हर चीज कंट्रोल कर रहा है, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है. अब अगर भगवान की मर्जी से सृष्टि चले और भगवान की मर्जी से हम सब चले, तो फिर हम सब कैसे होने चाहिए?
1: बेस्ट.
0: तो फिर अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, ये सब भगवान की मर्जी से तो हो नहीं सकता.
1: यू नो व्हेन पीपल क्राई कि मैं तुझे इतना याद करता हूँ, तब भी मेरे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है?
0: तो फिर अगर वो पिता है, हम बच्चे हैं, क्या उसकी मर्जी से हमें इतना दुख मिलेगा?
1: But then who has created these laws, you know, spiritual laws?
0: These are eternal laws. Who has created the nature laws? They are eternal laws. Nobody creates a law. Nature works according to those laws. Law of gravity, किसी ने क्रिएट नहीं किया. It was always there. It's just that one day Newton realized it. But इसका मतलब ये नहीं कि law of gravity उस दिन create हुआ था. वो तो हमेशा से ही functional था. लेकिन जब हमें रियलाइज हो गया तो हम उस लॉ के अनुसार चल सकते हैं. हम उस लॉ के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो फिर हमारा नुकसान होता है. तो परमात्मा इस सृष्टि को कंट्रोल नहीं करता है, हम सब अपने कर्म अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं. तो ये भी जो हम कहते हैं कि यू नो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हिम, ये भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश कर देते हैं कि सब कुछ तो वो ही कर रहा है. मेरे साथ अच्छा बुरा जो हो रहा है, वो बच्चा दिया तो भी उसने दिया, ले लिया तो भी उसने ले लिया, तो ब्लेम सारा उसी पर डाल देते हैं. एक पेरेंट अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता, मनुष्य आत्मा भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकता. तो परमात्मा जो सुख का सागर है, जो कल्याणकारी है, वो अकल्याण कैसे कर सकता है? वो अपने बच्चे का अकल्याण नहीं कर सकता. लेकिन जैसे आप एक माँ हैं, आपकी दो डॉटर्स हैं, आप दोनों को शिक्षा देती हैं, आप दोनों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर दोनों अपने अपने कर्म, आप कितना भी चाहें कि उनको दुख ना हो, आपके चाहने से वो नहीं होगा.
1: Okay, then another question which I want to ask is like, if, you know, जो कुछ हो रहा है, law of nature है, law of spiritual law है, whatever, then God क्या कर सकता है?
0: Good.
1: You know, like, if it has to happen,
0: right?
1: You know, whatever I'm doing,
0: तो परमात्मा क्या कर रहा है फिर? उसका क्या रोल है? Absolutely. परमात्मा का इस सारे सृष्टि के जो ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें परमात्मा का रोल क्या? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. क्योंकि हम परमात्मा को ही नहीं

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। आप सभी को आज के दिन की सदगुरुवार की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, वेल्दी फील कर रहे हैं। बस थोड़ी सी चिंता हमारे किसान भाइयों को जो बनासकांठा के आसपास में रहते हैं, बारिश कम हो गई है और खेती जो है लगा दी है, जोत के रख दिया है। बस एक बार थोड़ा सा बारिश आ जाए तो खेतों की जो है हरियाली में जो है इजाफा हो जाएगी और खेत जो है लहराने लगेंगे। इंतज़ार है उस बरसात का जो वक्त के साथ हमें चाहिए। तो चलिए हम सभी मिलकर एक बार उन सभी किसानों के लिए और ख़ास ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बनासकांठा में बारिश हो जाए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो आइए इस सदगुरुवार का ये शुभ दिन पर हम सभी प्रार्थना करें मन से और ईश्वर से याचना करें कि भाई बनासकांठा में बारिश हो जाए। जितनी चाहिए उतनी हो जाए, ना कम न ज़्यादा, है ना। बड़े प्यार से आप बोलिए और देखिए, जब प्यार से करते हैं हम प्रार्थना तो ईश्वर भी अपनी जो है भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो आइए, 10 सितंबर 2026 आज का तारीख है और आज का दिन बढ़िया है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ। हेलो जी, नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति भाई जी।
0: जी जी बोलिए,
1: आपके तरफ
0: ठीक है। आइए आइए, स्वागत है आपका। तो राष्ट्रीय शके 1948-1925 भाद्रपद आज है और गुरुवार का दिन है। विक्रम संवत 2083 भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार मागा आज है। इसके साथ ही जुमेरा जबरा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 27 रबी उल अव्वल आज है। इसके साथ ही आज विशेष आत्महत्या रोकथाम दिवस है। विश्व में बहुत सारे ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में जब किसानों को बारिश नहीं मिलता है और खेती में नुकसान होता है, तो परिवार का पालन पोषण और जो चीज़ें मना खेती करने के लिए जो कर्ज लिया है वो नहीं

0: ही पेड़ पाते हैं तब उसको वो भर नहीं पाते, तो ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है आत्महत्या का। दूसरी तरफ जब बच्चे जो है उनको जो नंबर वन पे आना होता है, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो घर के लोग क्या कहेंगे, दूसरे विद्यार्थी क्या कहेंगे, इस डर से भी कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परिवार में कला क्लेश के कारण, पति पत्नी का नहीं बनने के कारण भी आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाना बहुत ज़रूरी, ये एक जागरूकता दिवस है जहाँ पर हम अपने जीवन में मुश्किलें कितनी भी आए लेकिन उसे संभाल सकते हैं, उस पर विजयी बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी का सहारा लेना है और अपने मन को समझाना है, है ना। और आप आत्महत्या ये एक महापाप में गिनती किया गया है क्योंकि आपका पुनर्जन्म फिर से हो जाता है और उसी दर दर में आप वापस आ जाते हैं क्योंकि अकाउंट्स बने रहते हैं, उसको पूरा करना ही होता है। तो अगर कहीं मुश्किलें हैं तो वो आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। किसी व्यक्ति का अगर कर्जा चुकतू हो रहा है तो उसको खुशी होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा इस बात को नहीं सोच पाते हैं। हमारा थिंकिंग इस तरह नहीं जाता, हमारा सोच इस तरह से नहीं सोचता, तो हम और दूसरे को सोचने लग जाते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, तो फिर आत्महत्या की ओर जाते हैं। तो अब क्या होगा ये ना सोचकर अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ईश्वर ने संसार को बनाया है, मैंने संसार को नहीं बनाया है, जिसने बनाया है वो ठीक करेगा, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसे याद करना है और अपना अच्छा कर्म करना है। तो ये है विशेष संदेश आपके लिए। चलिए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। रेडियो मधुबन कितना चलता है?
0: जी जी जी,
1: आपका आपकी आवाज अलग है, यहाँ अलग है। अभी दूसरा
0: बोलिए बोलिए।
1: ये देखो ये कैसे दूसरे लगाया है।
0: ये भी अच्छा है, ड्रामा है,
1: आपकी आवाज भी आ रही है।
0: बढ़िया ड्रामा है।
1: जी जी जी, बहुत है। ये भी सुनने में मजा ही आता है। देखिए कोशिश करिए। चलो, आपने फोन उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। रेडियो मधुबन को सलाम करते हैं, नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग और थैंक यू। हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं और आपको बहुत बहुत नमस्कार, नवी किरण को और सब नया ही नया आएगा। ओम शांति सर, अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं।
0: ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ एक गीत की तरफ। और इस बीच हमारे जैसे कि रेडियो मधुबन पर सीरी चल गया है और अभी इसको कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और लीजिए आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और मुझे लगता है कि कई बार हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं वैसा ना होकर कुछ और भी होता है। तो आइए आप सभी को ले चलता हूँ एक प्यारा सा भजन, सुनते रहो, मस्त रहो।

0: मेरी विनती सुनो तो जानू ओ राम। चलिए विनती तो सबकी सुनते हैं परमात्मा, लेकिन हमें प्यार से विनती करके समय के साथ साथ आगे बढ़ना है, अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों में व्यक्त करना है। तो आइए बातें कर रहे थे हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में, और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में अंग्रेजी में आज के दिन को मनाया जाता है। तो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। आजकल लोगों में अस्वाद लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से वे आत्महत्या कर रहे हैं। इस मामले में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, जिसके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। पिछले कुछ सालों से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कोरोना के संकट काल में आत्महत्या का प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा, लोगों में हताश और निराशा बढ़ रही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड IAESP हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक साल में करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि सुसाइड की कोशिश करने वालों का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इस बात को सामने रखते हुए ये दिन मनाने का निश्चय किया गया, और लोगों को और ख़ास करके युवाओं को पॉजिटिव मोटिवेशन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में जीने की आशा की किरण की ज़रूरत है। तो हम सभी परिस्थितियाँ कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, लेकिन हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सबके लिए आशा की किरण बनकर आगे बढ़ना है। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार सर, कंचन भाई बोल रहा हूँ।
0: बोलिए कंचन भाई, स्वागत है आपका।
1: आपका भी स्टूडियो में स्वागत है, और आज भी खेत में आ गया, क्या करे, बारिश नहीं है तो पानी जो कुएं में बोर में जो थोड़ा थोड़ा है वो निकाल के ये कर रहे हैं। और सद गुरुवार का दिन है आज, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई दोस्तों ने, आपने भजन भी बहुत अच्छा सुनाया। मेरी विनती सुनो तो जानो बहुत अच्छा लगा। और गुरुवार का दिन है तो हमें हर रोज भजन की कीर्तन करते हैं, मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं कि सभी को सर्वेश्वर सुखिन संतु सर्वे संतु निरामय, हमारे लिए ही नहीं पण सर्व जीवों के लिए बारिश आए तो अच्छा रहेगा, ऐसी प्रार्थना हम भी करते। तो कल मैंने एक तो वचन गाया था, तो दो लाइन गुनगुनाते खो माहिर लो आठ तीरे तने आवो रूडो यवसर ना मळे रे जी, कोई बैठो रे मंदा खाख मै माते त्रिवेणी ना ताप बड़े दे, ओ माहिर लो हाथ तीरे तने आओ ना मळे रे दी, ए समझण विना नर करे छे साधना ने गुरु विना ज्ञान ने ना मळे रे दी, ए पारस मणी नु पार कुए तो लोढ़ा ने कंचन करे, खो माहिर लो तीरे तने आवो रूडो नामले दी। भजन बहुत लंबा है लेकिन इसमें जो बताया
0: ओके,
1: एक लाइन बताई कि भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: ठीक है,
1: गुरु नहीं सदगुरु की आवश्यकता जीवन में है सर। ठीक है सर,
0: सदगुरु
1: वाले के दिन आज थोड़ा मैंने बात की
0: जी जी। चलिए कंचन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी सी भावनाएं आपने व्यक्त किया है, और बारिश का भी इंतज़ार है, और जहाँ से भी पानी मिले उसका उपयोग करने के लिए आप खेती में पहुँच गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कर्म करते जा, फल ईश्वर देगा, है ना। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक प्यारा सा भजन जो अभी गुनगुना रहे थे कंचन भाई, वही भजन आपको सुनाता हूँ। 8:46 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ, सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज विशेष आत्महत्या रोकथाम दिवस है तो उसके बारे में बातें कर रहे थे, और इस बीच हमारे कंचन भाई और हमारे दूसरे मित्र मदन जी जो है रेडियो पर जुड़े और अपनी बात रखी उन्होंने। अच्छा, कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बुरी मानसिक स्थिति में गुजरता है तो एकदम आस्वाद में चला जाता है। इसी आस्वाद की वजह से लोग ज़्यादातर युवा आत्महत्या कर लेते हैं और इससे उनके परिवार पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मनाया जाता है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इसे 2003 में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत में ISP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। जीवन इस संसार में सबसे अनमोल माना गया है। हिंदू पुराणों व शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। सभी इंसानों के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन जब कोई इस निश्चित वक्त के विरुद्ध जाकर शरीर छोड़ने की सोचता है तो वो आत्महत्या कही जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, तो आज हम इन कारणों के बजाय हम निश्चित करें कि जीवन और मृत्यु जब निश्चित है तो फिर आपको मृत्यु चुनने का कोई हक नहीं है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हां, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विचार चिंतन मंथन करें आप। और आजकल हर उम्र के लोग आत्महत्या जैसे आस्वाद की चपेट में आ रहे हैं। कई सारी चीज़ों से लोगों का मोह भंग हो गया है। साल 2020 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम वॉकिंग टुगेदर विथ ग्रीवेंट सुसाइड यानी आत्महत्या की रोकथाम के लिए साथ काम करना है रखी गई थी। तो इस पर काफ़ी काम किए, काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी युवाओं को इसके ऊपर सेमिनार कराए गए ताकि ये चीज़ें लोगों को समझ में आ जाए। और रेडियो टीवी इसके माध्यम से काफ़ी बहुत सारे प्रोग्राम्स एपिसोड्स किए गए जिससे लोगों के अंदर एक आस्वाद की कमी हो जाए और जीवन के प्रति आस्था बढ़े, आशा बढ़े, ऐसी शुभ आशा के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9:02 हो रहे हैं और दिल्ली से समाचार आ चुके हैं, तो अभी सीधे मैं आपको ले चलता हूं समाचारों की तरफ। सुनते रहो बस
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
5: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।
2: वो म्या समरू गावे का ये तीनों ही बलवान।

हरे कृष्णा। जो भजन मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही सुंदर भाव में लिखा गया है और ये भजन जानवी भारद्वाज जी ने लिखा है। इस गीत में मथुरावासी और सारी गोपियाँ अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। जब कृष्णा और बलराम पहली बार मथुरा आए थे तो सारे मथुरावासी अपने घर की चौखट पे आंखें बिछाए खड़े हुए थे और गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। सद्गुरुवार का दिन है और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ गई हैं। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जी वंदना जी,
1: आप ये बताइए कि सामाजिक तरीके से या मानसिक तरीके से कैसे बताया जाए?
0: हाँ, मानसिक तरीके से बताइए, क्योंकि सामाजिक तरीके
1: में तो ये होता है, पहले तो जो हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और जो मानसिक तरीके से होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मानसिक दबाव में होते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, उसके कारण भी मन होता है कि आत्महत्या की जाए। इसके अलावा और जब असफलता हमारे जीवन में आती है, और कोई इतनी बड़ी असफलता आती है, जैसे आपने भी सुना होगा, हमने भी न्यूज़ में बहुत पढ़ा है, मान लीजिए किसी के ऊपर बिजनेसमैन थे, इतना बड़ा उनके ऊपर कर्जा हो गया कि उन्होंने पूरी फैमिली के समेत आत्महत्या कर ली। तो एक बहुत बड़े ऐसे रीजंस होते हैं, और आपस में टेंशन होती है, घर में टेंशन होती है, रिश्ते नहीं सुधरते, या लगातार कोई असफल हो रहा है, या हमारे घर में से किसी की मृत्यु हो जाए, है ना। तब मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो अगर हम देखते हैं जो हमें हमारे तनाव दे देते हैं, और तनाव से निकलने का एक्चुअली जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तब इंसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। सपोज किसी की घर में डेथ हो जाती है ना, और अब वो बहुत प्यारा होता है। डेथ एक ऐसी चीज होती है जिसको कि एकदम से हम समझ नहीं पाते क्या करें। एक पर्सन घर से चला गया जिससे हमारा रिश्ता था, और अगर ऐसे में ज्ञान ना हो हमें तो ये चीज़ें हमें एक डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और डिप्रेशन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान एकदम उसको लगता है कि मुझे भी शायद ये शरीर छोड़ देना चाहिए, या किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, या सपोज कोई मान लीजिए शादी होने वाली होती है, या किसी का अफेयर होता है उसमें से एक जना चला जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमें मानसिक दबाव में ले आते हैं।
0: जी जी जी, चलिए वंदना जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया। मानसिक तौर पे व्यक्ति जब कमज़ोर पड़ जाता है, संयम की डोर ख़त्म हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति जो है इस तरह की सिचुएशन में आकर अपने आप को ख़त्म करता है। मोस्टली हम लोग देखे लॉकडाउन में ये चीज़ें ज़्यादा हुई, उसके बाद कोरोना का असर, ये सारी चीज़ें जो है तनाव से ग्रसित होकर, डिप्रेशन के शिकार होकर, मेंटली डिस्टर्ब होकर लोग इस

0: छोड़कर खुले दिमाग से जो है कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए और कुछ अच्छे लोगों के संगत में आ जाना चाहिए, तब जाके आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। ऐसा कहते हैं ना, जब घर में आग लगी हो तो आप घर के अंदर रह के आग नहीं बुझा सकते, आपको घर के बाहर जाना है और पानी से उसको बुझा सकते हैं। अंदर ही रहेंगे तो आप भी जल जाएंगे। तो ये बात हमारे मन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मन का भी ऐसे ही सिचुएशन होता है, जब मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आपको हावी कर देते हैं तो उस समय आप मन के ऊपर काम या मन के ऊपर फोकस ना करते हुए, उन चीज़ों को ना देखते हुए थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो है अलग कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों के साथ जाइए या आपको कहीं किसी और जगह पर घूमने जाइए, किसी शांत वातावरण में जाइए, किसी आश्रम में जाइए, मंदिर में जाइए, किसी से बात कीजिए, तो चीज़ें जो है वहाँ पर कंट्रोल हो सकता है या उसको ब्रेक लग सकता है।
1: जैसे आप बता रहे हैं रमेश जी, एक बात और के जब तनाव वाला इंसान होता है वो खुद कुछ नहीं कर सकता है
0: जी,
1: जो इसके सराउंडिंग लोग होते हैं, जो इसके अपने होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो उसको ऐसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसको तो कुछ खबर ही नहीं होती, वो इतने डिप्रेशन में होता है
0: बेखबर,
1: मैं अपनी जिंदगी खो दूं। तो जो यार दोस्तों से हैं उसके या अपने घर में कोई होते हैं पर्सन, वो उसको उससे लाने में बाहर मदद करते हैं।
0: चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाने वाला हूँ। और ये गीत जो है आपको बहुत ही जो है प्यारा सा गीत है जो आपको अच्छा लगेगा, मन जो है आपका प्रफुल्लित होगा। तो ऐसा ही एक गीत मैं आपके तनाव को कम करने के लिए, खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है, ऐसे में ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा और पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी है। बस थोड़ा धैर्य रखें, रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने, एक दूसरे से बात करें और परिवार का ख्याल रखें, दिनचर्या को बनाए रखें, इससे भी हम एक मकसद मिलता है, वह हम सामान्य महसूस करते हैं। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना और व्यायाम करना चाहिए। अपनी भावनाओं को जाहिर करें, अपने सपनों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं, तो ये गीत आपके मन को खुशी देगा। सुनते रहो मस्कराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ बहुत ही प्यारा गीत आप सुन रहे थे, लग जाए गला। उसके बाद पर्दा हटा दो, ये गाना आपने सुना, दो गीत। और चलिए, अब मैं कुछ प्रोग्राम्स हमारे आने वाले हैं जो अंक शास्त्र के बारे में, इसको एक बार थोड़ा सा टेलर आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको बातें करते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अलग अलग विषय पे लेकर आते हैं कार्यक्रम आपको, और आज हम लोग जिस कार्यक्रम पे बात करने वाले हैं, जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं, वो है अंक शास्त्र। अंक शास्त्र को अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए खास ये विषय लेकर हम बात करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग इस विषय को समझते भी हैं और इसके साथ जुड़ते भी हैं। जैसे कि आप अपना भविष्य देखा होगा, या आजकल तो न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज अपना भविष्य अंक शास्त्रों के माध्यम से या फिर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से चीजें जानने की कोशिश करते हैं।
1: जी हाँ साथियों, जैसे इस तरीके से अभी रमेश जी ने बताया, तो आप लोग भी उनके इस कदम के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये न्यूज में हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं, और हम में से न जाने इन बातों को कब से देखते सुनते आ रहे हैं। अब बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के जो जानने वाले एक्सपर्ट हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फीस लेकर अंकों के द्वारा हमारा या आपका भविष्य बता देते हैं, पर कोई समस्या विशेष के बारे में वो बता देते हैं। तो श्रोताओं, आज हम आपको अंकों का विज्ञान क्या है उसके बारे में बताते हैं, और जो अंक शास्त्र का रहस्य है वो क्या है।
0: चलिए, ये था टेलर अंक शास्त्र इस विषय पर। आशा करूंगा आप आने वाले समय में इस प्रोग्राम को बड़े प्यार से सुनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं। 10 सितंबर की बातें हो रही है, और रणजी का जन्मदिन आज है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में भी आज बातें होगी। गोविंद वल्लभ पंत जो है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आज़ादी के दीवाने थे। इनका मुख्यमंत्री काल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1954 तक रहा। बाद में भारत के गृह मंत्री बने, और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म करने का महत्वपूर्ण योगदान जो है इन्होंने दिया। भारत रत्न का सम्मान उनके ही गृह मंत्री काल में आरंभ हुआ था, और बाद में यही सम्मान उन्हें 1947 में उनके आज़ादी के कार्यक्रम में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत के गृह मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:48 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए, आने वाले समय में वृद्ध अवस्था और वृद्ध आश्रम के बारे में बातचीत होगी। ये भी एक नया प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, तो उसका भी टेलर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अभी सुनते रहो, मस्कर रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, जैसे हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषय को लेकर आपसे जुड़ते हैं, तो आज हम लोग वृद्ध अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, कहा जाता है वृद्ध अवस्था से वृद्ध आश्रम तक काम पर निकलने से पहले घर से किसी बुजुर्ग का हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखना लगता है कि आज शायद बीते दिनों की परिकल्पना या कोई फिल्म का या मूवी का सीन रह गया है। तो साथियों, आप में से न जाने कितने लोगों ने अपने माता पिता या दादी का हाथ अपने सर पर दुआओं का देते हुए और रखते हुए देखा होगा और उसी हाथ को एक शक्ति के रूप में महसूस किया है और साथ ही साथ सब एक आंतरिक अनुभूति और खुशी को महसूस भी किया है। लेकिन घरों में अब बुजुर्ग कहाँ है और अगर है भी तो कितना खुश रहते हैं, क्या कभी ये हमने आपने सोचा है?
1: बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। तो दोस्तों, ये अदृश्य दौलत जो दुआओं की होती है और वो हमारे साथ साथ पूरी जिंदगी चलती है, हमारा कवच बनकर वो हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं अपने घर के बड़े सदस्यों यानी कि बुजुर्गों को लेकर। जहाँ घरों में बुजुर्गों को अपनी एक छत्र छाया के रूप में माना जाता था, वही आज
0: तो चलिए, ये था वृद्ध अवस्था से वृद्ध आश्रम तक की बातें आपके लिए। आशा करूंगा आपको इस तरह के नए प्रोग्राम सुनने को मिलने वाले हैं जो टेलर हमने आपको सुनाया। हेलो जी, नमस्कार।
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग रमेश जी।
0: गुड मॉर्निंग शुभा जी, स्वागत है आपका।
2: दीदी और हमारी दीदी वंदना जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। देखो विषय, ओम समय, सुभाष भाई जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो,
0: हाँ बोलिए बोलिए सुभाष जी, बोलिए बोलिए।

0: की भी बातें अच्छी लगी। तो देखो ये जो पॉइंट आप अभी बोल रहे
1: जी,
0: आज विभक्त कुटुंब पद्धति के कारण बच्चों को क्या अपन युवाओं को भी दादा दादी नाना नानी, हम बचपन में मामा के गांव को जाते थे।

0: दुख बांटा जाता था। हमारे प्रॉब्लम हमारे दादा दादी नाना नानी मिटा देते थे, सॉल्व कर देते थे। तो रमेश जी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। कई लोग डिप्रेशन के कारण डिस मूड के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हम स्टार्टर से सुन रहे हैं। सभी को नमस्कार, ओम शांति।
1: सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी भावना व्यक्त करने के लिए। चलिए मित्रों, आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। कल्पनाशील भाव प्रवण आधुनिक चित्रकार थे असित कुमार हल्दर, 1890 में उनका जो है जन्म आज ही के दिन हुआ। बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट खिलाड़ी रणजी, इनका भी जन्मदिन आज है, 1872 में इनका जन्म हुआ। भारत की आज़ादी के दीवाने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, 1887 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी सेवी और आर्य समाजी थे भवानी दयाल सन्यासी, 1892 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तेलुगु साहित्यकार प्रसिद्ध बहुत ही पॉपुलर विश्वनाथ सत्यनारायण, इनका जन्म भी आज ही के दिन 1895 को हुआ। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित सम्मानित लेखिका चित्रा मुदुल, 1944 को इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत के आसाम के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रहे नीलमणि फुकन, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1933 को हुआ। फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाही राष्ट्रपति बने बीडी जत्ती, इनका भी जन्मदिन आज है, और 1912 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक थे राधिकारमन प्रसाद सिंह, 1890 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज हुआ है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

0: चलिए मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। छोटों को हम दोष देते हैं लेकिन छोटे वो ही करेंगे जो बड़े करते आए हैं। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, राई कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, कौन सी बीमारी ठीक करती है, जरूर जानेंगे आप। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन नाम अभी नहीं बताऊंगी, आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, आज की पहेली बहुत ही सुंदर रहेगी, बहुत ही सरल रहेगी, तो जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और आपका सही जवाब क्या है वो हम कार्यक्रम के अंत में देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि घर में जो बड़े करते आए हैं उन्हीं को छोटे भी फॉलो करेंगे, फिर हम छोटों को दोष देते हैं। तो जो बड़े करते आए हैं वो ही छोटे करेंगे, तो फिर छोटों को दोष नहीं देना है कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक लड़की का विवाह करके मतलब हो जाता है और उसका विवाह हो करके वो ससुराल में आ गई, ठीक है। तो घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। ये देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, गुरु बनती है मेरा। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसने एक उपाय सोचा। वह रोज अपना सब घर का काम निपटा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ अधिक बैठने लगी तो यह सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी, थोड़े मेरे पास भी आओ। लड़की ने कहा कि बोलो काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बतावे, तू वहाँ क्यों जा करके बैठती है बार बार। लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना, जो घर में बड़े बुजुर्ग है उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बुढ़े तो दादी जी है और फिर मैं किसके पास बैठूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर का रिवाज नहीं चलेगा, वहाँ तो तेरे ससुराल का रिवाज चलेगा। मेरे को यहाँ का रिवाज सीखना है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने फिर क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती है कि ये मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा करेगी। वो बोली कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति रिवाज सीखना। सास डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा बहू ये ठिकरी क्यों इकट्ठी की है। लड़की ने कहा, बहू ने कहा आप दादी जी को ठिकरी में भोजन देती हो ना, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को भी ठिकरी में भोजन कराएगी क्या। मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी, ये रीति थोड़ी ही है, तो आप फिर ठीकरे में क्यों देती हो दादी जी को भोजन। सास ने कहा थाली कौन माँजे। बहू बोली थाली तो मैं माँज दूंगी। तो तू थाली में दिया कर, सास बोली, ठीकरी उठा करके बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में ला करके देखने लगी। सास ने पूछा बहू क्या देखती हो। मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाता है, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। पहले भोजन कौन देवे, सास बोली आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बुढ़ी माँ जी को तो बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह बहू ताजी खिचड़ी, ताजा फुलका, दाल साग ले जा करके माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती, खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधन भार की तरह मूझ निकली हुई लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो। देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए, ऐसी खाट थोड़े दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई बहू, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाते आप, तू बिछा दे दूसरी। सास बोली आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह बहू कपड़े देखने लगी, कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बुड्ढों को कपड़ा कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े दिया जाता है, ये तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछोना, खाना पीना सब बदल दिया। उसकी चतुराई से, उसके होशियारी से बुढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी रखे, मतलब युक्ति से चले। और इस तरह अगर घर का माहौल खराब है तो खुद सुधार सकती है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुनते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। राई राई राई पन्ना केरी को अचार, श्रोता बंधु था को काई है विचार। तो ऐसे ही मैंने मजाकिया गीत सुना दिया है। राई किस तरह फायदा करती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सी बीमारी ठीक करती है, यह आपको उपाय बताने वाली हूँ राई के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, हिचकी आती है तो 10 ग्राम राई पाव भर जल में उबालिए, ठीक है। फिर उसे छान लीजिए और उसे गुनगुना रहने पर उस पानी को पीजिएगा। तो कितनी लेनी है राई? 10 ग्राम राई पाव भर पानी में, ठीक है। 250 ग्राम पानी में उबालिएगा और ये पानी फिर छान लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, मतलब सहता सहता हम पी सके ऐसा हो जाए तो छान करके पी लीजिएगा, हिचकी बंद हो जाएगी। अगर गंजापन है तो राई के हिम या फाट से सिर धोते रहिए, इससे फिर से बाल उगना आरंभ हो जाएगा। गंजापन आ गया है तो राई के हिम या फाट से सिर धोते रहिए, इससे फिर से नए बाल उगना आरंभ हो जाएगा। गर्भाशय की वेदना है, किसी कारण से कष्ट, शूल या दर्द प्रतीत हो रहा हो तो कमर या नाभि के नीचे राई की पुल्टिस का प्रयोग बार बार करिएगा। गर्भाशय की वेदना है, किसी भी कारण से कष्ट, शूल या दर्द प्रतीत हो रहा हो तो कमर या नाभि के नीचे राई की पुल्टिस का प्रयोग बार बार करिए, इससे राहत मिलेगी। बहनों के लिए और भी बहुत ही सुंदर उपाय है। मासिक धर्म विकार में, मतलब मासिक स्त्राव कम होने की स्थिति में, टब में भरे गुनगुने गर्म पानी में पीसी हुई राई मिला करके रोगिणी को 1 घंटे कमर तक डुबोकर उस टब में बैठना है, हिप बात करना है। मतलब ऐसा करने से आवश्यक परिणाम में स्त्राव बिना कष्ट के हो जाएगा, ठीक है। और अगर बवासीर की तकलीफ है, बवासीर अर्श, अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो, अर्थात खुजली चलती हो, देखने में मोटे हो और स्पर्श करने पर दुख न होकर के अच्छा प्रतीत होता हो तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाइए। राई का तेल लगाते रहने से मस्से मुरझाने लगते हैं, ठीक है। बवासीर अर्श हो, अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो, अर्थात खुजली चलती हो, देखने में मोटे हो और स्पर्श करने पर दुख न होकर के, मतलब दुखता नहीं हो और अच्छा प्रतीत होता हो तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाते रहिए, इससे मस्से मुरझाने लगेंगे। और अगर सफ़ेद कोढ़ है, ठीक है, श्वेत कुष्ठ, तो पीसा हुआ राई का आटा 8 गुने गाय के पुराने घी में मिला करके चकते के ऊपर कुछ दिनों तक लेप करिए। इससे उस स्थान का रक्त तीव्रता से घूमने लगता है जिससे वे चकते मिटने लगते हैं। इसी प्रकार दाद, पामा, इन सभी पर भी आप इस तरह लगा सकते हैं। और लास्ट उपाय है, कांच या फिर काटा लग गया हो तो राई को शहद में मिला करके कांच या काटा या अन्य किसी धातु कण के लगे स्थान पर लेप कर दीजिए, इससे वह ऊपर की ओर आ जाता है और आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। तो कांच चुभ गया हो, काटा चुभ गया हो या किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु चुभ गई हो तो राई को शहद में मिलाकर, राई के पाउडर को शहद में मिला करके आप जहाँ भी कांच काटा जो भी आपके लगा है वहाँ आप पुल्टिस बांध दीजिए तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, फिर आसानी से आप इसको खींच सकेंगे। तो ये हुए घरेलू उपाय, बहुत ही सुंदर। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
2: जी, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी जी।
1: हाँ जी मदन भाई, नमस्ते।
2: क्या बात है, रेडियो आज नहीं बज रहा, अलग बज रहा है रेडियो, मधुबनी चल रहा है मगर जो हमारा जो सोए वो नहीं आ रहा।
1: अच्छा,
2: मतलब कहने के बाद कैसेट दूसरी डाल दी है।
1: हाँ, कैसेट दूसरी नहीं, रेडियो मधुबन तो चल रहा है, आपके रेडियो में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप वहाँ होंगे ना कंपनी में?
2: नहीं नहीं नहीं, रेडियो बजा रहा हूँ, आज तो छुट्टी है मेरी।
1: अच्छा,
2: अभी चलाऊ आपको, देखो ये बज रहा है।
1: ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है मदन भाई, हम बात करेंगे। और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बहुत ही सुंदर है। ना मैं राजा ना मैं मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सूंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले किया जाता, क्या पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। बहुत ही सुंदर और सरल पहेली है, तो आप जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं। तो आइए अभी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: फोन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पारिवारिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, तो आप जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। कहते हैं ना, परिवार को संभाल कर रखना परिवार के बड़ों की जिम्मेदारी है और उसके लिए परिवार के बड़ों को सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? और आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है। नामे राजा नामे मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सुंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। बहुत ही सुंदर सरल पहेली है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है? तो देखते हैं हमारे श्रोता बंधु क्या बात है। आज तो कोई त्योहार नहीं है, कहाँ व्यस्त हो गए हैं। चलिए अच्छी बात है, जितने बिजी उतने ही इजी, है ना? व्यस्त लाइफ अच्छा है, व्यर्थ नहीं आने देते। तो ये भी एक व्यस्तता ही है, आपका जनरल नॉलेज की परीक्षा है और आप अपनी बात को रख सकते हो। बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिला है कि कैसे घर परिवार को संभालने के मतलब डिसीजन लेने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है, लेकिन बड़े जब अन्याय करने लगे तो कहाँ जाए। कहते ना कि बाढ़ खेत को खाती है तो किसको दोष देवे। यही हो गया कि भाई घर के मुखिया मैं हूँ मान लीजिए, ठीक है, और मैं ही अन्याय पर उतर आई, मैं सभी के साथ अन्याय करूंगी तो क्या वो घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह चल पाएगी? आप ही सोचिए, जो घर का मुखिया ही गड़बड़ करता है तो उस घर की गाड़ी कैसे चलेगी। कहीं कहीं पर देखते हैं कि माताएं भी थोड़े बच्चों के साथ अन्याय कर देती है, पिता कभी बीवी और बच्चों के साथ अन्याय कर देते हैं। अब कहाँ जाएंगे बच्चे और बीवी, बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं कहीं पर बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं माता पिता के साथ, तो किसको दोष देंगे? तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। जैसे आपने महाभारत देखी होगी कि महाभारत में कैसे कितना भी अन्याय हुआ पांडवों के साथ, लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे, यहां तक कि द्रौपदी का चीर भी खींचा गया फिर भी मौन रहे। तो फिर ऐसा मौन किस काम का? ये तो मौन खतरनाक मौन हो गया ये तो, फिर है ना। तो ऐसे घर में कितनी बार ऐसा होता है कि एक के साथ अन्याय हो रहा है तो हो रहा है, बड़े अनदेखा कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि हाँ अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के प्रति कोई मतभेद नहीं करेगा, लेकिन वही बच्चे जब मेरी उनकी हो जाती है, शादी हो जाती है, वही बच्चे काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, कहीं कहीं पर देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो हर एक एक माता पिता के बच्चे होने के बावजूद भी सबका भाग्य अलग अलग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सभी 30 मार्का ही हो, कोई अप कोई डाउन चलता रहता है। तो जो अच्छा कमाता है फिर वो भले घर में अन्याय कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर बड़े भी उनका ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि भाई उनकी सैलरी बहुत है, बहुत कमा रहे हैं, भले वो घर में कुछ नहीं देवे लेकिन फिर भी माता पिता उन्हीं की खींचेंगे। और जो सीधे चल रहे हैं, भले वो उनसे कम कमा रहे लेकिन घर पर समय पर पैसा दे रहे हैं, जो चाहिए सामान ला कर रख रहे हैं, उनको इग्नोर करेंगे। ऐसा होगा तो आप सोचिए कि घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। अब ठीक है, जो आपका कहना मान रहा है, सब कुछ ला के रख रहा है, वो आपका मान सम्मान कर रहा है, इसलिए वो चुप है। ऐसे नहीं कि वो कमजोर है, कमजोर तो वो है जो अन्याय करता है, छिटक जाना बस, हर काम से भाग जाना, हर जिम्मेदारी से मुंह चुरा लेना, उसे कमजोर कहते हैं। जो आपका समय पर काम कर रहे हैं, समय पर आपको जो चाहिए लाकर दे रहे हैं, वो कमजोर नहीं है। फिर उनके साथ अन्याय कैसा? हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कंचन भाई
1: बोल रहे हैं।
0: हाँ कंचन।

0: भाई कैसे हो?
1: बस बाइक पे था, ये सुन रहे था मैं, एक छाया है यहाँ खिड़की तो खड़ा रख के बात कर रहा।
0: अच्छा अच्छा
1: तभी सुना मैंने जो प्रश्न भी सुना जो पहले।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: आज का ये सुना जीवन का राज्य बहुत अच्छा है। बड़े क्या है, थोड़ा बाइक पे था तो
0: जिस परिवार का मुखिया अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात करूं बहन जी की, बड़ों का मानता क्यों, कौन है? हमारे यहाँ मेरे घर में हमारे कुटुंब में ही एक पूर्वज बैठाने की बात थी, ठीक है
0: जी।
1: तभी घर वाले कुटुंब वाले बोलते थे कि भाई बड़े है न, मैं बड़ा हूँ तो आप माफी मांग दो कि भाई जो कोई भूल चूक हुई इसको आज दिन तक क्षमा करो और मैं इससे माफी मांगता हूँ सभी के
0: जी।
1: तो मैंने बोला कि भाई ठीक है मैं तैयार हूँ, बराबर ये सब माफी मांगने के लिए ये सब करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बात मानता कौन है
0: जी?
1: बड़ों का इतना सीमित ही थोड़ा है कि भाई बड़े माफी मांग ले पूर्व देवों की और हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। बड़ों की बात भी माननी चाहिए
0: जी।
1: एक जमीन की बात थी हमारे संयुक्त कुटुम की, तो मैंने बोला था कि ये सब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा कर लो, तो कोई मानते ही नहीं है ये काम करने के लिए
0: जी।
1: तो ऐसा तो नहीं चलेगा बहन जी
0: बिल्कुल।
1: कि जब कोई धार्मिक बात आती है तो बड़े को बुलाओ और बड़े सब कुटुंब की माफी मांगते देव देवी। तो ये मैंने तुरंत सवाल उठाया था कि ये इतने तक सीमित नहीं है, बड़ों का दूसरा भी काम है जो बड़ों ने देखी है, बड़ों ने ये सभी बातें देखी है, बड़ों के बात मानो तो ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ सभी की बात मानने के। और ये तो ठीक है बहन जी, मैं फिर भी मैंने बोला था कि अभी नहीं किया है तो अब करना है, तो मैंने बात बताई कब तक ऐसे रखोगे
0: जी।
1: लेकिन आपने महाभारत में जो बताया ना बात
0: जी,
1: तो दूसरा तो वो तो अंध थे ही जन्म से, ठीक है ये तो थे, लेकिन दिमाग से तो ये नहीं थे ना
0: जी,
1: दिमाग तो चलता था ना उनका, और उन्होंने जो वो किया तो गांधारी ने भी पट्टी बांधी अपने आँखों पे
0: जी।
1: तो ये तो नहीं करना था ना, ये तो जन्म से ही अंधे थे तो, लेकिन माइंड तो काम करता था ना
0: जी,
1: ये तो चलता था ना
0: जी जी जी जी।
1: तो इन्होंने कान भी बंद कर लिए सब बंद कर लिया और इसका परिणाम ही आया, और गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली
0: जी।
1: ये नहीं करना चाहिए बच्ची, बड़ों की बात माननी चाहिए, कुटुंब में बड़ों का बड़ा जो देखा है इन्हें समय देखा है सभी बातें देखी है तो ये बात माननी चाहिए, और सभी को लेके चलता है तो इसको ये करना चाहिए, ठीक है मेरा तो ही
0: जी जी जी जी।
1: और विषय में तो अभी बाइक पे हूँ, खेत में जा रहा हूँ
0: जी,
1: तो बात कर लो कि ये तो गणपति की बात है।
0: अच्छा देखते हैं हाँ जी कंचन
1: भाई,
0: ठीक है आपने गणपति जवाब दिया है, हम देखते हैं ठीक है।
1: हाँ जी
0: कार्यक्रम के अंत में आपको जवाब देंगे ठीक है, सही गलत।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी। तो बहुत बहुत आभार कंचन भाई का, ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भाई बड़ों की बात मानते कौन है, खैर ये भी है और कहीं कहीं पर मानते भी है, आज भी ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं या माता पिता का हर जगह अपमान हो रहा है? नहीं, आज भी बहुत सारी जगह बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, और हाँ, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। तो फिर भी जहाँ पर देखे, माता पिता आधे तो क्या है कि खुद अपना रिस्पेक्ट खोते हैं मौन रह करके, ये इस विषय के अनुसार बात करते हैं, ठीक है? तो आधे तो अगर इस तरह अन्याय, जब एक के साथ अन्याय हो रहा होता है तो उस समय मौन नहीं रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है जो आपको सुनाना चाहूँगी, कि एक भाई है, उनके दो बेटे हैं, ठीक है? बड़े बेटे की शादी हुई, फिर छोटे की शादी हुई। छोटे की शादी हुई तब पिताजी बोले कि तुमको खर्चा नहीं करना है, तुम अपना इकट्ठा करो और जो चाहिए घर में मैं ला के रखूँगा, ठीक है? तुमको किसी को नहीं देना है, घर खर्च नहीं चलाना है, तुम अपना अपना इकट्ठा करो। अब बड़े भाई को हो गए थे 10 साल शादी हुए, तब तक वो सब दे रहा था घर में, ठीक है? और छोटा भाई तो बाद में सेट हुआ, तो शादी होते ही ये कह दिया, तो छोटे भाई ने 1 रुपये देना बंद कर दिया। एक मतलब शुरू से तो दिया नहीं, फिर देना बंद कर दिया, दिया ही नहीं। और पिताजी ने तो कह तो दिया कि मैं ला के रखूँगा, लेकिन अब घर में कुछ भी चाहिए तो ला के नहीं रखते। और माँ है जो बड़े बेटे को ही कहते, देख तेरे पिताजी ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, घर में सामान नहीं, वो नहीं। तो बड़ा बेटा ला के रख देता है, कोई बात नहीं, मैं ला के रखता हूँ, मैं ला के रखता हूँ। तो इस तरह पहले किचन खर्चा की जिम्मेदारी, फिर लाइट बिल, फिर हर प्रकार का खर्चा, और पिताजी ने हाथ ऊपर कर दिए। वो सुने के अनसुने, मतलब हाँ ही नहीं कहे, ना ही नहीं कहे। उनकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा है खर्चा मैं करूँगा तो आप ला के रखो, तो सुने का अनसुना कर लेवे, लेकिन एक पैसा घर में नहीं देवे, छोटा वाला 1 रुपया नहीं देवे। अब बड़े बेटे के तो वैसे ही तो 10 साल हो गए तो 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, 2 बच्चे हो गए ऐसी हालत में, फिर भी 1 रुपया नहीं देना, तो भी 5 साल तो ऐसे चला, ठीक है? फिर अब महिलाओं को तो लगता ही है ना कि फिर भी प्यार छोटों को ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सास का भी छोटी बहू पर ही प्रेम, तो फिर बड़े वाले को लगा कि तो हम भाई, उसने अपने पति को समझाया कि अलग हो जाओ ना, नहीं लड़ना आता है, बहस नहीं करनी है तो अलग हो जाओ। जब इतने जनों का खर्चा आए गए, अब संयुक्त परिवार है चाहे अकेले है, मेहमान तो आएंगे जाएंगे, और संयुक्त परिवार तो सारे यही आएंगे, छोटी बहू के भी, पियर वाले, सास के भी, सभी, तो सबको बड़े बेटे को ही करना है। तो बड़ा बेटा क्या है कि बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता था अपने माता पिता का, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर उसने थोड़े दिन गौर किया, ठीक है? चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, अभय सिंह जी, कैसे हो आप?
2: जी मैडम जी, बढ़िया है।
0: बढ़िया
2: जी।
0: हाँ जी, तो आज इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: बड़ा मौन रहता है इस विषय में मैडम जी।
0: हाँ जी, बड़ा, हाँ, कि जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तो तय है, क्या कहेंगे आप?
2: जी मैडम, बिल्कुल सत्यवाद है, महाभारत उसमें तय है। बड़ा मौन तभी होता है जब जब वो कोई भी चीज उसको लगता है कि इसमें मुझे इनको समझाने की जरूरत है, तो वो अपना अथक प्रयास करने के बाद में यदि वो मौन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उनका मान सम्मान, उस बात को, वो जो कोई भी चीज, मिशन जो भी है, उसके ऊपर
0: हाँ
2: वो नहीं मान रहे, तो वो अपना अपमान या अनादर ना हो, और अपने कारण, मतलब खुद के ऊपर वो कारण आए, उन सब से बचने के लिए क्या है, उसने अपना मौन धारण करना है। इन सभी बातों का यदि वो नहीं बोलता है तो समझने वाले सब समझ जाते हैं पहले ही कि बड़ा मौन धारण किया हुआ है, कुछ नहीं, सहमति, असहमति, सही चीज में तो असहमति देना उनका कोई मतलब 1% भी वो नहीं है कि वो असहमति देंगे। तो जिसमें वो असहमति दे रहे हैं तो वो चीज हमारे परिवार जो भी परिवार से ऊपर जहाँ भी वो मिशन है या तर्क है वो इफेक्ट कर रहा है रिश्तेदारी को, तो वहां तक वो असर ना करे इसलिए अपना मौन धारण करके खुद कारण ना बने तो मौन धारण करना ही उचित समझता है। तो ये
0: मौन धारण करने से समस्या का समाधान थोड़े ना होगा।
2: समस्या का समाधान मैडम जब कोई समझ ही नहीं रहा सुन ही नहीं रहा और बाद में उन सब चीज का कारण वो कोई गलत हो जाए कोई और दूसरी चीज हो जाए तो उनका कारण फिर वो बन जाते हैं बड़े, इसलिए सब उन बातों से बचने के लिए वो। और मान सम्मान जब मैडम जी घट जाता है ना तो बोला जाता ही नहीं किसी से भी, वो जीवन जी लेता है वो भी एक बहुत बड़ी बात है
0: जी।
2: जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको बहुत कष्ट हो रहा है उन चीजों से, तभी वो मौन धारण करता है फिर। और ये भी सोचता है कि मेरे कारण से मैं कोई भी चीज करता हूं तो वो असर परिवार पे ना जाए, इसलिए वो जीवन भी मजबूरी में जीना पड़ता है उसको और मौन धारण करके जीना पड़ता है। मैडम
0: मौन समस्या का समाधान नहीं है, वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा या फिर उसका तोड़ निकालना पड़ेगा।
2: बोलना चाहिए मैडम जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ चीज में ऐसा होता है मैडम जी बोल नहीं पाता है आदमी
0: जी,
2: उसमें साकर भी नहीं बोल सकता है, कंडीशन बन जाती है वो अलग अलग, तभी मौन धारण किया जाता है। अभी महाभारत का आपने उदाहरण दे ही रखा है, भीष्म पिता में जैसे महान हस्तियां जो खाली सर को पटकते रहे हिलाते रहे नाराज की मुद्रा जाहिर करते रहे मगर बोल नहीं सके मैडम
0: जी जी,
2: हाथ पे हाथ मारते रहे सर को हिलाते रहे, मतलब कितनी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने, कितना कष्ट सहा है उस समय
0: जी,
2: लेकिन बोल नहीं पाए मैडम
0: जी। और आज की पहेली का जवाब देंगे
2: जी मैडम, पहेली तो आज गणेश जी महाराज ही है जी मैडम जी उसका तो।
0: अच्छा देखते हैं, आप कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम के अंत में हम जवाब देंगे ठीक है
2: जी मैडम जी, जी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका अभय सिंह जी। तो ये थे जयपुर से अभय सिंह जी यादव, और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांत है दीदी।
0: हाँ जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: सर हम भी थोड़ा अच्छे हैं, बाहर हैं, फिर भी मेहनत से कर लो, आपसे बात तो कर लूँ मैं।
0: अच्छा है जी,
1: बोलिए।
0: हाँ जी, तो आज के विषय में क्या कहेंगे आप? विषय है जिस परिवार का मुखिया अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। क्या कहेंगे आप?
1: वो तो दीदी, हाँ वो तो दीदी सही है। मेन जो घर में मुखी होता है वो कुछ नहीं बोलेगा, तो जो घर का आवाज थोड़ी आ रही, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ।
0: हाँ समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जी।
1: तो जो मुखिया ही ऐसा कोई अच्छा बात ना करे, तो अच्छा न्याय ना करे, तो दीदी घर का जो वातावरण सब बिगड़ जाता है दीदी। तो मुखिया को जो घर में जो मुखिया होता है, मेन मुखिया होता है, इसको तो उसको ही सब संभालना पड़ता है दीदी
0: जी।
1: अगर वो नहीं संभालेंगे तो घर, कहते ना हमारे गुजरात में कहवाते हैं दीदी की जो घर का जो सदस्य कोई ऐसा नहीं होता तो घर गड्ढे पे चलता है, ऐसा गुजराती में कहवाते हैं
0: जी।
1: तो घर का जो सब जो परिवार बिखर जाता है, घर का सब उथल पथल हो जाता है
0: जी।
1: तो बस मैं तो दीदी यही कहूंगा कि घर का जो मुखिया होता है उसको सभी संभालना पड़ता है, उसको कोई अच्छा न्याय दिलाना उसको ही पड़ता है। किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कोई ऐसा बन गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको ही सब कुछ ठीक करना पड़ता है
0: जी। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार फिर भी आप जुड़े हैं इसके लिए। ये थे सुरेश भाई जोटाना से, देखिए आप बस स्टैंड पर है फिर भी वहाँ से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर शांत एरिया में है तो आप भी जुड़ सकते हैं। बस स्टैंड पर तो कितना कोलाहल रहता है, फिर भी जुड़े हैं तो आप भी कोशिश करिएगा। विषय बहुत अच्छा है, जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। और आज की पहली भी बहुत ही अच्छी है, ना मैं राजा ना मैं मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सूंडे मेरी, मूषक है वाहन मेरा, जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। तो बहुत ही सुंदर आज की पहली भी है। तो विषय के लिए मैं आपसे बात कर रही थी कि दो भाइयों का उदाहरण दे रही थी, वो एकदम हकीकत बात है। तो बहू ने कहा कि भाई अपन अलग हो जाते हैं, अपने को झगड़ा नहीं चाहिए और अपने को खर्चा ही नहीं करना, और अब वैसे ही काम तो हो ही गया है, अब तो ऐसे नहीं कि किसी की शादी ब्याह बाकी है, ननंद की करवा दी, देवर की करवा दी, हो गए 15-17 साल, बहुत पिट लिए, अब चलो अलग होते हैं। फिर भी अब बड़ा बेटा को थोड़ा सा दुनियादारी की चिंता रहती है, लोग क्या कहेंगे, समाज में बातें हो जाएगी। तो थोड़े दिन उसने भी नोटिस किया कि क्या वास्तव में जो बीवी कह रही सही है, लेकिन देखा कि सारा सामान वही ला रहा है। एक बार माँ ने छोटे से कह दिया कि बेटा आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है बड़े की, तो तू ये चीज़ ला के रख दे। हाँ माँ मैं लेके आऊँगा, और 2 दिन तक टालता रहा, ला करके नहीं रखा। और वो बात के नोटिस बड़े बेटे ने भी की और बड़ी बहू ने भी की। फिर बोला कि अब क्या, अब आंखों से देख रहे हो उसके बावजूद भी आप यही करोगे? लेकिन माता पिता ने नहीं कहा कि भाई बड़े की तबीयत खराब है, ला नहीं पा रहा, तो तू क्यों नहीं ला रहा है, कुछ भी नहीं। तब फिर बड़े बेटे ने रेंट का घर ले लिया और फिर माता पिता को बोल दिया कि अब मैं अलग होने जा रहा हूँ, मुझे घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं अलग हो रहा हूँ। घर से कुछ नहीं लिया और रेंट पर घर ले करके अलग हो गए। अब बच्चे हैं तो बीवी को तो थोड़ा दुख होगा कि भरा घर छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं लिया, खुद का पुश्तैनी घर है। तो बोले कि भाई पुश्तैनी घर है तो भी अभी माता पिता को तो नहीं निकाल सकते। तो बड़ा बेटा अलग हो गया। माता पिता को फिर थोड़ा सा हुआ कि हम चुप रहे इस वजह से ये हुआ, लेकिन यही बात है कि पिता अगर खर्चा नहीं करना चाहते थे तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था कि भाई तुम अपना अपना कमा के इकट्ठा करो, खर्चा मैं करूँगा, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। और छोटे ने तो सोच लिया कि बस पिताजी करेंगे तो मैं क्यों करूँ, और पिताजी ने किया नहीं, देख रहा था आँखों से, फिर भी कुछ नहीं कि पिताजी ने बोल दिया तो हम क्या, वो फिर ध्यान नहीं दिया। और अब माता पिता को जब परेशानी आने लगी क्योंकि बड़ा बेटा चला गया अलग, तो अब सामान की खिटपिट होने लगी, छोटा बेटा ला के ही नहीं रखे। फिर एक दिन झगड़ा हुआ तो पिताजी ने कहा कि आज दिन तक उसी ने खर्चा किया, उसके तो हमने गला ही काट दिया, तू कुछ भी नहीं लेके आएगा, अब तो तेरा ही परिवार है ना। तो बोले कि आप दोनों भी तो हो और आपने पहले कहा ही क्यों कि मैं खर्चा करूँगा, तो करो आप, अब तो वो भी चले गए ना अलग, अब तो हम इतने से लोग हैं, करो आप खर्चा। तो ऐसा हुआ, फिर माता पिता रोते हुए बड़े बेटे के पास गए कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। फिर बड़ी बहू थोड़ी इसने कहा कि अगर हमारे साथ रहना हो तो इनको किराए पर निकालो, हम आएंगे इस घर में रहने, किराया भी भरे आपका भी देखे और ये घर के मकान में रहे, तो ऐसा नहीं होगा, हमने इतने समय बहुत खर्चा कर लिया, अब हम अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पुश्तैनी घर में रहेंगे और इनको निकालो किराए के घर में, छोटा अड़ गया मैं क्यों निकलूं। छोटी बहू तेज मना कर दिया कि मैं तो नहीं निकलूंगी। तो इस तरह खिटपिट अभी भी उनके घर में चल रही है, कोई तोड़ नहीं निकल रहा है, माता पिता न इधर रह पा रहे न उधर रह पा रहे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते सुभाष भाई।
2: तो पहले सभी को नमस्कार, और हमारे सुरेश भाई जी और अभय सिंह जी भाई जी ने भी बहुत अच्छा कहा, आप भी अच्छा जानकारी दे रहे, लेकिन थोड़े में देखो मुखिया को तो सभी स्टाफ और सभी को खुश रखना होता है और सभी की बातें सुनना होता है, पर अगर वो सत्य को छिपा रहा है यानी असत्य का अगर संग कर रहा है और किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो जरूर उस वक्त न्याय के लिए हमको बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप मौन रखेंगे तो दोनों का नुकसान हो सकता है, स्पोर्ट भी हो सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए लेकिन शांति से नम्रता से अपनी बात उनको समझा देना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या झूठ है क्या बराबर है, तो शांति से ही मार्ग निकलता है, लेकिन मौन ने बोलना तो जरूरी है। थैंक यू, शुक्रिया दीदी, ओम का
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-14-14 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, आज की पहेली का भी जवाब दे सकते हैं, आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, प्रैक्टिकल है, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो उनके घर में अभी भी खिटपिट चालू है, लेकिन बड़ी बहू ने एक ही शर्त रख दी कि आप रहिए हमारे साथ लेकिन हम पुश्तैनी घर में रहेंगे, आप छोटे खाली कर नहीं रहे, आप सास ससुर जाए तो जाए का, उन्हीं के साथ उनको मजबूरी से रहना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इतने समय मौन रहे उसके बाद अगर आप कुछ बोलना चाहोगे फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा, पहली बार अन्याय होते हुए देखो तुरंत बोलिए कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि कितनी बार बड़ों को संकोच रहता है, मन दुख होगा, अरे कहीं झगड़ा हो जाएगा, कहीं बातें बाहर चली जाएगी, लोगों का डर, समाज का डर, आजकल तो बच्चों से भी डरते हैं, कहीं बहू चिल्लाएगी कहीं तो बाहर आवाज़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, खैर जो भी कारण है मौन रहेंगे, मौन रहते रहते जब पानी सिर पर चला जाता है उसके बाद भी बोलना तो पड़ता है ना, तो जो फर्स्ट दिन से बोल गया ना उस घर में आप देखिए शांति है, उस घर में कोई तिल तिल करके नहीं जी रहा है कि क्या करें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए बड़ों का बोलना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में भी आज नहीं तो कल 10 साल बाद 20 साल बाद भी बातें तो होनी ही है, तो फिर आज ही कर लो ना ताकि वो 20 साल तक नौबत ही नहीं आवे। जब तक बड़े मौन रहेंगे छोटों को, फिर आप समझ सकते हो छोटों के बीच में आपस में दुश्मनी बढ़ जाएगी, वो दोनों भाई आपस में बोलते भी नहीं, भले बड़े भाई ने इतने साल खर्चा किया बेटे की तरह पाला लेकिन दोनों भाइयों के ऐसी अनबन हो गई कि वो उसका मुंह नहीं देखता है, वो उसका मुंह नहीं देखता है, तो बड़े मौन रहते हैं वहाँ पर, भाइयों में ऐसा हो जाता है, भाई बहनों में ऐसा हो जाता है इसलिए। और बाकी तो ठीक है, कहीं कहीं पर तो कोई किसी से डरते ही नहीं है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, बस हम ही सब कुछ है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी बड़ों को कोशिश करनी चाहिए कि एक बार बोले, ठीक है। और बाकी तो हाँ, जो अन्याय करने वाले हैं ना, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अन्याय कर रहे हैं। वो दस रोना रोएंगे लोगों के सामने, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। ऐसा भी होता देखा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि सब कुछ खाने के बाद, सब कुछ घर का लेने के बाद भी लोगों के सामने यही रोना रहता है, नहीं नहीं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया। जिसको बातें बनाना आती है, जिसको झगड़ना आता है ना, वो फिर चट भी मेरी और पट भी मेरी, फिर वो किसी की चलने नहीं देगा। फिर वो तो कहते हैं ना कि जिसको कोई नहीं पहुँचे उसको उसका पेट ही पहुँचे, फिर उसका या तो उनके बच्चे नालायक होंगे या फिर आने वाली पीढ़ी जो भी है। खैर, तो कहने का भाव यही है, यहाँ पर बड़ों की बात हो रही है तो बड़ों को यही कहना चाहूँगी कि घर में एक के साथ अन्याय होगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे महाभारत का सृजन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कब तक इग्नोर करेगा, 5 साल 10 साल इससे अधिक नहीं। आज के समय में तो 4 दिन भी लोग सहन नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप बोलिए। अगर आप कुछ कर सको तो ही कहो कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, नहीं तो जिम्मेदारी सब पर डालिए। एक घर में मैंने देखा है, जिस एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, जैसे ही बेटे की जॉब लगी और पिताजी ने कह दिया कि तुम्हें मंथली इतने रुपये मुझे देना है, बोले ठीक है। तो माँ ने कहा है कि अरे कैसे पिता हो, अभी बच्चे की जॉब लगी है, अभी उसकी सैलरी तो आने दो, अभी से पैसे क्या करोगे, बच्चा कहाँ लेके जाने वाला है। पिताजी ने कहा कि नहीं, आज से इसका एहसास करना जरूरी है कि घर में मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी का बोध कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आज कह दिया तो अब ये हमेशा देगा, नहीं तो फिर शादी के बाद वही खिटपिट खिटपिट। तो उसकी शादी भी हो गई, तो बच्चे भी है, बड़े भी हो गए, लेकिन वो आज भी घर में अपने पिता को पैसे देता है। बच्चे हुए तो पिता ने कहा इतना नहीं, अब इतना देना पड़ेगा, तो उतना देता है, लेकिन घर में बहुत शांति। हाँ जी, नमस्ते सगुना बहन।
3: हाँ जी, बहुत अच्छा है
0: जी।
3: घर में देखो बड़े मौन रहते हैं तो अच्छा नहीं है, कुछ गलती हो तो बोलना जरूरी है। बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो उसको बताना जरूरी है, अभी नहीं बताई ना तो आगे जाके बहुत बुरा होगा, घर में कोई अच्छा नहीं होगा कारण
0: जी।
3: हाँ कुछ भी हो तो पहले बता देना चाहिए। देखो मेरी तो प्रैक्टिकल देखी हुई बात है
0: जी।
3: एक भाई थे तो उनको 3 बेटे हैं
0: जी।
3: तो बड़ा बेटा तो धीमे धीमे करके शराब पीने लगा। हाँ, तो दो छोटे वाले थे
0: जी।
3: वो झगड़ा कर रहे थे कि तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। ऐसे करते करते करते दूसरा भी चालू हो गया। हाँ
0: अच्छा,
3: और तीसरे बेटे की शादी हो गई। वो अच्छा था, वो सब घर में चीज नहीं हो तो लाके रखता था, माँ बाप को भी ध्यान रखता था सब। जब शादी हो गई उसकी तो अभी उसने तो सब छोड़ दिया, कोई कुछ भी हो घर में परिस्थिति तो उसको कुछ घर में देना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, बस घूमना फिरना बस,
0: उसे
3: भी छोड़ दिया। अरे देखो बाप था तो बेचारा वो सहन करता था कि चलो बेटा है तो कल अच्छा हो जाएगा, 3 बेटे है तो अच्छा निकलेगा है ना, घर में कुछ अच्छा हो जाएगा
0: जी।
3: अभी देखो तीसरा है तो उसने भी ऐसे रास्ता अपना लिया। अरे देखो बाप तो एकदम गरीब है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता
0: जी।
3: तो ऐसे में देखो घर की हालत क्या होगी है ना, माँ बाप का क्या होगा। अभी तो देखो बचपन जैसा ही है, अभी आगे बुढ़ापे में क्या होगा माँ बाप का, बच्चे तो बड़े हो गए हैं
0: जी,
3: लेकिन माँ बाप की क्या हालत होगी। हम तो यही सोचते हैं कि बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, घर की हालत आप देखो तो इतनी बुरी है कि अब क्या बताएं
0: जी जी जी।
3: तो हम भी देखो कभी सोचते हैं क्या करें, हम किसी को अब बताते हैं अपने तो किसी को अच्छा नहीं लगता
0: जी।
3: अभी के बच्चे तो क्या है, बात बात से सब झूठ बोलते, सभी झूठ बोलते हैं, कोई सच्चा नहीं बोलता है, कोई भी सच्चा
0: जी
3: हाँ, हम तो सब देखा हुआ है। सही में पहले मौन नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी गलती हो तो बच्चों को तुरंत बता देना चाहिए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना
0: जी।
3: नहीं
0: बिल्कुल।
3: बताते तो फिर आगे जाके तो अच्छा ही नहीं होता
0: जी, जी, जी,
3: और
0: जी।
3: इतना मामला खराब हो जाने के बाद तो फिर क्या मालूम कब अच्छा होगा, वही अच्छे का संग मिल जाए ना
0: जी
3: तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा
0: जी।
3: लेकिन अभी तो अच्छे का संग मिलना भी बहुत कठिन बात है, है ना, जो जिस रास्ते पे चलता है ना उसको ही पसंद आता है
0: जी जी,
3: कितना भी बोले ना
0: जी
3: हाँ, कोई कितना ही बोले तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, वो बोलते है कि हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, कल हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे ही चलता रहता है। हम तो देखते हैं, बहुत अच्छा विषय रखा है आपने,
0: थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, और बस विषय को यही समाप्त करते हैं। कहने का मतलब यही है कि बड़ों को मौन नहीं रहना है, जहाँ आपको लगे कि यह अन्याय हो रहा है तो आप तुरंत बोलिए, ताकि घर में उसी समय उस बात का तोड़ निकल जाए और वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और आइए अब फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज आपको सिखाएंगे दाल मखनी। ठीक है, तो चलिए दाल मखनी तो सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आज की पहली दोहरा देते हैं। ना मैं राजा ना मैं मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सूंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। तो ये आज की पहेली है, जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
1: एकदम अच्छे बहन जी, और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज तो आपने पहली अच्छी पूछी है। हेलो।
0: हाँ जी, सुन रही हो।
1: हाँ, पहली का जवाब मैं देता हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। ठीक है
1: जी,
0: हाँ जी, थैंक यू। तो आप देखिए, समय बहुत कम है, आप कोई भी फोन नहीं करेंगे। तो दाल मखनी के लिए मैं आपको सामग्री पहले बता रही हूँ। आप चने की दाल लीजिएगा, इमली की चटनी लीजिएगा, दही लेना है, बारीक नमकीन लेनी है, और फिर आप हरा धनिया, नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आपको लेना है, धनिया पाउडर भी। ठीक है, और पूरी के लिए, मखनी के लिए आप लीजिएगा मैदा, और मोहन के लिए तेल और नमक। अब साथ ही साथ बनाने का तरीका भी आपको सिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को छान लीजिए, छान करके आप इसमें मोहन डालिए अच्छी तरह तेल का, और हल्का सा नमक डालिए, और फिर इसको पानी डाल करके आवश्यकता के अनुसार और टाइट गूंदिएगा। टाइट गूंद करके 20 मिनट इसको रख दीजिए गीले कपड़े से ढक करके। ठीक है, इधर आप चने की दाल बॉईल कर लीजिएगा। चने की दाल में पानी उतना ही लीजिए जितने उसमें आवश्यकता है, आपको बिल्कुल रस्से वाली नहीं बनानी है। दाल मखनी बनाने जा रहे हैं तो दाल लकपची होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें नमक, हल्दी डाल करके चने की दाल को बॉईल कर लीजिए। अब इसको आपको तड़का नहीं लगाना है, छोकना नहीं है, बस दाल को ऐसे ही रहने दीजिए बॉईल वाली। ठीक है, फिर आप इमली की चटनी तैयार करिएगा, नमकीन और हरा धनिया, फिर ये मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जैसे हम चाट में क्या डालते हैं ऊपर से, ऐसे ही। तो इधर आपने आटा घला के रख रखा है, इसकी लोइया बनाइए, लोइया बना करके छोटी छोटी पूरियाँ बनाइए। ठीक है, पूरी से थोड़ी सी साइज और बड़ी रख सकते हैं बस, और तल के ब्राउन ब्राउन जब बादामी बादामी हो जाए और आप निकाल दीजिए, दोनों तरफ से कड़क हो जाए फिर आप निकाल दीजिए, तो ये बन गई मखनी। ठीक है, अब ये पूरियाँ निकाल के रख दीजिए। अब आप पिरसते समय एक प्लेट के अंदर एक पूरी रखिए, जो इसको हम दाल मखनी, जो मखनी कहते हैं इसको, तो इस मखनी को रखिए। अब इसके ऊपर सबसे पहले आप चने की दाल सब तरफ डालिए। ठीक है, फिर ऊपर इमली की चटनी डालिए, फिर दही डालिए, फिर नमकीन डालिए, फिर हरा धनिया डालिए। अब आपको यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालना हो तो पहले डाल दीजिए, इमली डालते दही डालते उसके बाद आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, थोड़ा सा इंधा नमक डालिए, और फिर बाद में आप बारीक सेव डालिए, हरा धनिया डालिए, और पिरसिए, दीजिए। ये प्लेट सजी सजाई बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये दाल मखनी। तो आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और इसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, ज़्यादा तेल की चीज़ें भी नहीं है। मखनी को तो तलना ही पड़ता है, लेकिन दाल भी खाली बॉईल की हुई है, इसलिए ज़्यादा इसमें तेल की चीज़ें भी नहीं है। तो इस तरह दाल मखनी बनाई जाती है। तो जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाइएगा, ठीक है। और फिर से एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
4: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर रहे हैं। सुंदर साहब जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए। राई कैसे हमारी हेल्थ के लिए, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो आपने जाना है, और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और जो रेसिपी में दाल मखनी आपको बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, न मैं राजा न मैं मंत्री फिर भी प्रथम स्थान है मेरा, एक दांत है सूंड है मेरी मूषक है वाहन मेरा, जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम है मेरा, बताओ मैं कौन। तो आज तो भाई सभी ने बाजी मारी है, सभी का जवाब सही है, तो मैं एक बार सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजा रही हूं। नाम मैं सुना देती हूँ जो जो भी जुड़े हैं। अलका जी कप्पासन से, शोभा सोमानी कप्पासन से, नीलम राठी आबूराज से, फिर जुड़े हैं सुरेश भाई धानेराव से, आरती जी पुना से, सगुना बहन झोटाना से, दीपा सोमानी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, वेदांत उदयपुर से, सुरेश भाई झोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो आप सभी का सही जवाब है, बहुत बहुत आभार आपका। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सुरेश भाई धानेराव से, फिर अभय सिंह जी, कंचन भाई, सुभाष भाई। तो आप सभी विषय में जुड़े हैं सगुना बहन, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी बहुत ही अच्छा है, जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रख सकता है वही महान है। अब मैं आपको बड़ों के ऊपर व्यंग्यात्मक कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। बड़े होने का घमंड कविता का शीर्षक। बड़े कहते हैं हमने दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा किसने जिंदगी सीखी है, हमारी बात मानो ये समझदारी है, अरे भाई हमारी उम्र ही हमारी तैयारी है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, मोबाइल नहीं था फिर भी काम होता था, चिट्ठी लिखते थे महीनों इंतजार करते थे, आज के बच्चे तो तोबा तोबा। बड़े बोले सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम बोले आप भी तो अलार्म से उठते हैं भैया, कहते मोबाइल से दूर रहो बच्चों, और खुद व्हाट्सएप पर सुबह से गुड मॉर्निंग भेजते हैं। बच्चे अगर कोई बात अपनी कह दे बच्चे अगर कोई अपनी बात कह दे तो बड़े तुरंत कहते तुम्हें क्या पता, लेकिन जब मोबाइल में कुछ समझना आए तो वही बच्चा याद आता है, बेटा जरा ये देखना, बड़े कहते हमारी इज्जत करो, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बात बिल्कुल सही है, इसमें शक नहीं, बस कभी कभी लगता है बड़े होने का लाइसेंस कुछ ज्यादा ही मिल गया है। उम्र बढ़ना तो कुदरत की निशानी है, पर हर बात में अपनी ही मनमानी है, बड़प्पन उम्र से नहीं व्यवहार से आता है, जो छोटों को सम्मान दे असल में वही बड़ा कहलाता है, तो बड़े भी थोड़ा मुस्कुराए, छोटों की बात भी कभी अपनाए, रिश्तों में प्यार रहे, तकरार नहीं, क्योंकि घर वही सुंदर है जहां बड़ेपन में अहंकार नहीं, प्यार होता है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक नया पहल है और इसमें हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है और नींद के संबंधित कई विषयों के बारे में हमने चर्चाएं की और जानकारियां भी लिया और एक गाइडेंस भी लिया कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और वो दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र जी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हर्षिता सेतिया जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हैदराबादी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं हम सभी को नई जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है इस विषय को लेकर के, सबसे पहले वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में और कार्यक्रम जागृति में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार
0: जी। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अगर मजबूत रखना है और सही रखना है तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीजों को हमें बदलाव लेके आना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में, दिन भर आप इतने सारे लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने की बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य डेली रूटीन से कैसा जुड़ा हुआ है और हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए।
2: जी, अगर हम देखें कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे हमारी डेली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारा मूड एक वो ऐसी चीज है जो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं हर काम बहुत खुशी खुशी करूंगी, घर का काम है, बच्चों को लेकर बाहर आना जाना, किसी से मिलना जुलना, सब काम मैं बहुत अच्छे से करूंगी। लेकिन अगर मेरा मूड खराब है किसी भी कारणवश, तो मैं किसी भी काम में ना तो मेरा मन लगेगा, उदास उदास रहूंगी, चिड़चिड़ा होकर बोलूंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मानसिक, मन से आ रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं मन खुश नहीं है ना। तो अगर हम मन से हर चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने जर्नल लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मैं आज चीज़ें आपके साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये आजकल हर महिला में, हर पुरुष में, हर बच्चे में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं और डॉक्टर वीरेंद्र सर कुछ इन सुझावों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो महिलाओं को और ज्यादा बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए कभी कार्य कर रहे हैं, कभी हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं, हम सुबह से लेकर रात तक कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान हमारा बहुत ही कम जाता है, अपने को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो है मी टाइम, जिसको हम एक टाइम

0: फील दे सकते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, राइट? तो हर रोज कुछ समय हम खुद के लिए निकाल सकते हैं. अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं. हम कुछ अपने लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ देर प्रॉपर एक आराम कर सकते हैं. और आपकी अगर कोई हॉबीज हैं, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी जो, क्योंकि मी टाइम है. तो मुझे क्या पसंद है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा, जो मुझे एक हैप्पीनेस देगा, इंटरनल हैप्पीनेस देगा. तो ये एक चीज हम एड ऑन कर सकते हैं.
1: बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता जी ने. ठीक है, डेली रूटीन का और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है. जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर में रहते हैं तो आपकी वो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है. जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को जनरली ये कम करता है. जब आपका दिन प्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता होता है कि किस चीज के बाद क्या करना है और आप एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीज़ों से जो डेली वर्क है उनसे स्ट्रेस से और उससे एंजाइटी जो है वो कम करती है. फिर जब आपका रूटीन फिक्स रहता है, आपके उठने का और सोने का समय फिक्स है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होने लग पड़ती है. उससे आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस जो है वो दिन भर में बेहतर बना रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी वाइज पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है. उसके अलावा अगर देखे जाए तो जितनी भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके अंदर में भी अगर हमारा डेली रूटीन फिक्स रहे, हम मरीजों को हमेशा बोलते हैं जो डिप्रेशन के, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो उनके या स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट हैं, उनके घर वालों को बोला जाता है कि उनके एक रूटीन को बना दे. मैं जब निमैंस बेंगलोर में था तो वहाँ पर भी जितने भी पेशेंट एडमिट रहते थे तो उनका एक डेली रूटीन हम लोग बनाते थे कि सुबह से वो एडमिट पेशेंट के लिए भी उनका फिक्स रहता कि सुबह इस समय उन्होंने खेलने के लिए जाना है, इस समय उठे, इस समय प्रार्थना करनी है, इतने समय तक रेडी हो जाए, इस समय आपको खाना मिलेगा, इस समय आपको खेलने के लिए जाना है, इस समय आपको वर्कशॉप में जाना है काम करने के लिए. तो ये सब चीजें फिक्स रहती थी उनकी, तो एक रूटीन बना रहता था. तो ये डेली रूटीन जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मदद करता है. तो एक बैलेंस डेली रूटीन अगर होगी आपकी तो मेंटल हेल्थ हमेशा वो आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी. आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे और इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे. तो और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर में करने पड़े तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी आप छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के अंदर में चेंजेस करें. देखिए डेली रूटीन को अचानक से पूरा बदल देना तो पॉसिबल नहीं होता, बट हम मरीजों को जो भी आप जनरल पब्लिक को भी जो गाइड करते हैं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सटल सटल से एकदम माइन्यूट माइन्यूट से चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाएं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं.
2: जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है. यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी माइंड इतनी फोकस्ड नहीं रहती है. आजकल हम अगर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस कहे या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी हम कुछ देखना चाहते हैं, कभी फिर नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमको किसी चीज़ में भी आनंद नहीं आता है. फिर यही चीज़ जब महिलाओं की बात आती है तो फिर महिलाएं उसमें परेशान हो जाती है कि ये बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या फिर महिलाओं को भी ये रहता है कि ये भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, फिर उस बात में फिर उनको वो टेंशन आ जाता है और फिर उनको एक प्रेशर रहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है. ऐसे में काम करते हुए उसका सेटिस्फेक्शन, और दूसरा हम खुद को ये कैसे समझाए कि इतना सारा काम है तो हम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, या व्हाट इज इट लाइक हम अपने आप को फोकस्ड और वो मेंटली हम इमोशनली हेल्दी रहें और हम हर काम को करते हुए वो सेटिस्फेक्शन को फील करें.
0: सो दीदी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो यंग है, यूथ है, वो आजकल जा रहा है ना, उनके अपने हिसाब से प्रेशर्स हैं, अपने हिसाब से उनको काम है. एक एल्डर वुमेन है तो उनको पुराने ज़माने के हिसाब से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के पास सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और यंग के पास कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि उनको घर का काम भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है, तो उसमें बच्चे भी हैं, हर चीज़ कैसे मैनेज हो. तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं. हमको कहीं ना कहीं ना कहना सीखना है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कोई और हैंडल कर सकता है, वहाँ पे इन महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने लिए अत्यधिक जिम्मेवारियां लेने की ज़रूरत नहीं है. कहीं ना कहीं जो चीज़ आजकल हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए, उनके साथ में उनकी हेल्प ली जाए, और कहीं ना कहीं ना कहना आज के टाइम पे सीखना उन चीजों में ना कहना जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है, तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सबसे पहले ध्यान दें, उनको प्रायोरिटाइज करें। अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं चाहे वो ओल्ड एज वेमेन है चाहे वो यंग जनरेशन है, ओवर दबाव में आकर ओवर जिम्मेवारियां लेकर काम करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों से हेल्प सीख करें। अगर फिर भी आपके घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पर आपको करना ही करना है हर चीज़, सुबह से लेकर रात तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, तो स्टिल आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीखना है। आगे डॉक्टर वीरेंद्र इसमें ऐड ऑन करेंगे।
1: बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर हर्षिता ने। उसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर में है, आजकल जो समय की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जनरली घर के काम के अलावा फोन का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है, फोन या लैपटॉप टीवी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो अधिकतर बोलते हैं उनमें मरीजों को, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कि आपको अपना जो समय है डिजिटल डिवाइसेस के लिए लाइक फोन लैपटॉप टीवी, इससे थोड़ा ऑफ टाइम लेना ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर काम कर सके और रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो बना के ऊपर ध्यान दे सके, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, अपने पति पर, अपने रिश्तेदारों पर, मतलब जो रियल लाइफ पीपल हैं उनके ऊपर मैं ध्यान दे सके, ना कि जो स्क्रीन में या फिर जो रियल लाइफ के लोग हैं जैसे रील्स लगातार देखे जा रहे हैं, रियल लाइफ के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दें। तो इसके अंदर में जो मैं अधिकतर सलाह देते हैं वो ये है कि शुरू में स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। लाइक पहले दिन 1 से 2 घंटे का डिजिटल ब्रेक लें। लाइक कुछ लोगों को सारा दिन फोन चलाने की आदत है तो 1 से 2 घंटे का एक डिजिटल ब्रेक लें कि इस समय से इस समय के बीच में मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। खासकर वीकेंड जब है, जब आपको ऑफिस के काम नहीं करने हैं अगर मर्दों के लिए, और औरतों के लिए भी वीकेंड्स पे ज्यादा समय फोन पे बीतता है क्योंकि वो ज्यादा फ्री होती है घर में अगर लोग होते हैं, तो वीकेंड्स पे जब आपके घर में लोग हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, तब उनके साथ समय कटाएं और वीकेंड्स के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल डिटॉक्स करें। उसके बाद बाउंड्री सेट करें, रूल बनाएं कि मैंने इस समय डिनर करना है, इस समय ब्रेकफास्ट करना है और डिनर के समय मैं फोन चेक नहीं करूंगी, मैं फोन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाऊंगी, या घर का कोई भी सदस्य जब खाना खाने बैठ रहा है टेबल पे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रूल अगर सभी सदस्यों के लिए होंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि जब डिनर टेबल पे फोन अलाउड नहीं होते हैं, वो एक बॉक्स रखते हैं, जब खाना खाने आएंगे सब घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और उससे पहले सभी के फोन एक बॉक्स में जमा हो जाएंगे ताकि जब वो खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करें, जो कि हमेशा से होता है, जिससे कि रियल लाइफ टच होता है, आप एक दूसरे की परेशानियां सुनते हैं, उसके समाधान भी निकलते हैं, किसी के मन में क्या ग्रजीज क्या परेशानी चल रही है, किस चीज को गिल्ट चल रहा है, वो सब बाहर निकल के आता है जब आप एक दूसरे से बात करें। पर जब आप स्क्रीन पे ही रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ जो टच है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये, और दूसरा रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन को बंद कर देना, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, उससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है अगर आप रात को 1 घंटा पहले सोने से पहले फोन को बंद कर देंगे। उसके अलावा फोन में अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें। बहुत लोग देखे हैं कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो हमेशा उसके साथ में आता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और हम लोग बटन दबाते जाते सबके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं जिससे हमारा स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बाकी कार्यों के लिए समय नहीं मिलता, बाकी कार्य फिर हमारे पिछड़ने लग पड़ते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं।
2: जी, ये जो है, हम एक मामूली अर्बन सोसाइटी की महिलाएं, हम समझ सकते हैं कि उनकी जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल होती है उनमें ये चीजें वो इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बातचीत हम करते हैं तो उन महिलाओं के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसे में वो कई चीज़ों से व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी देखा गया कि मोबाइल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को माप सके कि यस, मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ तो फिर मेरे अंदर से वो चिड़चिड़ापन या फिर ये इम्पेशेंस और गुस्सा करना, ये सभी चीज़ें कम होता जाएगा। क्योंकि हम जब लाइफस्टाइल की बातचीत करते हैं, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कई बार महिलाएं कहती कि गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे मेरे को बहुत तंग करते। हो सकते वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके अंदर काम का या फिर किसी और चीज़ के जो भी मानसिक तनाव है जिस कारण से वो छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाती है, फिर वो बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना शुरू हो जाता है तो फिर घर की माहौल जो है वो इतना हेल्दी और संतोषजनक नहीं रहता है। सो ऐसा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात तक कि हमें मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हर काम करते समय हम अपने आप को क्या याद दिलाएं? हर्षिता जी।
0: हाँ जी, सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली हमारी ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की मी टाइम की, फिर सर ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, ये दो चीज़ें बताई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे कि हमने कई बार ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण पे ध्यान नहीं है, किसी में अगर खून की कमी है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों के लीड करती हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको अपने फिजिकल हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य और हमें अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। हम एक संतुलित आहार लें हर रोज, जो कि भरपूर होना चाहिए, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, साबुत अनाज हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, हम अपनी पानी जो है उसकी मात्रा को हम पूरा नहीं करते हैं और डिहाइड्रेशन वन ऑफ द रीजन है हमारे जो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तीसरा, हम जो अभी हमने कहा कि अगर किसी को नीमिया है तो ये सारी चीजें आप अपना टेस्ट कराएं और इन चीजों पे भी ध्यान दें, इसकी नियमित जांच जरूर करवाएं, और जो भी अगर आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इन चीजों को हम जरूर डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी उतनी ही जरूरी है। फिर आते हैं हम आगे जो है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें मानसिक तनाव रहता है उससे हम कैसे चीजों को ठीक करें, जिससे हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हम एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक तो बहुत सरल से उपाय हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर आए, हम अपने व्यायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम कर सकते हैं, सरल सांस लेने का जो व्यायाम होता है उनको कर सकते हैं, हम इन सब चीजों को भी अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए हम अपनी भावनाओं को जरूर साझा करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी चिंताओं को जरूर बांटें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई गो टू पर्सन है तो उससे, आपका कोई फ्रेंड है आप उससे जरूर बात करें। और आजकल हम महिलाओं में तो देखते हैं कि किटी पार्टीज होती हैं और गांव वालों के जरूर एक महिला मंडल बना होता है ना, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो अपने महिला मंडल में जाकर जरूर अपनी बातों को साझा करें, दिल हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें, चार पांच चीजें हैं जो हम अपने अंदर लाएं, और आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, रोजगार की तरफ लीड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन योजनाओं से भी जुड़ें, क्योंकि आपका एट द एंड कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो अगर बूस्ट नहीं है अगेन आपके मेंटल हेल्थ पे वो भी इम्पैक्ट डालता है, आप लो फील करते हैं, तो ऐसी चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ऐसी चीजें जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करने की कोशिश करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। एक महिला के लिए, जैसे हम मेल के लिए एक ईगो वर्ड यूज करते हैं कि मेल ईगो है, अगर आज आप महिलाओं में भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप है तो वो भी बहुत सशक्त फील करती हैं। ईगो वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करने की बातें हैं। तो ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में, जो रूरल में, जो ग्रामीण में महिलाएं रह रही हैं, ये सब अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर सकती हैं।
1: उसके अलावा कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अपने आप को समझाना कि मैं इस सिचुएशन, कुछ एक बात हुई, बच्चों ने कुछ तंग किया या कुछ हुआ, तो मैं इस सिचुएशन पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं 5 या 10 मिनट का समय लेकर उस सिचुएशन में रिएक्ट करूंगी। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत बुरा होता है और उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा निकल के आता है। जब हम 10-15 मिनट का समय लेते हैं तो सेम सिचुएशन हम गहरे ढंग से या अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी काम डाउन या काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा उस समय में हम जो सलाह देते हैं वो मुझे, जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जब कोई गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको बच्चे तंग कर रहे हैं, आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़े 5 से 10 डीप गहरे सांस लिए और उसके बाद बच्चों से बात करने की कोशिश करें, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करना, 100 से लेकर 1 तक अगर आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो जब तक आप 100 से शुरू करेंगे, जब तक आप 40-50 तक पहुंचेंगे तो आपका गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाएगा और उस समय जो आप रिएक्शन देंगे वो आपका असली रिएक्शन होगा, ना कि गुस्से वाला रिएक्शन। और उसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बताने की कोशिश की करें, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप बार बार करती रहेंगी चीज को तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजों को लेकर आपका रिएक्शन या गुस्सा वो कम होने लग पड़ा है। उसके अलावा डॉक्टर हर्षिता ने जैसे जो चीजें बताई, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, थोड़ा व्यायाम करें, शाम के समय फैमिली के साथ में थोड़ा समय बताएं, दिन के समय अगर आपको बहुत सारे काम है तो एक साथ काम का बर्डन मत लें, आधा पौना घंटा काम किया उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। बच्चों में भी मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो लगातार नहीं पढ़ने बैठना, आप 50-10 का प्रिंसिपल यूज करें। आप 50 मिनट अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। वैसे ही हमारे काम में भी ऐसा है, अगर हम 40-50 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बाद फिर से काम करने जुटे, उससे हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
2: जी, सो आज के इस कार्यक्रम को अगर हम सम अप करते हैं तो हर्षिता जी, आप क्या क्विकली वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बुलेट्स की तरह बता सकते हैं? और दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक टाइम टेबल बता दें महिलाओं की, कि हम अपनी टाइम टेबल को या अपने कार्यों को कैसे डिवाइड करें जिससे वो अपना काम भी पूरा कर सके और वो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी अटेंशन दे सके, और उसके लिए कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप कहें।
0: जी, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में चीजों को सम अप करूं कि आज जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात की है तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तीसरा, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जो अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, सांस लेना है, कैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उन सब चीजों पे। उसके बाद हम अपने आप को सशक्त करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपनी नींद को और आराम को भी ध्यान से हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। फिर हम अपना डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ी देर उन चीजों से बाहर रहना, उन चीजों पे हम ध्यान देंगे। कुछ टाइम अपने घर से बाहर बिताएंगे। फिर हमने जैसे शुरू में बात की थी कि हम अपना मी टाइम जरूर हर रोज निकालेंगे, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, लेकिन मुझे हर रोज अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। फिर हमने बात की थी कि हम अपनी सीमाएं तय करेंगे, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऐसे नहीं उनमें दबके रहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाकर, अपने हस्बैंड की सहायता लेकर कहीं ना कहीं ना करना हम जरूर सीखेंगे। और अभी जैसे सर ने एंगर मैनेजमेंट टेक्निक से बताई हैं हमें, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान देंगे। गहरी सांसें लेना, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना, कुछ बीच बीच में ब्रेक्स लेना, तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सर ने कहा वो करना। और एक लास्ट चीज जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ कि जब क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप हमेशा अपने आप से पूछें और फिर उस सिचुएशन को रिएक्ट करें। सबसे पहला, क्या ये स्थिति इतनी गंभीर है? दूसरा, क्या मेरा क्रोध इस समस्या को हल अभी के अभी कर देगा? तीसरा, क्या मैं इस स्थिति को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? तो ये 3 प्रश्न आप जब भी आपको क्रोध आ रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न करें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, ठीक है? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हमने ध्यान रखने हैं, और अभी टाइम टेबल हमें सर बता रहे हैं।
1: मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताने की कोशिश करता हूँ महिलाओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आइडियल है वो तो एकदम आइडियल है, पर हर आदमी को अपने हिसाब से उस टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उनकी कौन सी चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको किस चीज को कितना समय देना है। जनरली जो मैं सलाह देते हैं कि सुबह 6 बजे या जल्दी उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे तो उठें, रात को अलार्म लगा के सोएं, सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद 1 गिलास पानी पिया, लगभग 6:15, 6:20, 6:30 बजे तक अपने सभी एक्टिविटीज से फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक योगा या मेडिटेशन करें और उसके अंदर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगभग 6:30 बजे तक ये सब काम हो जाए तो उसके बाद एक वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं वो करें, लगभग 30 मिनट के लिए वो ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगी तो आपका दिन का जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मेन काम है वो आपने सुबह कर दिया। अब 7 बजे आप नहाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और जो आपके डेली रूटीन के काम है वो सब करें। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखें अपना, और कोशिश करें कि शुगर अवॉइड करें। अगर चाय या कॉफी लेते हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल अवॉइड करें। ये सब करते करते आपको 7:30-8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आप आज सारे दिन में क्या क्या करने वाले हैं। अपना एक डे प्लानर तैयार कर लें और उसके ऊपर में अगर आपके बच्चे स्कूल जाने हैं तो उस समय में अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें और उसके बाद 9 बजे से अपने डेली रूटीन शुरू कर दीजिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय अपने लिए रखें जब आपने अपने घर के जो काम है जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं और कोशिश करिए अगर आप वो रिटर्न में टू डू लिस्ट बनाएंगी तो आप उसको टिक कर सकती हैं कि यहाँ कपड़े धोने का काम था वो कर दिया, आयरन करने का काम था वो कर दिया, तो वो लिस्ट रहेगी। और एक घंटा काम करने के बाद में हमेशा 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें तो उससे आप काफी रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। 12:30-1 बजे के बीच में अपना लंच कर लें, वो आइडियल समय है। अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12:30-1 बजे का समय आपके लिए आइडियल टाइम है लंच करने का। 12:30-2 बजे के बीच में लंच और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अगर आप 1.5-2 घंटे की नींद लेना चाहती हैं तो वो लीजिए और रिलैक्स रहें। और 2 बजे फिर से अपने रूटीन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो आपके जो बचे हुए काम है वो सब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को 4 बजे कुछ चाय कॉफी लाइट स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें कि आज सारे दिन में क्या क्या विचार आए, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, उन सबको लिस्ट आउट करना शुरू करें। शाम को 5 बजे जैसे डॉक्टर हर्षिता ने बताया अपना एक मी टाइम रखें जिसमें आप अपने लिए काम करें। अभी तक तो जो आप काम कर रही थी अपने परिवार के लिए करते, 5 बजे के बाद में अपने लिए एक मी टाइम निकालें 1.5-2 घंटे का, जिसके अंदर में आप म्यूजिक सुनना, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं या दोस्तों के साथ फोन पे बात करना जो भी है वो 1 घंटे में करें। शाम को 6 बजे एक लाइट इवनिंग वॉक करें या हल्की सी एक्सरसाइज करें और 7 बजे जब आपके परिवार के सब लोग आ जाएं तो अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें। रात का खाना तकरीबन आप 8:30-8 बजे खा लें ताकि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकें और 9:30 बजे के आसपास सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने की तैयारी का मतलब जो हमने लास्ट टाइम स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बताई थी वो सबको फॉलो करें, फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें 1 घंटा पहले और 10 बजे के आसपास आप सोने चले जाएं। तो अगर आप 10 बजे सोने चले जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आपकी 7 से 8 घंटे की एक नींद हो रही है जो कि एक बेहतरीन नींद है। और कोशिश करें कि जब आप सोने जा रही हैं तो अपने एक पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं ताकि आपके आपको रात्रि जो है वो बहुत अच्छी बीतेगी, कम स्वप्न आएंगे और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगी तो फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगी। अगर आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो एक लूप की तरह आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी साइकिल में चलना शुरू कर देगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
2: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज के इस चर्चा के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को, अपनी दिनचर्या में क्या प्रायोरिटी देना है और हमारी अटेंशन किन चीज़ों पे रखना है ये बहुत समझ में आया होगा। हम अगली कड़ी में इसी के संबंधित और विषयों को साथ में लेकर के आएंगे और हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ भी होंगे। हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को।
3: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 MHz पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसकी कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलेंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है। मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी,
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहाँ वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है, और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है। और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी
1: यस
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान, मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है, और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए, तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, का नाम है तुषाल गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें, और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल, वही
0: अवेयरनेस
1: वही वही काम इधर
0: प्लान,
1: इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल, हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी सोचाओ जो
1: और
0: हमसे जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर,
1: हाँ बस।
0: कोई बात नहीं। और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम

0: की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी किस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली? आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: है? अच्छा,
0: और मेरी मदर।
1: जी, तो
0: हाँ
1: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी जी
0: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा। पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
1: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
0: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
1: कम्युनिटी हाउसिंग,
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: हाँ कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी, कितने
0: बिल्कुल,
1: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 72-80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: ये आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और बड़ौदा लगते हुए जिले हैं दोनों।
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर,
1: जी,
0: 70-75। यस
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ, देखो मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार्य के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की
0: लोगों
1: आवश्यकता है।
0: के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ, इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधवन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधवन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में, और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया, और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर, जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस

0: प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर, मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने
0: जी
1: उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते, किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से, वो एक दिन मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाए, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
0: जी
1: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था, वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाए तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने
0: जी
1: मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
0: जी
1: सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
0: जी
1: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास
0: जी
1: में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब
0: जी
1: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेगलेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ। लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी, फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा। फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक, जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए, स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे 6th क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर हैं, मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो, थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर 6th क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब 5th 6th पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने 7th क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ 8th में। अब मैं डायरेक्ट 8th में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है 1 साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में 1 साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले, और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पर नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं 8th क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे, ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो 8th क्लास और 9th क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने 9th क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है 9th क्लास, 8th क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर 9th क्लास आई, तो सर 9th क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दिए इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स, में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की, और सर मैं 9th निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने, प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं, तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब, मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
0: जी
1: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी। मैं उस समय थर्ड रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में।
0: जी
1: मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए, कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी। फिर
0: आपने अपनी
1: सर
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक
1: हाँ,
0: चुनौती
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दे दी
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी
1: टीसी भी ले ली, दो
0: जबकि
1: तीन बच्चों की
0: हमारा
1: टीसी चली
0: उद्देश्य नहीं
1: गई।
0: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
0: बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ, फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
0: जी
1: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
0: जी
1: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
0: जी
1: अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको। और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका ही हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
0: जी
1: सर ऐसे जो भी दो तीन कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
0: जी
1: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
0: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं, 2 2 घंटे तक कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
1: जी
0: कुछ खाएगा
1: जी
0: कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
1: जी
0: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
1: जी
0: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
1: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे, मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे। तो
0: जी, नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
1: मैंने
0: चुनौती।
1: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे, इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
0: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय, आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खासतौर पे गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया, और लोगों के सामने जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
1: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली, अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये है कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
1: और मैं चाह रहा हूं कि हम
0: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
1: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल देखिए।
0: जी मुझे तो हंसी आ रही है तकलांग लोगों पर आज।
1: हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए. सो
0: जी
1: एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर.

0: जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी।
1: जी
0: क्योंकि हमको, यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम
1: जी
0: ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम
1: जी
0: आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो
1: जी
0: मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका
1: जी
0: विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही, यदि हम, वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्वगुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
0: जी
1: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
0: जी
1: उन सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर,
1: लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस
0: यही यही
1: गए।
0: चीज
1: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये
0: जी
1: चाय पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन
0: जी
1: मैं सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ माचे, कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक बार
1: चलते।
0: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था, कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी, तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा, सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं, नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने, मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है, आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ,
1: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग विद अस।
0: जी
1: तो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं,
0: सर,
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।

0: स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश जी, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाना चाहिए उन्हें, तो मैंने बोला चलो एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। आप डायरेक्टर हैं GGRC तालोद में और फैमिली फिजिशियन हैं, ट्रस्टी हैं आप फिजियोथेरेपी सेंटर अहमदाबाद के, और बहुत समय से आप जो है इस ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, और मेडिकल जो विंग है उसके एक्स कमिटी मेंबर भी आप हैं RERF के। तो चलिए आपसे जानेंगे आपके बारे में और बातें। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मुकेश सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में इन चंद तालियों में। नमस्ते डॉक्टर सर, कैसे हैं आप?
1: ओम शांति
0: जी। जी, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा बताइए उस जगह के बारे में।
1: अच्छा, अभी मैं GGRC से ही जुड़ा हूँ, आज मैं GGRC में ही था और फिर आपका फोन आया तो फिर GGRC से ही मैं जुड़ा हूँ। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। जी भाई, हेलो
0: जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उन सभी का भी स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ? क्या पहले से आपने सोच के रखा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है इस तरह से, या फिर कुछ ऐसी कहानी बनी आप इस फील्ड में आए? शुरुआती जीवन की कुछ बातें।
1: बहुत ही वंडरफुल कहानी है। 10th के अंदर मेरे बहुत परसेंटेज कम आए,
0: अरे
1: तो मैंने सोचा कैसे परसेंटेज बढ़े, तो उस एरिया का जो फर्स्ट नंबर आया था उससे मैंने फ्रेंडशिप किया और फिर उसको पूछा कि भाई तू इतना सारा परसेंटेज कैसे ले आया, तो मुझे कहता है आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। तो हमने तो बोला हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो मुझे ब्रह्मा कुमारीज में ले गया। पहले ही दिन उसने जो प्रदर्शन समझाई, मतलब उस वक्त तो 16 साल के बच्चे थे, तो उसने पहले तो टीचर को कहा कि इनको समझना है, तो बोला तू ही समझा देना, है ना। तो उसने इतना दिल से समझाया कि मेरे तो अंदर पूरा का पूरा राजयोग उसी वक्त सेट हो गया। और वंडर ये रहा कि दो साल की यात्रा में 12th के एग्जामिनेशन के बाद मेरा इतना परसेंटेज आया, जिस कॉलेज में चाहिए मुझे एडमिशन उसमें ही मिल गया। वंडरफुल कहानी। फिर सोचा नहीं था पहले तो डॉक्टर होना पड़ेगा, डॉक्टर भी एक लक्ष्य है, तो बाद में मेडिटेशन सीखते सीखते पक्का हुआ कि भाई अब मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है बाबा ने मुझे डॉक्टर बनाया। और उस वक्त 1980 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो मधुबन में भी कोई डॉक्टर, मतलब वो छोटा सा दवाखाना था और कुछ नहीं था। तब से लेकर के अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल बनी तब तक बहुत सारे सीनियर भाई बहन हमारे यहाँ से अहमदाबाद दवा लेने के लिए आते थे, और कई सीनियरों को दिखाना भी है तो भी हम लोग मतलब वाइल्ड अरे लाइव कांटेक्ट में रहते थे। तो ये बहुत बड़ा लाभ मिला, दादियों की सेवा का भी उस वक्त बहुत बड़ा लाभ मिला, तो ये मेरे लिए तो एक भाग्य की बात बन गई।
0: जी जी जी जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि कैसे आप डॉक्टर बने, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके आपने अपना परसेंटेज बढ़ाया, पढ़ाई में आपका ध्यान अच्छा लगने लगा, पढ़ाई आपको समझ में आने लगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज आपने बताया है। और आज के हमारे युवा साथियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जो है असर्ट होगा, अगर वो भी इस मेडिटेशन को सीखे और अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करे तो उन्हें भी अच्छा नंबर मिल सकता है, अच्छा पढ़ाई वो भी कर सकते हैं। तो आइए, इसके साथ में मैं आपको जोड़ना चाहूँगा फिर से डॉक्टर मुकेश जी को। और जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल फील करते हैं कभी कभी, तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल जो डॉक्टर होने के बाद भी किस तरह से आप जो है इस चीज से निर्माण के कार्य में, जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन का जो है बिल्डिंग के इस चीज से जुड़े हुए, तो ये कैसे संभव हुआ या ये संकल्प कैसे आया? जी
1: ये भी एक बाबा की वंडरफुल कहानी है कि बाबा जिन आत्माओं के द्वारा कार्य कराना चाहता है उसको पहले से ही तैयार कर देता है। ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि जब भी ये हमारे एरिया में सेंटर नहीं था, मैं जहाँ रहता हूँ और जहाँ हॉस्पिटल है उसके बीच में कोई सेंटर नहीं था, तो पहली बार 1993 में वहाँ एक सेंटर तैयार हुआ। तब तक मैं सरला दीदी के कांटेक्ट में था, तो वहाँ राजयोग भवन में जाता था, तो जब भी वहाँ सेंटर हुआ तो दीदी ने आकर के मुझे बिठा दिया पहले ही दिन, बोला ये घर आपका है और आपकी ये सेंटर की जिम्मेवारी रहेंगी। तो वंडरफुल ये हुआ कि सेंटर की तो जिम्मेवारी तो हमने ले ली, कोई अर्जेंट हमारे घर के नजदीक में था, तो ये मेरे भाग्य की बात थी। तो लेकिन थोड़े ही समय के बाद, 6 मास के बाद, जिस घर में सेंटर था वैसे फ्री था, वो नया निकलते थे भाई, 7 साल से कभी नहीं लिया, तब तक तो हम उसका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। लेकिन बाद में फिर उसको उम्र के कारण वो जो घर था वो अपने बच्चों को दे देना था, तो उसने कहा कि अभी आपको खाली करना पड़ेगा। तो वहां से पहले हमारी शुरुआत हुई कि कैसे डील करके मकान खरीदना। तो तुरंत ही थोड़े टाइम में पैसे इकट्ठे करके पास में ही एक मकान लिया, और फिर लेने के बाद तोड़ के थोड़ा रिपेयरिंग करना था। तो पहली शुरुआत हमारी वहां हुई कंस्ट्रक्शन का कार्य की, कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर को ले आना, कैसे सब खरीदना, कैसे मतलब ऐसे ये पहला आया। फिर ये सेंटर हुआ तो उसके बाद 2-3 साल के बाद, 2-3 साल भी नहीं हुए होंगे, दूसरा सेंटर बना। तो वहां तो एक छोटी सी रूम थी, तो छोटी सी रूम में तो मैं देख के वंडर खा गया कि बहने इतनी रूम में रहती कैसे है। तो वहां एक हमारे रिलेटिव की स्कीम चल रही थी, समझो हमारी ही है, तो उनसे रिक्वेस्ट करके वहां हमने एक और मकान लिया, जो फिर बाबा के कार्य में शुरू हुआ वहां से। तो ऐसे उसके बाद उसका नजदीक का खाली प्लॉट लेकर के वहां भी निर्माण करके 300-400 भाई बहन बैठ करके राजयोग कर सके, ऐसी व्यवस्था बाबा ने करवाई। तो ये दूसरा हुआ, ऐसे एक तीसरा भी मकान हुआ, चौथा भी। तो करीब करीब ये जीजीआरसी का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले बाबा ने 6 से 7 सेवा केंद्र की निर्माण का कार्य में हमें मतलब बाबा ने जुड़ा, समझो सिखाया। और तभी उसके बाद में जब ये जीजीआरसी का काम शुरू होने वाला था, तभी दीदी ने हमें एक, हमारी ये विशेषता रही कि सरला दीदी को हम कभी नाजी शब्द नहीं कहते थे, और पता नहीं दीदी के मुख से जो भी शब्द निकलते हम हमेशा ये समझते कि ये भगवान के शब्द है, उसमें कभी ना नहीं करनी है। और ये हमारा ये भी अनुभव था कि दीदी जो भी काम सौंपती हम समझते हमसे नहीं होगा, लेकिन हाँ बोला तो वो काम कैसे भी करके हमारे जीवन में हो ही गया, सफल हो गया। तो उस वक्त से हमने पहले भी जो अनुभव थे उससे फाइनल किया था कि दीदी जो भी काम सौंपे कभी ना नहीं कहो। हाँ, तो उसी कारण हमें दीदी के साथ फॉरेन में भी बहुत जगह सेवा पर जाने का चांस मिला, और ये भी एक वंडरफुल खेल रहा। तो ये निर्माण का कार्य जैसे जीजीआरसी के पहले ही बाबा ने छोटा मोटा करके ये तो समझ दे दी कि मकान कैसे बन सकता है ना। ये जीजीआरसी का जब भी फाइनल होने वाला था तो हमारी एक बड़ी मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में एक भाई ने पूछा, वो जमीन की कहानी तो मैं बाद में कहता हूँ, कि जमीन खरीद ली थी उस वक्त, तो एक भाई ने पूछा, दीदी ये जमीन तो ले ली, अब बनाएगा कौन? तो दीदी के सामने में बैठा था, तो दीदी ने अपना हाथ लंबा करके मेरे सर पर रख दिया, ये ढूंढ लाया है तो यही बनाएगा। तो इस प्रकार ये वंडरफुल खेल बाबा ने वहां से शुरू करवाया और धीरे धीरे धीरे करके यूज बाबा ने कर दिया। बाकी ये जमीन भी कैसे मिली ये भी वंडरफुल कहानी है, वो भी सुनना चाहे तो सुनाएंगे, आपको ऐसे लगेगा कि कैसे भगवान अपना कार्य करा रहा है, हम तो खाली इंस्ट्रूमेंट बन करके चल रहे हैं।
0: डॉक्टर मुकेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और कैसे कंस्ट्रक्शन का जो है ये शुरू हुआ वो आपने बताया सेंटर के माध्यम से। और जैसे मधुबन में सब महारथी भाई बहने हैं, उनके साथ आपका संपर्क अच्छा बना है, तो वो कैसे संभव हो पाया उसके बारे में थोड़ा सा।
1: ये इसमें भी खास समझो, ये डॉक्टरी लाइन ही काम में आई। बाबा ने डॉक्टर बनाया सेवा, तो जितनी भी बार अहमदाबाद में दादिया कोई भी आई, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी आई, गुलजार दादी आई, जानकी दादी आई, समझो जानकी दादी तो आई थिंक एक बार तो 15 दिन सुख शांति भवन में रही बीमारी के कारण। तो उसी वक्त 15 दिन तक मैं सुबह दोपहर रात को हर 8 घंटे दादी जी को इंजेक्शन देने जाता था, और उसमें से दादी बाहर आई, जिसको फॉरेन वाले दादी जी का नया जन्मदिन मनाते हैं। तो एक तो ये फायदा रहा कि जब भी कोई दादी आती थी तो सरला दीदी मुझे उसी बहाने एक बार बुला लेती कि दादी आई है तो दादी का बीपी चेक करना है, ये चेक करना है, वो चेक करना है, उसको कुछ काम है। तो मुझे चाहे पहले तो खाली सुख शांति भवन था, उसके बाद में लोटस हुआ, तो लोटस में भी जब भी दादी आती तो बड़े प्यार से दीदी फोन कर देती। और दादियों को कुछ भी होता, देखो उसकी भी एक वंडरफुल कहानी है कि एक बार रात को 11:30 को दादी जानकी बहुत बीमार पड़ी। एक्चुअली काम था फिजिशियन का, मेरा उसमें काम रोल नहीं था, लेकिन दीदी ने एक फिजिशियन को फोन किया दादी जानकी के लिए, तो उसने दीदी को 10 सवाल किया और लास्ट में ऐसा भी बोला कि अब तक क्या कर रहे थे रात को 11:30 को आप मुझे जगा करके बुला रहे हैं। तो दीदी ने प्यार से वो रख दिया फोन और फिर मुझे फोन किया कि मुकेश भाई, और 11:30 का तो मेरा रूटीन होता है कि मैं बाबा के कमरे में, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी बाबा करा रहा था कि रात को 11, 11:30, 12 बजे तक हमारी वहाँ हॉस्पिटल चलती, तो उस समय बराबर बाबा के कमरे में योग कर रहा था नाइट के पहले सोने से पहले का। दीदी का फोन आया, दीदी ने एक ही लाइन बोला, मुकेश भाई दादी को जरूरत है फिजिशियन की, आप कोई भी फिजिशियन लेकर के आ जाओ अभी अभी। मैंने हाँ जी शब्द कह करके रख दिया, एक फिजिशियन मित्र को उठाया और उठा के रात को दादी के पास ले गया। तो ये इस प्रकार से हमने कभी भी रात को 2 बजे बुलाया, सुबह 4 बजे बुलाया, कोरोना में कभी भी बुलाया, कोई कोरोना का मरीज है तो भी बिना घबराए गाड़ी में सुला करके ले गया, लेकिन बाबा ने सब संभाला। तो इस प्रकार दादियों की, एक बार दादी प्रकाशमणि जी का भी नाक में से एकदम ब्लीडिंग शुरू हो गया था, रात को आई और सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे ENT स्पेशलिस्ट को ला करके सारा ट्रीटमेंट कराया और फिर दादी बॉम्बे गई। तो इस प्रकार हर एक दादी और छोटी मोटी दूसरी दादियां भी जो है आती रहती है, रहती थी तो ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ। तो इवन भाई साहब भी हमारे ब्रिजमोहन भाई आए, अपने संजय क्या जगदीश भाई आए, तो उन लोगों के भी ट्रीटमेंट मिल बहाना ट्रीटमेंट का होता है, लेकिन हमें उनका लाभ मिल जाता। तो इस प्रकार सबके हम नजदीक में आ गए कि जैसे कुछ भी काम हो। इवन एक बार जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो उनकी ट्रीट मतलब रखने के लिए उस वक्त तो कोई साधन सुविधा नहीं थी, तो बॉडी को प्रिजर्व कैसे करें। हाँ तभी भी बनारसी भाई को निर्मल भाई साहब ने सामने से बोला कि आप मुकेश भाई को फोन करो, वहां अहमदाबाद से किसी को भी ले आएगा। और वास्तव में मतलब बड़ों के संकल्प होते हैं सफल होते हैं, बस एक ही बात, रात को 12:45 बनारसी भाई का फोन आया कि अभी अभी आपको एक डॉक्टर को ढूंढ के उसको ट्रीटमेंट के लिए ले आना है। तो हम रात को 2 बजे तक उसको ढूंढ लिया और 2 बजे वो डॉक्टर को उठा करके सुबह के पहले हम पहुंच गए। वो डॉक्टर ने फिर भाई साहब के बॉडी का ट्रीटमेंट किया और फिर बॉडी 3 दिन रखा। तो इस प्रकार से मतलब बड़ों को भी एक विश्वास हो गया कि इनको जो सौंपेंगे कर देगा। तो ऐसे ही बाबा ने सारा सबके नजदीक में ले आया और हमें भी खुशी हुई कि चलो इसी बहाने हमें भी चांस मिलता है।
0: जी जी, मुकेश जी, एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे GGRC जो अभी आपने पूरी तरह से बन के रेडी है, तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका संकल्प कैसे है, या इसके पीछे कोई प्रेरणा है क्या, कैसा है?
1: ये तो एक्चुअली वंडरफुल बात बताऊं मैं आपको, कराना तो बाबा को ही है, जहां भी कदम है बाबा के ही है। मेरे हिसाब से 2012 में हमारे वहाँ एक फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम था। इसमें जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात में उस वक्त CM थे, तो वो प्रोग्राम में आए थे। तो जाते जाते एक चीज तो बोल के गए कि सरला दीदी, आबू में तो बहुत बड़ा मतलब है, तो गुजरात में थोड़ा कुछ ऐसा कब बनाओगी? आप बोलो तो मैं जमीन दे दूंगा, है ना। तो 1 एकड़ जमीन का ऑफर किया था सोमनाथ वेरावल के दरिया के कांठे पर। तो ये उनकी भी एक भावना थी कि कुछ बनाओ तो बड़ा बनाओ। जैसे गुजरात में बड़ा होता है तो गुजरात का नाम भी बड़ा होता है। तो एक संकल्प वहां था। दूसरा एक था कि एक बार बाबा ने भी, जैसे नहीं संदेशी जाती है किसी रिट्रीट सेंटर का मैसेज लेकर के, तो ऐसे ही संदेशी ने बाबा को पूछ लिया कि बाबा हमारा रिट्रीट सेंटर कब बनेगा। तो बाबा ने उस वक्त कहा था कि बच्ची बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन लास्ट में बनेगा। तो ये भी एक वंडरफुल। और फिर पहली बार हम कई बार सरला दीदी को कह चुके थे, जो हमारे गुजरात जोन की इंचार्ज है, उस वो सरला दीदी की बात कर रहा हूँ, कि दीदी अभी हमें रिट्रीट भाव कम है तो एक रिट्रीट के लिए जमीन ले लेनी चाहिए। लेकिन दीदी कभी वो ऐसे समझती थी कि समय आएगा तो हो जाएगा, कोई ना कोई दे देगा, ऐसे उनका वो भाव रहता था कि अभी बाबा के घर में ही पैसे की जरूरत रहती है, मधुबन में तो वहां मतलब यहाँ नहीं कुछ करो, तो ये भाव दीदी का रहता। लेकिन ये एक बार देखा, 31 बार 2014, वो क्रिसमस का शाम को क्लास था, रात को 9 बजे क्लास पूरा हुआ, पहली बार हमने दीदी के मुंह से सुना, दीदी ने कहा अब हमारा रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। तो मुझे तो वंडर लगा कि आज तक हम कहते थे, दीदी मना कर रही थी, और आज पहली बार दीदी बोली है तो डेफिनेटली अब होना ही चाहिए और होगा ही। तो हमने वो संकल्प अंदर बराबर फिट कर दिया अपने अंदर। और बराबर 4 जनवरी 2015 को रविवार को हमारी मणिनगर सब जोन की भट्टी थी, 2000 लोग, 2000 भाई बहन उस भट्टी में थे। और वो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: स्थान था, जैसे ही स्थान में आए और GGRC में थोड़ी सी साम्यता है, वहां उन्होंने प्लॉट बनाए थे कॉन्ट्रैक्टर ने, बड़े बड़े प्लॉट थे, और वहां जो प्लॉट जो लेते थे उसके लिए उन्होंने क्लब हाउस की सुविधा, जिसमें
0: जी
1: गेस्ट हाउस होता है, मतलब अलग अलग जो रेस्टोरेंट होता है, रिक्रिएशन एरिया होता है, बच्चों के लिए एरिया होता था, तो वो उसने बनाया था ताकि लोग आकर के वीकली एंजॉय करें। तो पूरा दिन भट्टी चली, तो हमारे मन में भी वो संकल्प चला कि यहाँ ये जो सिस्टम है उसने अच्छी बनाई है, कि क्लब हाउस लोगों के पैसे से ही उसने क्लब हाउस बनाया है, और जो प्रॉफिट होता है वो अपने घर ले जाता है। तो हमने सोचा कि हमें क्लब हाउस की जरूरत नहीं, हम बंगलो, ये प्लॉट की जगह बंगलो बनाए और रिट्रीट क्लब हाउस की जगह रिट्रीट सेंटर बनाए, और जो पैसा
0: प्रॉब्लम
1: बचता है वो हम रिट्रीट सेंटर के मेंटेनेंस में रखेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उसी बहाने बाबा का एक बड़ा रिट्रीट सेंटर हो जाए। तो शाम को समापन में स्टेज पर मैं दीदी के पास में बैठा था, तो दीदी को पूछा, दीदी ऐसा ख्याल आता है अगर आप कहो तो मैं ऑडियंस में बोल दूं? तो दीदी ने कहा भले बोलो। तो हमने तो बड़े नशे से, मतलब सबको नशा भी चढ़ा दिया कि पूछा पहले, अगर इतनी जगह हमारे पास है रिट्रीट सेंटर की तो कौन समझता है कि होनी चाहिए, हाथ उठाओ, है ना। तो सबने हाथ उठाए एक साथ में, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तभी उस वक्त जो प्लान मेरे मगज में आया था वो हमने वेव कर दिया कि भाई इस प्रकार है, सब लोग हम समझते हैं कि मकान नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसमें से भी थोड़े ले

0: तो दूसरे तो बहुत सारे भाई बहन हैं, आगे जाकर के
1: बिल्कुल
0: हो जाएगा, और जो नहीं लेते उसके लिए भी काम में तो आएगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रिट्रीट चल देगी, भट्टियां चलेगी, तो सबके लिए काम में आएगा, है ना। तो ये सबको दिल में बस गया। तो एक बात हमने लास्ट में पूछ ली, जो समझता है मैं कर सकता हूं और मैं इसमें मकान लूंगा, वो अपना नाम
1: बिल्कुल
0: लिखा के जाए। तो जैसे फंक्शन पूरा हुआ, सब घर पे गए, 25 लोग नाम लिखा के गए, तो हमारे अंदर तो और ही नशा चढ़ गया कि अभी 25 है, 2000 में तो गुजरात में तो 70,000 भाई बहन है, उस वक्त 70,000 थे, तो वो तो आसानी से काम हो जाएगा। तो समझो वंडर ये हुआ कि दूसरे हफ्ते में लोगों को जैसे पता चला ना कि ऐसा कुछ बन रहा है, तो दूसरे 25 लोग ने नाम लिखा दिया, तो 50 हो गए, तो हमारे तो और ही पावर बढ़ा ना। फिर सबको इकट्ठा किया, बोला देखो भाई ऐसा नहीं समझना, मेरे पास पैसा है इसलिए मैं कह रहा हूँ वही बनाओ, लेकिन हम सबको पैसा दे करके, हम सबके इकट्ठे पैसे से ये बाबा का काम होने वाला है, तो कौन देने को तैयार है। तो सभी ने हाथ उठाया कि आप गुजरात के कोई भी कोने में रिट्रीट सेंटर बनाएंगे, हम आपके साथ है, बाबा का है तो बाबा का हम करके ही रहेंगे। तो एक नशा चढ़ा, तो इसी प्रकार से फाइनल किया कि हमें रिट्रीट सेंटर बनाना ही है।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: एक साल तक मतलब दिसंबर एंड तक हमने 80 जमीन देखी, 80 जमीन अहमदाबाद से 100-100 किलोमीटर दसों दिशाओं में। लास्ट में दिसंबर में तो मैं थक के, एक दिन शुक्रवार था शायद, तो थक के एक दिन आया दीदी के पास, दीदी इतनी सारी जमीन देखी लेकिन कोई मतलब पसंद नहीं आ रही है, या तो बहुत महंगी है, या तो आसपास कुछ कुछ गड़बड़ है, या तो जमीन में गड़बड़ है, या दलाल गड़बड़ वाला मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। दीदी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि आप संदेशी बहन को भेज करके खाली दाल बाबा से एक डायरेक्शन बोल दो, बाबा को बोलो एक डायरेक्शन बताए तो हम उसी डायरेक्शन में ढूंढेंगे। तो वंडरफुल ये रहा कि बाबा ने तो पहले ही हमारी तो कि पहले ही बोल दिया, बस बच्चे, जैसे संदेशी गई तो कहा बस बच्चे अभी तो शुरू नहीं किया और आप थक गए, लेकिन बड़े दिल से बाबा ने रहम दिल बन करके तलोद गांव का नाम भी दिया कि बच्चे इस दिशा में जाओ और आप दलाल चेंज कर दो। देखो भगवान का
1: बिल्कुल
0: संकल्प अंदर ऐड हुआ, कैसे काम हुआ। दूसरे ही दिन हमारे तलोद में सेवा केंद्र है, वहां की जो सिस्टर इंचार्ज बहन है उसका फोन आया कि मुकेश भाई एक दलाल आया है और उसके पास 3 जमीन है और कहता है कि आप लोगों को लेने की है तो मैं दिखाने आया हूँ। तो हमने वो सुनते ही बाबा के शब्द याद आ गए कि दलाल चेंज कर दो, तो ये दलाल नया था, और ये कहा कि तलोद गांव भी दिया था, तो हमने तो सोचा चलो, हम बहन को बोला मैं कल ही आता हूँ। फिर दूसरे दिन हम गए, मैं विनू भाई, और फिर 3 जमीन देखी, पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों तीन जमीन पसंद आ गई। फिर इसमें
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फिर सीनियर बहनों को बुलाया, तो सबको ये अभी जहां जीजीआरसी बना वो पसंद आई, फिर सरला दीदी को, संदेशी बहन को बुलाया, उन्होंने भी देखा, सबको यही जमीन, यहाँ का वाइब्रेशन ही ऐसा है कि कोई पैर रखता है
1: बिल्कुल
0: तुरंत उसका वो हो जाता है, अंदर फीलिंग आ जाता है। अच्छा तो ऐसे फाइनली फिर हमने बाबा से भी वेरीफाई कराई, हमने तो उस वक्त बाबा को बोला बाबा भले सबको पसंद है इसलिए हमें भी पसंद है, लेकिन मुझे तो दूर लग रही है। तो बाबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, दो, एक तो कहा बच्चे अब शहर के नजदीक में लेंगे तो कल शहर हो जाएगा, फिर वहां तपस्या में मजा नहीं आएगी, और ये जो भूमि है वो तपस्या के लिए बहुत श्रेष्ठ भूमि है। तो ये भगवान के वाइब्रेशन मिल गए, दृष्टि मिल गई, और फिर हमने जीजीआरसी के जो भाई बहन थे उनको बुला करके फिर उसका टोकन दिया और धीरे धीरे कारवां आगे चला। तो ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: वंडरफुल बाबा ने ये जमीन दिलाई, इसलिए बाबा ही
1: बिल्कुल
0: कर रहा है, हम तो खाली इंस्ट्रूमेंट है। देखो हमने बाबा को पूछने में भी तो 1 साल लगा है, अगर पहले पूछा होता तो शायद इतना दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़ता।
1: जी। मुकेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि अब ये दूसरे रिट्रीट सेंटर से अपना जीजीआरसी डिफरेंस कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
0: हाँ, ये बहुत ही वंडरफुल कहानी है। एक संकल्प, हमें दो संकल्प चलते थे। एक संकल्प ये चलता था कि जो गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन हैं, चलो कुमार कुमारी तो सेंटर पर रहते हैं और तो उन्हों को तो पुरुषार्थ के लिए सेंटर मिल जाता है, या तो जो मधुबन में रहते हैं रिट्रीट सेंटरों में रहते हैं उन्हें पुरुषार्थ और सेवा के लिए समय मिल जाता है। लेकिन जो भाई बहन है रिट्रीट सेंटर, अरे गृहस्थ में रहते हैं, उनमें से कहीं ऐसे है कि जो पीछे से आए तो उनके दिल में होती कि हम कुमार होते तो कैसा था, या तो हम गृहस्थी बन गए अभी हम सेंटर पर नहीं रह सकते, मधुबन में नहीं रह सकते, तो हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बने। और मेरी खुद की भी ये इच्छा थी कि मुझे मधुबन में 15 दिन, मुझे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन दूसरे भाई बहनों को 15 दिन 20 दिन रहना है तो नहीं रह सकते। उसमें नेचुरली इंटरनेशनल स्थान है तो वहां बहुत सारे विजिट करते तो सबको जगह देनी पड़े। लेकिन ये एक रहा कि अगर ऐसा सभी भाई बहन लेते हैं तो ये काम भी बनेगा और उनका भी काम बनेगा। एक ये संकल्प था। दूसरा ये संकल्प था
1: बिल्कुल
0: कि लास्ट में पहले बाबा ने सबको बिखेर दिया कि भाई अलग अलग स्थान पर जाओ, तो इसी बहाने सेवा का प्रचार और प्रसार बढ़ा। अभी लास्ट एंड टाइम है तो ब्राह्मणों को इकट्ठा रहना चाहिए, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, माला पीछे से ब्राह्मणों की बनती है ना। तो ऐसे इकट्ठे रहते हैं तो तपस्या बहुत अच्छी होती है, वंडरफुल। तो ये अलग है कि ये जो स्थान है उसमें जो भी बंगले हैं सब लोग ये एहसास करते हैं कि हम रिट्रीट सेंटर के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा का कमरा है, यहाँ मम्मा का कमरा है, यहाँ हॉल है, यहाँ बाबा का भंडारा है ना। यहाँ हर एक एक्टिविटी सुबह से शाम, हर एक एक्टिविटी जो मधुबन में चलती है इस प्रकार चलती है।
1: जी जी
0: तो ये एक अलग रीति से है। दूसरा
1: बिल्कुल
0: वंडरफुल ये है कि यहाँ मम्मा का कमरा है ना। ये हमने सोचा नहीं था जब ये हमने ये रिट्रीट सेंटर बनाया, मतलब पहले प्लान बनाया कि मम्मा का कमरा बनाएंगे, लेकिन जब ही प्लान को फाइनल करने के लिए हमने संदेशी बहन को भेजा बाबा के पास, तो उसे मम्मा बाबा के पास में खड़े थे। तो वंडरफुल ये रहा कि मम्मा ने सामने से संदेशी बहन को पूछ लिया, बच्ची मेरा कमरा तो बनाओगी ना, तो अभी आप साक्षात लक्ष्मी कहती है मेरा कमरा बनाओगी तो मना थोड़ी करेगा। बहुत प्यार से संदेशी बहन ने कहा, मम्मा क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और उसके पीछे दूसरी वंडरफुल कहानी ये है कि सरला दीदी और दादी जानकी दोनों मम्मा के साथ रही हुई है पूना में। तो मैं
1: बिल्कुल
0: सरला दीदी के साथ जब भी फॉरेन गया ना, तो सरला दीदी हमेशा मम्मा का एक दो क्लास तो दीदी का रहता ही रहता, और इतनी जिक्र करती मम्मा की कहानियों की कि हमें भी वंडर लगता। तो
1: जी
0: बाबा ने
1: जी
0: जैसे ही संदेशी बहन ने कहा तो बाबा ने साथ साथ में वरदान भी दे दिया कि मम्मा का कमरा बनाना अर्थात साक्षात लक्ष्मी का कमरा बनाना, और एक बार मम्मा बैठ जाएगी तो आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वंडरफुल वरदान बाबा ने मम्मा के रूम के लिए दिया, और वास्तव में प्रैक्टिकली हुआ। 6/6/21 को हमने मम्मा के कमरे का उद्घाटन करा है। डॉक्टर निर्मला दीदी, और कोरोना चल रहा था लेकिन फिर भी हमने क्या किया, ऑनलाइन से करवाया। तो ओपनिंग करने के बाद देखो ये वंडरफुल कहानी कि तब तक हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते थे, हमारे पास उतना आता था और उतना हम यूज कर लेते थे। लेकिन मम्मा का कमरा बनने के बाद हमने महीने के बाद 10 कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ में काम सौंप दिया। और वंडरफुल भी ये रहा कि 10 कॉन्ट्रैक्टर का भी पैसा आता, 10 कॉन्ट्रैक्टर में यूज हो जाता। तो काम जो एक साल में, जो अगले 4-5 साल में हुआ, वो फक एक साल में मम्मा का बैठने के बाद काम हुआ। तो लोग भी वंडर था, इतना फास्ट कैसे हुआ है। तो साक्षात मम्मा बैठी है, बाबा ऊपर से ध्यान रख रहा है, और लोगों को तो मम्मा की वासना, आप मम्मा के कमरे में जाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप अंदर एंटर होते ही आप फील करेंगे, ओह कितना अच्छा है, वाइब्रेशन भी
1: बिल्कुल
0: इतना अच्छा है, फोटो भी इतना अच्छा है बाबा का मम्मा का। तो ऐसे ही मम्मा का जादू हुआ, मम्मा अलग से, मतलब इस प्रकार से ये अलग है। तीसरा
1: बिल्कुल
0: यहाँ भंडारा है, तो ये जो भंडारा है ना, ये विशेष इस रीति से बनाया, जैसे मधुबन में

0: मतलब खाना पीना में थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो
1: जी जी
0: ये यहाँ यहाँ इससे छुट्टी हो गई कि भाई बीमार है तो भी मिलेगा, नहीं खाना वही खाना है तो भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते एक तो ब्रह्मा भोजन हो ही जाता है। इतने सारे प्रसंग, इतने सारे त्योहार यहाँ आते हैं, है ना, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो ब्रह्मा भोजन तो जैसे हफ्ते में एक बार एवरेज हो जाता है। हाँ, कई
1: बिल्कुल
0: बार
1: बिल्कुल
0: तो एक हफ्ते में तीन तीन बार हो जाता है। तो इस प्रकार ये बाबा का भंडारा ये यूनिक है।
1: जी जी जी डॉक्टर मुकेश जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप अभी यहाँ ही रहते हैं, पहले तो आना जाना करते थे, जब इस्टेब्लिश हो गया, पूरी तरह से बन गए, तो अब यहाँ रह रहे हैं, तो आपका निजी खुद का पर्सनल कुछ मेडिटेशन का अनुभव है क्या? वो थोड़ा सा सुनाइए हमें।
0: बहुत
1: जी
0: वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, दावे से इसलिए कहता हूँ कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, जब भी अहमदाबाद में रहता हूँ और वहाँ का मेरा पुरुषार्थ, और जब ये जीजीआरसी में आकर के रहता हूँ, तो आप नेचुरल नहीं मानेंगे, दुगुना ऑटोमेटिक हो जाता है। भले कितनी भी यहाँ हम सेवा
1: क्या
0: करें, लेकिन पुरुषार्थ ऑटोमेटिक। कोई बाबा कहते हैं 8 घंटा योग करो, और लोग कहते हैं बहुत तकलीफ पड़ती, बहुत तकलीफ, और यहाँ नेचुरल 8 घंटा हो जाता है। और अगर अटेंशन रखते हैं तो 10-12 घंटा भी आराम से बाबा की याद रहती है। तो
1: जी
0: एक वंडरफुल है। दूसरा,
1: जी
0: ये जो हमने योग की पावरफुल है ना, वैसे समझो मेरे 40-45 वर्ष हुए ज्ञान के, पहले कोचिंग में आए फिर रेगुलर हुए, तो ये इतने सालों में जो पावरफुल योग हमने किया, उसमें सबसे पावरफुल योग जो हुआ मुझे जीजीआरसी में, इतना 100% अशरीरी अवस्था का जो अनुभव, वो आज तक मैंने कहीं नहीं किया, इवन अपने घर में भी नहीं किया ना और कहीं भी। तो ये वंडरफुल है कि ये भूमि ऐसी है कि आपको फट दे के उड़ा देती है। और सबसे
1: जी
0: बढ़िया ये है कि यहाँ जो रहने आए हैं ना, वो करीब करीब अनुभवी आत्माएं आई है ना,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये भी बहुत फायदा है कि
1: उसका
0: सबको
1: भी बेनिफिट्स मिले।
0: बहुत इजीली पुरुषार्थ में चांस मिल जाता है। तो ये हमारा
1: अच्छा
0: तो ये ना तपस्या मेन होनी चाहिए, तो ये तपस्या के लिए तो समझो तपस्वी भूमि है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। ये जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट जीजीआरसी बनाया, इसमें सरकार की कुछ हेल्प मिली है क्या?
0: हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा ये लक्ष्य रहता। देखो, बाबा को कराना है, मैं पहले भी पूछ रहा हूँ, बोला कि
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: को कराना है। मुझे ये भी पता नहीं था कि जमीन लेकर लेकर के फिर उसका पासिंग भी कराना होता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे काम आता है ना, तो बाबा ऐसी आत्माओं को सामने लाकर रख देता है, तो एकदम नई नई आत्मा बाबा की, जो कलेक्टर का पीए बना और 7 महीने से ही वो बाबा के घर में आ रहा था, और उसके हाथ में हमारी जीजीआरसी की फाइल आई, तो इतना वंडरफुल उसने सहयोग दिया बड़े दिल से, प्यार से। और बाबा की हर एक जो भी फाइल है, ऑटोमेटिक उसने फटाफट पास तो कराई, वहां तक नहीं रुका, उसने ये भी देखा कि सरकार से हमें क्या क्या मदद मिल सकती है। हाँ, तो बाहर से अंदर आने तक कच्चा रास्ता था, तो वो भी उसने हेल्प कर करके पक्का रास्ता, जिसके पीछे 50 लाख रुपया खर्च होता है, जो सरकार ने कराया। फिर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो जमीन है वो नदी के कांठे पर है, छोटी सी नदी है लेकिन वो 30 मीटर चौड़ाई है, तो उस कांठे पर उसने 1.25 करोड़ सरकार से खर्च करवा करके नया चेक डैम बनवाया, ताकि हमारे एरिया में 700 मीटर में की लैंड में हमारे बॉर्डर पर नदी है, तो 700 मीटर में पानी भरा रहता है। करीब करीब समझो 10-11 महीने तक पानी इस नदी में रहता है, इसलिए हमारी जमीन में पानी की कोई कमी नहीं है, और सबसे बढ़िया पानी। और
1: जी
0: भी
1: जी जी
0: कुछ कार है, गार्बेज वान है, वो भी हमने सरकार से बहुत सब्सिडी में लिया है। अभी आगे जाकर के सोलर भी सब्सिडी का अभी अभी अभी फॉर्म भरा है। और अभी प्रोटेक्शन वॉल हमने नदी पर सोचा था, कहीं होने का नदी है ना, कहीं सोचते हैं कि भाई बहुत बाढ़ आई तो क्या करेंगे, तो हमने सोचा चलो एक प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं। तो प्रोटेक्शन वॉल के लिए भी हमने सब अप्लाई किया सरकार ने, तो सरकार ने 1.65 करोड़ पास किया, तो वो भी
1: बहुत
0: अभी
1: बढ़िया,
0: फाइनल काम की ओर जा रहा है, वो भी 2-4 महीने वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से और

0: बहुत सारी हेल्प अभी धीरे धीरे आप आगे जाकर के देखेंगे कि ऐसा एक गांव ब्रह्मा कुमारी का गांव बनेगा जो वंडरफुल, पूरे इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं होगा। ऐसा गांव अगर आगे जाके जो कहते हैं ना गोकुल गांव है ना, तो स्वर्ग की शुरुआत हम यहाँ से ही करने वाले हैं। तो
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: हमारा नशा है, बाबा कराने वाला है और होने वाला है।
1: चलिए मुकेश जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस बाद में जो लोग यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पर आके अभी बस गए हैं, तो उनका भी कुछ खास अनुभव होगा। एक हाथ कोई अनुभव ऐसा लग रहा है कि आप मिराकल ही है उनके लाइफ में हुआ है, तो वो कुछ जरूर शेयर कीजिए।
0: बताता हूँ, ये जैसे कहा ना कि वंडरफुल लैंड है, इस जमीन में स्वयं भगवान और माँ, मतलब माँ बाप बैठ करके ही चला रहे। ऐसा है, एक हमारे वहाँ अमेरिका की एक लेडी अमेरिका में इतनी बीमार थी, समझो कि वो बच नहीं सके ऐसी थी। लेकिन उसने जीजीआरसी के बारे में देखा तो सोचा मुझे जीजीआरसी में जाके रहना चाहिए। तो उसने मकान बुक करा दिया, मकान भी तैयार करवा दिया और फिर बच्चों को कहा कि मुझे जाना है। अभी बच्चे कहते मम्मी तू वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगी, तेरी तबीयत ही इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी उसने कहा नहीं मैं जाऊँगी, उसका दृढ़ संकल्प था। व्हीलचेयर पर आए, व्हीलचेयर पर आकर के यहाँ रहने लगे। इतना वंडरफुल खेल हुआ कि वहाँ तो कितनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद ठीक नहीं हुई, यहाँ वो 2 महीने में अपने आप इतनी स्वस्थ हो गई कि खुद जाकर के भंडारे में सेवा करती है। हाँ, तो
1: अरे वाह,
0: ऐसे एक नहीं,
1: क्या
0: बहुत सारे, मेरा खुद का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने
1: जी
0: दोनों पांव जो है मेरे, इतने पहले शुरू किया जब ही प्रोजेक्ट, तो पैर में पेन हो रहा था, जॉइंट में, तो वहां तक कि वो फाइनल कर दिया था कि अभी ये जॉइंट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। अभी आज प्रोजेक्ट के 6-7 साल हुए, अभी तो पेन कहाँ गायब हो गया वही पता नहीं। और लोग कहते थे घिस गया, ये घिस गया, अभी घिस गया, वो सब ठीक हो गया। हाँ, तो अभी तो दौड़ते आराम से, ऐसे दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट करने पड़े तो भी करेंगे। तो
1: बहुत
0: ये भी बाबा
1: बढ़िया
0: का वंडरफुल, ऐसे बहुत सारों का अनुभव है कि
1: जी
0: हेल्थ
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी रहती है कि बात ना पूछो। इस प्रकार बाबा का भी ये अनुभव लोगों के बहुत अच्छे हैं।
1: डॉक्टर मुकेश जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जीजीआरसी के बारे में, और अनुभव तो बहुत लंबा है, बहुत लोगों का है, लेकिन पूरा यहाँ पर सुनना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग बीच बीच में जरूर आपसे शेयरिंग लेंगे कोई खास अनुभव। और अभी हमारे साथ एक आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, जय कुमार जी भोपाल से। जय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, कैसे हैं? तो
0: नमस्ते भाई जी, ओम शांति
1: मैं चाहूंगा
0: भाई जी
1: मुकेश
0: का
1: भाई, बहुत अच्छा
0: जी
1: एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके लिए गीत डेडिकेट करो आप फिर।
0: जी जी जी बिल्कुल भाई जी, भाई जी का मैंने थोड़ा सा अनुभव सुना है, मुझे समझ में आ गया क्या गाने का गाना है आज। जी
1: बिल्कुल
0: जी जी जी ठीक है भाई जी,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ओके।

0: इस हाँ से मैं चाहूंगा डॉक्टर मुकेश जी,
1: अनलिमिटेड के बताइए।
0: बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं चल रहा है, आवाज आवाज नहीं आ रही है रमेश भाई।
0: हाँ, मैं चाह रहा था कि आपसे जुड़ना है लोगों को, तो कैसे जुड़ सकते हैं? जी
1: अच्छा एक फोटो मैं रखता हूँ, एक 9825 3 फोन नंबर लिखवाता हूँ, जो हमारी बहन मार्केटिंग की डॉक्टर जयश्री बहन, 9825 3 44 7 55,
0: जी
1: 9825 3 44 7 55, ये नंबर से फोन करेंगे ना तो जीजीआरसी का कुछ
0: डिटेल्स
1: भी
0: उनको मिलेगा।
1: काम हो तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी।
0: हो सके
1: और
0: मैं
1: कुछ?
0: चाहूंगा कि कुछ कुछ
1: हाँ
0: फोटोग्राफ्स हमारे लोगों को बताइए, फिर हम लोग पूरा करेंगे। जी
1: जरूर जरूर जरूर, थैंक यू भाई। ये दादी जानकी ने सबसे पहला खात मुहूर्त किया 1980 में, फरवरी में, है ना? गुजरात
0: जी जी
1: के हमारे
0: जी
1: गणनीय भाई बहने भी उसमें हैं, सरला दीदी, चंद्रिका दीदी, ललित भाई, मोहन भाई सिंगल, ये दादी
0: जी
1: को बड़ा हार चढ़ाया गया।
0: जी
1: ये हमारे आत्म प्रकाश भाई भी आए थे, बहुत सारे मधुबन के भाई बहन यहाँ आ चुके हैं, सबको बहुत प्रिय पसंद लगती है जमीन। ये
0: जी
1: हमारी ग्लोबल क्लिनिक का ओपनिंग किया डॉक्टर प्रताप भाई मिंडा ने, यहाँ सबके लिए छोटी सी एक क्लिनिक भी है तो वो भी
0: जी
1: संभाल रही है सबकी। ये यहाँ हम अलग अलग प्रोग्राम भी करते हैं, कल्पतरु का ये प्रोग्राम किया गवर्नमेंट के साथ, तो ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं।
0: जी जी जी
1: ये यहाँ का, ये हमारी कॉलोनी जो बन चुकी है, पीछे फ्लैट दिख रहे हैं, आगे सारे बंगलोज हैं। अभी सारे बंगलो यहाँ है ही नहीं, बिक गए सारे के सारे, थोड़े कुछ फ्लैट बचे हैं। देखो ये वंडरफुल, इतनी अच्छी फीलिंग होती है सबको यहाँ आने के बाद।
0: जी
1: ये ऊपर से एरियल व्यू है, वो पुराना एरियल व्यू है, बाकी नया तो, और ये मम्मा का कमरा है, इसमें बाहर जगदम्बा की मूर्ति रखी हुई है, जो नॉन बीके है वो जगदम्बा के दर्शन करके चले जाते हैं, बाकी बीके है वो मम्मा के साथ अंदर जाके बैठते हैं। ये यहाँ खेल भी, मतलब प्लेग्राउंड भी है, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: ये उत्तरायण जो आती है ना, तो उत्तरायण मना रहे हैं, सब फेस्टिवल्स यहाँ मना रहे हैं। जीजीआरसी वो नाताल के दिन भव्य आनंद मेला रखा हुआ था, 2,500 लोग
0: अच्छा
1: आए थे, और कहीं बाहर वाले तो आए थे, उसमें से 1,000 लोगों को तो हमने वापस भेजना पड़ा। ये आनंद मेले का यहाँ के एमपी जो है वो आए थे ओपनिंग करने के, ये एमपी है बीच में काले कपड़े वाले। ये
0: जी
1: होली है, ये होली का त्योहार, यहाँ हर प्रकार के होली में, मतलब एक स्पिरिचुअलिटी के साथ कि हमें क्या जलाना है, हाँ तो सबको कमी कमजोरियों को जला, मतलब वो करवाया।
0: जी
1: ये हमारा लास्ट ओपनिंग जो हुआ था, सरल कुंज और जनक कुंज, दादी रतन मोहिनी जी जनक कुंज के ओपनिंग में आई, जनक कुंज सरल कुंज के भाई साहब है, चंद्रिका दीदी है, वेदांती बहन है, भारती दीदी है, जयंती दीदी है, शारदा दीदी
0: जी
1: है, तो सभी हमारे सीनियर भाई बहनों ने आकर के जनक कुंज और सरल कुंज, जनक कुंज है वो दादी जानकी के नाम से है, और सरल कुंज है वो दादी, अरे सरला दीदी के नाम से है, तो ये लेटेस्ट
0: जी
1: हमारा ओपनिंग है। और आगे जा करके देखते हैं, बहुत ही और एक भव्य ओपनिंग बाकी है, वो आगे जाके हम करेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी, ये लास्ट प्रोग्राम का हमारा आज का सीन है।
0: चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने GGRC के बारे में पूरा डिटेल बताने के लिए, धन्यवाद आपका
1: आपका भी
0: बहुत।
1: बहुत दिल से धन्यवाद।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जीजीआरसी जो ब्रह्म कुमारीज का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में डॉक्टर मुखी जी कर्ता धर्ता बने और उस प्रोजेक्ट का पूरा जो विवरण है आपको हमने बताया। तो आशा करूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर फोन करके मैसेज करके आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, कल तो बहुत मजा आने वाला है।
1: क्या कहा, क्यों
0: भाई? कल मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जो जा रहा हूँ।
1: ये तो थी मेरी बात, लेकिन ये अपनी मीना इतनी खुशी खुशी क्यों दौड़ी चली आ रही है? आओ जरा देखे तो।
2: अरे मीना, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो।
3: पता है सोमी, मैं और राजू वीरू चाचा के घर जा रहे हैं और कल हम सब जाएंगे साथ वाले गांव मेला देखने। बहुत मजा आएगा सोमी, हम लोग झूला झूलेंगे और जादूगर के पास चमत्कार देखेंगे।
2: अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है।
4: खुशी की बात है, सब लोग साथ हैं।
5: मीना जल्दी आओ, वीरू चाचा हमें लेने आ गए हैं।
3: आ रही हूँ राजू।
6: मैं चलती हूँ सुमी, परसों लौट के मिलूंगी।
2: ठीक है मीना।
1: और अगले दिन वीरू चाचा के घर।
7: ये क्या माँ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई?
8: पायल, मैं नहीं जा रही।
7: क्यों माँ, क्या हुआ, चलिए ना।
8: पायल, संजू अभी छोटा है, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए।
7: छोटा कहाँ माँ, अब तो पूरे 10 महीने का हो गया है संजू, और फिर पिताजी, दादाजी, मीना, राजू और मैं भी तो होंगे वहाँ संजू का ध्यान रखने के लिए।
8: वो सब तो ठीक है पायल बेटी, लेकिन अगर मैं चली तो मुझे संजू के लिए खाने पीने का बहुत सा सामान साथ में लेना पड़ेगा।
7: वो क्यों,
8: भूल गई? नर्स बहन जी ने कहा था कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो माँ को उसे अपने दूध के साथ साथ 3-4 बार थोड़ा थोड़ा खाना भी खिलाना चाहिए, और अब तो संजू 9 महीने का हो गया है, इसलिए मुझे उसे अपने दूध के साथ साथ दिन में 4-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना जरूर खिलाना है।
7: लेकिन माँ,
8: तुम उदास मत हो बेटी, मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है।
9: पायल, मीना जल्दी आओ भाई।
6: पायल, मैं भी लीला भाभी के साथ घर पे रुकूंगी, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो।
7: और मेला?
6: मेला मैं फिर कभी देख लूंगी।
7: ठीक है मीना, कल मिलते हैं।
1: लो भाई, पायल तो सबके साथ मेला देखने चली गई, और घर पे रह गए लीला भाभी, संजू और मीना।
8: मीना, लगता है संजू को भूख लगी है, मैं अभी अपने हाथ साबुन से धो के इसे कुछ खिलाती हूँ।
10: ये ले संजू, खिचड़ी खाएगा ना, ले खा ले खा ले खा ले। शाबाश।
8: मीना, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं संजू को इस कटोरी में अलग से क्यों खिला रही हूँ?
6: मुझे पता है भाभी, माँ भी रानी को ऐसे ही एक अलग कटोरी या प्लेट में ही खाना खिलाती है।
4: खाना खिलाती है, रानी खुश हो जाती है।
8: अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो ऐसा क्यों करती हैं।
6: हाँ भाभी, माँ कहती है कि 9 महीने से ऊपर के बच्चों को दिन में 4-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका पेट जो छोटा होता है।
8: अरे वाह मीना, तुम तो बहुत समझदार हो।
4: समझदार हो, होशियार हो।
8: देखा मीना, हम दोनों की बातें सुनते सुनते संजू ने खिचड़ी खा भी ली। ये मैंने इस लोटे में डाला दूसरा पत्थर।
6: लीला भाभी, आपने लोटे में ये पत्थर।
8: मीना, तुम संजू का ध्यान रखना, मैं जरा भैंसों को चारा देकर आती हूँ।
1: और फिर रात को जब सब सो रहे थे,
6: लीला भाभी, लीला भाभी।
8: क्या हुआ मीना?
6: लीला भाभी, मुझे लगता है साथ वाले कमरे में कोई है।
8: लगता है घर में चोर घुस आए हैं, अब हम क्या करें मीना?
6: एक मिनट भाभी, मैं जरा उस रोशनदान से झांक के देखती हूँ।
8: ध्यान से मीना, रोशनदान बहुत ऊपर है।
6: आप चिंता मत कीजिए भाभी।
8: कुछ दिखा?
6: भाभी, कमरे में 2 चोर हैं।
8: अब क्या करें, बाहर भी नहीं निकल सकते।
6: एक काम करते हैं, हम जोर जोर से चीखते हैं, हमारे चीखने की आवाज सुन के सभी पड़ोसी जाग जाएंगे और चोरों को पकड़ लेंगे।
8: मीना, डर के मारे मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही।
6: एक मिनट भाभी, बाहर आंगन में एक के ऊपर एक बहुत से बर्तन पड़े हैं, अगर हम उन बर्तनों पर कोई चीज फेंके तो सारे बर्तन एक के बाद एक नीचे गिरेंगे। उस आवाज से आंगन में बंधी भैंसे घबरा के शोर करेंगी, जिसे सुनकर सभी पड़ोसी जाग जाएंगे।
8: हाँ, ये ठीक रहेगा।
6: लेकिन बाहर पड़े उन बर्तनों पर फेंके क्या?
11: याद आया मीना, उस लोटे में 4-5 पत्थर होंगे, वही फेंकते हैं बर्तनों पर।
6: ठीक है भाभी।
11: ये मैंने लिए पत्थर और ये मारा बर्तनों पर। ओफो, मेरा निशाना तो चूक गया, फिर से मारती हूँ।
1: लीला भाभी ने एक एक करके 4 पत्थर फेंके, लेकिन एक भी पत्थर बर्तनों पे नहीं लगा।
11: अब क्या करें मीना, लोटे में तो बस अब एक ही पत्थर बचा है।
6: दीजिए भाभी, इस बार पत्थर मैं फेंकती हूँ।
11: ठीक है।
6: हाँ, ये मैंने उठाया पत्थर और ये फेंका।
12: लीला, लीला बेटी।
13: काका, घर में चोर घुस आए हैं।
14: चोर, चोर, चोर, चोर।
12: वो देखो, भाग रहे हैं, पकड़ो।
14: चोर, चोर, चोर, चोर, चोर,
1: चोर, चोर तो भागने में कामयाब हो गए। और अगले दिन जब नर्स बहन जी लीला भाभी से मिलने आई।
15: लीला बहन, मैंने सुना है कल रात को तुम्हारे घर में चोर घुस आए थे।
11: हाँ नर्स बहन जी, 2 चोर थे, वो तो मीना की समझदारी थी जो।
1: लीला भाभी ने नर्स बहन जी को पूरी बात बताई। नर्स बहन जी बोली,
15: लीला बहन, एक बात समझ में नहीं आई, आपने लोटे में पत्थर क्यों रखे थे?
11: आपकी बात मान के ही।
15: मेरी बात मान के? मैं कुछ समझी नहीं।
11: नर्स बहन जी, आप ही ने तो कहा था कि बच्चों का पेट छोटा होता है, इसलिए मैं संजू को अपने दूध के साथ साथ दिन में 4-6 बार ऊपर का खाना भी खिलाऊं।
15: हाँ, वो तो कहा था, लेकिन लोटे में पत्थर।
11: नर्स बहन जी, कहीं मैं गिनती ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं हर बार संजू को कुछ खिलाने के बाद लोटे में एक पत्थर डाल दिया करती थी।
6: अच्छा, अब मैं समझी भाभी, लोटे में 5 पत्थर क्यों थे, क्योंकि कल आपने संजू को 5 बार खाना खिलाया था।
4: खाना खिलाया था, चोरों को भगाया था।
1: देखा दोस्तों, सिखा गई ना बातों बातों में नई बात। यही तो है अपनी मीना की करामात। अब समय है मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता सुनने का।
6: जब हो बच्चा 9 माह का, माँ ये भूल न जाए,
4: दिन में 4-6 बार कुछ खाना उसे खिलाए।
1: देखा, फिर एक काम की बात सिखा गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: खाना खाना मजेदार। अब समय है बिल्कुल ठीक पहचाना, अब समय है खेलने का। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आप सबको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का अक्षर है ग। सबसे पहले बताओ ग से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
3: गांधी जी।
1: और गांधी जी का पूरा नाम क्या था दीपू?
3: श्री मोहनदास करमचंद गांधी।
1: शाबाश। बच्चों पता है ना गांधी जी को भारत का क्या कहा जाता है?
2: राष्ट्रपिता।
1: बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों अब ग से किसी जानवर का नाम बताओ।
3: गिलहरी।
1: शाबाश मोनू। और गिलहरी को खाने में क्या अच्छा लगता है?
2: मूंगफली।
1: बिल्कुल ठीक। पता है बच्चों कुछ गिलहरियाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं। चलो अब ग से शुरू होने वाली कोई चीज बताओ।
4: गमला।
1: शाबाश मिली। और हमारी क्लास के बाहर जो गमला है उसमें कौन से फूल हैं?
2: गुलाब के।
1: हाँ अब बताओ ग से किसी जगह का नाम।
4: गुड़गांव।
1: शाबाश सुमी। और गुड़गांव किस राज्य में है?
2: हरियाणा में।
1: शाबाश। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। 14वां पाठ, स्मार्ट चार्ट, पृष्ठ 162। कितने घंटे? हम सभी को टेलीविजन यानी टीवी देखना या रेडियो सुनना अच्छा लगता है। यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों में कुछ बच्चे रेडियो सुन रहे हैं और कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि हम इसमें कितना समय बिताते हैं? कॉपी में एक हफ्ते तक लिखो कि रोज तुम कितनी देर टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो। एक सप्ताह में टीवी देखने या रेडियो सुनने में रिक्त स्थान घंटे लगे। इस तरह एक महीने में तुम्हारे लगभग 30 गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान घंटे लगे। अपने दोस्तों से भी एक हफ्ते में बिताया गया समय पूछो और तालिका पूरी करो। यहां पर एक तालिका दी हुई है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय, और दूसरे भाग में लिखा है बच्चों की संख्या। अब तुम इस तालिका को खुद भरो। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 6 घंटे से ज्यादा, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 6 घंटे, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 5 घंटे, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 4 घंटे, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 3 घंटे, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 2 घंटे, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 1 घंटा, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय 0 घंटा या नहीं देखने वाला, बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। यहां पर एक चिड़िया को टीवी देखते हुए दिखाया गया है। चिड़िया कहती है,
2: मैं 24 घंटे टीवी देखती हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा?
1: पृष्ठ 163। तालिका से मालूम करो, टीवी देखने में या सुनने में रिक्त स्थान बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। टीवी देखने या रेडियो सुनने में रिक्त स्थान बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। टीवी देखने या रेडियो सुनने में ज्यादातर बच्चे एक हफ्ते में रिक्त स्थान घंटे बिताते हैं, और टीवी देखने या रेडियो सुनने में रिक्त स्थान बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। कौन सा कार्यक्रम? टीवी या रेडियो पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, धारावाहिक आदि आते हैं। जूही के पिताजी को धारावाहिक देखना पसंद है। उसकी माताजी खेल देखना पसंद करती हैं। जूही को समाचार संबंधी कार्यक्रम पसंद हैं। 1. अपने घर के लोगों से कहो कि वो एक कार्यक्रम बताएं जो उन्हें पसंद है और एक कार्यक्रम जो उन्हें नापसंद है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है परिवार के सदस्य, दूसरे में लिखा है पसंदीदा कार्यक्रम, और तीसरे में लिखा है नापसंद कार्यक्रम। परिवार के सदस्य, माताजी, पसंदीदा कार्यक्रम, रिक्त स्थान, नापसंद कार्यक्रम, रिक्त स्थान। परिवार के सदस्य, पिताजी, पसंदीदा कार्यक्रम, रिक्त स्थान, नापसंद कार्यक्रम, रिक्त स्थान। अब बाकी के खानों को तुम खुद भरो। घर के सबसे ज्यादा लोगों को जिस तरह के कार्यक्रम पसंद हैं, रिक्त स्थान। सबसे ज्यादा लोगों को जिस तरह का कार्यक्रम नापसंद है। रिक्त स्थान पृष्ठ 164। दो, अपने 20 दोस्तों से पता करो कि उन्हें कौन सा कार्यक्रम पसंद है और कौन सा कार्यक्रम नापसंद है और तालिका में लिखो। यहां पर एक तालिका है जिसके तीन भाग हैं। पहले में लिखा है कार्यक्रम के प्रकार, दूसरे में पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और तीसरे में नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिखी है। अब इस तालिका को भरो। कार्यक्रम के प्रकार समाचार, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान, नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान। कार्यक्रम के प्रकार धारावाहिक, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान, नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान। कार्यक्रम के प्रकार कार्टून, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान, नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान। कार्यक्रम के प्रकार हास्य, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान, नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान। कार्यक्रम के प्रकार खेल, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान, नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान। कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है रिक्त स्थान। कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को पसंद है रिक्त स्थान। कितने बच्चों को खेल संबंधी कार्यक्रम पसंद है रिक्त स्थान। क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, हां या ना। अगर हां तो कौन सा रिक्त स्थान। यहां एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है कौन है मेरा मित्र। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। एक मेरा दोस्त है रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा दिन हो या रात। मैं भागूं तो वो भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वो आगे। होता जब अंधेरा वो देता ना दिखाई, कौन है मेरा दोस्त ये बूझो देखें भाई। यहां पर एक चित्र में एक व्यक्ति और एक पेड़ को दर्शाया गया है। पृष्ठ 165। कविता को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क, कविता में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया है रिक्त स्थान। ख, किस अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है रिक्त स्थान। ग, कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है रिक्त स्थान। अपनी भाषा की किताब से अपनी पसंद का कोई भी पैरा लो, उसे ध्यान से पढ़ो और पता करो। क, कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है रिक्त स्थान। कितनी बार रिक्त स्थान। ख, कौन सा शब्द सबसे कम बार दोहराया गया है रिक्त स्थान। ग, कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है रिक्त स्थान। और घ, कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है रिक्त स्थान। मन पसंद खाना। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि वो सुबह कौन सी चीजें खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि से बनी चीजें। यहां पर पांच बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। पहला बच्चा बोला,
3: मैं चावल और उससे बनी चीजें खाता हूं।
1: दूसरा बच्चा बोला, मैं गेहूं से बनी चपातियां खाता हूं। एक लड़के ने कहा,
3: लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाती हूं।
1: दूसरी लड़की बोली,
3: मैं जौ से बना सत्तू पीना पसंद करती हूं।
1: एक दूसरा बच्चा बोला,
4: मेरी पसंद रागी से बनी दलिया है।
1: पृष्ठ 166। अपनी कक्षा के बच्चों से पता करो और तालिका को भरो। यहां पर एक तालिका के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है मुख्य भोजन और दूसरे में लिखा है व्यक्तियों की संख्या। अब तालिका को पढ़ते हैं। मुख्य भोजन चावल, व्यक्तियों की संख्या रिक्त स्थान। मुख्य भोजन गेहूं, व्यक्तियों की संख्या रिक्त स्थान। अब तुम तालिका को खुद पूरा करो। इस तालिका को देखो और बताओ, ज्यादातर लोग किस भोजन को पसंद करते हैं रिक्त स्थान।
5: चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूं खाने वाले ज्यादा, कम या बराबर हैं? गेहूं खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले कम या ज्यादा हैं? नाटक की तैयारी। कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक में अभिनय कर रहे हैं और कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ नाटक के सेट के लिए मेज कुर्सियां ला रहे हैं। यहां पर बच्चों को नाटक की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 167, नाटक चार्ट। यहां पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें खड़ी लाइन में बाईं तरफ बच्चों की संख्या लिखी है और पड़ी रेखा में लिखा है अभिनय करने वाले, कपड़े इकट्ठे करने वाले, संगीत देने वाले और सेट बनाने वाले। यहां पर त्रिभुज के माध्यम से बच्चों को दिखाया गया है। एक त्रिभुज यह दिखाता है तीन बच्चों को। अब इस नाटक चार्ट को पढ़ते हैं। अभिनय करने वाले तीन त्रिभुज, कपड़े इकट्ठे करने वाले दो त्रिभुज, संगीत देने वाले चार त्रिभुज और सेट बनाने वाले दो त्रिभुज। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। क, नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं? ख, कौन से बच्चे ज्यादा हैं, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले? ग, कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं? और घ, कितने बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं? किसका सिर सबसे बड़ा है? रद्दी कागज की लंबी पट्टियां काट लो। एक एक पट्टी अपने हर दोस्त को दे दो। अब एक पट्टी अपने सिर के चारों तरफ लपेट लो और बाकी बची पट्टी को फाड़ दो। अब बड़े कागज पर एक लाइन में इनको चिपका दो। यहां पर एक कागज दिखाया गया है और उस पर बिंदुओं की सहायता से चार पंक्तियां दिखाई गई हैं और यहां पर एक कैंची भी है। पृष्ठ 168। कुछ बच्चों ने अपनी पट्टियों को चिपकाकर इस तरह का चार्ट बनाया। तुम्हारा चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। स्केल का उपयोग करके अपने चार्ट से मालूम करो। सबसे लंबे कागज की पट्टी की कुल लंबाई, रिक्त स्थान सेंटीमीटर है, इसलिए सबसे बड़ा सिर, रिक्त स्थान सेंटीमीटर होगा। सबसे छोटे कागज की पट्टी, रिक्त स्थान सेंटीमीटर है, यह सिर

बच्चों की तीन मंडलियों को दिखाया गया है। ये मंडलियां हैं खेल मंडली, बाग बगीचा मंडली और चित्रकला मंडली। इस चित्र में बच्चे अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं। दिया गया चपाती चार्ट अलग अलग मंडलियों में बच्चों की संख्या दिखाता है। यहाँ पर एक गोला है जिसके आधे भाग को पीले रंग से दिखाया गया है और ये खेल मंडली को दर्शाता है। इसके बाकी आधे भाग को दो बराबर भागों में बांटा गया है और इस गोले का दूसरा भाग बैंगनी रंग का है जो बाग बगीचा मंडली को दर्शाता है और इसका तीसरा भाग हरे रंग का है जो चित्रकला मंडली को दर्शाता है। पृष्ठ 169। चार्ट से हमें पता चला कि कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं, ख एक चौथाई छात्र बाग बगीचा मंडली के सदस्य हैं और ग एक चौथाई बच्चे चित्रकला मंडली के सदस्य हैं। अगर स्कूल में 200 छात्र हैं तो इस चार्ट को देखकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बताओ। खेल मंडली में रिक्त स्थान सदस्य हैं, बाग बगीचा मंडली में रिक्त स्थान सदस्य हैं और चित्रकला मंडली में रिक्त स्थान सदस्य हैं। बारिश में भीगना किसे पसंद है? अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद एक बच्चे ने दिया गया चपाती चार्ट तैयार किया। यहां पर एक चपाती चार्ट है, ये दर्शाता है जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं और छोटा वाला भाग नीले रंग का है, ये दर्शाता है जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। इसके साथ ही एक अन्य चित्र में तीन बच्चे दिखाए गए हैं। एक बच्चा बारिश में भीग रहा है और दो बच्चे छप्पर के नीचे बैठे हैं, साथ ही एक पेड़ भी है। चपाती चार्ट को देखो और बताओ। एक, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं? क आधे, ख एक चौथाई, ग तीन चौथाई। दो, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते? क आधे, ख एक चौथाई, ग तीन चौथाई। पृष्ठ 170। अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 है तो उन बच्चों की संख्या बताओ जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, रिक्त स्थान। जो बारिश में भीगना नहीं पसंद करते, रिक्त स्थान। चाय, कॉफी या दूध। बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके दो भाग हैं। पहले में लिखा है पीना पसंद है और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। आइए अब तालिका पढ़ते हैं। पीना पसंद है दूध, बच्चों की संख्या 20। पीना पसंद है कॉफी, बच्चों की संख्या 10। पीना पसंद है चाय, बच्चों की संख्या 10। कुल बच्चों की संख्या, रिक्त स्थान। यहां पर केतली से कप में चाय को डालते दिखाया गया है। तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 या 1/2 हैं। कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 या 1/2 हैं। एक चपाती चार्ट बनाकर चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वालों को दर्शाओ। इसी के साथ इस पुस्तक का 14वां और आखिरी पाठ स्मार्ट चार्ट अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अमिक्षा, तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले ना बारिश आई थी, तो उस टाइम ना हम पूरे फैमिली मेंबर्स बाहर बरामदे में बैठ के चाय पकौड़ी खा रहे थे। वो तो इतना अच्छा मौसम था, मजे आ गए।
2: हाँ, कितना अच्छा मौसम होगा ना, ऐसा मेरे साथ भी होता तो कितना मजा आता ना।
3: क्या बातें हो रही हैं भाई, चाय पकौड़ी खाई जा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
2: हाँ दीदी।
3: अच्छा, तो कभी कभी कोई कोई दिन इतना अच्छा होता है ना कि बड़ा मजा आता है ना।
2: हाँ।
3: हर दिन एक जैसा होता है
2: नहीं,
3: कभी कभी नहीं भी मजा आता है। चलो एक काम करते हैं, आज हम अपने बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बेस्ट नहीं थे उनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कैसा फील होता है, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे साथ आज रेडियो मधुबन पर बच्चों की दुनिया में कौन कौन मौजूद है, पहले ये भी तो जान ले।
4: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: और मेरा नाम जतिन है, मैं 10th क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम अमिक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
9: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
10: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ओके, तो सब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और भाई अगर मैं आप लोगों से, चलो पहले बेस्ट मोमेंट्स की बातें करते हैं ना। सबसे अच्छा दिन या सबसे ज्यादा मजा आया था, सबसे अच्छा लगा था, कोई ऐसा दिन याद है? वैसे तो बहुत सारे होंगे, एक नहीं होगा, बट उनमें से कोई एक जो आप आज शेयर करना चाहो, कौन बताएगा? हाँ बताओ
9: दीदी। मैं तो जब घूमने गई थी ना, और मैं मनाली गई थी, तो मेरे होटल में से पूरा एकदम पहाड़ों का व्यू आ रहा था, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था।
3: वाओ, कितना सुंदर लग रहा होगा ना।
9: हाँ, एकदम फॉगी फॉगी था, क्लाउड्स भी दिख रहे थे वहाँ।
3: हाँ, जब पहाड़ पर बादल दिखते हैं तो सच में बहुत सुंदर लगता है।
2: और दीदी, मैं जब अपने गाँव गई थी ना महाराष्ट्र, तब मैंने अपनी छत से रेनबो देखा था, तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था।
3: ओके, वंडरफुल, रेनबो तो सच में बहुत सुंदर लगता है।
10: और दीदी, मेरे को तो जब मेरी भांजी ने फर्स्ट टाइम मासी बोला था ना, वो मेरे को सबसे अच्छा मोमेंट।
3: फर्स्ट टाइम बोला था?
10: हाँ जी।
3: कितनी प्यारी सी टूटी टूटी आवाज में बोला होगा।
10: हाँ जी।
3: हाँ, बच्चे प्यार से जब कुछ बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फील होता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा या याद करना पड़ रहा है, अभी समय लग रहा है याद करने में?
4: दीदी, मेरी भांजी मुझे मामा नहीं बोलती, सीधा नाम से बोलती है, राघु इधर आइयो, ऐसे।
3: ओके, तो और आपका कोई बहुत अच्छा मोमेंट याद है आपको, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो? बताओ।
4: मैंने एक साथ दो रेनबो देखे थे।
3: दो रेनबो, वाओ, कहाँ?
4: मैं खेल रहा था, मैंने तब देखे थे।
3: तो आपका बेस्ट मोमेंट था लाइफ का? अभी तो बहुत सही लाइफ आगे बाकी है, अभी तक का यही था। ओके, ठीक है, दो रेनबोस तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। चलो और कोई शेयर करेगा?
7: दीदी, जब मैं महाराष्ट्र गई थी तो वहाँ पर मैं जू गई थी, जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स थे, मगरमच्छ भी देखा था हमने, बहुत बड़ा था वो।
3: अच्छा, डर नहीं लगा उससे?
7: नहीं, वो तो अंदर था ना, एक खड्डा कर रखा था, उसके अंदर था वो।
3: तो वो बहुत अच्छा लगा था आपको ना, एनिमल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सही बात है, एनिमल्स भी कमाल है, प्रकृति की रचना सच में।
5: और दीदी, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही छत्तीसगढ़ गया था, और वहाँ पर सेंटर की तरफ से हम वाटर पार्क घूमने गए थे, और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा।
3: क्या अच्छा लगा?
5: वाटर पार्क में बड़े वाली स्लाइड थी, और वेव पूल था, और स्लाइड बहुत सारी थी, वहाँ पे फुहारे भी थे, झरना वगैरह सब था वहाँ पे, तो वहाँ पे फुल मस्ती की हमने, खूब मजा आया।
3: अरे वाह, कोई भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है घूमने का ही हो, कोई और अच्छा फील हुआ हो, कभी स्कूल में, कभी घर पे, वो भी बता सकते हो, कुछ भी बता, फ्रेंड्स के साथ का बता सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन हो। जब आपको बहुत अच्छा लगा, कभी अच्छा नहीं लगा? कभी तो लगा होगा,
10: दोस्तों से लड़ाई होगी।
9: हाँ, वही मैं भी सोची थी, ये क्यों नहीं बोल रही है कल, इतना कूदम कूद कर।
3: बताओ बताओ
6: दीदी। एक बार मैंने मेरी बहन से शर्त लगाई थी कि लूडो में कौन जीतेगा वो 500 रुपए देगा। वो क्या हुआ, हमने दो बार मैच लगाया, दोनों में जीत गई मैं, और 2000 रुपए उसको मेरे को देने पड़ गए। उसको वो हार गई
3: दोनों बार
6: तब, मैं जीत गई
3: तब बहुत अच्छा लगा था
6: हाँ, तो उसने मेरे को 1000 रुपए दिए थे
3: ओके
6: पर दीदी वो बस टिकने वाला थोड़ी थे वापस उसने ले लिए
3: ये तो दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ ऐसे हो जाता है ना
6: होता है
3: होता है ओके
10: वो कहते हैं ना पैसे हाथों की मैल होते तो पलक के हाथों से मैल उतर गई
6: पर अभी तो है ही नहीं
3: अभी तो आई और आते ही चली गई ओके और इसके अलावा जब आपने कभी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ मोमेंट्स स्पेंड किए हो बहुत खुशी हुई हो ऐसा कोई दिन याद है घूमने वाला तो हमने शेयर किया और भी तो स्पेशल कुछ होगा बहुत सारे हैं उनमें से कोई भी शेयर कर सकता
10: दीदी मेरे पापा पहले मतलब माउंट आबू ही रहते थे और हम हरियाणा रहते थे तो एक बार मेरे बर्थडे के टाइम पे पापा ने सरप्राइज दिया था तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि हाँ रात को 12 बजे एकदम पापा आ गए सामने हम ऐसे बेड पे बैठे थे वो इतना अच्छा लगा कि हाँ एकदम ऐसे पापा कैसे आ गए तो बहुत एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वो फीलिंग
3: नहीं ये तो बहुत स्पेशल बात है सच में जब आपके पेरेंट्स हो या आपके अपने हो अचानक से बहुत समय बाद मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है
9: दीदी एक बार ना मैं क्लास में कुछ सुना रही थी और मेरी क्लास के सारे बच्चे हंस दिए तो मुझे दूसरों को खुश देखकर बहुत खुशी हुई
3: ओके
7: एक बार है ना मैं बहुत नाराज थी तब मेरे नानी ने बोला कि चल कहीं घूमने चलते हैं मैं गुस्से में थी मैंने बोला मुझे नहीं जाना तो बोले क्यों मैंने बोला आपने तो गुस्से में दिलाया तो फिर मेरी नानी ने पता नहीं क्या किया फोन पे है ना मेरे भाई को फोन किया और मेरा भाई इधर आ गया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा
3: सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते हैं ना कभी कभी ऐसे प्लेजेंट वाले जब कोई अपने घर वाले या अचानक से मिल जाते हैं ओके
7: दीदी जब मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी बहन थी ना तो वो एक दिन काम कर रही थी तो मेरे पास बैलून थे बहुत सारे थे तो उसमें से मैंने एक फुला के उसके कान में फोड़ दिया
3: उसके कान में फोड़ दिया अरे बाप रे जोर से चिल्लाई होगी ना
7: तो डर गई बोली क्या फोड़ा मैंने बोला बैलून
3: तो बहुत मजा आया था आपको शैतानी करने में भी मजा आता है
9: दीदी एक बार ना मैंने नकली सांप लिया था और लोगों पे फेंका था
3: उसमें बड़ा मजा आया था
9: उसका तो एक वीडियो भी पड़ा है मेरे पास कि कैसे एक दीदी चिल्लाई थी
3: शैतानी में तो सबको ही बड़ा मजा आता है लग रहा है मुझे
6: मैं तो ऐसी बैठी नहीं मुझे
5: दीदी जब मैं हरियाणा जाता हूँ ना वहाँ पे मैं अपने भाइयों के साथ मेरे बुआ के बच्चे हैं तो उनके साथ में खेलने में बहुत मजा आता है और साथ में मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं वहाँ पे उनके साथ फुल ऑन मस्ती चलती है हमारी शाम के टाइम पे साइकिल लेके पूरे मोहल्ले में घूमते हैं हम
3: तो बड़ा मजा आता होगा
5: हाँ मस्त शाम का टाइम मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वहाँ पे घूमने में काफी मजा आता है
3: हाँ वैसे कजिन्स के साथ सच में जब मिलना होता है और एक साथ बैठ के कुछ खेलते हैं घूमते हैं बाहर वो भी बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं
5: और हम घर पे भी खूब शैतानी करते हैं
3: हाँ मिलके तो और
5: हाँ
3: साथ मिलके और मजा आता है ना कुछ करने में
5: और क्या
4: दीदी मेरे दोस्त ने ना हम उसके घर के मतलब हम ना उसकी छत से वो पटाखे जला के फेंक रहे थे तो ना उधर सिलेंडर फटा था उसने पटाखा जला के उसके ऊपर फेंक दिया मैंने बोला अगर सिलेंडर फट गया तो उस दिन फटा तो नहीं लेकिन
3: लेकिन
6: क्या
3: वैसे देखो मस्ती करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसी वाली मस्ती नहीं करनी चाहिए पता है कितना डेंजरस हो सकता है
4: हाँ पर जला नहीं था उसके बाद उसने
7: अगर वो जल जाता तो
3: जला तो नहीं कोई बात नहीं अपना एक्सप्रेस करने का सबका तरीका है कैसे भी आप बोल सकते हो थोड़ा रुक रुक के भी बोल सकते हो लेकिन मस्ती करने के वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस मस्ती से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अपने घर में ही किसी का नुकसान कोई करना चाहता है क्या
5: नहीं
3: नहीं ना तो अपने घर वालों को तो और ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा और रिस्की जहाँ पे डेंजर हो वहाँ अपने फ्रेंड्स का भी साथ नहीं देना है ना
4: नहीं दिया था वो खुद ही जला रहा था
3: ना राघव तो राघव ने नहीं दिया जैसे राघव ने अपने फ्रेंड का साथ नहीं दिया वैसे और किसी को भी अपने फ्रेंड्स का साथ ऐसे डेंजरस काम में कभी नहीं देना है क्योंकि बाद में जाके ना वो फ्रेंड ही आपको कहेगा तुमने मेरे को क्यों नहीं समझाया मेरे को तुमने क्यों सपोर्ट किया तुम मेरे अच्छे दोस्त ही नहीं हो उस समय तो लगेगा बड़े अच्छे दोस्त तो साथ दे रहे हो बाद में कहेगा नहीं हो तुम अच्छे दोस्त मेरे को रोका क्यों नहीं तुमने या मेरे को ऐसे क्यों करने दिया ऐसे क्यों साथ दिया इसलिए कभी भी गलत काम में या रिस्की काम में फ्रेंड्स का साथ नहीं देना है, जैसे राघव ने नहीं दिया।
6: दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी दीदी ने उस दिन नया फोन लिया था, तो उसने रखा था वो पता नहीं शायद तक वॉशरूम या फिर कहीं गई थी, तो मैंने क्या किया उस पे ऐप डाउनलोड किया और शायद तक उसकी मतलब ऐसे वो मतलब उस पे लगाया जैसे उसको कॉम्बो उड़ गई हो, और वो फोन मैंने उल्टा रख दिया। और फिर जब वो आई ना मैंने बोला बहन मेरे हाथ से फोन गिर गया, उसने फोन उठाया नहीं कहा तो पूरी डिस्प्ले गई, उसने जो मेरे को धोया मैं तो पूरी नाराज हो गई, मैंने बोला फोन दे, उसने बोला ले फोन, अब क्या करना है जब पूरा तोड़ दिया। फिर मैंने जब उसको हटाया डिलीट किया बोलती सो
3: मतलब ऐसा ऐसी मस्ती की कि खुद की खुद की हालत खराब हो गई। हाँ जतिन कुछ कहना चाह रहे हैं
5: दीदी। और जब मैं हरियाणा होता हूँ ना तो वहाँ पे सर्दियों का टाइम था और वहाँ पे मैं और मेरे दादा दादी हम डेली खेत में जाते थे घूमने के लिए, मस्त ठंड में पूरा कोहरा होता है वहाँ पे, और हमारे घर पे गाय भैंस भी है तो वो चारा लेने जाते हैं और मैं साइकिल पे जाता हूँ खेत में, मस्त लंबी सारी सड़क है वहाँ पे, मस्त साइकिल चलाता हूँ फुल ऑन,
3: बड़ा मजा आता होगा ना?
5: बहुत मजा आता है ठंड के टाइम पे वो भी।
3: हाँ दादा दादी नानी नानी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है कई बार ऐसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करो तो। अनुष्का
7: जब राजयोगा किड्स था ना तो हम माउंट आबू गए थे लास्ट डे पे, तो वहाँ पर मेरे भाई एक दुकान में थे, मेरे मौसी वगैरह सब दुकान में थे, मेरे भाई ने एक नकली सांप उठा के मेरे ऊपर फेंका, मैं तो डर गई थी। फिर रात में मैंने उसी के सर पे रख दिया, बाद में उसने नीचे से झुकाया तो बोला सांप कहाँ किसने रखा मेरे सर पे,
3: वो भी डर गया।
7: नहीं मैंने तो उसके ही भाई के ऊपर नम लगा दिया।
3: बताओ जिसने प्रैंक किया उसके साथ ही प्रैंक कर दिया। अच्छा बहुत सारी मस्ती और अच्छे मोमेंट्स तो हमने बातें की, क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हुए हैं लाइफ में जो आपको बहुत बुरा लगा हो या हर्ट हुआ हो या दुख हुआ हो या आप रोए हो, आपको ऐसा लगा होगा नहीं ये नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ भी हुआ है?
9: दीदी एक दिन ना ये किड्स कार्निवल चल रहा था ना तो मैं फोन अपनी दोस्त के रूम पर रख के गई थी और मेरे पापा को बोल दिया था फोन करके कि पापा मैं ना आ जाऊंगी घर आप फोन मत करना, लेकिन जब मैंने ये बोला तो फोन ही म्यूट पर था तो आवाज ही नहीं गई और मैंने भी नहीं ध्यान दिया। फिर मैं ना प्रोग्राम देखने गई ना तो प्रोग्राम तो 1 बजे तक का था लेकिन 2 बज गए और खाना खाते खाते 2:30 बज गए, तो उसमें ना फिर मैं जब गई ना मोबाइल लेने तब मैंने मोबाइल में देखा कि पापा के 26 मिस कॉल आए थे और 27वां चल रहा था, वो मैंने उठाया ना तो पापा ने बोला अभी के अभी घर पे आ तेरी चमड़ी उतार दो, तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं मर जाऊंगी घर जाऊंगी। तो
3: अब तो बहुत अच्छे से क्लास लगे 26 मिस कॉल बहुत होते हैं। हाँ भाई पेरेंट्स से कभी कभी ठीक से कम्युनिकेट अगर ना हो पाए घर वालों से तो वो डर भी जाते हैं ना, उनको लगता है फिक्र हो जाती है बहुत ज्यादा।
9: मेरे पापा तो एक एक मिनट पर फोन कर रहे थे इसलिए 26 कॉल हो गए थे।
3: हाँ क्योंकि उनको समझ में नहीं आया ना बात आपकी, हो नहीं पाई उनको बात नहीं हो पाई तो फिर उनको लगा कि भाई नहीं आई अभी तक तो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल करें कि कोई तो कॉल उठा ले।
9: वो कह रहे थे कि अगर तूने मजाक में कह रहे थे कि अगर तूने फोन नहीं उठाया होता ना तो मैंने पुलिस को कम्प्लेन कर दी होती।
3: पेरेंट्स के साथ घर वालों के साथ कम्युनिकेशन ठीक रखना तो बहुत ही जरूरी है।
7: और दीदी है ना जब दीदी रेडियो का बर्थडे था ना तब है ना मतलब हम लोग सब डांस कर रहे थे ना प्रैक्टिस कर रहे थे, तब है ना कृष्णा दीदी ने बोला था कि सुबह डांस है, मैंने बोला सुबह तो मेरी एग्जाम है, तो उन्होंने बोला कि फिर कैसे होगा, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं फिर मैं नहीं करती, तब मुझे बहुत बुरा लगा था।
3: बहुत बुरा लगा था ना, प्रैक्टिस भी करी सब करा बट परफॉर्म नहीं कर पाए। बुरा तो लगता है बहुत, आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए पर नहीं कर पाओ तो भी बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद तो आपने कितने सारे डांस कर लिए होंगे।
7: उसके बाद तो मैंने बहुत,
3: कभी कभी बुरा लगता है लेकिन आगे आने वाली चीज उससे और अच्छी भी होती है, है ना, ऐसा भी होता है क्योंकि आगे तो और मस्ती करी है आपने मुझे पता है। साथ साथ में मिलके खूब सारे डांसेस करे हैं। और किसी को शेयर करना है कोई जिसमें आपको बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, कोई भी ऐसी बात, और आपने उसको कैसे एक्सप्रेस किया?
10: दीदी एक बार मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई थी, वो लड़ाई तो मतलब छोटी सी बात पे हुई थी कि हाँ कि मैं ये कपड़े डालूंगी तो दूसरे कपड़े डालियो, इस बात पे लड़ाई हुई थी बस। वो बात इतनी बढ़ेगी कि हाँ जा यहाँ से, तू यहाँ क्यों रह रही है, तू मेरी बहन ही नहीं है, तू जो कहीं और से लाए थे, तो फिर उस टाइम हमारी इतनी लड़ाई होगी, हमने 3-4 दिन तक बात ही नहीं करी, तब बहुत बुरा लगा था।
3: तो लड़ाई से बुरा लगा या बात नहीं हुई इससे बुरा लगा?
10: बात नहीं हुई इसलिए बुरा लगा, एक ही दिन लड़ाई हुई ना, दूसरे दिन तो फिर लड़ाई ही नहीं हुई।
3: और फिर क्यों नहीं बात करी आप दोनों ने, किसी ने शुरू नहीं किया उस टाइम में बात करना?
10: मैंने ट्राई तो करा कि हाँ मान जाए, मतलब उसको मतलब 5-4 मिनट से हाँ ले, खाना खा ले, पानी पी ले, जूस पी ले, कहती मक्खन मत लगा, करनी मेरे को तेरे से बात।
3: और फिर ठीक कैसे हुई लड़ाई?
10: फिर मैंने कहा मम्मी बोलो ना इसको, फिर कहती हाँ चला दे बात कर लूंगी।
3: हाँ कभी कभी पता है क्या, लड़ाई से ज्यादा बुरा इस चीज से लगता है कि आप उनसे, जिनसे आपके दोस्त हैं या भाई बहन, उनसे बात नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं बुरा लगता कि लड़ाई हो गई है, उसने मुझे ऐसा बोला।

0: ऐसा किया इसलिए बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो भाई एक बार बोल दिया, एक बार हो गया। उसमें कई बार दोनों की गलती होती है, एक जने की गलती भी नहीं होती है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको याद कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी समझने वाली बात है कि बुरा लगा क्यों, उसने बोल दिया इसलिए, या मेरे को उनसे बात करने का मन कर रहा है इसलिए, है ना। और उस बुरे करने को हम कभी कभी खुद भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन कर रहा है बात करने का तो हम जाके बात कर सकते हैं, है ना।
1: दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी प्री बोर्ड चल रही थी तो उसमें क्या हुआ, हमारा मैथ का पेपर था ना, तो उसमें मेरे कम नंबर आए थे, जैसे बहुत बच्चों के आए थे। सर ने उस दिन मेरे को इतना डांटा, इतना डांटा, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, और मैं मैथ में ही कमज़ोर हूँ, ये सर जानते हैं पूरी बात। हर एक उसमें मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगी पर मैथ में कभी नहीं लेके आऊँगी।
0: तो फिर बुरा लगा इसलिए,
1: हाँ
0: नंबर कमाया इसलिए बुरा लगा, कि सर ने डांटा इसलिए बुरा लगा।
1: वो तो सर ने डांटा तो इस वजह से बुरा लगा।
0: लेकिन सर तो आपका अच्छा चाहते होंगे ना कि नंबर आ जाए थोड़ा अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट की वजह से इसका परसेंटेज कम ना हो जाए, है ना। क्योंकि सब में अच्छा स्कोर करो और एक की वजह से कम हो जाए तो उससे पूरी परसेंटेज कम हो जाती है कभी कभी, है ना। तो मैं भी सर चाहती हूँ कि भाई इतनी अच्छी स्टूडेंट है, अच्छे नंबर आते हैं सब में, एक सब्जेक्ट की वजह से क्यों रह जाइए पीछे, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट बुरा लगता है,
1: दीदी मैथ मेरे
0: बुरा लग
1: दिमाग के
0: सकता
1: ऊपर
0: है।
1: पैसे जाती है।
0: कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ नई टेक्निक्स आप सीख लो, तरीका सीख लो तो नीचे से जाने लगे थोड़ा। चलो और किसी को शेयर करना है, किसने किसने। हाँ अनुष्का।
2: दीदी हमारे क्लास में न्यू मैम आई, देखने में तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में हमको पता चला वो तो बहुत खड़ूस है, कॉपी में जो भी है ना सही होगा उसको भी गलत कर देगी। बाद में बहुत डांटी, उस टाइम मेरे भी कॉपी चेक हुई तो उसमें सही पे घेरा लगा दिया, और उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा, डांटा भी था।
0: डांटा भी था जबकि सही था
2: वो
0: आपका
2: नहीं
0: आंसर।
2: मैम, अभी तो वो चली गई, अभी तो दूसरे स्कूल की थी इसीलिए वो।
0: अच्छा चली गई तो अच्छा लगा। चलो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई नया व्यक्ति आता है और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज्यादा होते हैं ना टीचर्स, तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरे नंबर क्यों यहाँ पे काट लिया, गोला ऐसा क्यों बना दिया यहाँ पे, ये डांट दिया इसलिए ज्यादा बुरा लगता है ना।
2: और दीदी हमारे स्कूल में एक सर है, उनका नाम श्रीधर सर है, वो है ना वो भी इसकी जो टीचर है ना उनकी तरह है, सही होगा फिर भी उसके मार्क्स काट देते हैं, और अगर 100 out of 100 आ रहे हैं ना तो वो फिर 90 देते हैं, 10 marks है। वो बोलते हैं राइटिंग के 5 marks काटे हैं और क्वेश्चन गलत लिखा है इसीलिए उसके 5 marks काटे हैं।
0: अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल है भाई, राइटिंग के मार्क्स
2: फिर जिसके
0: तो
2: 100 आते हैं ना तो वो तो बेचारा बहुत रोता है।
0: 100 आते हैं तो रोता है क्यों?
2: 100 फिर वो 90 देते हैं ना इसलिए।
0: ओ 100 के 90 कर देते हैं इसलिए। हाँ वैसे 100 थोड़ा कम भी होते हैं, मगर
2: 99 तो आते
0: आ
2: हैं।
0: सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन राइटिंग पे ध्यान देना तो अच्छी बात है।
3: दीदी अभी मैं MP में गया था तो वहां पे सुबह रूम से बाहर निकला, रूम से निकलते हुए पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से ही वो हाथ लगा कुंडी में छिल गया सुबह सुबह ही, और उसके बाद से पूरा दिन कभी पैर में लग रही है, कभी घुटने पर लग रही है, कभी अंगूठे पे, पूरा दिन लगती है मेरे, उसके बाद 2-3 दिन और भी
0: हाँ ये कभी कभी ऐसा दिन ही हो जाता है ना कि
3: दिन ही
0: यहाँ
3: हो जाता है।
0: यहाँ लग रही है, वहां लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, तब बड़ा इरिटेशन हो जाता है, फिर क्या हो रहा है, ये कैसा दिन है ये, है ना।
3: हाँ दीदी कभी पैर पे लग रही है, कभी हाथ पे, कभी टांग पे, तो वो सबसे खराब मोमेंट था मेरा,
0: खराब दिन होता है,
3: सबसे खराब दिन वही गया था मेरा।
0: वो हो जाता है सच में, मुझे लगता है हम लोग कभी कभी एक चोट लगती है, दूसरी चोट लगती है, तीसरी चोट लगती है, एक ही दिन में लग जाती है कभी कभी तो।
2: और दीदी जहाँ चोट लगती है वहां पट्टी बांधते हैं, फिर दूसरी जगह लगती है फिर वहां पट्टी बांधते हैं, फिर उस पर ही और एक बार
0: उसी पे
2: लगती
0: फिर से
2: है।
0: चोट लग जाती है,
2: हाँ
0: बड़ा बुरा होता है ये तो। चलो राघव को कभी बुरा नहीं लगा किसी चीज का, है ना, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है राघव। चलो अब हमारा वक्त हो गया है कि गुड बाय कहें अपने दोस्तों से, क्योंकि हमने कर ली हैं बहुत सारी बातें आज, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, बहुत बहुत अच्छी भी लगती हैं, और कई बार बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रोना बुरा नहीं है, किसी से कहना बुरा नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस जरूर करने चाहिए अपने इमोशंस, क्या।
1: दीदी मैं हूँ ना, मतलब मेरा दोस्त जब मैं फिफ्थ में आया था तो ना एक बच्चा था वो, मतलब वो हर बार फेल होता था, तो वो इस बार पास हो गया तो मैम ने उसको मेरे साथ बिठा दिया कि बोला कि ये तो पूरी क्लास में किसी के समझ में नहीं आता तुम समझ, तो वो ना मतलब ना मैंने उसको पूरा पढ़ाया, उसके बाद वो अगले दिन फिर भूल गया। और एग्जाम में वह ना वो उस क्लास में बैठा था जिस क्लास में ना मैम आंसर बता रहे थे, मतलब एक दो बच्चों को बता रहे थे, तो भी वो फेल हो गया और फिर वो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगा था।
0: कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी बुरा लगता है, दूसरों की परिस्थिति देखकर, उनके देखकर कि वो कुछ नहीं अचीव कर पाए जो वो करना चाहते थे, बुरा लगता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं और राघव, अगर मान लो किसी के लिए बुरा लग रहा है तो?
1: दीदी मतलब हम उसको पढ़ा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं अगर कुछ नहीं आ रहा तो। अगर दूसरे हमारी क्लास के दूसरे बच्चे हैं ना, वो तो बोलते हैं कि ये पढ़ के मुझे जल्दी से सुना दे, वो समझाते नहीं है कुछ भी, तो अगर उसको समझ नहीं आ रहा होता है
0: तो हम उसको समझा सकते,
1: हम उसको समझा सकते हैं कि वो कैसे पढ़े। हमारी क्लास के दूसरे बच्चे हैं ना, बोलते हैं ये पढ़ के जल्दी से मुझे सुना दे, वो समझाते कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो जब सुनाने जाते हैं तो उसको एक दो चीजें याद नहीं रहती।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है राघव कि आपने उसकी हेल्प करी। और ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि हम गिव अप नहीं करें, उसको हेल्प करते रहें और उसको समझाएं और कुछ तरीके नए नए क्रिएटिव अपनाएं ताकि उसकी मदद कर सकें। लेकिन पता है दूसरों के लिए जब हमें बुरा लगता है या फिर हम उनके कहते हैं ना उनके जूतों में पांव रख के सोचते हैं तो उसे एम्पथी कहते हैं।
1: बस एक और बार एक बुरा लगा था, दो तीन बार लगा, दो बार बुरा लगा था मुझे,
0: दो बार बुरा लगा था।
1: और देखो जब मैं पहले स्कूल में था, उसके बाद जब मैं दूसरे स्कूल में, तो पिछले स्कूल के दोस्त छूटे, फिर दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल में आया तो वो वाले छूटे भी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था।
0: फ्रेंड्स को मिस करते हैं, याद करते हैं, छूट जाते हैं तो भी बुरा लगता है। तो बिल्कुल, हालांकि आजकल साइंस के साधन हैं जिससे कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन आप लोग बच्चे हो तो बहुत ज़्यादा भी शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्त हमें कभी कभी दूर के भी छूट भी जाएं तो भी क्लोज रह सकते हैं लाइफ में। चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं इस एपिसोड में अभी, है ना? आप लोगों ने सबने शेयर किया है, कुछ छोटा सा है तो शेयर कर दो फटाफट।
3: हाँ दीदी, एक छोटा सा ही मोमेंट है जो मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगा, क्योंकि जब मैं हरियाणा में था तो मैं अपना हमारी छत पे ही पतंग उड़ा रहा था, तो छत पे क्या कांटे वगैरह थे, तो वो मैंने जूते पहने हुए थे, तो क्या हुआ कि एकदम से तीन चार काटे पैर में घुस गए। बड़ा इरिटेटिंग लगा, छोटे आते हैं ना।
0: ओके, ठीक है, सबको चोटें लगी तब बहुत बुरा लगा, ठीक है, और भी बस इमोशनली बुरा लगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमें हर्ट करती हैं लाइफ में, देन अगेन हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी चीज़ों को छुपाना या अंदर रखना नहीं चाहिए, बाहर एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि अगर आपको भी कभी बुरा लगा या कभी खुशी हुई तो उसको एक्सप्रेस करें, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे बोल के, चाहे किसी से शेयर करके, है ना, चाहे किसी और माध्यम से, लेकिन कहें जरूर। फिलहाल चलिए लेते हैं इजाजत और करते हैं अपने नन्हे दोस्तों से गुड बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल संसार में। आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर अजय शुक्ल, जो एक व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं। आज हम बच्चों की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, शिक्षा और उनकी रुचियों को पोषित करने के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कर्म है। यह न केवल उनके विकास में सहायक है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में भी मदद करता है। आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आएगा।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आइए, बाल संसार के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नए बिंदुओं पर बात करेंगे, जो हमारे से पहले जिन बातों को हमने सीखा बचपन में, सही दिशा के बारे में बोध होना, ये सारी बातों को अब आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम बच्चों के विकास के ऊपर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और इसके साथ में आज हम लोग जो है कुछ संस्कारों के बारे में बात करेंगे, शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के बारे में बात करेंगे, आज़ादी और जिम्मेवारी दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखें, इस विषय को लेकर बात करेंगे, और आत्मिक जागरूकता कैसे हो बच्चों में, ये सारी बातें आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी उपस्थित हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: बहुत आनंद में हूँ। ओम शांति भाई जी।
1: ओम शांति। तो आइए, बच्चों को आज़ाद यानी स्वतंत्रता देने का सही तरीका क्या है और इससे उन्हें क्या लाभ हो सकता है?
2: जी, आत्मा की स्वतंत्रता के संबंध में सभी लोग जानते हैं, और जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा के रूप में कार्य करती है, और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा जतन करती रहती है। कई बार वो विद्रोह भी करती है, और कई बार सिस्टम के दबाव के अनुसार कुछ समय वो चलती है, और फिर उसे लगता है कि जब मुझे अपने कार्यों की स्वतंत्रता का अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं उस स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए अपनी कला को विकसित करने का प्रयास करूँगी। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि मनुष्य सदा से ही स्वयं को स्वतंत्र रखते हुए गतिशील होना चाहता है। बंधन और संबंध के संदर्भ में जितनी भी बातें आती हैं, बंधन उसे वहाँ तक अच्छा लगता है जहाँ तक उसे सपोर्ट मिल रहा हो, गाइडेंस मिल रहा हो, या किसी दिशा में बढ़ने के लिए सतत अभिप्रेरणा मिल रही हो। लेकिन वह संबंध हमेशा स्वीकार करता है, क्योंकि संबंधों के बीच में एक सिचुएशन होती है जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो अनकंडीशनल प्रेम की स्थिति में जो आत्मा होती है, तो उस समय उसको यह एहसास होता है कि अभी मुझे गतिशील होने में जितना भी सपोर्ट मिलेगा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमेशा मींस और एंड्स के बीच में कोरिलेशन स्थापित करने वाली जो सिचुएशन होती है, वो किसी भी स्वतंत्र इकाई में जब गतिशील होती है तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा के द्वारा या मनुष्य के द्वारा या बच्चों के द्वारा जब भी किसी कार्य को करने की पूर्णता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, तो वो स्व की स्वतंत्रता के प्रति ज़्यादा संचेतना से भरी होती है। उसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम किसी अभिरुचि को संपादित करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि इंटरवेंशन हो, लेकिन कोई इंटरफियर ना करे। इंटरवेंशन में बहुत सारी संभावनाएं या फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके बातचीत होती है, लेकिन जब कोई इंटरफियर करता है तो हम

0: प्रेशर आ रहा है या टेक्निकल प्रेशर आ रहा है या रिसर्च ओरिएंटेड कोई प्रेशर आ रहा है, तो वो उस प्रेशर के अनुकूल अपना व्यवहार करने का प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा के द्वारा या इंसान के द्वारा कोई व्यवहार संपादित हो रहा हो, तो जो वो है, जो इंसान निश्चित रूप से उस कला के साथ बढ़ना चाहता है, उसकी उच्चता को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वह अपनी ओरिजिनलिटी से किसी के अनुसार अर्थात किसी की अपेक्षा और इच्छा के अनुरूप ढलने का प्रयास करता है। यहाँ बाह्य तौर पर लगता है कि जो गाइड कर रहा है उसका प्रेशर है, लेकिन वहाँ जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसमें भावनाएँ और अपेक्षाएँ आहत होती हैं। इमोशंस तो हर्ट होती है, लेकिन जो बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल न करने का जो दबाव होता है, ऐसी स्थिति में वो जो कार्य हो रहा है वो छत विछत हो जाता है। वो पूरा तो होता है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती है। जी
1: जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं, बाल मन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है। हमें बच्चों की गहराई को समझने की ज़रूरत होती है और उन्हें फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को खुला महसूस करेंगे और अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए उनको जो है आज़ादी दी जानी चाहिए। दूसरा, बच्चों को आज़ादी के साथ साथ हमें उन पर निगरानी भी रखना है, अगर कहीं वो चूक रहे हैं तो उन्हें गाइड भी करने की ज़रूरत है। वैसे स्कूल में बच्चे किताबों से ही पढ़ सकते हैं, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीचर इसलिए रहते हैं तो गाइड करने के लिए। कोई बात बच्चा नहीं समझ पा रहा, कोई शब्द उसके लिए नया आ रहा है, तो उसमें टीचर उनको हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए वो चीज़ें टीचर्स वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो आइए, ऐसे ही एक और सवाल आता है, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने के लिए कौन कौन से घरेलू कार्य में शामिल किया जा सकता है? डॉक्टर अजय शुक्ला, इसके बारे में बताइए।
0: जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि जिम्मेदारी के साथ में एक और गुण हमारे पास में होता है, वो है किसी कार्य के प्रति अकाउंटेबल होना। कई बार जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा के साथ में जोड़ के देखा जाता है और ये कहा जाता है कि बड़ों ने हमको असाइनमेंट दिया है, भले वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में हो सकता है, घर की कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के संदर्भ में हो सकता है, वहाँ बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें कई बार ये होता है कि हम केयरिंग तो कर रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों की अच्छी नर्चरिंग करते हैं, अच्छी पेरेंटिंग उनके द्वारा होती है, उनके व्यवहार में वो लविंग सिचुएशन को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि जहाँ, जैसे उदाहरण के लिए अगर फाइनेंशियली कोई डीलिंग की बात आती है, तो माता पिता कहते हैं कि नहीं, अभी आपने कहा कि स्कूल में फ़ीस जमा करनी है, तो ये फ़ीस जो है हम लंच के टाइम में ऑफिस से छुट्टी लेके जमा करने के लिए आएंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चों को हम दे देते तो उनके अंदर पैसे को केयर करके और स्कूल तक लेके जाना और उसे सावधानी पूर्वक जमा करना और फिर अपने गार्जियन को इन्फॉर्म करना, ये सारी प्रोसेस हो सकती थी। ठीक है, इस बात को सुनने के बाद आपका ये लॉजिक आ सकता है कि भाई हम अगर 10,000 रुपये फीस जमा करनी है और 10,000 रुपये उनके द्वारा गुम गए या किसी ने छीन लिए, ऐसी स्थिति में हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 10,000 रुपीज़ आज की बात नहीं है, पुराने समय में तो 200 रुपये 500 रुपये फीस होती थी। उस समय भी गार्जियन के मन में डर था कि नहीं, 500 रुपये, ठीक है, रुपये का मूल्य अभी उस समय ज़्यादा था। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में है। कुल मिला के ये कि अगर हमने बच्चे को 100 रुपये दिया है तो हमें लगता है कि ये बच्चा खर्च भी करे और शाम को हमको हिसाब भी दे दे। ऐसी स्थिति में जो फाइनेंस है उसके प्रति संचेतना हमारी ज़्यादा रहती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आज आपने कुछ पैसे दे के बच्चों की फ़ीस जमा करा दी और बाई चांस मानिए कि वो पैसे डिस्ट्रॉय हो गए या किसी ने छीन लिए, लेकिन वो बच्चे के साथ में एक लर्निंग आउटकम आएगा। आप उसको बता पाएंगे कि आज ये 500 रुपये 1,000 रुपये आपसे छीन लिए गए या गुम गए या किसी कारण से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो जो सिचुएशन आज क्रिएट हुई है इसमें अगर हम लर्निंग आउटकम्स निकालेंगे तो जिम्मेदारी और जो अकाउंटेबिलिटी है उसका एहसास भी हम करा पाएंगे और आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद में आप उनको जिम्मेदारी देंगे ही, तो उस समय कोई बड़ा नुकसान हो उससे हम बच जाएंगे। तो यहां पर सैंपल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ पैसा अगर आप उनको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल जमा करना है, अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार कुछ प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में आप वहां पर चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कई बार उनसे आप कुछ मंगवाते हैं। ठीक है, आपने कुछ वेजिटेबल्स मंगाए, कुछ फ्रूट्स मंगवाए, हो सकता है कि वो जब लेके आए तो रेट उन्होंने नहीं बार्गेनिंग किया होगा या वेजिटेबल्स वो लेके आए तो क्वालिटी वाइज नहीं लेके आ पाए, तो इस प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक न एक दिन शुरुआत तो हमको करनी है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फर्ज बनता है कि छोटे छोटे

0: प्रयास अगर हम करते हैं, मैं अभी एक वर्कशॉप कर रहा था छतरपुर में, वहाँ पर सभी जो पढ़ने वाले लोग बैठे हुए थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और मुझे कहा गया कि इनके साथ में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को लेते हुए कोई एग्जाम्पल जरूर आप दीजिएगा ताकि इनके जीवन में वो बात बैठ जाए। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि एक सोशल इवेंट पर आपको कहीं बुलाया गया है और आपने जाके उस इवेंट के ओनर को बोला कि भाई कोई वर्क अगर हो तो मुझे आप शेयर करें, तो उन्होंने कहा कि गर्मी का समय है, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कुछ मटके आपको लेके आने हैं और उसके लिए कुछ मनी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। अब ये वर्क करते समय अचानक क्या हुआ कि आप आते हैं और किसी कारण से गाड़ी से डैमेज होता है, कुछ डेसिंग सिचुएशन हो जाती है और मटका फूट जाता है। अब वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी मेरी कि भाई मैं एक को जिम्मेदारीपूर्ण कार्य को करूँ और इस कार्य के होने या उसकी सफलता का जो संकेत है, जो परिणाम है, वो भी शेयर करूँ, लेकिन उसके पहले ये घटना घट गई। ऐसी सिचुएशन में आप ब्लैंकली अगर जाके कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी थी वो मैं कर तो रहा था और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और पुनः मुझे पैसा चाहिए, तो वहाँ पर हमारी जो थोड़ी सी लापरवाही है वो हाईलाइट होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि ये ठीक है कि वो मटके टूट गए हैं तो आपने उसका जो पीसेज है वो ला के दिखा दिया कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी बजाय हम पैसा अरेंज करके और वहाँ व्यवस्था को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं और चीज़ें जो सिस्टमेटिक वहाँ चल रही थी और लोगों को गर्मी के समय ठंडे पानी या मटके के पानी की आवश्यकता थी वो पूरा हो जाता। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये सारी प्रोसेस करने में अगर आपने इस चीज़ को फुलफिल कर दिया और मैनेज करके सारा चीज़ें वहाँ जमा दी, तो उसमें बाद में एक फीडबैक शेयरिंग हो सकती है, या आपकी इस इंसिडेंट घटना को किसी ने देखा हो और वो बाद में शेयर करते कि भाई इनसे ये गलती हो गई थी या किसी ने डैश इनको गाड़ी पर मार दिया था तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और समय पर इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जिम्मेदारी के साथ में हमने जवाबदेही का भी निर्वहन किया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम परिवार में बच्चों से करा सकते हैं और उन्हें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस से अवगत करा सकते हैं कि फिनेंस के साथ साथ में हम किसी वर्क प्रोसेस को करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेजर प्रिकॉशंस रखना चाहिए, और कुल मिला के हमारी ये सावधानी भविष्य के लिए एक गाइडलाइन के रूप में हमें मदद भी करती हैं। जी
1: डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर बात करेंगे और इसी विषय को लेकर हम लोग का कुछ नई बातें आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें शिक्षा और ज्ञान के महत्व के बारे में समझने के कुछ नए तरीके के बारे में सुनेंगे। आप सुना है बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और बड़ी अच्छी बातें आपने सुनी ब्रेक के पहले, और अब जो है ब्रेक के बाद आप सभी को फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी से जोड़ना चाहूँगा मैं। शिक्षा और ज्ञान के महत्व को बच्चों को समझाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने जा सकते हैं या उनको बताए जा सकते हैं?
1: बहुत अच्छी बात है। जीवन में जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं
0: जी,
1: तो उस स्थिति में हमारा एक फर्ज बनता है कि ज्ञान को हम सही राह पर, ज्ञान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये वेद वाक्य है, तो श्रद्धा को कैसे इनक्रीज किया जाए और वो शिक्षा को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी हम उसका अनुकरण कर पाएं, उसके लिए हमें उसके बोध तक पहुँचना पड़ेगा, अर्थात उसमें अनुभवजन्य स्थिति को शामिल करना पड़ेगा। यहाँ कई बार होता है कि हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उस ज्ञान का जो उपयोग है, जैसे अगर हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, मुझे आत्मज्ञान हो गया है या आत्म स्थिति में मैं रहता हूं, लेकिन आत्मा का मैं शुद्ध उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। उपयोग इन द सेंस यहां पर यह है कि मुझे जब इस बात की अनुभूति हो गई कि मैं जीव आत्मा हूं और मुझे जन कल्याण या स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, और उसमें जब नहीं मैं संलग्न हो पाता हूं, तो मैं खुद अपने आप से एक ऑटो सजेशन के माध्यम से क्वेश्चन करता हूं कि इस ज्ञान का उपयोग मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी प्रकार से जब लौकिक हम ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें जो कुछ भी हम गेन कर रहे हैं, उस गेनिंग सिचुएशन में हम ये जरूर देखें कि जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें हमारी लगन, हमारा समर्पण और हमारी मनस्थिति किस प्रकार की है और क्या क्या रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। जब इस ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे तो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने का जो हमारा ध्येय होता है वो डिफरेंट लेवल पर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और वाइल्ड रेंज में चला जाता है। हम केवल फॉर द टाइम बींग नहीं पढ़ते हैं, अर्थात बच्चों को जब ये पता चल जाए कि नंबर का खेल कुछ समय के लिए सर्टिफिकेट में हो सकता है लेकिन जीवन में इन नंबर का फिर उपयोग नहीं हो पाता है। एवरेज मार्किंग जो हो रही है इस समय वो 50-60 होती है लेकिन हम चाहते हैं कि 70-80 हम मूव करें, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, गो थ्रू द बुक, ये वाली सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा, हाउ टू रीड, हम इस बात का विश्लेषण हमें करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ें हम और क्या पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि वो न केवल नॉलेज के बेस पर मेमोरी तक रहे बल्कि हमारे अंदर वो फिल्टर होके रियलाइजेशन के बेस पर भी आए और उससे कुछ लर्निंग आउटकम निकाल के हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाएं। और ऐसी स्थिति अगर आती है तो यहाँ पर हम ये इस बात की संतुष्टि अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ज्ञान को हमने अलग अलग तरीके से उठाया है और हमारा जो हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको भी हमने डेवलप करने का प्रयास किया है और ये जीवन व्यवहारिकता के सेंस में कितना हमें मददगार हमारे लिए बन सकता है, उन सभी आधार को भी हमने बहुत गहराई से यहाँ विश्लेषण करने का प्रयास किया है। कुल मिला के हम केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं है बल्कि हम मनन चिंतन की ओर भी उन्मुख हुए हैं, क्योंकि जब भी आप पठन और पाठन करते हैं, पठन की क्रिया में हम आप केवल रीडिंग की बात नहीं करते बल्कि पाठन के साथ साथ में पठन और पाठन दोनों हम बात करते हैं, तो कोई हमें पढ़ाता है उसके प्रति भी हम काफ़ी सिंसियर होते हैं, उसमें हम बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, की पॉइंट्स को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तब जाके हमारा पठन पाठन पूर्ण होता है और उसके बाद मनन चिंतन की प्रक्रिया आती है और मनन चिंतन की प्रक्रिया के बाद में उसमें हम देखें कि उसका विश्लेषण हम कर पा रहे हैं कि नहीं। जब विश्लेषणात्मक अध्ययन आप करते हैं तो वहां फिर आउटकम्स निकल के आता है, अर्थात अध्ययन के साथ में हम आनंद से स्वयं को जोड़ सकते हैं। फ्रेंस बेकन की एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने कहा कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, सर्व फॉर अर्नामेंट एंड सर्व फॉर एबिलिटीज, कि ज्ञान जो है हमारे अंदर एक योग्यता विकसित करता है और योग्यता से पूर्व हमें आनंद देता है। जब अध्ययन और आनंद के संबंधों को हम देखने और जानने और सुनने और समझने का प्रयास करते हैं, अनुभव लेने का प्रयास करते हैं, तो वह जो ज्ञान है वो हमारे लिए लोकोपयोगी स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, हम उसकी उपयोगिता से परिचित होते हैं और साथ में वो समाज के कल्याण में भी उपयोगी बन जाता है। तो हमें अध्ययन करते समय, सीखते समय या उस शिक्षा को ग्रहण करते समय इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए कि जिस शिक्षा को हम ले रहे हैं, जिस विद्या के प्रति हम निष्ठावान हैं, उसका जो गुण सूत्र है वो स्टेटमेंट हमें जरूर याद रखना चाहिए कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम। जी
0: जी जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि इस तरह से बच्चों को जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन वही उनको समझाने का तरीका थोड़ा सा नया भी हो और अलग भी हो। अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं, बच्चों की रुचियों और प्रतिभाओं को पोषित करना यानी उसको बढ़ावा देने के लिए माता पिता को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जी अजय शुक्र।
1: हाँ, बहुत ही सटीक प्रश्न है और आज के वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता भी है कि जब बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, और खासकर उस स्थिति में जब वो पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, और इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते ही उनके अंदर एक खुशी व्याप्त हो जाती है, और वह खुशी कई बार हमें दिखाई भी देती है, और जब वो माता पिता के आई कॉन्टेक्ट में आते हैं या गुरुजनों से जब ब्लेसिंग लेते हैं तो उस समय वो जो उनके चेहरे पर संतोष होता है, और बार बार वो भौतिक रूप से भले ही आपको थैंक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन वो अंतरात्मा से आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपके प्रति आभार से भरे होते हैं, तो ये सारे मनोभाव अगर उनके अंदर विकसित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो गाइडेंस आपने दिया है और उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको जो जीने का आपने प्रयास दिया है, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वह हमारी हमारे उन बच्चों के जीवन में न केवल सफलता बल्कि उपलब्धियों के साथ सृजन को एक नया आयाम देता है, और यह आयाम ही उनके जीवन की को द्रुत गति से बड़ी ही तीव्रता से आगे बढ़ाता है, और उस आगे बढ़ने में वो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और अकाउंटेबल भी होते हैं, और उन्हें लगता है कि जो माता पिता हमको मिले हैं, उन्होंने जो हमें ज़िंदगी दी है उसमें ये एहसास हमें हो रहा है कि आज हम अपनी ज़िंदगी को जी भर के जी पा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया किसी भी मानवीय संवेदनाओं को दीर्घकालीन समय तक मदद करता है उस स्थिति में जीने के लिए जहाँ पर वह न केवल खुशी बल्कि अपने आप को उस विषय और विषय वस्तु के साथ में आनंद में डुबा लेता है, और ऐसी स्थिति में उसके पास में सृजन के जितने भी आयाम निकलते हैं उसमें नवाचार की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यही परिणाम है कि आज देखिए कि एकेडमिक कोर्सेज के अलावा जितना भी ज्ञानार्जन बच्चे कर रहे हैं, जब उनकी हॉबीज़ को वो हम सपोर्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अभिरुचि के अनुसार जब वो आगे बढ़ते हैं तो एकेडमिक या टेक्निकल या प्रोफेशनल या रिसर्च से ज़्यादा उनकी अभिरुचि से संबंधित एरिया में वो अपने करियर भी बना सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन उनको जीना है और एक लंबा समय उनको बिताना है, और वहाँ एक छोटा सा समाज में विड्रावल का जो शब्द है कि वो अगर बोर हो जाते हैं किसी सिचुएशन में आपके प्रेशर के कारण तो वहाँ उनकी लाइफ भी कोलैप्स होती है और करियर भी कोलैप्स होता है, तो दोनों को आपने बचाया है, निश्चित तौर से बच्चों के मन में एक भाव हमेशा जिंदा रहेगा कि माता पिता हों तो यही हों, और इतने अच्छे माता पिता को प्राप्त करके वो बच्चे धन्यता को प्राप्त होते हैं। जी
0: चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दिया हमारे बच्चों के लिए, और हमारे माता पिता भी शायद आपकी बातों से सहमत होंगे कि उन्हें भी क्या करना है, ये आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ बच्चे और माता पिता दोनों को जो है अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपने मन को खुला करने के लिए, ओपननेस लाने के लिए, और सहजता से हर चीज़ को स्वीकार करते हुए सीखने की मनोस्थिति में डालने के लिए आपके ये विचार बड़े ही काम आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग कार्यक्रम को सुनते हैं तो उनका फीडबैक हमें मिलता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है, और ये कहाँ सुनने को मिलेगा इस तरह की बातें जो है, और कब आएगा ये चीज़ें सब सुनने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर। आप सुन रहे हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: बाल संसार, नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सिखाएं। बच्चों को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रदान करें और उन्हें अपनी पसंद बनाने और निर्णय लेने की अनुमति दें। उन्हें जिम्मेदारी सौंपे, जैसे घर के कामों में मदद करना, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित हो सके। उनकी गलतियों से सीखने दें और उनसे डरे नहीं। शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करें। बच्चों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाएं और उन्हें नई चीजों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें किताबें पढ़ने, प्रश्न पूछने और दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। रुचियों और प्रतिभाएं को पोषित करें। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और रुचियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी प्रतिभाएं को विकसित करने में मदद करें, चाहे वह कोई विशेष कला हो या खेल। निष्कर्ष, बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कर्म है। यह न केवल उनके विकास में सहायक है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में भी मदद करता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज एकादशी है, पुनर्वसु है और आज एकादशी की बात हम लोग करेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी आज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अरुण जी, गोविंद वल्लभ पंत, बीरी जत्ती, असित कुमार हल्दर, विश्वनाथ सत्यनारायण, चित्रा मुर्दुल, भवानी दयाल सन्यासी, राधिका रमन प्रसाद सिंह, इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही जतींद्रनाथ मुखर्जी, अब्दुल हमीद और सुकुमार राय, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। संत त्रिवल्लूर कहते हैं, अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा ना पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज विशेष एकादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। व्रत को करने के पुनर्जन्म की बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस एकादशी को जया एकादशी तथा कामिका एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं और एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को हजार गोदान के समान फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त होते हैं और जीवन सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। ये भावनाएं आज के इस एकादशी के लिए बताई गई हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एकादशी की बातें मैंने आपको याद कराई और बहुत सारे लोग इसके बारे में इसका व्रत तो करते ही हैं, आप भी करते होंगे, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज विशेष एक जो खास दिन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सुसाइड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद बच्चों के सुसाइड केस सामने आ जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद जैसे कि बच्चों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है और माता पिता अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें मिलने नहीं देता है, तब भी कुछ इस तरह के सुसाइड केसेस सामने आते हैं। तो ऐसे में हमें इस पे ऊपर काम करने की ज़रूरत है, समाज में एक समरसता बनाए रखने की ज़रूरत है। और प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, और आजकल लोगों में ज़्यादातर तनाव आने के कारण इसी वजह से वे आत्महत्या कर लेते हैं और जीवन के प्रति उनका जो है जो अंधकार दिखाई देता है। इस मामले में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, जिनके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कोरोना के संकट काल में आत्महत्या या लगातार बढ़ रहा है, लोगों में हताश और निराश बढ़ रही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक साल में करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि सुसाइड की कोशिश करने वालों का आंकड़ा इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हमें कुछ ऐसी समरसता वाला माहौल संसार में या समाज में निर्माण करना होगा, जहाँ लोगों को खुशी मिले, लोगों को हेल्दी फील हो। और ऐसे नहीं होता है तो चीज़ें ये बढ़ेंगी। जब कोई बहुत ज़्यादा बुरी मानसिक स्थिति से गुजरता है तो एकदम आस्वाद में चला जाता है, और इसी कारण इसी वजह से लोग ज़्यादातर युवा आत्महत्या कर लेते हैं। इनके परिवार पर बहुत नकारात्मक असर पड़ जाता है, और हर साल 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मनाया जाता है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इसे 2003 में शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत ISP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। जीवन इस संसार में सबसे अनमोल माना गया है। हिंदू पुराणों व शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। सभी इंसानों के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन जब कोई इस निश्चित वक्त के विरुद्ध जाकर शरीर छोड़ने की सोचता है तो वो आत्महत्या कही जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। थीम आजकल हर उम्र के लोग आत्महत्या जैसे अपशब्द की चपेट में आ रहे हैं, कई सारी चीज़ों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। साल 2020 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड यानी आत्महत्या की रोकथाम के लिए साथ काम करना है, ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। और धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों के समझ में आती गई, और कई बार रेडियो पे भी हमने इस तरह के कई प्रोग्राम्स किए हैं, आप सुनते हैं। और आप सभी लोगों की भावनाएं भी मैं चाहूँगा कि आप भी बताइए हमें कि इस और क्या कैसे किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी पर और बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, बस कराते रहो।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात कर रहे थे हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में। आंकड़ों के मुताबिक लोग पारिवारिक समस्या के चलते अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर लेते हैं। कई सारे लोग अपनी नौकरी या फिर शादीशुदा समस्याओं की वजह से भी परेशान होकर ऐसा कदम उठाते हैं। वही परीक्षा और बेरोजगारी जैसी चीज़ों की सूची में आता है। अकेलेपन का शिकार होने की वजह से व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है और धीरे धीरे ये आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। और जब कोई मानसिक तौर पर परेशान रहता है, ऐसे में उसके व्यवहार में कुछ समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग अक्सर चीज़ों से और लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे लोग सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि जब ये लोग दूरी बना लेते हैं तो आप उनसे बात करना शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बंद हो गया। अगर उनकी बातें बंद हो जाती तो आपको परिवार वालों को उनसे जुड़ जाना चाहिए, परिवार वालों से बातें होनी चाहिए। और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता कहती हैं कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन निर्धारित समय के खिलाफ जाने का प्रयास ना करें। जीवन को आप दोबारा नहीं पा सकते। समझो कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ आप खुद हैं। आपके सपना, मित्र, धन, प्रतिष्ठा या नौकरी जीवन में अहम है, लेकिन उतना नहीं जितना आपका खुद का जीवन है। इसलिए जीवन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे आप दोबारा नहीं पा सकते। लिहाजा हमेशा अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझें। बदलाव प्रकृति और समाज का नियम है। आज दिन अगर बुरे हैं तो कल अच्छे भी होंगे। ये अलग बात है कि इसके लिए कोशिश करनी होगी या सकारात्मक रहना होगा। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दें। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल शर्मा बताते हैं कि किसी भी समस्या से विचलित नहीं होना चाहिए। समस्या को स्वीकार करिए और फिर उस समय को हल करने का तरीका ढूंढें। खुद पर भरोसा रखकर ही हम समस्याओं में संघर्ष कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता है, ऐसे में परिवार व दोस्त किसी भी इंसान को बहुत मानसिक संबल दे सकते हैं। इस समय खुद को मोबाइल के साथ ही व्यस्त न रखें, बल्कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। अगर आप अकेले बैठते हैं तो कई तरह के विचार मन में आते हैं, ऐसे वक्त में ध्यान बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ये थी कुछ खास बातें आत्महत्या रोकथाम के बारे में डॉक्टर सोना जी का विचार। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और तनाव को ऐसे दूर करें, क्योंकि तनाव के कारण व्यक्ति जो है धीरे धीरे आस्वाद में आ जाता है और फिर कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोरी के कारण वो हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। कोरोना काल में या फिर लॉकडाउन के सिचुएशन में कमज़ोर पड़ती संयम की डोर के कारण भी कई बार आत्महत्या के कारण हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को तनाव से दूर रखना, एक सबसे पहली बात है कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। दूसरा ध्यान रखना है कि सब कुछ फिर से ठीक होगा और पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी है। बस थोड़ा धैर्य रखें, रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने, एक दूसरे से बात करें और परिवार का ख्याल रखें। दिनचर्या को बनाए रखें, इससे हमें एक मकसद मिलता है, वह सामान्य महसूस करते हैं। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना और व्यायाम करना, अपनी भावनाओं को जाहिर करें, अपने खजानों को, स्वजनों को या दोस्तों को अपने साथ रखें, उनके साथ बातचीत करें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं अभी। आप सुनाए हैं, सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें आपने सुना आत्महत्या पर, और हमारे कुपराम जी और हमारे मदन मोहन जी और साथ में सुभाष जी जलगांव से, सुरेश जी जोटाना से और कंचन भाई विशेष गुजरात से और उमेश सिंह जी और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमसे बात करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी मैसेज करके याद कीजिएगा कैसे हम लोग आत्महत्या को रोक सकते हैं। आइए इसके साथ ही मैं आपको सीधे ले चलता हूँ गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 में 1954 तक रहा। बाद में ये भारत के गृह मंत्री भी बने और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी तथा प्रथा को ख़त्म कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत रत्न का सम्मान उनके ही गृह मंत्री काल में आरंभ किया गया था। बाद में यही सम्मान उन्हें 1947 में उनके आज़ादी के संग्राम में योगदान देने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत के गृह मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। उनके संकल्प और साहस के मशहूर पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के कुंटा धामस नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस परिवार का संबंध कमाऊं की एक अत्यंत प्राचीन और सम्मानित परंपरा से है। पंतों को इस परंपरा का मूल स्थान महाराष्ट्र का कोंकण मध्य प्रदेश माना जाता है और इसके आदि पुरुष माने जाते हैं जयदेव पंत। ऐसी मान्यता है कि 11वीं सदी के आरंभ में जयदेव पंत एक तथा उनका परिवार कमाऊं में आकर बस गया था। शुरुआती शिक्षा की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत के पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था और मनोरथ पंत गोविंद के जन्म के 3 वर्ष के भीतर अपनी पत्नी के साथ पौड़ी गढ़वाल चले गए थे। और गोविंद जो वल्लभ गोविंद दो एक बार पौड़ी गया परंतु स्थायी रूप से अल्मोड़ा में रहे और उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी धन्नी देवी ने किया था। गोविंद ने 10 वर्ष की आयु में शिक्षा घर पर ही ग्रहण किया और 1897 में गोविंद को स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिला कराया गया और इस तरह से उनकी फिर 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह पंडित बलदत्त जोशी की कन्या गंगा देवी से किया गया। उस समय वो कक्षा 7 में थे। गोविंद ने लोअर मिडिल की परीक्षा संस्कृत गणित अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद फिर इस तरह से पढ़ाई पूरा करने के बाद इलाहाबाद में नवयुवक गोविंद को इन महापुरुषों का सानिध्य मिला। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, भारत के सतीश चंद्र बैनर्जी, तेज बहादुर, सुरेंद्र लाल सरीखों, इन सभी का संगम जो है इनको प्राप्त हुआ। इन सभी से मुलाकात हुई और इससे उनको राजनीतिक चेतना का भरपूर सहयोग मिला और फिर ये राजनीति में आए और अपना राजनीतिक सफ़र किया, वकालत फिर किया, वकालत का भी कार्य अच्छी तरह से उन्होंने किया और फिर धीरे धीरे वो समाज के साथ जुड़ते गए। पंत जी की वकालत काशीपुर में धाक थी और उनकी आय 500 रुपये मासिक से भी अधिक हो गई थी। पंत जी के कारण काशीपुर राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से कमाऊं में अन्य नागरिकों की अपेक्षा अधिक जागरूक और अंग्रेज शासकों ने काशीपुर नगर को काली सूची में शामिल कर दिया। पंत जी के नेतृत्व के कारण अंग्रेज काशीपुर को गोविंदगढ़ कहते थे। तो इस तरह से ये गोविंदगढ़ ही हो गया था काशीपुर बाद में और लोगों ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ देश के आज़ादी के लिए उन्होंने पहल शुरू किया था। तो चलिए ये थी कुछ खास बातें। और ये एक वकील के साथ साथ नाटककार और लेखक भी थे और भारत रत्न सम्मान उनके लिए उनके ही काल में आरंभ हुआ था और 1957 में गणतंत्र दिवस पर देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्कवदनी एवं उतारमन पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। आज उनकी याद में उनके जन्म स्थान पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है। पंडित पंत को उत्तराखंड के लोग गोटी पौड़ जू कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि पंत जी का जन्म अपने नैनियाल के गोट यानी जो स्थान मवेशियों के लिए बनाया गया जाता है वह हुआ था, इसलिए गोटी पौंड जू कहा जाता है उन्हें। तो ये थी कुछ खास बातें गोविंद वल्लभ पंत के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: यीशु के हाथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, कुमार श्री रंजीत सिंह जी के बारे में। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है जिन्हें, उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है। और रंजीत सिंह प्रथम टेस्ट मैच खिलाड़ी थे, इन्होंने इंग्लैंड में अपने क्रिकेट खेल की शुरुआत की थी और उन्हीं के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए

जी जीवन भर अविवाहित रहे। जब जब भी विवाह का प्रसंग आता तब तब वो मजाक में कहते थे कि क्रिकेट ही मेरी जीवन संगनी है। और हुआ भी ऐसे, 1888 में रंजीत सिंह ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज में दाखिला लेने ब्रिटेन चले गए। वहीं पर पढ़ते हुए फाइनल वर्ष में वो क्रिकेट ब्लू में शामिल हो गए। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर निकनेम स्मिथ कर लिया था और उसी नाम से पहचाने जाने लगे थे। बाद में उन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें कर्नल हिज हाइनेस श्री सर रंजीत सिंह की जी विभाजी कहकर संबोधित किया जाता था। वो नवानगर के महाराजा जैम साहब के नाम से भी जाने जाते थे। और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाने पर रंजीत सिंह ने सक्सेस के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया। इस तरह से प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी रंजीत सिंह ने इससे पूर्व सही व्यवस्थित खेल नहीं खेला था, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल वर्ष के ग्रीष्म में क्रिकेट खेलते हुए ब्लू को जीत लिया। उन्होंने खेल की औपचारिक शुरुआत मई 1895 में लुइस में की। यहाँ उन्होंने सक्सेस के लिए खेला और एमसीसी के विरुद्ध 77 व 150 रन बना डाले। फिर 1896 में इंग्लैंड की ओर से उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला। इस प्रकार वो क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय बन गए और अलग अलग जगह से भारत को रिप्रेजेंट करना इस तरह से उन्होंने काम किया। रंजीत सिंह लगातार 10 घरेलू मैचों में इंग्लैंड में सक्सेस पाया, 1000 रन बनाए और फिर वे 1899 से 1903 तक सक्सेस टीम के कप्तान भी रहे। उस समय रंजीत सिंह का नाम सक्सेस की पहचान से था और रंजीत सिंह भारत लौट आए 1904 में, क्योंकि उन पर अनेक घरेलू जिम्मेवारियां थी और उन्होंने केवल 2 वर्ष पूरी तरह क्रिकेट खेली। और फिर 1908 से तथा 1912 में दोनों बार 1000 से अधिक रन बनाए। बाद में किसी की गलत सलाह पर वो सक्सेस वापस गए। 1920 की बात है, उन्होंने 3 बार खेलने का प्रयास किया परंतु 48 वर्ष के हो चुके थे, उनका वजन बढ़ चुका था और वो एक शूटिंग दुर्घटना में अपनी एक आँख गवा बैठे थे। अंततः अंतिम बार खेलते वक्त वह 39 रन ही बना सके थे। तो ये थे कुछ खास बातें विजडम क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको प्राप्त है। कीर्तिमान की बात करें तो काफ़ी 72 शतक बनाए इन्होंने अपने जीवन काल में, तो ये उनके नाम है। और सन 1899 में 3159 और 1900 में 3069 रन बनाए और 1896 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए इंग्लैंड ने पहला टेस्ट में अपना शतक पूरा कर लिया था। तो ये थी कुछ खास बातें। और ऐतिहासिक उपलब्धियों की बात करें तो 9 से 10 ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं। और रंजीत जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1933 को हुई। भारत में उनकी याद में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता शुरू की गई। इसे क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता माना जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें रंजीत जी के बारे में। आप सुने हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: this is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। असित कुमार हल्दर के बारे में बात करते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। साहित्य जगत में, चित्रकारिता की दुनिया में इनका नाम शुमार होता है। कल्पनाशील, भाव प्रवणाओं, आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समलोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक और संयोजक थे। असित कुमार हल्दर का जन्म जोड़ संकोच स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलायम वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल आयुषुक्त जागा और बाद में वह अपने दादा रखवालदास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में असित कुमार हल्दर को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया, जहां आपको कलागुरु अविंद्रनाथ के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शरदचरण जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी समय हेवल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला प्रेमियों ने उनके सानिध्य में रहकर अपने कला को पुनरुत्थान की गतिविधियों से अवगत कराया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर जीवन में सृजन प्रक्रिया के मूल प्रेरणा बनकर आप उजागर हुए। तो आइए इनके बारे में और जानते हैं। विभिन्न चित्रों की आकृति 1910 में अंगल महला लेडी हरिगाम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ असित कुमार हल्दर भी अजंता की आकृतियों को तैयार करने के लिए भेजे गए। उसके पश्चात 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समेंद्रनाथ गुप्ता के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगी मारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का आदेश मिला। और फिर इस तरह से ग्वालियर स्टेट के बाघ गुफाओं का जांच परख करने के लिए असित कुमार आमंत्रित किए गए और फिर नंदन लाल बसु सुरेंद्रकार के साथ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने में आपका विशेष योगदान रहा। तो इस प्रकार असित कुमार विभिन्न चित्रकारियों के साथ, कलाकारों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा सीखते हुए अपनी कला को और समृद्ध बनाए। और असित कुमार चित्रों के साथ, चित्रकला के साथ साथ लिखने में भी माहिर थे। तो इंडियन कल्चर एंड ग्लास नामक एक पुस्तक पूर्ण रूप से भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत की रचना और उनके ऋतु सहार का अनोखा बंगाल में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक लेख उन्होंने लिखे। तो ये थे कुछ खास बातें असित कुमार के बारे में। आइए उनके लेखन और कलाकार्य के बारे में, उनके शिल्पकार शिल्पकला के बारे में, कला यात्रा के बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। कला यात्रा के बारे में बात करें तो असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। खालसा संघर्ष के चित्रों में कीमित उपहार जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा देती थी है और स्वयं शर्मा से साड़ी के पीछे छुप जाती है, ये चित्र अनजान है। इनके चित्रों की चित्रकला में एक नया मोड़ है जिसमें हृदय की भावनाओं को रंगीन रूप में अभिव्यक्ति हो जाती है। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। ललित कला कंटेम्प्री में छिपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में है। इसके अतिरिक्त अकबर का एक निर्माण कारण झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, पूजा कलात्मा में अपनी लेखन माला है। असित कुमार हलदर केवल एक चित्रकारी नहीं बल्कि एक कवि भी हैं। उनकी चित्रकला की शैली गीतात्मक है क्योंकि उसमें काव्य और कला का समन्वय पाया जाता है। गीतांजलि रुबायत ऑफ उमर खैयाम में अपने कविता के साथ साथ रेखा चित्र भी बनाए। इस प्रकार उनको कला रमणीयता और गीतात्मकता का पर दृष्टिगोचर होता है। तो आइए इनके बारे में और जानते हैं। कला शिक्षक भी बने असित कुमार हलदर, चित्रकार के रूप में भी विख्यात हुए ही एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी उन्होंने पर्याप्त सम्मान मिला। कला शिक्षण में गहरी रुचि के कारण ही सन 1923 में विलायत से लौटकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनके वर्षों तक अध्यापन किया। लखनऊ में प्राचार्य पद पर रहकर उक्त कला विद्यालय के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया। इसी प्रकार शांति निकेतन प्रवास के दौरान भी वहां के कला भवन के विकास में गहन रुचि दिखाई। शिल्पकार के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। चित्रण के साथ साथ प्रसार काव्य और काव्य की प्रतिभाएं भी निर्मित हैं। रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात से प्रभावित होकर हलदर ने उनकी प्रतिमा बनाई जिसे देखकर कवि गुरु ने कहा, ये आपकी आत्मा की आज़ादी का विकास है। अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिया है, अपनी श्रद्धावला से मृत्यु में जलवंत प्रकाश भर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में भी आपकी एक प्रतिमा है। असित कुमार हलदर की कितनी ही उत्कृष्ट कलाकृतियां आज व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो संग्रहालय उसमें संरक्षित है। इलाहाबाद म्यूजियम के हलदर भवन में उनके प्रतिनिधि चित्र को संग्रहित है और इसके अलावा बोस्टन म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, श्री चित्रायम त्रिवेंद्रम और रामास्वामी मुरलियर संग्रहालय में भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां देखी जा सकती है। तो ये है विशेष असित कुमार जी की जीवन कहानी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। 10 सितंबर की कुछ खास बातें आपसे शेयर की और आज के दिन जन में उन खास लोगों में जैसे रणजीत जी के बारे में, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में और असित कुमार हल्दर के बारे में आपको कहानी सुनाई। आशा करूंगा इन महान विभूतियों की कहानियां सुनकर और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की बातें भी आपको बताई गई थी, जहां पर आज के समय में जो बच्चों के साथ या फिर जो बड़े भी हैं तनावग्रस्त होने के बाद आत्महत्या करने का उनके दिमाग में और कुछ सूझता नहीं, उस अंधकार से उन्हें प्रकाश की ओर ले आने के लिए हमें उनके साथ बातचीत करने और उन्हें जीवन में ये समय अंत नहीं, इसके बाद भी कुछ अच्छा होने वाला है, ये आशा दिलाने का काम हमें करना है जिससे आत्महत्या कम हो सके, आत्महत्या करने वालों की संख्या कम हो सके। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। आइए एक और सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। सत्याग्रह बल से नहीं, हिंसा के त्याग से होता है। महात्मा गांधी। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सत्याग्रह बल से नहीं हिंसा के त्याग से होता है। तो ये विचार आप चिंतन करें इस पर। ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और मैं हूं आरुषि आपके साथ। दोस्तों, युवाओं को मन में अगर कोई सवाल भी होते हैं तो साथ में उमंग भी होता है, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। अपने लिए कुछ सपने होते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए सपने होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हम सोशल मीडिया पे जिनके बारे में सुनते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो नाम तो सुना होगा लेकिन कितनी जानकारी हमारे पास है, ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा हो जाता है। और कई बार सभी चाहते हैं कि हम जीवन में पैसे कमाएं, आगे बढ़ें, चाहते तो हैं लेकिन रास्ता कौन सा सही है वो चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो जरूरी है वो है शिक्षा, वो है जानकारी। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करने वाले हैं आपसे, और सही तरीका क्या है उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनका नाम है रविंद्र चंदेल जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, NISM क्वालिफाइड है। तो आज उनसे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और सही तरीके से कैसे आप उससे अर्न कर सकते हैं और कैसे सही और गलत में भेद भी कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो मुझे लगता है आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बोला हमारे दोस्तों से कि NISM क्वालिफाइड, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होती है।
1: वैसे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम अवेयर होना चाहते हैं, हम टेक्निकली काम करना चाहते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज लॉन्च करती है। तो NISM का मीनिंग ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, ऑप्शंस ट्रेडिंग, दे आर सो मेनी, मोर देन 26 कोर्सेज दे लॉन्च्ड। वो क्वालिफाइड करने के बाद जब हम काम करने मार्केट में आते हैं तो हमें उसमें बेसिक नॉलेज के साथ में सही गलत का भेद करना आ जाता है।
0: ओके, तो जैसा आपने कहा कि वैसे तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है ये कौन कर सकते हैं और कब कर सकते हैं?
1: इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सारा ऑनलाइन होता है। आप जो www.nacindia.com जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर जाकर आप कोर्सेज के बारे में डिटेल देख सकते हैं, और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। उसमें जो भी मिनिमम फीसेस होती है गवर्नमेंट की वो सबमिट करना होता है, फिर आपके एरिया का, ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां का आपको एक सेंटर प्रोवाइड करते हैं।
0: okay.
1: और ऑनलाइन एग्जाम होती है, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है जो भी आप एग्जाम चूज करते हैं, और हैंड टू हैंड उसका रिजल्ट भी आ जाता है। मिनिमम 60% उसका मतलब पास का क्राइटेरिया होता है।
0: तो इसमें पढ़ना क्या पड़ता है?
1: उसका सिलेबस भी आपको उसी वक्त मिल जाता है। मतलब इसमें बहुत कोर्सेज के साथ में सिलेबस भी डिजाइन होता है। मतलब एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग एक अलग पार्ट होता है, ट्रेडिंग अलग पार्ट होता है, ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। कैश में काम करना होता है, फ्यूचर में काम करना होता है, ऑप्शंस में काम करना होता है। कोई इन्वेस्टिंग करता है, कोई म्यूचुअल फंड में काम करता है, कोई कमोडिटी में काम करता है। कमोडिटी में जनरली हम मेटल्स में डील करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकिल, मेंथल, नेचुरल गैसेस, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। इक्विटी में हम जब काम करने की बात करते हैं तो हमें किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदी या बिक्री वाला काम करना होता है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है।
0: तो मतलब NISM को ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें, जो भी युवा दोस्त हमें सुन रहे हैं खासतौर से, स्टॉक मार्केट शब्द बहुत बार सुना है, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये हो गया, लेकिन वो असल में क्या होता है?
1: बिल्कुल, आपको मैं सरल शब्दों में कभी स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन बताऊं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर लिस्टेड कंपनियों, है ना, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्टेड कंपनियां होती है, आज की तारीख में जो एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां 2000 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। वो एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खरीदी बिक्री कैसे करें, है ना, तो वो प्लेटफॉर्म हमें डीमैट अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं जो किसी भी पर्सन के सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है ना, तो उसके थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं, वही स्टॉक मार्केट होता है। जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है www.nacindia.com, वहां पर आपको उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस देखने को मिलते हैं। और जब आप डीमैट अकाउंट करते हैं, ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी जो बैंक है वो सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्सेप्ट दिस, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो ऑथराइज्ड है, जैसे जरोदा हुआ, एंजल हुआ, गुडविल हुआ, ये भी हमें अपस्टॉक हुआ, जैसे टाटा ने अभी एक अपस्टॉक भी लॉन्च करा है, वहां पर जाकर अपन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये इसका सही तरीका है।
0: ओके, तो पहले हम पता करें ऑथराइज्ड कौन कौन से।
1: बिल्कुल
0: जी, तो डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है?
1: बिल्कुल, डीमैट अकाउंट मतलब कि डीमेटेरियलाइजेशन फंड। आप किसी भी शेयर्स को डिजिटली फॉर्म में खरीद या बिक्री, क्योंकि पहले कभी हम बात करें, कभी इसकी हिस्ट्री के ऊपर हम बात करें, तो जो BSE है, इंडेक्स जो है, है ना, वो 1875 से लॉन्च है.
0: ओके.
1: मतलब मोर देन अप्रोक्सीमेटली 150 साल से स्टॉक मार्केट चल रहा है.
0: जी जी.
1: तो पहले ऑफलाइन काम होता था.
0: जी.
1: आपको शेयर खरीदना है, आपको ब्रोकर के पास जाना है, आपने कंपनी का नाम लिया, मुझे टाटा के शेयर खरीदना है, तो आपको फिजिकल में एक सर्टिफिकेट देता था वो ब्रोकर. और जब आपको बेचना है तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर किसी और को हैंड ओवर करना होता था. तो धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे आई, अपडेशन हुआ, तो फिर वो ऑनलाइन सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड होने लगी. और बीएससी के बाद में फिर लगभग 1992 के आसपास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE लाया. मोक्स ने पूरा ही जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमाइजेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया.
0: तो जैसा आपने बताया कि हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, तरीका बदलता है, और आज डिजिटल युग में ये डिजिटल तरीका
1: अब फुल्ली ऑटोमेटेड ऑनलाइन हो गया है.
0: ऑनलाइन हो गया है
1: बिल्कुल. अब आप जैसे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है. हमें सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. आपको एक ऑथराइज्ड ब्रोकर को के कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर डील करनी होती है. वहाँ पर आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार पैन कार्ड हुआ और बैंक का जो आपका जो स्टेटमेंट हुआ, वो उन्हें सेंड करना होता है. उसके बदले में आपको क्लाइंट आईडी पासवर्ड देते हैं, जिसको उनके ही एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना होता है. उसमें आपका जो डीमेट अकाउंट के साथ में जो सेविंग अकाउंट लिंक्ड है, उसमें आपको फंड ट्रांसफर करना होता है, और उसके बाद आपको खरीदी बिक्री करनी होती है.
0: ओके. एक और सवाल ये आता है मन में कि ऐसे रन होता है, लेकिन आखिर ये रन करता कौन है स्टॉक मार्केट?
1: बिल्कुल, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, इसकी रेगुलेटरी बॉडी है. इसके ही निगरानी में सारे काम होते हैं. मतलब ब्रोकर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, या कोई भी मतलब व्यक्ति इसमें आकर कुछ अनएथिकल वे में काम तो नहीं कर रहा है. तो सारी जो सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वही इसके ऊपर डील करती है और वही इसको पूरी तरीके से रन करता है.
0: ओके. तो जैसा आपने कहा कि SEBI इसको रन करता है, और मतलब ये टोटली लीगलाइज्ड चीजें हैं, क्योंकि कई बार हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, बहुत सारी चीजें मन में सवाल आते हैं. मैं वो भी आपसे थोड़ा बाद में पूछूंगी, लेकिन आप क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा और गहराई से अगर बात करें, जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टिंग हम कहते हैं, क्या होता है, क्या अंतर होता है इनमें?
1: बिल्कुल. कभी हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी शेयर को खरीद के रखना चाहते हैं, तो आप उसको खरीद कर छोड़ सकते हैं. मतलब उसमें बाइंग होती है ओनली.
0: okay.
1: जैसे मुझे एग्जांपल के तौर पर मैंने टाटा स्टील का शेयर खरीदा कैश में, है ना, और उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये इन्वेस्टिंग पार्ट हो गया है ना. लेकिन मैं उसे एज अ इंट्राडे जब हम काम करना शुरू करते हैं, है ना, कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, मैं आज ही खरीदूंगा, आज ही बेचूंगा, थोड़ी लिमिट भी चाहिए होती है इसके, और कैश फ्यूचर ऑप्शंस पार्ट होते हैं. तो आपने आज खरीदा, आज बेचा, फिर कभी बेच दिया और फिर खरीद लिया, इसमें सेलिंग और बाइंग भी होती है. इस एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ खरीदा नहीं है और पहले ही बेच दिया.
0: अच्छा.
1: तो वो ट्रेडिंग के पार्ट में पॉसिबल है, इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है. इन्वेस्टिंग में केवल आपको खरीद के छोड़ना होता है, मतलब पहली एंट्री बाइंग होती है और फिर सेलिंग होती है. बट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पहली एंट्री सेलिंग भी कर सकते हैं. जैसे मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं कि आपको कपड़े खरीदना है
0: जी.
1: तो आप खरीद सकते हो
0: जी.
1: बिना खरीदे बेच सकते हैं क्या
0: जी?
1: नहीं बेच सकते. आप किसी भी शॉप पे जाके बोल नहीं सकते हो कि मुझे ये ट्राउजर सेल करना है.
0: राइट.
1: नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? XYZ कोई कंपनी है ना, अब मुझे अपडेशन है कि ये कंपनी का शेयर गिरने वाला है, तो मैं वो XYZ कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले बेच दूंगा. मतलब उसका प्राइस चल रहा है अभी एग्जांपल के तौर पे 200 रुपीज, तो मैंने 200 की बीट से वो स्टॉक को सेल कर दिया. ठीक है. अब वो 200 से जब नीचे आया, 190-180 आया, तो मैंने उसको परचेस कर लिया, तो 200 और 190 के बीच में 10 रुपीज का डिफरेंस आया, तो 10 रुपया मेरा प्रॉफिट है.
0: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जैसा आपने बताया. लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है तो क्या करना बेहतर रहता है शुरुआत में?
1: शुरुआत के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा एजुकेटेड हो.
0: okay.
1: पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, इसके लीगलाइज चीजें जो होती है उन्हें जाने, और रेंडमली जो स्टॉक मार्केट के जो कॉल्स आते हैं जनरली उन्हें इग्नोर करें. और जैसे डीमेट अकाउंट क्या होता है, हम उसमें कैसे हम फंड ट्रांसफर करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के साथ में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, कैसे खरीदी हो रही है, बिक्री हो रही है, इसमें मोमेंटम कितना ज्यादा हो रहा है, ये बेसिक चीजें की अवेयरनेस होनी चाहिए.
0: पहले स्टडी करना जरूरी
1: है. स्टडी करना बिल्कुल बहुत जरूरी.
0: ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इन्वेस्ट करने लगे.
1: हाँ, नहीं ऐसा वो फिर क्या होगा, उसमें क्या होगा कि अगर कभी कम नॉलेज के साथ में स्टॉक मार्केट में कोई उतरता है, तो फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो किसी भी चीज को गेन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो लत के हिसाब से चालू कर देता है. जैसे कभी मैं बात करूँ तो कमोडिटी में बहुत ज्यादा लोगों को स्कैल्पिंग की आदत हो चुकी है आज की तारीख में. तो वो
0: मतलब जैसा आपने बताया कम एजुकेशन के साथ अगर हम उतरते हैं,
1: हाँ मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो वो सीखना भी चाहता नहीं है कोई व्यक्ति, फिर वो लॉस होता है, फिर होते जाता है, फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो जाता है, इस तरह से चीजें होना शुरू हो जाती है।
0: तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लत
1: लग जाती है
0: एंड आप उसको समझ के नहीं कर रहे तो लॉसेज ही होते जा रहे हैं और आप फिर भी उसे बाहर नहीं निकल रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जैसा कि आपने अभी भी सुना दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट में आप एंट्री की सोच रहे हैं तो पहले समझिए, पहले एजुकेट कीजिए खुद को। लेकिन अगर एजुकेट करना है हमें खुद को तो कैसे करें, मतलब कहाँ से सीखें?
1: बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया कि जो NISM सर्टिफिकेशन जो कोर्सेज होते हैं वो साथ में आपको एक PDF फाइल भी प्रोवाइड करते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बिल्कुल, जैसे आपने बेसिक नॉलेज लिया जनरली पता चल गया स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। अब हर व्यक्ति का अपना एक कैपिटल होता है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उस कैपिटल के हिसाब से उसे अपना रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि इसमें कोई फंड का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 500 रुपीज से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे बड़े हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसी फंड के अकॉर्डिंग इसमें सेगमेंट डिजाइन होते हैं, जैसे एक ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, जैसे इक्विटी हुआ, इक्विटी में कैश में काम करना हुआ, फ्यूचर में काम करना, ऑप्शन में काम करना। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही मिनिमम फंड से स्टार्ट होती है, वो मिनिमम फंड से मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाती है। और आज जो सबसे ज्यादा जो लॉसेस का जो रीजन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही है। जो मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मैंने टाटा स्टील की बात करी थी, टाटा स्टील एग्जाम्पल के तौर पर है ना, अभी 400 रुपीज चल रहा है, 500 रुपीज चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है। तो कोई भी स्टॉक है ABC वो 400 रुपीज चल रहा है, आप एक शेयर खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, 400 रुपीज लेंगे। 10 शेयर खरीदेंगे तो क्या रुपए लगेगा, 4000 रुपीज लेंगे। 1000 शेयर खरीदेंगे तो 4 लाख रुपीज कैपिटल लगेगा है ना। लेकिन अगर कभी हम इसमें ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम न करते, हम प्रीमियम के ऊपर काम करते हैं।
0: okay.
1: जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिमिटेड होता है, जिसकी एक एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, यह हर गुरुवार को एक्सपायर होता है। मतलब मंथ के आखिरी वाले में, कभी स्टॉक की बात करें तो, और इंडेक्स की बात करें तो ये वीकली एक्सपायर होता है, और स्टॉक की बात करें तो ये मंथली एक्सपायर होता है। तो जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी निफ्टी चल रहा है 18,500 है ना एग्जांपल, और फाइनेंस निफ्टी चल रहा है 19,000, और बैंक निफ्टी चल रहा है 43,000। बैंक निफ्टी ने 43,000 का लेवल क्रॉस किया बहुत दिनों बाद। तो 43,000 रुपीज जो उसका जो स्ट्राइक चल रहा है 43,000, तो मैं कभी कैश में काम करूंगा तो मुझे एक शेयर के लिए 43,000 रुपीज देना पड़ेंगे है ना, जो बड़ा अमाउंट है। लेकिन मैं ऑप्शंस में काम करूंगा तो मैंने 43,000 का कॉल बाय किया।
0: तो आपको कैश में नहीं देना होगा?
1: नहीं, वो उसका प्रीमियम मिलेगा जो वो काफी कम होता है। जैसे 43,000 का मैंने प्रीमियम कैश में इसको बाय किया तो उसका प्रीमियम अकॉर्डिंग टू उसकी एक्सपायरी, जैसे ये चलता है शुक्रवार से गुरुवार तक है ना, तो
0: मंडे टू फ्राइडे,
1: फ्राइडे टू थर्सडे। तो आज फ्राइडे का दिन है, कॉन्ट्रैक्ट नया है, तो 43,000 का कॉल आपको मिलेगा, हो सकता है 100 रुपीज का, 200 का, 300 का, 400 का। तो जो 43,000 की चीज है वो आपको 200 रुपए में मिल गई।
0: ये ऑप्शंस में,
1: ऑप्शंस में। अब यहाँ पर लॉट होते हैं, नंबर ऑफ लॉट में काम करना होता है ना। तो इसका बैंक निफ्टी का लॉट साइज चल रहा है 25 रुपीज का है ना। अब आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, 43,000 रुपीज आपको 100 में प्रीमियम मिल गया, एक लॉट में आपको 2,500 रुपीज ही लगे
0: जी,
1: और 25 शेयर आ गए उसमें,
0: और जो इतने हजारों में है।
1: हाँ
0: जी,
1: आप 25 शेयर अगर कभी हम 40,000 करते तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता। बट यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है, या कहे कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि एक्सपायर होता है।
0: हाँ, एक हफ्ते का जो आपने
1: जी। अब इसमें क्या, थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है ये
0: जी।
1: इसमें टेक्निकल से हम बात करें तो इसमें क्या, टाइम डीके जैसे जैसे लगता है, तो जैसे आउट ऑफ मनी और एट द मनी के सारे प्रीमियम गल जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे वीकली हम एग्जांपल के तौर पे लेकर चलता हूँ, हम बैंक निफ्टी को ही लेकर चलते हैं। आज नया कॉन्ट्रैक्ट खुला, 43,000 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का। अगले गुरुवार आने तक अगर कभी बैंक निफ्टी 43,000 रुपीज पर ही बंद होती है
0: जी,
1: तो उसके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे।
0: तो मतलब अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचना, तो पहले जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसको समझना, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: मार्केट को स्टडी करते रहना लंबे समय तक, वो
1: बहुत जरूरी
0: है। तो आप वही जीरो
1: जाएंगे। जनरली क्या है कि लोग ऑप्शंस में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने डीमेट अकाउंट करवाया, आपका नंबर सर्कुलेट हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
0: सीधे
1: ब्रोकर आपको रेंडम कॉल आया और आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: ओके, तो जैसे कि आपने लॉसेस की बात किया, ये तब भी होते हैं जब हमें जानकारी नहीं होती और उतार चढ़ाव तो मार्केट में होता ही है। तो क्या जब हम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो हम जितना हमारी सेविंग है, कई बार लोग सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो क्या करना चाहिए, कितना आपको परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सब कुछ इन्वेस्ट कर देना?
1: नहीं, ये बहुत बहुत गलत है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो आपकी एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप सेविंग क्या FD करके रखते हैं, जो आप सालों साल तक विदड्रॉ नहीं करना चाहते, उसका भी आप 50% ही इन्वेस्ट करें। और एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना होता है, केवल इन्वेस्ट करें तो उसमें पैसा थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि आप इसकी होल्डिंग रखते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपायरी या कोई गलने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फिर ट्रेडिंग में आपको उससे भी उसका भी 50% ही ऐसा यूज करना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पर टारगेट SL भी होते हैं। अगर कभी आपको लग रहा है कि लॉसेस जा रहा है तो पोजिशन से एग्जिट कर देना चाहिए। इसमें फंसने की जो बात होती है वो ये होती है, जैसे कि जब चांदी 70,000 से गिरना शुरू हुई थी तो लोगों को बहुत लॉस हुए, क्योंकि 70,000 से थोड़ा 500 नीचे आया तो और खरीद लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर वो एक्सपायर होके जीरो, मतलब इसमें स्टॉक की बात करूँ तो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें भी।
0: जी ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा सेविंग है उसका भी 50% करें। ऐसा नहीं करें कि आप तुरंत अपना बहुत बड़ा कोई अमाउंट लगा देते हैं, या आपकी जो लाइफ सेविंग है आप किसी से लोन लेके या उधार लेके तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो पहले सबसे पहली बात जो हमने आज जानी है कि आप पहले समझिए स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके बाद ही इसमें कदम रखिए। आपने ये तो बता दिया हमें कि कितने जो पैसों की जरूरत होती है वो 500 से आपने बोला कि शुरू कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से शुरू,
1: किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं।
0: जी ओके। तो क्या हमें ये अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए, या फिर क्योंकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, हम एक यूथ हैं, मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या जॉब छोड़ के इसको करना चाहिए या सेकेंडरी एक इनकम भी हो सकता
1: है? बिल्कुल, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, ये पूरा ऑनलाइन होता है, आप दुनिया किसी भी कोने में बैठकर काम कर सकते हैं। ये मार्केट 9:00 से 3:30 तक ऑपरेट होता है, इस ड्यूरेशन में आप कहीं से भी ऑनलाइन इसमें काम कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जिसे आपने डीमैट पर कुछ भी फंड ट्रांसफर किया और ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और थोड़ा सा एजुकेशन के बाद में आपने काम शुरू करा, तो दिन का केवल एक ही ट्रेड लेना चाहिए। सस्ता स्कैल्पिंग क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में भी क्या होता है कि स्कैल्पिंग करना शुरू करते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने खरीदा, थोड़ा ऊपर नीचे पे बेच दिया, मतलब 9 से लेकर 3:30 बजे तक मल्टीपल ट्रेड में लोग 200 ट्रेड डाल देते हैं, 200 काटा प्लस माइनस प्लस माइनस
0: करते जाते हैं।
1: हाँ, तो वही स्टार्ट है इस चीज की। अगर कभी आप इसको ऐसे सेकेंडरी सोर्स बनाते हैं तो आपने एनालिसिस करके एक बार किसी चीज को खरीदा और उसका एक रिस्क रिवार्ड रेशो टारगेट और SL मेंटेन करा कि मैंने भाई 40,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसका 2-3% का मुझे लॉस आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा और आज काम नहीं करूंगा।
0: अच्छा।
1: या 2-3% का मुझे प्रॉफिट आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहती है ना
0: जी, तो अपने लिए डिसाइड
1: करना जरूरी, मतलब रिस्क और रिवार्ड कि मैंने 50,000 के रिस्क के लिए, मतलब मार्केट में 50,000 का ट्रेड लगाया है, तो उस रिस्क पे मुझे कितना रिवार्ड चाहिए और जितना रिवार्ड चाहिए उसका कम मुझे रिस्क लेना है। मतलब मैं 10,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लॉस कितना लूंगा, 4,000-5,000। इसका उल्टा भी हो जाता है, लोग प्रॉफिट 2,000-3,000 का लेते हैं और एक ट्रेड में लॉस 40-50,000 का ले लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में।
0: तो यानी खुद को आपको लिमिट में रखना बहुत
1: जरूरी है,
0: और वो भी लंबे समय
1: तक।
0: जी, कई बार हमें लगता है कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए,
1: सारा प्रॉफिट हो जाए। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी 1 रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी में 100 रुपए भी चला जाता है, जब इन द मनी हो जाता है, मोमेंटम होता है स्टॉक मार्केट में, हैवी फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे RBI की पॉलिसी आई है या कोई इवेंट है, तो कोई बड़ी चीज जैसे बजट है, इंडियन बजट में आपने बजट लॉन्च किया, इधर हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करते तो मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, तो 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अब 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया तो आप मानेंगे कभी आपने 1,000 शेयर खरीदे, मतलब एक प्रीमियम 1,000 करे तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका 1,000 का, और वो 100 रुपए चला गया तो प्रॉफिट कितना आ गया 1,00,000 का,
0: एकदम से एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा
1: विदिन 15 मिनट। तो वही इस चीज की शुरुआत है। लेकिन जब हम कैलकुलेटेड काम करते हैं और जो छोटा ट्रेडर है या छोटा इन्वेस्टर है वो इस तरह के इवेंट को इग्नोर करे, जब हैवी फ्लक्चुएशन होता है उस दिन काम नहीं करना चाहिए,
0: नहीं तो कई बार लगेगा अरे एक बार प्रॉफिट हो गया चलो दोबारा से,
1: बिल्कुल वो है, फिर शुरुआत होती है,
0: शुरुआत हो जाती है डाउनफॉल की, शुरुआत हो जाती है,
1: मतलब जो मिथ फैला हुआ है जो स्कैल्पिंग का सट्टे का वो यही तो शुरुआत होती है। क्योंकि क्या होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन नहीं करा, आपने एक दिन में 1,00,000 रुपए कमा लिया 1,000 रुपए लगाकर, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी बढ़ जाएगी, अब अगले दिन आपको 2,000 का प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं होगा,
0: फिर लगेगा कुछ हुआ ही नहीं।
1: बट कभी हम कैलकुलेट करें तो एक दिन के आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं
0: जी.
1: तो बेसिक सैलरी 25-30 हज़ार रुपए भी होती है
0: जी.
1: है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है स्टार्टिंग में. तो आप एक दिन का कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1000 रुपए भी बन रहा है.
0: तो मतलब आपको बहुत कैलकुलेटेड होकर चलना है, समझदारी है. जैसा आपने कुछ चीजें बताई, बजट की बात की आपने, और आपने बात किया कि किस तरीके से मार्केट में और चीजें जो लॉन्च हो रही है, तो ये चीजें भी पढ़ना, जानकारी लेना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बस कर रहे हैं जी. तो इसलिए दोस्तों, जब एजुकेशन की बात होती है तो जरूरी है कि आप जो न्यूज है, जिस तरह की चीजें हैं जो इकोनॉमी पे असर डालती हैं, जो आप अगर स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं, तो लगातार खुद को एजुकेट करना जरूरी.
1: बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. जैसे कि हम हमारी देश की जो इकोनॉमी को, वो हमारा देश का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ही रिप्रेजेंट करता है
0: जी.
1: हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इसको बोलते हैं निफ्टी
0: जी.
1: निफ्टी एक 50 कंपनियों का ग्रुप होती है. वो 50 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हुई, आईटी सेक्टर की कंपनी हुई, टेक्सटाइल की कंपनी हुई, तो उन कंपनी की जो टॉप कंपनी होती है, वो एक कंपनी उसके अंदर होती है. तो वो 50 कंपनियों का जो ग्रुप है वो ऊपर जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है. 50 में से 30 कंपनियां नीचे गई है, मतलब गिर रही है, और 20 कंपनी ऊपर गई, तो स्टॉक मार्केट नीचे आया. मतलब उसका एवरेज जो होता है, वो स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को आपको पेपर में जनरली देखने को मिलता होगा कि आज निफ्टी ने 18,000 रुपए का लेवल क्रॉस किया. तो वो 18,000 रुपए का जो लेवल है, वो 50 कंपनियों की जो वेजनी है ना, उसमें से कंपनियां जो मैक्सिमम है वो ऊपर की तरफ जा रही है.
0: ओके, तो उसका एवरेज होता है.
1: उसका एवरेज होता है.
0: रविंद्र जी, जैसे आपने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, और हमने लॉसेस की भी बात की, कई चीजें ऐसी भी होती है जो फेक होती है, और आजकल हम जानते हैं कि खबरें भी व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे बहुत तरह के.
1: बिल्कुल,
0: कई बार आते हैं लिंक्स, आप इस पे क्लिक कीजिए, अकाउंट नहीं आई ये खरीद लीजिए, ये शेयर, ये कम, इस तरह के बहुत मैसेजेस भी आते हैं. वेबसाइट्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, तो अब इनमें कैसे अंतर किया जाए, सही गलत क्या है, और कैसे बच के रहा जाए.
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मेरा जो यहाँ पर आने का जो मोटो है वो मेन यही है, क्योंकि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें फ्रॉड चल रहा है और जो इसमें जो जो कॉमन व्यक्ति जो उसमें फंस रहा है, वो उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करे, उसमें मैं आपको कैसे अपने को प्रिकॉशंस यूज करनी है, मैं उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा
0: जी.
1: कि क्या हो रहा है आज की तारीख में, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में हमारा जो प्रोग्रेस हो रही है, तो चीजें जो डाटा है वो लीक होना बहुत आसान हो गया है. ठीक है, जैसे प्राइवेसी नाम की चीज नहीं बची है. आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने सर्च करा स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है ना, आपने 2-3 लिंक के ऊपर क्लिक करा, यूट्यूब पे वीडियो देखे है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे अपना नंबर डाल दिया कि मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, या आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई, या किसी भी इसी लिंक पर क्लिक करा जहाँ पर आपकी ऑलरेडी डिटेल चली गई है. मतलब आपका नंबर जब ऐसे किसी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, तो डेफिनेटली 101% वो आपको 101% कॉल करेंगे. जब वो आपको कॉल करते हैं, अब क्या है कि अवेयरनेस का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा है
0: जी.
1: फोन आया, हेलो आप ट्रेडिंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बोलेगा हाँ करता हूँ. किस सेगमेंट में काम करते हैं, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, तो वो अपना एक सेगमेंट भी बता देगा. उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको एक लालच देंगे कि हम हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो आपको 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली बेसिस पे 10,000 का प्रॉफिट देंगे.
0: लालच देंगे आपको.
1: बिल्कुल, डेफिनेटली लालच देंगे. और पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है. मैंने बताया था कि आप 1,000 रुपए का भी प्रीमियम खरीदते हो, 100 रुपए जाएगा तो 1,00,000 का प्रॉफिट हो सकता है. तो उन्होंने तो उस हिसाब से कम बोला, क्योंकि मार्केट के दायरे में बोला कि 10,000 पे भी मैं आपको 5-10,000 का डेली रिटर्न दे दूंगा. आप जो मैं बताऊंगा टिप्स एंड रिकमेंडेशन जल्दी जो प्रोवाइड करते हैं, वो बंदा बोलेगा चलो ठीक है आप मुझे कॉल दिखाइए, मैं वॉच करता हूँ, अच्छा लगा तो मैं काम कर लूंगा. ठीक है, अब उन्होंने ऐसे रेंडम कई लोगों को कॉल किया है,
0: कुछ लोग हाँ बोल देते हैं उसमें से.
1: हाँ, अब उनके पास एक डाटा आ गया कि मुझे आज 100 लोगों ने हाँ बोला है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 50 लोगों को उन्होंने बाय करवा दिया.
0: अच्छा.
1: और 50 लोगों को सेल करवा दिया
0: उसी में.
1: हाँ.
0: जी.
1: और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उन 100 लोगों में से 50 को तो प्रॉफिट होना 100% का है.
0: तय है जी.
1: ओके, बिल्कुल. जिनको लॉस हो गया, उनका फोन नहीं उठाया, उनको इग्नोर कर दिया, उनको किसी और नए नंबर से कॉल जाएगा, लेकिन थोड़े एक ड्यूरेशन के बाद में. जिनको प्रॉफिट हुआ है, उनसे वो डील करना स्टार्ट करते हैं. कि आपने देखा होगा कि हमारी कॉल के ऊपर प्रॉफिट आया है. अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह का रिटर्न चाहते हैं, तो हमारी कॉल पे काम करें, वो पैसा कमाएं. इसके लिए क्या करना होगा, तो आप ऐसा करिए, इसके लिए आप हमें पेमेंट करिए. और वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनसे पेमेंट ऐठना शुरू कर देते हैं, और उन्हें सट्टा खिलाना शुरू कर देते हैं. बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत बड़ी डिमांड कर लेते हैं, लॉस हो गया तो फिर कोई बात नहीं छोड़ देते. इस तरीके से चीजें बहुत होने लगी.
0: फिर आप उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे.
1: तो
0: ऐसे फोन कॉल से बचना है. मतलब कोई भी जब ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट शुरू शुरू करते हैं तो आप ऐसे कोई भी कॉल आए तो हम क्या करें उसके इस तरह के जवाब ही नहीं दें इस तरह के।
1: हाँ, जैसे कुछ ऑथराइज्ड कंपनियां भी होती है
0: जी,
1: है ना, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने के लिए भी है ना गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है ना, वो सेबी अपना एक मतलब एक रजिस्टर्ड करती है उनके अंडर में और फिर उनको ऑथराइज करती है कि आप काम करें। उसमें भी कंडीशंस लगी होती है, वर्बली कॉल आपको कोई देता है तो काम नहीं करना है, मैसेज के थ्रू कॉल आना चाहिए, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, उस कंपनी का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर होती है तब काम करना चाहिए। और उसमें
0: कॉल आए तो भरोसा नहीं,
1: कॉल कर हाँ मतलब मैं बोलूँ 90% तो इग्नोर ही करना चाहिए, आप अपनी रिसर्च पे अपनी मेहनत पे अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: और उसमें रिस्क जैसा आपने बोला कि बहुत ही ज्यादा है क्योंकि सर से कॉल्स नहीं आते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, और टेक्स्ट बेस्ड आपने बोला या कॉल भी करेगी
1: हाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा
0: वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते,
1: ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और उस पर भी हम क्यों ट्रस्ट करें, अगर कभी आपको कॉल आता है तो सबसे पहले सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद में उसका एक इतिहास होता है, उनका एक हिस्ट्री होती है कि भाई आपका ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस ये कहूंगा कि आप जब तक किसी से फिजिकली नहीं मिलते हैं, है ना, कोई एक सेबी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है तो आप वहाँ विजिट करें, वहाँ के ऑथराइज बॉडी से बात करें और फिर उनसे वो खुद आप जब आप हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तो वो आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, राइट,
0: क्योंकि आप देख रहे हैं
1: आपको लोकेशन पता है, कंपनी पता है, इच एंड एवरीथिंग पता है ना, वो एरिया पता है, सब कुछ पता है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको छोड़ देंगे। कभी उनके अंदर कुछ फॉल्ट है तो वो छोड़ देंगे, चलो इसको आप फोन मत लगाना, छोड़ दो ये अपने पास आके, बिना किसी से फिजिकली मिले इंटरेक्ट किए हुए किसी भी कंपनी किसी भी पर्सन किसी भी ऑथराइज बॉडी की कॉल के ऊपर काम करना बहुत हाई रिस्क है
0: जी, और उसमें आपको लॉस हो सकता है और साथ साथ आप एक बड़े जाल में भी फंस सकते हैं। जो आपको लगातार लॉसेस हो सकते हैं, और अगर फायदा एक बार हो भी गया तब भी वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉस होगा क्योंकि एक फ्रॉड है, तो फ्रॉड से बचना
1: बहुत जरूरी है।
0: जाते जाते मैं रविंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो यूथ हमें सुन रहे हैं और जो मान लीजिए थोड़ी बहुत नॉलेज भी अटेन कर लेते हैं, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें भी पीडीएफ उपलब्ध है हिंदी में इंग्लिश में,
1: बिल्कुल,
0: और यूट्यूब चैनल्स है जो कई चीजें बता रहे हैं,
1: यूट्यूब चैनल और जो टेलीग्राम है वो भी एक मतलब आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: वो कैसे?
1: जैसे टेलीग्राम के ऊपर फ्री में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के चैनल्स बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, कई चैनल को ब्लॉक भी किया है, इवन दो कई कंपनियां भी बैन करी है, तो वहां से भी आपको जो कॉल्स एंड टिप्स एंड रिकमेंडेशन टेलीग्राम से मिलती है उन्हें भी इग्नोर करना चाहिए। आए दिन जो है न्यूज में फ्लैश होता ही रहता है और उन्हें ट्रैक करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जब उनका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है तो वो इच एंड एवरीथिंग सब फेक यूज करते हैं, मोबाइल फेक है, सिम फेक है, लोकेशन फेक है, अकाउंट्स फेक है, इच एंड एवरीथिंग दे यूज फेक्ड, है ना। और फिर जब आप कंप्लेन करने भी जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब हम फंस गए कंप्लेन करने गए, बहुत सारे लोग तो पहली बात कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन भी कहाँ करें। एक भी अच्छा पॉइंट निकल कर आया है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है वो हो सकता है ऑलरेडी इस जाल में पहले से फंसा हुआ
0: जी, बहुत लोगों के साथ ऐसा
1: हो भी चुका होगा, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें कंप्लेन कहाँ करनी है और किससे करनी है और किस वे में कंप्लेन करनी है ना। तो उसके लिए भी आपको सेबी में ही कंप्लेन करनी होती है।
0: अच्छा
1: जी, और वहाँ पे प्रूफ लगता है कि आपने कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किस अकाउंट में पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के सब कुछ होने चाहिए होता है, किस एवेज में पैसा दिया, वो ऑथराइज बॉडी को दिया या लोकल पर्सन को दिया, वो सब आपको वहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। सेबी की वेबसाइट के ऊपर ही कंप्लेन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ती है। आप जिस एरिया में लोकल में वहाँ पर जाकर FIR भी कर सकते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो पाती है।
0: ऑनलाइन लेकिन हो सकता
1: है, ऑनलाइन सेबी की वेबसाइट पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए ये सब चीजें संभाल के रखना
1: होता
0: है जी। तो अगर हम जैसे अकाउंट बनाते हैं तो क्या चीज है ऐसी, अगर मैं आपको पूछूं कि जो ध्यान रखनी है चीजें हमें, तो क्या आप बताएंगे कि आप अगर शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर चुके हैं, तो चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो आपका, डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे टाइम हो कितना आपको देना है उसके लिए, क्योंकि कई बार अगर हम पूरा ही टाइम उसी में लगे हुए हैं और अपने और बाकी काम को छोड़ दिया है हमने, तो वो भी ठीक नहीं होता है, तो क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं मतलब जो हमारा यूथ है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कभी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि फोकस आपको आपके पहले अपने एरिया पे करना है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस चीज में आपकी मास्टरी है उसमें करें। उसके बाद जब हम इसमें धीरे धीरे एजुकेट होते हैं, ऐसा नहीं ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, लेकिन वो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद बनेगा। कम से कम मिनिमम आपको 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए।
0: पेपर ट्रेडिंग
1: मतलब आपने रियल में पैसा नहीं लगाया है, मार्केट आपके सामने चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है ना, आपको बेसिक नॉलेज आ गई है, तो आपने टेक्निकली इसका चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है ना, बुक्स आपके बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, उनको रीड करा, चार्ट ट्रेडिंग करा है ना, सब एनालिसिस धीरे धीरे धीरे आती है। वो उसके बिहाफ में फिर आपको खुद आइडिया हो जाता है, 6 महीने ट्रेडिंग करने के बाद में आपका खुद का एक पोर्टफोलियो डिजाइन होता है कि मैंने 6 महीने है ना काम किया ऑफलाइन, मतलब पेपर ट्रेड करा, तो क्या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, आ भी रहा है नहीं आ रहा है। और पेपर ट्रेडिंग में भी एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो रियलिटी में आप फंड लगा सकते हो उतने ही फंड का पेपर ट्रेड करना है।
0: राइट, तो मतलब एज इफ सब कुछ हो रहा है लेकिन पेपर
1: हो रहा है। अब पेपर ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि जैसे वहां पे तो पेपर ट्रेडिंग हो रही है, तो आपने एक 1 CR का फंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब रियलिटी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख भी नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा,
0: तो आपको प्रैक्टिकल नहीं पता चलेगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या
1: होने वाला है। जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे मेरी 40,000 की सैलरी है, मैं हर महीने 5 से 10 हजार रूपए सेविंग करता हूँ, मैं साल के 50-60 हजार रूपए सेव कर सकता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी एक साल की सेविंग से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पेपर ट्रेड में भी 40-50,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करके नोट डाउन करूंगा कि आज मुझे 400 का लॉस हुआ, आज मुझे 400 का प्रॉफिट हुआ, आज मैं 2,000 का लॉस हुआ, तो एक आपका 6 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन होगा है ना, उसके ही रिकॉर्ड के ऊपर फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा पूरी तरीके से। और जैसा आपने बताया था रविंद्र जी NISM क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने जो क्वालिफिकेशन ली, ये कितने समय के अनुभव के बाद या क्या स्टडी करने के बाद ये आपने अप्लाई किया या फिर आप क्वालिफाई हुए?
1: तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ बेसिक एकेडमिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे तो मैं MSc बॉटनी हूँ, मेरा फील्ड बिल्कुल मतलब अलग है, मैंने बॉटनी में MSc कर रखा है खोलकर कॉलेज इंदौर से, बट धीरे धीरे मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने इसके लिए जो रिसेंटली जो बोलते स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया, तो वहां पर मुझे पता था कि अच्छे से काम करना है तो इक्विटी डेरिवेटिव का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में आप किसी को काम करवाते हैं म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर मैं जो हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है जो ऑथराइज बॉडी है वहां पर जाके इसका जो फॉर्म फिल होता है उसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन डेट वो देते हैं, उस डेट पर आपको जाके ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है और उसके फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है।
0: ओके, और डेफिनेटली आप बता तो बहुत सिंपली रहे हैं, लेकिन हाँ इसके लिए नॉलेज
1: बहुत ज्यादा। वैसे तो मुझे ओवरऑल 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, काम करते करते मुझे 10 साल हो चुके हैं इस मार्केट में, और जैसे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और किस

0: तो ये आपके काम का। अगर आप ये सोचें कि हाँ मैंने पैसा लगाया मुझे बहुत कुछ मिल जाए एकदम से, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी
1: होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसका एक पार्ट आपको और बता दूं मैं कि जैसे डब्बा ट्रेडिंग भी होती है ना, कई लोग उसमें भी फंस जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि वो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हुए फिजिकली रजिस्टर्ड मेंटेन करके भी लोगों को ट्रेड करवाते हैं, वो फिर उनके लॉसेस का सारा पैसा वो रख लेते हैं। तो उससे भी बहुत सतर्क होना जरूरी है। मतलब राजस्थान और गुजरात में जैसे कि ऑल ओवर कभी हम इंडिया की बात करें तो स्टॉक मार्केट में केवल 2-3% लोग ही ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में। और यही हम रेशो कभी अमेरिका में देखें तो मोर देन 50-60% लोग काम करते हैं।
0: बहुत अंतर है,
1: बहुत ज्यादा अंतर हो गया। और इवन तो मैं आपको बता दूं केवल ये कोविड का जो पीरियड आया था उसमें ही ट्रेडर और इन्वेस्टर की जो संख्या है वो बढ़ी है, अदरवाइज हम 1% भी ट्रेड नहीं करते थे।
0: अच्छा, तो बहुत
1: ज्यादा आया है। बहुत मतलब अब जो है ट्रेडर की संख्या में उछाल आया है, हम 4% लेकिन वो भी अभी हम ज्यादा पड़े कोविड के प्रिपरेशन में।
0: ओके, तो हमें फ्रॉड से बचना है और जैसा आपने कहा कि पहले अपने एजुकेशन में काम करना है, दूसरा स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ नहीं लगा देना है, और जैसा आपने कहा सेबी और इन संस्थाओं के बारे में आप पढ़ें जानें और वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं कुछ कुछ गलत हो तो, और सीख भी सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। हमें आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये भी पता चला क्या करना है और क्या नहीं करना है। डेफिनेटली ये इंटरव्यू सुन के आपको एक बैकग्राउंड तो जरूर मिल गया होगा दोस्तों, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो और समझिए पहले इस चीज को, और बिल्कुल भी गलत छलावे में मत आइए। कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं होता है, हो भी जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता है जीवन में। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू दोस्तों, आपका भी अगर कोई सवाल है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9414151415 यानी 9414151415। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: घर सुनो दुनिया की खबर।
1: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
2: वेलकम दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए, तीन खूबसूरत कहानियां मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। एक है जीवन दान देना। क्या समझती हो जीवन दान देना? इस पूरी जो वर्ड्स है, तीन वर्ड्स है, जीवन दान देना, क्या समझते हो रूहानी?
3: मैं ऐसा सोचती हूँ कि जीवन दान देना का मतलब अपना जीवन सैक्रिफाइस कर देना कुछ अच्छी चीज के लिए।
2: ओके, और जीवन दान देना, सैक्रिफाइस खुद नहीं करना, इस तरीके से कार्य को करना कि आप किसी के जीवन को बचा सके या उसे बेहतर बना सके। चलिए दोस्तों, पहली कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज की उड़ान में। सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: ये कितना नीचे चला गया है, कहाँ देखूं तो जरा। लो, ये कुआं भी सूख गया।
5: क्या बात है, बेटे की सांस की तकलीफ ठीक हुई?
4: नहीं जी, पहले जैसा था वैसा ही है। आप वैद्य जी से मिलकर आए क्या?
5: शाम को पीपल पेड़ के नीचे बैठेंगे सारे, सभी के घर में यही हाल है, किसी न किसी को सांस की तकलीफ हो रही है।
4: अब क्या होगा जी?
5: जो भी भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जल्दी से कुछ कीजिए ना वैद्य जी, बेटे की सांस की तकलीफ तो बढ़ती जा रही है।
6: जी हाँ वैद्य महाराज, मेरे शरीर में भी अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, जरा सा चलते ही हाफ जाता हूँ आजकल मैं।
7: सब कुछ दिख रहा है मुझे, पर अब क्या करे बताइए।
8: मेरे हाथ में जितना था मैंने उतना तो कर दिया, लेकिन
7: अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा।
5: आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है वैद्य जी।
7: कुछ तो कीजिए वैद्य जी, कुछ तो कीजिए।
8: कहीं पर भी एक भी हरी पत्ती नहीं दिख रही, आखिर दवाई बनाओ कैसे?

0: क्या हुआ? एक गिलास पानी ही तो मांगा था मैंने।
1: गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ मत। एक घड़ा पानी लाने के लिए जान आफत में आ जाती है मेरी। हाँ,
0: कैसा दिन देखना पड़ रहा है, अब पानी भी हिसाब से मांगना पड़ेगा।
2: तुम्हें जिस पेड़ के बारे में बताया था वो मिला क्या तुम्हें?
0: नहीं वैद्य जी, 5 पीढ़ियों से पौधों का काम करते हैं, पर आप जिस पेड़ के बारे में बोल रहे हैं वो पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं।
2: सिर्फ उसी पेड़ के जड़ में ही इन सब बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है।
0: हाँ, मैंने अपनी आँखों से तो नहीं देखा, पर पिताजी से एक बार मैंने ये पौधे के बारे में सुना था।
2: अच्छा, कहाँ है वो पेड़?
0: वो धवलपुर के पश्चिम में कहीं तो है।
2: फिर मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, देखता हूँ क्या होगा।
0: संभल कर जाइएगा वैद्य जी, पिताजी से सुना है कि पेड़ काफी खतरनाक है, वहाँ के कोई उसके आसपास नहीं जाता।
2: क्यों, क्या है उस पेड़ में?
0: मुझे तो उतना ही पता है, आप ही देखिए जाकर, जो भी कीजिएगा संभल कर कीजिएगा।
2: हाँ हाँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये रहा, यही तो वो पेड़ है, किताब में जैसा लिखा था हूबहू मेल खा रही है उसके साथ। बस कुछ दिनों की बात है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी औषधि से सबकी सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी।

0: ये क्या? ये कैसे मुमकिन है?
1: नहीं, नहीं,
0: बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ।
2: कौन बचाएगा तुझे यहाँ? अभी अभी तो चाकू से काट रहा था तू मुझे।
0: दवाई बनाने के लिए आपका थोड़ा सा जड़ चाहिए था, मैं सिर्फ उतना ही लेने आया था।
2: और उसके बाद थोड़ा थोड़ा काटते काटते एक दिन पूरा ही काट डालता।
0: नहीं,
2: इतने अरसे से यही होता आ रहा।
0: छोड़ दो, दया करो, छोड़ दो मुझे। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है।
2: नहीं, तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तेरा शरीर हवा में घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा तू।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
2: एक ही शर्त पर तुझे अपना शरीर वापस मिल सकता है, तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा।
3: माँ, माँ, नहीं माँ, आज पिताजी सतीश काका के घर पर भी नहीं गए। कितनी सुबह सुबह निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तू खाना खा ले बेटा, रात काफी हो चुकी है।
0: मीनू बेटा।
3: पिताजी, आप, पिताजी कहाँ है आप?
0: यहाँ हूँ बेटा, यही हूँ मैं।
3: कौन कौन बात कर रहा है? कहाँ है पिताजी? पिताजी कहाँ है आप? मीनू, बेटा मीनू, लगता है ये भूत की पुकार है, भूत की पुकार है।
0: नहीं आरती, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो।
3: अरे कोई है क्या? जल्दी से आ जाओ हमारे घर, भूत घुस आया है मेरे घर, भूत घुस आया है, जल्दी आओ।
0: मेरी विनती है, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम, उसके बाद तुम।
3: जा, मैं कहती हूँ जा ऐसे, जा, वरना मैं झाड़ू से मार मार कर निकाल दूंगी यहाँ से। जा जा जा, निकल यहाँ से, जा जा यहाँ से, जा जा।
0: आरती, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा।

0: खबरदार खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अभी
1: नीरज, मैं वैजी हूँ।
0: वैजी?
1: तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो पेड़ सच में काफी खतरनाक पेड़ है।
0: ये क्या कह रहे हैं?
1: उसी औषधि पेड़ का जड़ काटने गया था मैं, और उसी के श्राप से ही अदृश्य हो गया हूँ। मुझ में प्राण है लेकिन शरीर नहीं है मेरे पास।
0: सत्यनाश,
1: तुम एक बार मेरे साथ चलोगे वहाँ पर?
0: लेकिन अगर मुझे भी?
1: नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो वहाँ पर।
0: पर मैं वहाँ जाकर आखिर करूँगा क्या?
1: तुम तैयार हो जाओ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा तुम्हें मैं।

0: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दया करो छोड़ दो मुझे,
1: छोड़ दो। मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने, अरे छोड़ दो मुझे।
2: उसे छोड़ दो, दया करो उसे छोड़ दो, हम तो आपका शर्त पूरा करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर।
3: मेरी शर्त?
2: हाँ, मैं वही वैद्य हूँ जिसे आपने अदृश्य कर दिया था।
3: ओ तू, और ये कौन है?
2: ये मेरा दोस्त है धीरज माली।
3: ठीक है, अगले पूर्णिमा में अगर वहाँ से शुरू करके तेरे गांव तक 50,000 पेड़ ना लगा पाया तू, तो तुझे तो अपना शरीर वापस मिलेगा ही नहीं, और इस माली की किस्मत में भी बहुत दुख लिखा है।
1: लेकिन पूर्णिमा तो बस 4 दिनों के बाद ही है, और ये कैसे मुमकिन होगा?
4: उस वैद को तो पहले ही भूत खींच कर ले गया है, और अब इस लड़के का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है।
5: आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती।
6: इसका दिमाग पूरा खराब हो गया है।
1: रुको रुको रुको, देखो धीरज, हम सब वेद जी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन तुम जो कहते हो वो कैसे मान ले हम? पेड़ बात कर रहा है और वेद जी अदृश्य हो गए हैं, अब 50,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तुम कुछ दिन आराम कर लो धीरज, आराम कर लो।
4: हाँ हाँ, जाओ जाओ, दिमाग की दही मत करो, घर जाकर दही खाओ।
6: हाँ, उससे पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी है।
4: ए, चलो चलो चलो, यहाँ खड़े रहकर बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं, घर चलो।
1: हाँ हाँ, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, काफी मुसीबत है और ऊपर से ये सब बकवास।
5: अब क्या करेंगे वेद जी?
4: कौन?
2: मैं सीताराम वैद्य।
4: अरे सर्वनाश हो गया, अरे कोई है क्या, बचाओ मुझे।
7: चुप,
4: मुझे छोड़ दीजिए वैद्य जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे।
2: छोड़ दूंगा, तू वादा कर अगले 3 दिन खाना पीना भूल कर सिर्फ पौधे लगाएगा।
4: सिर्फ पौधे ही लगाने हैं ना?
2: हाँ, वरना गर्दन मरोड़ कर मुरब्बा बना दूंगा तेरा।
4: अरे नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा वैद्य जी, मैं वादा करता हूँ।
2: याद रखना।

0: वादे के मुताबिक पूर्णिमा के पहले ही 50,000 पौधा लगा चुके हैं। अब मेरा शरीर वापस कीजिए। देख धीरज धीरज, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। धीरज, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ।
1: ये तो होना ही था वेद जी।
0: मेरी गलती की सजा मुझे मिल गई है। आपसे बस एक ही निवेदन है, गांव के एक एक इंसान ने 3 दिनों तक बहुत मेहनत की है। अगर मैं दवाई लेकर नहीं गया तो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो जिंदा ही नहीं रहेंगे।
2: दवाई की जरूरत नहीं होगी।
0: मतलब
2: पेड़ नहीं थे इसलिए इतनी समस्याएं और बीमारियां थी। इंतजार करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति सबकी माँ है, उसका ख्याल रखना सीखो।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर

0: मैं तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
2: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: भैया कितना आराम है यहाँ।
1: अच्छा हुआ जो यहाँ चूल्हा मिल गया है ना,
0: वरना इस ठंड में हमारी तो कुल्फी ही जम जाती भैया।
2: अरे राधा, चूल्हे की आंच बुझाई नहीं?
0: अरे भैया ये तो आंच बुझाने की बात कर रहा है।
3: नहीं रहने दीजिए, सारी लकड़ियाँ जल ही चुकी हैं और जितनी बची है उनका जलना या बुझना बराबर ही है। रहने दीजिए, कमरा गर्म रहेगा, मत बुझाइए उन।
2: हाँ ये सही रहेगा, रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है ना।
3: अब घर में पुराने कपड़े भी तो नहीं है जो झोपड़ी के छेद को मैं बंद कर दूं। चलिए अब पानी पीकर सो जाइए, चलिए।
0: अच्छा भैया, माँ हमें क्या कहकर बुलाती थी?
4: छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे।

0: अरे क्या गोपी भैया, आज आप सुबह सुबह फिर से आ गए।
1: दे दो ना भाई, तुम्हारी कमाई तो कितनी अच्छी है।
0: अच्छा, कमाई अच्छी है तो क्या मैं आपको बिना पैसे के ही चमड़ा दूँ?
1: अरे बिना पैसे के क्यों दोगे, जूते बिकते ही मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ।
0: नहीं गोपी भैया नहीं, मैं उधार का धंधा करता ही नहीं। ये इतना थोड़ा सा चमड़ा तो कोई लेगा भी नहीं, इसमें तो एक पैर का जूता भी नहीं बन पाएगा। ओ गोपी भैया, अरे जरा रुको रुको, ये देखो, ये थोड़ा सा चमड़ा पड़ा है, अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं।
1: हाँ, क्या तुम मुझे ये दोगे? दे दो, दे दो, हाँ दे दो, हाँ हाँ।

0: चावल और आटा कुछ भी नहीं मिला आपको?
1: नहीं, बस ये थोड़ा सा चमड़ा मिला है।
0: पर इतने थोड़े से चमड़े से क्या होगा?
1: शायद एक जूता बन जाए, वही बना लूंगा मैं।
0: पर एक जूते से क्या होगा जी, कौन खरीदेगा?
1: कोई खरीदे या ना खरीदे, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना राधा। कहाँ जा रही हो, बैठो ना इधर।
0: बगीचे से कुछ पत्ते चुनकर ले आती हूँ, रात को जला दूंगी तो कुछ ठंड कम हो जाएगी।
2: जी सुनिए, सुनिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
1: पेट खाली है ना, इसलिए ठंड ज्यादा लग रही है। मुझे भी थकान हो रही है, अब बचा हुआ कल बनाऊंगा।
3: भैया, ये मोची और उसकी पत्नी कितने गरीब है ना।
4: हाँ, मोची इतनी कोशिश करता है फिर भी खाने का जुगाड़ नहीं कर पाता।
3: हम भी तो जाकर भी ठंड में घर के बाहर नहीं घूमने जा सकते ना, हमारे पास ना कपड़े हैं ना जूते, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं तो ये सोच रहा था भैया कि हमने इनके घर में आश्रय लिया है, इस एहसान के बदले हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ना भैया।
4: लेकिन हम क्या कर सकते हैं
3: वो देखिए।
4: चलो।
1: ये जूते, दो जूते, पर ये कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ काट कर ही रखे थे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। राधा, ये देखो देखो।
0: अरे वाह, ये तो जूते हैं, वो भी एक जोड़ी। ये दिखने में कितने सुंदर हैं जी, देखिए तो जरा, वाह वाह। इन्हें लेकर आप दुकान पर बैठिए, देखिएगा ये लोगों को जरूर पसंद आएंगे।
5: आइए।
6: अरे वाह, कितने सुंदर जूते हैं, ये तो पहनने पर बहुत आराम देंगे।
7: कहाँ है, जरा दिखाओ तो। तुमने जो एक जोड़ी जूते बनाया, और क्या खास है इनमें, जरा मुझे भी तो बताओ।
8: नमस्कार जमींदार बाबू।
7: वाह, ये तो बहुत ही मजबूत है, ये मेरे पैरों में तो नहीं आएंगे, पर मेरे बेटे के पैरों में जरूर आएंगे। ये तो मैं ले जाता हूँ, ऐसे ही तुम मेरे लिए दूसरे बना कर रखना। ये लो एडवांस भी दे देता हूँ।
1: राधा देखो, चावल और आलू लाया हूँ मैं, ये देखो। बहुत दिनों बाद आज चावल और आलू का भरता खाऊंगा मैं। हाँ,
0: इसका मतलब जूते बिक गए है ना।
1: हाँ, जमींदार ने अपने बेटे के लिए खरीदे हैं और अपने लिए बनाने का एडवांस भी दिया है मुझे।
0: तो आप चमड़ा नहीं लाए क्या?
1: लाया हूँ ना। जानती हो, बहुत दिनों के बाद चावल खाकर बहुत नींद आ रही है मुझे, कल सुबह पूरे मन से जूते बनाऊंगा मैं।
3: भैया सुना, आज इन्होंने चावल खाए हैं।
4: तभी तो, आज चूल्हा भी अच्छा गर्म है।
3: चलो भैया, हम अपने काम में लग जाते हैं।
4: चलो।
1: कोई मेरे लिए जूते बना रहा है, देखो ना राधा, देखो। ये जूते जमींदार को जरूर पसंद आएंगे। हाँ,
0: पर ये बना कौन रहा है?
1: मैं भी तो वही सोच रहा हूँ राधा, हमें आज से इन पर नजर रखना पड़ेगा।
0: क्या करेंगे? वो देखो, ये लोग कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं।
1: रुको रुको, मुझे देखने दो, ये लोग काम कैसे कर रहे हैं।

0: सुनिए ना, वो दोनों छोटे बच्चे इतनी ठंड में नंगे बदन रहते हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा था उन्हें देखकर। सुनिए, मैं उनके लिए दो कपड़े बना दूं क्या?
1: मैंने देखा वो नंगे पैर भी थे, मैं उनके लिए दो जूते बना दूंगा। हाँ
0: तो फिर आप थोड़ा उनके लिए भी ले आइएगा, मैं उनके लिए टोपी बना दूंगी।
1: ठीक है।
2: अरे भैया, ये सब तो बने हुए ही है।
3: हाँ, साथ में कपड़े और टोपी भी है, लगता है ये हमारे माप के हैं। चलो पहन कर देखते हैं।

0: कपड़े पहनकर हम लग रहे हैं राजकुमार। आज से हम मोची का काम नहीं करेंगे। अब हम आजाद हैं, खुशी से नाचेंगे हम ताक दिन। अब हम नहीं लौटेंगे यहाँ, हम घूमेंगे यहाँ वहाँ, जहाँ हमारा मन करेगा।
1: अरे ये लोग तो चले गए, उन्होंने कहा कि अब वो काम नहीं करेंगे, अब क्या होगा जी?
2: अरे फिक्र किस बात की है राधा, फिक्र मत करो, मैंने उन्हें देखकर उनका काम सीख लिया है। अब मैं अकेले ही जूते बनाकर दिखाऊंगा। हाँ

0: प्रीति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कुछ बेहतरीन कहानियों के बाद मैं मोना और मेरे साथ
2: रोहानी।
1: चलिए, हम दोनों दोस्त वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। और अभी सीधे चलते हैं अगली गीत की तरफ, जिसमें है एक ऐसा गीत जो द बर्निंग ट्रेन से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इस गीत में मौजूद है किस प्रकार किसी भी परिस्थिति में कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, उनके मनोबल को टूटने न दिया जाए, यही इस गीत में जुड़ा हुआ है। और आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो
2: मुस्कुराते रहो
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM।

मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक। आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी माई विलेज माई एरिया, और कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। नाम कितना सुंदर है, प्रोग्राम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल। जब नाम सुनते हैं अपना गांव और अपना अंचल याद आता है। रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही है, जो प्रतिभाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच एक स्टेज प्रदान करती है। आबरूड ब्लॉक के साथ साथ आज पिंडवाड़ा ब्लॉक में हम पहुंचे, क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि करती रहती है। तो आज हमें खुशी और हर्ष का साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कौन सा गांव?
1: धनारी।
0: धनारी, बोलो जोर से, धनारी। तो आज धनारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज बारी बारी सुनने को मिलेगा, हमें खुशी है। और संस्था प्रधान को भी धन्यवाद देते हैं, जो कि विष्णु पितामह जैसे है, कर्णधार है, पूरा टीम को लेकर चलते और एक परिवार जैसे। राज के विद्यालय और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिलित सहयोग से आज विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट, बच्चों का हुनर, बच्चों का भाव भावना को जन जन तक पहुंचाएगी। तो देर किस बात की, पहले संस्था का संस्था प्रधान के साथ साथ सभी को स्वागत करते, सभी अपने के लिए और सर जी के लिए ताली बजाओ जोर से बच्चे। क्या बात, आज तालियों का साथ स्वागत करते हैं। हम संस्था प्रधान को बाद में सुनेंगे, पहले हमारा होमनहार बच्चे जो कि पार्टिसिपेंट से, तो आज बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। सर्वप्रथम हम किसको बुलाना चाहेंगे, सर आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं सतीश कुमार सुथार स्थानीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर हूँ। रेडियो मधुबन में आप सभी का स्वागत है, और पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से भी सर का भी हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कक्षा 9 से मनीषा कुमारी यहाँ आएगी और अपनी प्रतिभा दिखाएगी। मनीषा कुमारी कक्षा 9।
3: मनीषा कुमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी। मनुष्य

कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत जोर दे वीर जवानी का, चंबल चंबल के चलना रे बंधे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी

0: नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत गोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
1: बहुत ही शानदार प्रस्तुति कक्षा 9 की बालिका मनीषा कुमारी के द्वारा, मनुष्य जन्म अनमोल है। आगे इसी कड़ी को हम बढ़ाएंगे,
2: जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ना चाहिए। और बढ़ने के पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति हम सुनेंगे, क्योंकि आप सब सुन रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी की आवाज, जो कि पिंडवाड़ा ब्लॉक सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। तो हमारा दूरस्थ जगह में जहां पर अभी भी इंटरनेट नहीं है, इस माध्यम से FM का माध्यम से सुन रहे, YouTube का माध्यम से और लिंक का माध्यम से बच्चों का आवाज सुन रहे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। अगला प्रस्तुति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अपना गीत सुनिए, इसके बाद बच्चों का आवाज सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज तो स्कूल का प्रांगण ही स्टूडियो बन गया। इतना साइलेंस, अनुशासन, स्वशासन सही में देखने को मिलता है और इसका श्रेय तो विद्यालय को जाता है, क्योंकि शिक्षकगण का जो प्रयास सही में बच्चों का अंदर में देखने को मिलता है। बच्चे शांत में बैठकर अपना स्व अनुशासन में खुद का रिमोट खुद के हाथ में रखे हैं इसीलिए सरली को भी इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। देर नहीं करते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सर जी को माइक देते हैं। सर, नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए किसको बुलाना चाहेंगे?
1: अर्जुन राव, कक्षा 9 से।
0: सर, अर्जुन के बारे में थोड़ा बताइए।
1: अर्जुन राव कक्षा 9 में है, बड़ी ही अनुशासित बालिका है। विद्यालय के हर कार्यक्रम में ये आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है और विद्यालय के प्रार्थना सभा में भी इसका काफी सक्रिय योगदान रहता है। अब हम सुनेंगे आगे की आवाज अर्जुन राव से।
0: आपका नाम क्या बताए?
2: मेरा नाम अर्जुन राव है।
0: अच्छा, कौन रखी है आपका नाम?
2: मेरे पिताजी।
0: क्या नाम है पिताजी का?
2: विक्रम जी।
0: क्या करते हैं?
2: कपड़ों की दुकान में काम करते हैं।
0: आपका अच्छा दोस्त का नाम बताएंगे? सहेली
2: खुशी।
0: वाह, क्या नाम है, अच्छा गुण है खुशी। खुश रहना है और खुशी बांटना है। खुशी आज तो खुशी हमारा सभी श्रोता मित्रों को खुशी कराएगी गीत के माध्यम से, लेकिन इसका पहले उनका खुशी का राज, खुशी को क्यों, कितना दोस्त है, कितना सहेलियां है, फिर भी खुशी को क्यों चुने, उसके पास क्या विशेषता है जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगते हैं?
2: खुशी सरल है और वो बहुत हसमुख है और वो बहुत सहायता करती है मेरी किसी भी चीज में, और सबसे खास बात उसकी वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है।
0: वाह, ये सब गुण कभी कभी चोरी किए?
2: चोरी तो नहीं किए, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
0: अच्छा, ये बात है, इसलिए उसको दोस्ती रखी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे दोस्ती हमेशा रहना चाहिए?
2: हाँ, हमेशा रहना चाहिए।
0: और उनका जो गुण विशेषता बताए ना,
2: हाँ?
0: नाम जैसे काम भी उस तरह करती है, हाँ? इसलिए आपको उनको दोस्ती बनाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़ा होकर तुम क्या बनेगी? तुम
2: टीचर।
0: अरे वाह, हमारे टीचर्स लोग भी सुन रहे हैं। शिक्षक, टीचर मतलब शिक्षक। शिक्षक क्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चंद्रयान में क्यों नहीं जाएगी?
2: क्योंकि टीचर जो है वही बच्चों को सिखाते हैं और वही आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हैं।
0: अरे वाह, क्या पूरा अंडरलाइन करने की बात बताई आज। शिक्षक का पास कला है, वो जैसे चाहेगी उस तरह बना पाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, राष्ट्रपति, सभी को बना देगी टीचर। बा, टीचर्स के लिए ताली बजा भाई जोर। बा, ये होना चाहिए, क्योंकि देश का जो क्या बोलते हैं, देश का जो पिलर है शिक्षक, और कौन, सैनिक, और कौन सा बच्चे बोलो, कृषक, किसान, तीन देश का पूरा रीढ़ है, पिलर है। जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, और आप हम सब है, ठीक है। चलिए प्रस्तुत करेंगे, कोई डर
2: नहीं,
0: कोई झिझक
2: नहीं।
0: वाह, पहला बार मिले फिर भी इतना झिझक नहीं, डर नहीं, इसका राज क्या है, क्यों डरते नहीं?
2: क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है।
0: वाह वाह, क्या बात, कितना साल इतना स्कूल में, हर स्कूल में जाते, लेकिन इनका जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, किसको देना चाहेंगे, जो आपका पास इतना कॉन्फिडेंस है, किसको देना चाहेंगे?
2: मैं इसका श्रेय मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ।
0: आज तो बच्चे रोक नहीं पाते अपना तालियों को बच्चे उमंग उत्साह देते हैं, क्योंकि एक क्या चाहिए बच्चों को, जो स्टेज में भाषण देते हैं बा कुछ बोलते हैं तो उनको ताली चाहिए, है कि नहीं? बहुत अच्छा, चले शुरू करते हैं।
2: चार

तुम्हारा माता पितारी कर सेवा रे, माता पितारी कर सेवा रे। दिक्करी तो देखो मारी घनी समझनी, दिक्करी तो देखो मारी घनी समझनी, कर दिए नी मलवा आई।

0: छुन दी उड़ावे, अमे कोई ओढ़न आवारी, अमे कोई ओढ़न आवारी। चारो धाम है मात पितारा, चारो धाम है मात पितारा। चरणों में है भायारी, चरणों में है भायारी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नाम का साथ। चलिए अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

है मुझको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से

वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिस

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला हम सुन रहे थे माता पिता का जो महत्व। अगला प्रस्तुति के लिए मैं सर जी को स्वागत करते हैं। सर नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए,
1: अगली प्रस्तुति के लिए कक्षा 10 से तुषार प्रजापत आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। तुषार प्रजापत कक्षा 10 के विद्यार्थी है। विद्यालय में हमेशा अनुशासित रहते हैं, पढ़ाई में भी काफी अच्छे हैं। आगे की प्रस्तुति तुषार।
2: तलवारों पे सर वार दिए।

है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। है मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क़ बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा इस मुँह से निकल के खून कहे।

सर सोस भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पान सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जाना सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान रे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। भारत नाम सुनते तो देश नाम जब सुनते हैं कितना खुशी मिलता है। जिस देश में हम पले बड़े हैं वो देश के लिए देशभक्ति न हो ये हो ही नहीं सकता है। तो आज इस गीत का माध्यम से हमारा शहीद जवान के लिए देश के लिए एक अच्छा प्रस्तुति दिए, क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल मना रहे हैं और हम सब भारत के नागरिक के तहत देशभक्ति रग रग में होना चाहिए। और इस गीत का माध्यम से जो बताए बहुत सुंदर प्रस्तुति दिए सर। आजादी का अमृत महोत्सव से जो स्वर्णिम काल जब अगला 25 साल जो अमृत काल भारत मना रहे हैं, भारत का ऊपर में थोड़ा दो शब्द आप बताइए। भारत महान कैसे है और हम जिस भारत में रह रहे हैं, भारत अखंड भूमि कहते हैं, प्राचीन भूमि कहते हैं, देव भूमि कहते हैं, उसका संदर्भ में दो शब्द
1: जी। भारत महान क्यों है? हम सब बोलते हैं मेरा भारत महान, कहने से महान नहीं है। भारत ऋषि मुनियों की जमीन है। भारत के पास वो ज्ञान है जो विश्व के और किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भले ही विश्व में अव्वल नंबर पर है, जब उन्हें भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वो भारत की शरण में आते हैं। भारत के पास अनेकों ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल से भारत भूमि को महान बनाने में अपना योगदान दिया है। हम सब 1947 की आजादी के बाद हम सब स्वर्णिम भारत आजादी भारत का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। देशभक्ति गाने के बाद आप सबके चेहरे पे खुशी लाने के लिए मैं बुलाऊंगा कक्षा 12 की बालिका खुशी को।
0: खुशी अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम खुशी कुमारी, मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी में पढ़ती हूँ। आदरणीय संस्था प्रधान महोदय प्रिय गुरुजनों तथा बाहर से पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिथि गणों को मेरा नमस्कार। अब मैं अपने गीत की शुरुआत करती हूँ।

0: దామోదరం రామ నారాయణం జానకి వల్లరం. ధన్యవాద్.
1: बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर प्रस्तुति दी. आज तो हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया, क्योंकि भक्ति, देशभक्ति और मोटिवेशनल सॉन्ग सभी माता पिता का ऊपर में सभी गीत का आज भरमार हो रहा है. इसका श्रेय तो स्कूल को जाता है, संस्था प्रधान का साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो प्रभारी है उनको भी जाता है. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम और एक प्रस्तुति सुनेंगे, क्योंकि हमें तो जाने के लिए इच्छा नहीं हो, लेकिन समय को देखते हुए और अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे. लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन.

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। बच्चों का आवाज बारी बारी सुनने को मिल रहा है। ब्रेक का पहले जैसे हम बताए थे सभी का आवाज आज तो गुलदस्ता सभी वेराइटी आज मिल रहा है। तो देर किस बात की, अगला प्रस्तुति के लिए मैं रोक नहीं पा रहे हैं, माइक को देते हैं सर जी नेक्स्ट प्रस्तुति।
1: अगली प्रस्तुति के लिए कक्षा 12 से हिना पुरोहित आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए।
2: मैं हिना राजपुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कक्षा 12 में अध्ययनरत मैं आपके सामने आज नारी सशक्तिकरण के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। हमारे प्राचीन भारत से ही मान्यता है कि नारी को जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जहाँ पर हम नारियों की पूजा करेंगे वहीं पर वही एक देवी का रूप होती है। नारियों को हर एक महिला के पीछे देवी लगाकर हम उन्हें संबोधित करते हैं। यह देवी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के समय से या फिर हमारे सतयुग काल से ही हम देवियों को हर महिला को देवी के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि महोदय जिन्हें हमें समझाया था कि आत्मा और परमात्मा निराकार होते हैं और उन्हीं परमात्मा यानी कि ब्रह्म ने भी शिव और शक्ति दो रूपों को बनाया है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी माँ तीनों शक्तियों को बनाया है। परंतु फिर भी आज के आधुनिक काल में देखते हैं कि बालिका और नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परंतु 1947 के समय की बात करते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था। महिलाओं को एक हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें पाव की जूती के समान समझा जाता था। उन्हें किसी भी कार्य में मिलने नहीं दिया जाता था। उन्हें किसी भी कार्य में व्यवसाय में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। परंतु आज की स्थिति में तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास करती जाती है कि हम बालिकाओं को आगे प्रोत्साहन दें। बालिका शिक्षा के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं परंतु यह केवल सरकार के प्रयासों से ही हम इसे सफल नहीं बना सकते। इसके लिए स्वयं बालिकाओं को भी आगे आना होगा। बालिका शिक्षा के साथ साथ उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सीखना होगा जिसके कारण वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है। हमें बालिकाओं को आगे और प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, हर एक विद्यालय में बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। उन्हें अनेक छात्रवृत्तियों से लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ साथ बालिका भी निरंतर प्रयास करती रहती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और परंतु फिर भी हमें कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि आज भी नारियों के साथ शोषण होता रहता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। जैसे कि हमारे मणिपुर की घटना को देख सकते हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। परंतु फिर भी अगर हम भरपूर प्रयास करें तो और सरकार भी अपने और अच्छे से अच्छे अगर कदम बढ़ाए और बालिकाओं की शिक्षा की तरफ और निरंतर प्रयास करती रहे तो हम आज की स्थिति में और अधिक सुधार ला सकते हैं और आधुनिक भारत में हम बालिका और बालकों को एक साथ नजरिए से देख सकते हैं। धन्यवाद।
0: क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और खासकर वर्तमान समय का जो मांग है वो चीज को रखे अपना भाषण में, वक्तव्य में। जब दोनों बराबर हो गए और संबंध में सुधार होगा तो बुराई नहीं आएगा। जितना भी एग्जाम्पल दिए, हमारा सोच को एक पारिवारिक देखेंगे, विश्व एक परिवार है और सब आपस में जब ये संकल्प लेंगे समझ जब आएगा हम आपस में एक परिवार भाई बहन वा भाई भाई, तो भाई बहन का साथ इस तरह नहीं होता। घर में कभी होता है नहीं होता है, भाई बहन को कभी पात्र अंतर नहीं करते। जेंडर को जब देखते हैं लड़के का जितना अधिकार है लड़की का उतना अधिकार है कि नहीं। तो आज जो संसार में थोड़ा

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है बच्चों का साथ आज तो हम भी बच्चे बन जा रहे हैं तो सर जी को पुनः स्वागत करेंगे नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए सर
1: बच्चों के बाद अब हम सबके लाडले और जोशीले श्रीमान रामलाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ पधारे श्रीमान रामलाल जी श्रीमान रामलाल जी स्थानीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत है विद्यालय के हर कार्य में इनका सहयोग रहता है आदरणीय श्रीमान रामलाल जी
2: मैं रामलाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी सावन का महीना चल रहा है 15 अगस्त आने वाले है तो राजस्थान की धरती की महिमा का गुणगान करने वाला एक राजस्थानी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शोभा करा इन देश रे तो मुख सो करा बखान सारा में सिर मोर है वो तो प्यारो राजस्थान मारो तो कही जे ओ तो ऊंटो वालो देश जिन रे महिमा जाने है देश विदेश इन धरती रो मने अभिमानियो ओ इन परवारो प्राणियो आ धरती राजस्थान री इन धरती रो मने अभिमानियो ओ इन परवारो प्राण

उर में बामा सारो त्याग है। ओ जोहरी ज्वाला में पद्मन कियो स्नान हो, ओ पद्मन कियो स्नान हो, अधरती राजस्थान री, इन धरती रो मने अभिमान हो, ओ इन परवारा प्राणी हो, अधरती राजस्थान री, धोला धोला ताज महल मकराने निप जायो है, धोला धोला ताज महल मकराने निप जायो है, पूरब में पंजाब दिल्ली लोन मारो खायो है, ओ दुर्गारी तलवार कदेनी समाई म्यान में, कदेनी समाई म्यान में, आ धरती राजस्थान री, इन धरती रो मने अभिमान्यो, ओ इन परवारो प्राण्यो, आ धरती राजस्थान री, पुष्कर री धरती में देखो मोर पपैया बोले है, नसिया तारा गडरी मारा हीवड़ा में डोले है, ओ आबूरा पर्वत ने मारो।

0: सही में सभी को तो मन मुग्ध कर दिया और अपना बात रखें, किसी को भी नहीं छोड़ा, आप उससे लेकर पूरा भारत देश का भी वर्णन कर दिया, बहुत अच्छा इस तरह प्रस्तुत होने सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुत दिए, बचपन से प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं पर भी मिलता होगा तो इस तरह मंच मिलता है, आज रेडियो मधुबन एक मंच दिया जिस मंच के माध्यम से जन जन तक सर लोग का भी सुन रहे, क्योंकि जो हमारा श्रोता मित्र हो सकते हैं उनका दोस्त लोग भी टीचर्स गण भी सुन रहे होंगे सर को, जो जानते होंगे तो वो भी वहीं पर बैठकर ताली जरूर बजाए होंगे। तो नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हम चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, संस्था के जो स्कूल के जो मुखिया जिसको कहते हैं अपना भाषा में, लेकिन प्रिंसिपल महोदय उपस्थित है, तो उनका बिना कार्यक्रम अधूरा ही है, और कार्यक्रम का बारे में दो शब्द बताएंगे और उनको भी एक मंच मिलेगा, क्योंकि वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं, बच्चों का आवाज ही उनको प्रेरणा दे दिए, बच्चे इतने सुंदर प्रस्तुति दिए तो टीचर्स गण भी अपना बात को कैसे नहीं रखेंगे। तो चलिए सभी की तरफ से, सभी विद्वान टीचर्स और सभी विद्वान हमारा छोटे छोटे बच्चे के तरफ से और ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको स्वागत करते हैं सर जी। आप में जो विशेषता है, सही में जब यहाँ पर आए मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि इस तरह अनुशासन में नीट एंड क्लीन सभी में आप कराते हैं स्टाफ का साथ, आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज।
1: मेरा नाम हिंदूराम और मैं स्थानीय सरूगंज का ही निवासी हूँ, यहाँ पर मुझे ये 8वां वर्ष है, प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पूरी टीम के पूरे सहयोग के साथ में बहुत ही अच्छे से विद्यालय संचालन हो रहा है और बालक भी यहाँ पर बिल्कुल अनुशासित है और नैतिक शिक्षा यहाँ प्रार्थना सभा में दी जाती है, शिक्षा के दौरान कालांश में भी शिक्षक देते हैं, इससे विद्यालय का माहौल बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे हमने साक्षरता के संबंध में सर्वे किया और जो निरक्षर है उनके लिए हम आकर पेड़ी लगा करके वॉलंटियर के माध्यम से उनको शिक्षित करने का कार्य करेंगे। हमने जो विद्यालय आने योग्य बालक बालिका हैं और नहीं आ रहे हैं उनका सर्वे कराया, उनका बकायदा रजिस्टर संधारण किया और उनके साथ में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है उनके लिए भी हमारा विद्यालय हमारे साथियों के सहयोग से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करता है। फिर हम सामुदायिक सेवा और स्वास्थ्य स्वच्छता के अंतर्गत सतत साफ सफाई का सार्वजनिक कार्य करते हैं, साथ में कैंप लगा करके भी विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं। प्रार्थना सभा के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी जो बच्चों के संबंध में है और परिवार को देने के संबंध में है उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही जन जागरण के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के हो उन्हें रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से हम समाज के अंदर भी ये सूचनाएं, ये जो जानकारी है वो पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के बारे में भी जो जानकारी आई तो हमने बच्चों को तो बताई, लेकिन बच्चों के मार्फत अपने परिजनों को किस प्रकार से अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए उन्हें चाहे तो पत्र लिखकर या चाहे तो अपने शब्दों द्वारा तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से निषिद्ध करने हेतु प्रेरित करने के लिए भी हमारे द्वारा कहा गया। आपने अपना जो अमूल्य समय दिया है हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का, हमारे स्टाफ का, जो मान बढ़ाया है, इनकी टैलेंट को भी आगे आने का अवसर दिया है, तो मैं रेडियो मधुबन का और आप सभी बीके के जो भी पधारे हैं आगंतुकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे जो प्रस्तुति है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए।
0: जी सर, ताली बजाओ सर।
1: देखिए गीत तो कोई है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर स्थानीय निवासी हूँ, जैसे प्रारंभ ही मैंने बताया था, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ढोल बाजे जी रिपोग आप ही उभरेसा, तो सबसे पहले परमात्मा को याद करूंगा। सुप्रीम सोली और नेम थाउजेंड फॉर्म थाउजेंड हाउ टू राइट इनविटेशन संवन से जशोदा जे संवन से जे देव की जे संवन से

अरे रूप हजार कैसे लिखू कंकु पतरी। हम तो शिक्षा विभाग से संबंधित है इसलिए शिक्षा की ही बात करेंगे। जीवन कैसा बिन शिक्षा के सोचो ना, जीवन कैसा बिन शिक्षा के।

पढ़े लिखे के चार आंख और अनपढ़ के दो नैना, हो हो हो हो। अनपढ़ जन तो अंधे जैसा, अनपढ़ कभी न रहना, खुद भी पढ़ो औरों को पढ़ाओ भैया।

का प्रेरित करते हैं तो प्रेरणा जरूर मिलती है। इस कूलरे घंटी वागे टाबरिये कियो भणो भणो भणो भणो भणो भणो केवे है भाई।

में मारवाड़ी गीत है, हुक्का का पार्टी बस तो लावो नो लावो नो नी जावो बड़दो में मुंह भणवा जावो। ए छोरा वात प्रेम मेले नी रे नी जावो भणवा ने थो अरटे जाजे रे। हो बने बने पटवारी बनिया बने बने कलेक्टर, बने बने पटवारी बनिया बने बने कलेक्टर, मनिए भणवा मेलो काका थोरा गुण गावो काका, पार्टी बस तो लावो नो नी जावो बड़दो मैं मु बनवा जावो। मेरी आवाज वनवासी अंचल तक भी पहुंचती है। मारे इस कुल जाऊ हो तुरे मोही तो मोड़ो हो जो, मारे हाथे वाला मोने भी बने गिया ने मुँह तो लारे रे जो, मोई पार्टी पेण लावी आली रे इस कुल से तो जाऊं, ए मन सोटे हो जे बैणी या बैणावी आली रे बैणवो ही के जा जो। हमारे यहाँ पर सिरू जिले में एक प्रसिद्ध मेला है, साणेश्वर जी का पड़ता है, वहाँ पर कैसे गीत गाते हैं? हंडे सररो मेड़ो आयो सेल फूलड़ा सरियो मई तो एवड मेले, हंडे जैने टीकू दे जे सेल फूलड़ा, मे तो पोती मोला नोमो थोरा वासे ले यो सेल फूलड़ा। यहाँ का बहुत ही फेमस मेला है जो तीन जिलों का पड़ता है, गौतम जी का मेला। रे आकर अलक भाईड़ो दनारी में आइए,

दे हाई रे वापरवाने रुपया मोने माँ बापे दी दोड़ा रे। होली के अंदर हमारे यहाँ पर चंग पर गीत गाते हैं। मारो भमर भणियोड़ो अंधारे कागज वासे ओ, मारो भमर भणियोड़ो अंधारे कागज वासे ओ, एबीसीडी गिनती ने बारकड़ी वासे रे। भमर भणियोड़ो बोल भमर भणियोड़ो, भमर साथो नी कणे भणाया रे। भमर भणियोड़ो गुजरात से लगे हुए हम तो गुजराती संस्कृति का हमारे ऊपर असर है। गरबे हमारे यहाँ पर खूब होते हैं, लेकिन गरबे हम मारवाड़ी लोग हमारी मारवाड़ी भाषा में गाते हैं। बंधुड़ा हो बंधुड़ा, बंधुड़ा हो बंधुड़ा, बंधुड़ा रे दाइन जाओ मोतो घर रे, बंधुड़ा रे दाइन जाओ मोतो घर रे, मात पिता

बंदुड़ा बंदुड़ा हो बंदुड़ा मोरा गोमरा वे पारी सेठ बेगाया बोरे ओ माने स्कूले जावा ने असल बस तो लावो रे ए पार्टी रे लावो पैन लावो बस तो लावो रे ए पार्टी रे लावो पैन लावो बस तो लावो रे।

दुड़ा तुमसे चले आना चले आना तुम पढ़ने स्कूल में साढ़े साढ़े साढ़े सात बजे खेलने वाले खेलना छोड़ आ जाना तुम स्कूल दौड़ बस्ता पुस्तक और स्लेट लेकर आना साथ में जोड़ नहीं आए तो इस दुनिया में रह जाओगे पीछे चले आना तुम पढ़ने स्कूल में साढ़े साढ़े सात बजे अंत में आपके लिए भाई रे आज रे सोना।

0: बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है सही में, इतना विशेषता सर के पास है, ऑलराउंडर जिसको कहते हैं, कम समय में पूरा रचना कर दिए, रचयिता जिसका साथ है रचना कितना सुंदर होगा, और रचयिता परमात्मा को याद करते हुए रचना आज जो किए प्रस्तुतियां सभी वैरायटी, सही में एक सेकंड में पूरा व्यक्ति को देखकर रचना कर देते हैं। रेडियो मधुबन का बारे में सभी का बारे में बताए।

0: प्रोग्राम का पश्चात संस्था का संस्था प्रधान साक्षी दृष्टा रूप में देख रहे थे प्रोग्राम को, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। सर, इस प्रोग्राम जो रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो हो रही है, बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा कितना आवश्यकता है, तो इस संदर्भ में आपको कैसे लगा?
1: आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है किंतु शांति नहीं है। रेडियो मधुबन ने यहाँ आकर के किस प्रकार से आत्मा की शांति, मन की शांति मिले, इसके बारे में जानकारी कराई, साथ में बच्चों की टैलेंट को निखारने के लिए, टैलेंट को आगे लाने के लिए बच्चों को कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तुत करवाए गए और जिसका रेडियो मधुबन के द्वारा प्रसारण होगा। आपका ये कार्य बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए। यहाँ आपने विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के लिए हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में करने के लिए भी प्रेरित किया। केवल हमको ही नहीं, विद्यार्थियों को, जो आज का बालक कल का भविष्य है, कल का भारत है। साथ ही हम विश्व गुरु जो की बात तो करते हैं, लेकिन फिलहाल यदि मैं ऐसा कहूं कि हमारे बाप दादा ने घी खाया है, हमारी हथेलियां सूंघ लो, तो वही चरितार्थ हो रहा है। तो ये तभी होगा जब हम विश्व गुरु बनने लायक कार्य करेंगे, कृत्य करेंगे, अपने आचार विचार आचरण वो करेंगे। तो उसके लिए आपने बच्चों को ध्यान के साथ में सत्कर्म, किस प्रकार से जो आत्मा परमात्मा की जानकारी दुनिया के देश हमारे देश में आ रहे हैं, वो केवल इसीलिए, हम भले भौतिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम समृद्ध है। पहले भी हम दुनिया का मार्गदर्शन करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मैं रेडियो मधुबन का, मेरे इस विद्यालय परिवार के साथ साथ इस पूरे धनारी गांव की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें सन्मार्ग की ओर लाने के लिए एक कदम बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: और क्या आशा रखते हैं?
1: आशा यही है कि इस प्रकार से जो योग का और जो ध्यान का है, ये हमें अभ्यास के लिए वहां से कोई आ करके और प्रैक्टिकल रूप से समय समय पर कराते रहे तो उसका और ज्यादा अच्छा उपयोग होगा। अन्यथा क्या होता है, अभी आपने कराया और कुछ समय तक इसका प्रभाव रहेगा, फिर वापस बच्चे भूल जाएंगे और शिक्षक भी दूसरे कार्य में पड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आना स्वाभाविक है। तो समय समय पर आपका मार्गदर्शन और इस प्रकार से सहयोग मिलता रहे, आप यहां करके गाइड करते रहे और व्यवहारिक आप कराते रहे ध्यान, तो मैं सोचता हूँ वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। साथ में आपने दूसरी बात भी बताई थी, वो भी समय समय पर बताते रहेंगे तो क्या है कि बर्तन मांजने वाली एक जैसे कहे माता बहने जानती है कि नया बर्तन लाते हैं और उसको अपन लंबे समय तक एक जगह पड़ा रहता है तो उसकी चमक चली जाती है, लेकिन उसको मांजते हैं तो उसमें अंदर वही चमक आती है, तो वही मांजना हम आपसे अपेक्षा और आशा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, किसी स्कूल के बच्चों का टैलेंट को लेकर। आज हमें बहुत खुशी है, पहला बार आए हैं, फिर भी पहले सोच रहे थे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना सुंदर रूप में हुआ क्योंकि इस तरह अनुशासन और बच्चों का शुरू से अभी तक जाने के लिए इच्छा नहीं, बच्चे पूरा एकदम शांत में बैठे, इसका श्रेय तो जाता ही है। सबको धन्यवाद, खुद के लिए ताली बजाओ जोर से आप।

0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल सभी को नाम का साथ धन्यवाद।
1: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

खोखले रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है कहां है कहां है।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मैजिक
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अलग होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संकल्प, अलग अलग जीवन, लेकिन ये सभी चीजों से एक गुलदस्ता बन जाता है और एक ना मिले दूसरे से। हर किसी की विशेषताएं अलग होती है, तभी वो इंसान को यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कोई छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो जाते हैं और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उस उम्र में भी बच्चे बन करके रह जाते हैं, यानी कि मन से वो बहुत ही उमंग उत्साह से रहते हैं। तो ये भी एक जीवन का साधना है और इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी राम श्लोक भाई जी को। जैसे आप सभी को पता है, जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में हम योगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जीवन की यात्रा को हम जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय राम श्लोक भाई जी। भाई साहब, आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति
0: जी। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आप कब और कहाँ जन्मे थे, उस समय का माहौल क्या था, आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा हमें परिचय दें।
1: बहुत अच्छा और खुशी की बात है। जीवन जीने की कला की सब्जेक्ट है जिसको सभी की अभी जरूरत है। तो हमारा शरीर का अभी तो स्पिरिचुअलिटी में है, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम बात करते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर का नाम बीके डॉक्टर राज ऋषि राम श्लोक भाई। हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हजारीबाग। झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन झारखंड हजारीबाग, वहाँ से वहीं हम पढ़े। हम तो राजपूत फैमिली से हैं, हमारा नाम पूरा राम श्लोक सिंह। तो वहाँ हमारे परिवार से सारे बहुत रॉयल फैमिली में अपना खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों को, कई गांव में अपना रियासत था। ठाकुर ठाकुर के नाम से जानते हैं कि राजपूतों ठाकुरों की एक अपनी मुस्तैदी होती है। तो वहीं हम थे और वहाँ से फिर कमाख्या नारायण सिंह का आर्यन स्कूल में हम वहाँ से पढ़ाई किए 7 तक। उसके बाद हम धनबाद गोमो में से हायर एजुकेशन किए और वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से हम ISC का डिग्री पास करके फिर हमने सोचा कि सोशल सेवा किया जाए। और सबके दोनों प्रकार का है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत के, हजारों चीज़ों के, गाय बैल बस हर चीज़ जो लौकिकता में होती है से संपन्न थे।
0: तो आप कितने भाई बहन थे?
1: हम लौकिक में 3 थे।
0: अच्छा।
1: हम सबसे छोटे, हमारे एक बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी, लेकिन हम सोचते थे उनका तो मैरिज ये सब सारा हो गया और हमारा अधिक ध्यान पढ़ाई में रहता था।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारे सब ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ 10-15-20 बच्चे एक साथ थे। हमारे फादर 5 भाई थे
0: जी,
1: सब ज्वाइंट एक ही साथ रहते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो उसमें रहना खाना पीना सारा एक साथ होता था, खेती बाड़ी सब चीज़ें। फिर हम पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आज तक हम कभी 3rd डिवीज़न नहीं लाए। लाइफ में 1st, 2nd ऑलवेज। हम पढ़ते कम थे लेकिन मेमोरी का एक बहुत बड़ा वरदान था। हम भगवान को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि कोई शक्ति है, कोई पावर है। हनुमान जी को देखकर हम बहुत खुश होते थे। हनुमान जी की इतना ताकत कहाँ है कि एक हाथ से गदा उठाए, पहाड़ उठाए, एक पांव भी उठाए। यहाँ 2 टांग पे खड़े रहने से लोग थक जाते हैं
0: जी।
1: एक टांग में उठा कर कितनी ताकत। तो गांव में गुजरते थे तो हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहां जाकर कितना टाइम तक तो हम देखते रहते थे इतनी इसकी शक्ति का। तो हनुमान जी से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी पढ़ने के। इसका सारा तो कोई है नहीं कि इसका कोई चीज मांगे। और तो खेती बाड़ी का भी हमको बहुत अच्छी तरह नॉलेज, कई लोगों के हमको खेत में ले जाते थे अपना अंकल वगैरह। बचपन में हमारे फादर से ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम करीब 4th-5th पढ़ते होंगे उसके बाद। तो सभी फैमिली से पढ़ाई, उसके बाद हम 1968-69 में हमने सोचा कि कौन सा ऐसे कार्य करें, तो लगा मेडिकल करें और फ्री में सबको दवाई देंगे, सब करेंगे, गांव वालों के सेवा करेंगे, सोशल सर्विस। इसीलिए हम फिर अपना एडमिशन 1968-69 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हम वहाँ लिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ हम 4 साल के DHMS डिग्री करके। अब उसी समय जब वहाँ पढ़ते थे तो हम हमेशा एक कोई चीज ढूंढने का खोजी के आई वांट टू रिसर्च, सब चीज की हर चीज के जानने की जिज्ञासा रहती थी, चाहे राइट हो रॉन्ग हो क्या चीज, वो बाद में निर्णय करते थे। तो इसी तरह से तो सारा शहर में हम जब आए तो सारा शहर में हम घूमते रहते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस अड्डा हो या कहाँ कौन क्या कैसे क्या करता है। तो एक दिन एक हमारा दोस्त था, वो हमको मिले और बोला कि अरे भाई कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई है, वो ज्ञान सुनाती है। तो हम बोले कन्याकुमारी तो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहां से आकर के और बिहार में ज्ञान सुनावे, इनका इतना ताकत कैसी। तो हम बोले चलो देखें। तो हम दो तीन दोस्तों के साथ पहुंच गए वहां सेवा केंद्र पे, वहां लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हमने उस भाई को ले, हम बोले रे भाई बुद्धू ये कन्याकुमारी थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी है। तो उसने बोला कि अरे भैया क्या ब्रह्मा कुमारी कन्या सब कन्याएं हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, ये ज्ञान सुनाती हैं, सरस्वती हैं, कन्याएं सब हैं इसीलिए। तो हम बोले अच्छा। फिर उसके बाद लोग कोर्स करने के लिए, तो हम थे हमारे साथ दूसरे दोस्त, हमारे साथ हमारे साथी हैं डॉक्टर बनारसी, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। तो उसको ले आए, फिर हम तो कहाँ ना रनर थे घूमने वाले, हम तो चले गए वहाँ से नेपाल घूमने के लिए। 5 अगस्त को एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो नेपाल हमारे से नजदीक था मुजफ्फरपुर से रक्सौल से था। तो हम एक वीक उधर चले गए, एक वीक हम बोले बनारसी भाई आप जाके कोर्स करो। उसने 7 दिन कोर्स किया। हम जब लौट के आए बोले बनारसी भाई आपने क्या क्या बहनों ने दीदियों ने क्या सुनाया। बोला हमको समझ में नहीं आया। हम बोले अरे क्यों, तुम पढ़ा लिखा है बुद्धू थोड़े है। फिर तो बोला नहीं हमको एक बात समझ में नहीं आया। बताया क्या? बोला शिव शंकर दो हैं। हम सोचने लगे कि शिव शंकर पहले एक थे अभी दो हो गए।
0: अच्छा
1: हाँ। हम बोले कि तो भाई ये कहीं दूसरे देखा, ये शिव शंकर दो कैसे हो गया। बोला मालूम नहीं उन्होंने कहा है। फिर बहुत सारी चीजें, खैर हम तो वेद शास्त्र के ऊपर बहुत स्टडी किया होता, हम 7वां क्लास में जो पढ़ते थे 8वां में, तो वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत हर एक चीज को पढ़ करके पूरा कर दिया। और सभी धर्मों में हम जाते रहते थे, मुस्लिम इस्लाम में जाकर के हम नमाज पढ़ना सीखा, पहला कलमा तैयद ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब हम हाई स्कूल में गए तो हम क्रिश्चियनिटी क्रिश्चन स्कूल में, हमें बिशप रॉक किस में था, हम चर्च में जाने लगे। तो लोग बोले अरे तुम हिंदू बनेगा क्या, ये है मुसलमान बनेगा क्रिश्चियन बनेगा सब। फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम गुरुद्वारा में रहे 2 साल, वाहे गुरु एक माई जगत भी आए 3 चेले पर, हर धर्मों में सब जगह जाते सबको एक साथ। हम बोले भाई हमें कौन क्या बनेगा वो नहीं, हमको एक इंसान बनना है, इंसान तो बनने दो। बाकी दुनिया तो इंसान है, इंसानियत नहीं है, लोग हैं। तो हमारे मोटो ही अलग था बचपन से ही हमारा विचार ही। तो फिर वहाँ से तो उन लोगों ने कोर्स किया, हम कोर्स नहीं, हम डायरेक्ट जा करके जब पिता श्री ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाते हैं, तो हम बोले पता नहीं, हम तो नास्तिक आदमी, हम भगवान को मानते नहीं थे, कोई कुछ होता था तो हम क्वेश्चन आंसर करने लगते थे, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं, हम खुद समझना चाहते थे क्या। हाँ तो ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम बोले ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाई होती है। फिर एक एग्जीबिशन लगा, लोगों ने हमको एग्जीबिशन दिखाया, बोले इसको समझाना है, कौन समझाएगा, तो कुछ चुप। हम बोले हम समझा देंगे, तो हम सारा समझा करके रखते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देखते थे कौन है, हम बोले शायद इनका गुरु होगा क्या, ऐसे क्या स्टडी नहीं किया था। फिर बहनों ने बताया कि ये शिव बाबा के माध्यम है, निराकार परमात्मा आकर साकार में कैसे करता है तू। फिर वहाँ कोर्स करने के बाद कहीं हमको फेथ थोड़ी हो जाएगा कि भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है, भगवान के ढूंढने के लिए साधु संत ऋषि मुनि कितने वेद शास्त्र गीता रामायण भरा हुआ है, सारा हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति से बहता है। फिर वहाँ से माउंट आबू में हम आए, संदेशी दादी हमारी टीचर थी, शांतमय दादी और संदेशी दादी, उनके साथ हम आए, और दादा आनंद किशोर यहाँ आए। तो जो गुलजार दादी में उस समय बाबा अव्यक्त उसी समय हुए थे, बाबा अव्यक्त हुए 1969 18 जनवरी, हम आए ज्ञान में 5 अगस्त 1969।
0: अच्छा
1: हाँ, तो इसी से हम 70 में हम पहले आ गए थे, 69 में आकर उसी समय ये ध्यान रहता था कि हम योग कैसे लगाएं, आंखें बंद करके कैसे लगाएं, इसी से हमको को राजयोग मेडिटेशन सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम योग में बहुत रुचि रखते थे, फिजिकल योग में हम मास्टर थे, इसीलिए ये स्पिरिचुअल योग है, आध्यात्मिक है आत्मा। फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा का लेसन दिया गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा जैसे दृष्टि दिया गुलजार, तो हम ऐसे शरीर से डिटैच हो गए, हमको अनुभव हुआ, हम अनुभव के आधार से चले हैं, ज्ञान सुन के सुना के नहीं, हम अनुभव हैं एक्सपीरियंस, इसलिए हम अनुभवी रथ हैं। तो वहाँ करके
0: तो जैसे आप माउंट आबू आए और आपको इस आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई। जैसे कहते हैं कि अध्यात्म में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है जो इस शरीर को चलाती है। आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया,
1: अनुभव एकदम डिटैच हो गए कि शरीर भले हम बैठे हैं, हम नीचे जमीन में बैठे थे पद्मासन में, लेकिन हमको दृष्टि ले रहे थे और इतना मन बुद्धि जैसे एकाग्र हुआ, जैसे लोग हठ योग में कहते हैं कि वो एकाग्रता में एकाग्र हुआ, तो लगा शरीर से हम डिटैच हो गए हैं, हम कहीं हवा में उड़ रहे। तो फिर हम 2 मिनट तक ऐसा अनुभव करते रहे, फिर हम टच किया जमीन को कि हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे हिलाया देखा तो देखा अलर्ट, फिर हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में। जब हम आत्मस्वरूप में थे कि आई एम डिटैच, आई एम ये प्योर एंड पावरफुल सोल, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट, जैसे कनेक्ट किया और ये डिटैच। लेकिन फिर हमको लगा कि हम कहीं उड़ तो नहीं रहे, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर हम जमीन को टच किया, फिर जैसे आगे धरती पे, बोले ओहो, तो सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में तभी हमको अंतर पड़ा और तब हमारा जिज्ञासा बढ़ गई और उमंग उत्साह ईसा सारा सब चीजें
0: जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे धर्मों का भी स्टडी किया है आपके युवा काल में, और जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको पता चला तो आप न सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि अनुभव में आपने विश्वास रखा। तो जब ये पहली बार ये अनुभव किया, आपको लगा कि मैं इतने साल उनसे इतने सारे धर्मों का पढ़ाई कर रहा था और पूजा पाठ भी जो भी हर एक धर्म का होता है, फिर जब अध्यात्म में आए तो वो सभी चीजों का आपको तर्क वितर्क भी समझ में आया होगा?
1: नहीं, तर्क वितर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हमको पहले से थी, कल ये था कि हमारा था व्हाट इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ, इसमें हमको मालूम था, पढ़ाया था बचपन से कि एक सत्य दुनिया में एक परमात्मा सत्य है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, सब रट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में इसलिए हम सभी जगह जाते थे हर धर्मों के व्हाट इज ट्रूथ, और सभी जगह एक ही चीज बताते हैं। जैसे हम मुस्लिम में, इसमें इस्लामिक में गए तो वहां भी बोला कि आदम को खुदा मत मानो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम, गॉड इज ए लाइट, वो सातवां आसमान रहने वाला है, या परवरदिगार खुदा सर्व आत्माओं का पिता है। वहां भी गए तो वही, सिख रिलीजन में गए तो वहां भी यही बताया, एक एमआई जगत भी आए, 3 चेले परवान, एक करतार, एक पंडार, एक वही दीवान, कि एक परमात्मा एक है, निराकार निरंजन निरंकारी, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो 3 देवताओं की रचना करता है, एक करतार, एक पंडार, अपना हिंदू रिलीजन में जो है सनातन में है, तो सनातन में यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहां कि लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तीसरे एक अलग शक्ति है जिसको शिव बाबा कहते हैं शिव। क्रिश्चियनिटी में गया तो वो भी बोला कि गॉड इज वन, नो जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट गॉड इज वन। फिर उस हमले बोला गॉड क्यों कहा, व्हाई यू टेल द गॉड, उसमें भी 3 शब्द था, जी ओ डी, जी मीन्स जनरेटर, स्थापना करने वाले ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर टू टेक केयर विष्णु, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर विनाश शंकर, बट डी ओ जी ओ डी गॉड, गॉड इज वन लाइट। तो सभी धर्मों का एक ही निचोड़ हमको मिला कि परमात्मा एक है, निराकार, ये पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ही इज नॉट कम इन डेथ एंड बर्थ, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बाकी जितनी आत्माएं हम लोग दे सारी हैं सब जन्म मरण में आते हैं, चाहे देवी देवता हैं, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राम लक्ष्मी नारायण, या जो भी धर्म, जितने धर्म पिताएं भी हैं, चाहे जैसे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, सभी हम सब चक्कर में आते रहते हैं, इसलिए सब चक्कर से छूटना चाहते हैं कि आई वांट टू लिबरेशन एंड फ्रूशन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष। तो वो चीज हमको यहाँ मिल गया और बस हम बोले हमारी सारी यात्राएं पूरी हुई,
0: आपकी रिसर्च खत्म हो गई।
1: हाँ, वो मिल गया ना, तभी तो गीत गाते हैं पाना था, जब सारी चीजें सभी जगह एक ही जगह इशारा कर रहा है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो, यार पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं। और कोई भी, हम इतना सारे संस्थाओं में इतना जगह गए, कहीं नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने पिताजी, यहाँ आते ही हमारा प्रश्न यही, फार्म फिलअप करवाते थे कि आपके कितने पिता हैं, तो हम लोग बोले एक ही है, हम लोग भाई ये सबको एक होते हैं, तो उसे बताया गया नहीं सबको 2 हैं, एक है शरीर का पिता जो देह का, देहदारी का है, जो आपके जाति धर्म का है, जो जिस रिलीजन का कॉन्शियस का है, और दूसरा हम सभी आत्माओं के परमात्मा है, इसलिए सब जाते हैं टेम्पल में जाएंगे, तभी हम आतश्चय पिता तमें वो बंधु सखा, एक ही गीत गाते हैं, 2 अर्थ में गॉड एंड मदर एंड फादर, हर एक जगह एक प्रार्थना, सारा तो एक निराकार का है। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छा लगा, और उसके बाद
0: तो फिर आपको ये ज्ञान समझ में आया और उसमें विश्वास बैठा, फिर आपने घर में भी तो शेयरिंग किए होंगे, फिर उन्होंने आपको सहमति दी थी ये चीजें फॉलो करने के लिए?
1: घर में शेयरिंग बचपन से ही, हम इतना हर चीज में एक्सपर्ट थे, चाहे कुश्ती हो, कराटा हो, खेल हो, हमको क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी वाले थे सारा सब चीजें, हमारा ये सब कुछ था ही हम लोग का डीएनए में, क्या राजपूत फैमिली से थे, वहाँ से होता है कि कंकर करना है, जीत करना है, हमको थोड़े मालूम है कि शरीर से जीतना या किसे, तो इसीलिए घर वाले नहीं थे स्टार्टिंग में, अच्छा कहीं करेक्टर में नंबर वन, आज तक कहीं भी कुछ ये सब चीजें, आजकल कितना लोग जाके कहीं स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये क्या, कितना सारा तमो प्रधानता हो गया, उसमें बड़ी सात्विकता थी वैसे भी, और ये हम लोग गाँव से रहते थे, शहर में आए, शहर में वहाँ के सब वातावरण में, लेकिन किसी चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, हम संघ के बल संभाल रखते थे, जैसा संघ वैसा रंग, हम संघ में रहते हुए हम डिटैच, कोई स्मोकिंग करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, कोई झगड़ा करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, जो शांत वाला वो भी हुआ, दोनों हम डिटैच कैसे रखे, उसका बैलेंस, लव का भी बैलेंस तो लव का भी बैलेंस दोनों।
0: So, आपको घर परिवार से कभी कोई विरोध नहीं हुआ?
1: नहीं, बाद में हुआ, जो फिर जब हम लोग चले और जब पक्का धारणाओं चलने लगते हैं, खान पान की शुद्धि तो वहाँ वाले तो सब नन भेज खाते हैं, सब खाते हैं, हमको पहले अच्छा नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी करते थे, लेकिन इसमें और भी स्ट्रांग हो गए, फिर प्यूरिटी के पवित्र काय की पढ़ाई, पवित्रता होती है ब्रह्मचर्य में, तो इसीलिए लौकिक पढ़ाई भी होती है बचपन में, तो भी पवित्रता में काय बुद्धि भटकेगी नहीं, तो जो प्यूरिटी की बात आई ये सब सारा सब चीज़ें, तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपका शादी करना है नहीं करना है, हम लोग क्यों नहीं शादी करना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी घर परिवार में यही एक संस्था है सारे वर्ल्ड में, हमारे अब यहाँ इसमें 59 से हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर लगाए हुए हैं, सारे विश्व में कोई भी कोना हम छोड़ा नहीं, हर साल हम 2 महीने जाते थे लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, रशिया पूरा, लेकिन हर एक जगह से एक ही चीज़ होता है कि यही हम देखते थे कि यही एक संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ये प्यूरिटी में खान पान रहन सहन संकल्प आचार विचार मन वचन कर्म, ये चीज़ें जो है ये बड़ी यूनिक लगी और ये हमको बहुत पसंद आया, और ये हमारे जैसे एक लाइफ का एक नेचुरल नेचर बन गया, इसी से अभी हम 79 के हैं, लेकिन अभी साइकिलिंग करते हैं, अभी साइकिल से चलाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, बीमारी होती नहीं है, लोग बुलाते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया, कोई दिन 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा, कोई बीमारी वो गेस्ट है और परमानेंट नहीं है, हम उनको परमानेंट रख देते हैं, ये हो गया वो गया, सोच सोच करके डिप्रेशन में इसमें उसमें दुखी हो करके बीमारी को बढ़ाते रहते हैं।
0: तो भाई जी, एक बात तो है कि आपका बचपन से वो चुस्ती फुर्ती बहुत स्ट्रांग है, और जैसे आपने कहा कि आप राजपूत फैमिली से है और शादी इन सभी चीजों का दबाव था, तो फिर समर्पित कैसे हो गए संस्था में आप?
1: समर्पित नहीं, जब हम हमेशा जब हमको कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम लौकिक घर में बहुत कम जाते थे, हम माउंट आबू आते थे, उसमें पहाड़ियां हरियाली सब, माउंट आबू तो हिल स्टेशन था, तभी कंसेशन टिकट भी मिलता था 42 रुपीस का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पहली सारा ट्रेन में इस समय हिल स्टेशन के नाम, बाद में ये सब सारा हुआ ना, तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ कोई भी सेवा मिलती थी, तो यहाँ हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि, तो वो हमारी बहुत, तो कोई भी कार्य देती थी हम थोड़े में तुरंत करके आ जाते थे, देखती रहती थी, तो दादी ने ऑफर किया कि आपको यहाँ रहना है, तो बोले नहीं दादी, हम अपना पढ़ाई पूरी करके हम डिग्री ले करके आएंगे, वैसे हम विचार से भी नहीं आएंगे, इसलिए हम जाते थे पढ़ाई करके एग्जाम दे करके और सब छुट्टियों में आ जाते थे, और फिर उसके बाद आए और 1971 से 1972 से हम फिर यहाँ डेडिकेटेड, और दादी जी ने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा आवास निवास में, नाउ आई एम डी 42 ईयर्स आवास निवास के, विदाउट कंप्यूटर बिना इसके रहते हम 25-30 हजार लोगों के एकोमोडेशन कैसे करता था गॉड नो, तो भगवान को हम जो नहीं मानने वाले लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, एवरीबॉडी बिलीव टू गॉड, वर्शिप टू गॉड, प्रे टू गॉड, बट हु इज गॉड, बोला आई डोंट नो, तो फिर किसका पूजा कर रहे हैं, जा मन्ने हैं, हम जितने ज्योतिर्लिंग सारा कहान सब धर्मों सब जगह हम इंजॉय करते जाते थे, लेकिन सब वही ढूंढते हैं आई डोंट नो, फिर परमात्मा आके खुद अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं निराकार हूँ, ज्योति, मेरा नाम शिव है, सदा शिव, शिव माने कल्याणकारी। उसका अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है। बाकी हम आत्माएं बर्थ रीबर्थ जन्म मरण के चक्कर में तो हमारा नाम चेंज होता रहता है। ये सारी चीज़ें केवल फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो आज इतना वर्षों से हम उसको पालन कर रहे हैं।
0: तो फिर आप 72 में समर्पित हो गए, दादी के कहने पर आप आ गए थे, तो घर पे आपको छुट्टी मिल गई थी आसानी से?
1: घर वो तो हमारे पर कहा ना, लोगों को बहन जी कुछ को कहे या भाई या सुनने वाले श्रोता किसको को आप अच्छे कार्य करेंगे ना तो 10 विघ्न बाधाएं आएंगे और उल्टा काम करेंगे ना तो और भी आपको सहयोगी मिल जाएंगे। कोई स्मोकिंग करने वाला नहीं करेंगे, बोले पंडित बन गया, ड्रिंकिंग नहीं होता, और वो सब आएंगे बोला हाँ चलो एक और ग्राहक बढ़ गया। तो उसी तरह से घर वाले तो थोड़ी छुट्टी दे देंगे। तो ये है, तो जब मैरिज का बात आया तो हमारे जो छोटे कजन ब्रदर्स ये सब थे, एक जॉइंट फैमिली था, तो हमारे अंकल ने कहा कि तुम मैरिज नहीं करोगे तो ये लोग कैसे करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम जा रहे हैं माउंट आबू, हम 5 साल के बाद आएंगे, तब तक आप इंतजार करना 4-5 साल, 4 ईयर्स के बाद फिर हम आके मैरिज कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जब हम 4 साल के बाद गए, यहाँ 5 साल तक तो हम कहीं गए नहीं, जैसे अपना योग में, तपस्या में, ध्यान में सेम हम बिजी थे। सब दुनिया उनको कहते थे आप लोग यहाँ आओ, परिवार वालों को, फैमिली वाले को, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं, हम अपना बिजी हैं। तो हम बोले भाई आपको टाइम नहीं, हमें भी टाइम नहीं ना, हम भी अपना बिजी हैं ईश्वरीय सेवा में और ये सारी चीज़ों में। तो फिर जब हम 5 साल के बाद गए तो देखे घर में सब बच्चे दौड़ रहे, खोए रहे, हम लिए किसके बच्चे हैं, बोले वो छोटे भाई क्या है उस बहन के। हम बोले रे भाई आप लोग तो हमको ठगी कर दिया, हमने कहा था 4 साल इंतजार करो, अब तो 2 साल भी इंतजार नहीं किया, कहते कैसे होगा। सभी की दुनिया भाई अपनी अपनी है, सभी अपना अपना कर्म है, धर्म है, कोई किसके लिए रुकता नहीं है। खाली वो सोते वो गाड़ी आगे बढ़े, जैसे आप क्यू में जा रहे हैं, वो सोते ही गाड़ी आगे निकले तो हम साइड से निकाल लें अपना। तो उसी तरह हम जैसे इधर निकले एक, तो हम बोले भाई आपने हमारा बात नहीं माना था, आपके बात हम क्यों सुने, हम भगवान के सुने का आपकी सुने, क्या कि यहाँ पवित्रता ही सच्चरित्रता है। यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहन जी, जहाँ सभी जो है ना खुशी की बात सुनाते हैं, दुखी का तो बात ही नहीं है, वो तो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। इसीलिए ये चीज़ें और ये जीवन यहाँ की और ये सब बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए अभी भी आज तक अभी देख
0: जी। तो भाई जी आप जैसे आपने कहा कि 42 साल से आप अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का संभालते हैं और 25-30 हज़ार लोगों का भी आप बिना कंप्यूटर का अकोमोडेशन करते हैं,
1: कागज में
0: कैसे याद रखते हैं चीजें आप?
1: यही तो लोग बहन, हर एक जगह लास्ट में काउंट सा पॉइंट आता है, डॉक्टर भी दवाई दे देगा, नहीं ठीक होगा कुछ होगा, तो बोला भाई ऊपर वाले का छोड़ दो, परमात्मा के, जब जब सब ऊपर वाले ही छोड़ते हैं, करण कराउन तो ऊपर वाला, हम तो कार्य करने वाला है, हम तो करण हार है, कराउन हार है, तो कैसे मेमोरी हमारी पहले से बहुत फास्ट है। अभी भी जहाँ जहाँ गए, जैसे आपको हम पूरे 60 साल के रिकॉर्ड दे देंगे एक एक चीज की, इतना कंप्यूटर तो अभी।
0: आपको लगता है ये कि ये ध्यान के कारण आपकी मेमोरी इतनी
1: बहुत शार्प, वो तो शार्प हो गया, पहले मेमोरी थी लेकिन थोड़ा, जैसे आप कोई पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी लेके काटते, एक भाई एक पेड़ काट रहा है तो बोला अरे भाई इसका शार्प करो, तेज होगा ना, फड़ा करे, तो मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना होता है, मन की एकाग्रता, एक परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन बुद्धि के एकाग्र करते हैं, तो उसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पहले 2 पावर आपके पास आएगी, 2 शक्तियाँ, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। 1 सेकंड में आप जज कर लेंगे, राइट किया है, रॉन्ग किया है, गलत किया है, सही किया है, जजमेंट, ये पावर। तो इसी से, और जैसे इसको कंसंट्रेट करेगा तो 2 शक्तियाँ आती है, कैचिंग एंड टचिंग, परमात्मा को टच करेगा कि दिस राइट दिस रॉन्ग, देन हमारा एकाग्रता है। यहाँ मेन मेडिटेशन में कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है।
0: और कौन सी ऐसी बातें या सिद्धियां हैं जो आपने इस लंबे साल, जैसे एक लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से आप साधना कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सिद्धियां आपने प्राप्त की है राजयोग के द्वारा?
1: बहुत सारी सिद्धियां का, जैसे आप एकाग्र करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और एक ही संकल्प में कई टाइम तक, घंटों तक करेंगे और तपस्या करेंगे। अभी

0: ये डेली हम 11 बजे रात को सोते हैं, 2 बजे रात को उठ जाते हैं, 2:30 बजे या 2:30 बजे से 5 बजे एकदम कंसंट्रेट होकर के लगन वो तपस्या में, योग में, ध्यान में, तो उसमें से सारी चीजें, तो उसमें से संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। आपके संकल्प में इतना पल, आज कोई चीज है तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कोई भी चीज देख करके लोग डर हो जाता है भाई, भी जिसको आप पैनिक कहते हैं कि ये बात है पैनिक होगा, घमासान करके उसका सारा पैनिक से कितना लोगों को कोविड हुआ, 50% लोग तो पैनिक से कि किया नहीं, उसको हो गया, थोड़ा खांसी होता था, ये है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं, तो पैनिक से किसी चीज में उसके घबराने की इसका नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में यह है साइलेंस, शांत, वेट एंड सी, देखिए उसके बाद क्या होगा, जो होना होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने स्थिति को, अपने मनसा, यहाँ इसलिए माइंड इतना परफेक्ट होता है, फिजिकल तो है, होता ही है, लेकिन फिजिकल पावरफुल माइंड इज प्रेजेंट इन पावरफुल बॉडी। सदा खुशी में रहिए, मेन चीज जो है ना खुशी। खुशी एक ऐसी गुण है जो 3 जगह काम करता है, सभी जगह एक ही जगह काम करेगा, लेकिन खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी में रहिए, बांटिए, दूसरे भी खुश हैं। खुशी जैसा खुराक नहीं, जो खाते हैं खुशी खुशी खुराक, खुशी जैसी जिंदगी, खुशहाली में रहेंगे, आधा बीमारी सब ऑटोमेटिक हटेगा। और खुशी के रहने की एक ही जगह है, वो है राजयोग मेडिटेशन। तभी देखते हैं अभी भी इतना एज में 79 में हम साइकिल चलते हैं, हमारा साइकिल 35 ईयर्स का साइकिल आदि प्रकाश ने दी थी, जंप मार के चलते। अभी दो लोग मिले भाई बहने, बोला आप लगते नहीं इतना ऐसा, बोले हम सोचते नहीं कि हम लगते हैं, लोग सोच सोच करके बूढ़े हो जाते हैं और हम सोच सोच के जवान हो रहे हैं। यही राज्यों का मेडिटेशन।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने मतलब बात बात में इतनी बातें कह दी कि आपको इस राज्यों की साधना के कारण ये शारीरिक उम्र का असर नहीं होता है,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और मन की संकल्प उनसे हल्के रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और एकाग्रता की शक्ति इतनी है कि आप कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं और याद
0: नहीं, उसका कचिंग और टचिंग उसका पहले आएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है और कैसे हमको पहले टच करता है, क्या हमारा इतना कंसंट्रेट रहता है परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, ज्योति से, जो जिस धर्म वाले जिसको भी मानने चाहिए, वो अल्लाह कहें गॉड कहें इसका, अगर उनके साथ सही कनेक्शन है और सही पावर आ रहा है, जैसे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया, सब चार्जिंग होकर आप ही उससे पावरफुल हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन आल्सो ये चार्जर है कि आत्मा की बैटरी आज डल हो गई है, सारी दुनिया भले तन है, मन है, धन है, दौलत है, बच्चे बीवी, फिर भी लोग पजल है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, लोड नहीं ले रहा है। और अगर चार्जर रहेगा, आपके पावरफुल चार्जिंग रहेगा, तो आप हमेशा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशहाल खुशहाली में रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए, और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के तहत आप अपनी योगी जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए हम सभी को एक उदाहरण दिया कि मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग
0: सब एक परमात्मा के संतान है, आत्मा हम भाई भाई हैं, इसीलिए हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आप इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को शेष बनाइए, सबके लिए आत्मिक भाव रखिए, सबके भाई भाईचारा, तो नेचुरल लगा, नारा लगाने से जरूरत नहीं है कि मैं भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई फिर पीछे करो लड़ाई, इसकी जरूरत नहीं है। सबकी यही है राजयोग की पढ़ाई, ये सदा खुश रहो, खुशहाली में रहो, बांटिए। बहुत थैंक्स,
1: थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और ऐसे ही अनुभवों को फिर सुनेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप किसी से रास्ता पूछें और वो गलत बता दे तो कितना घूम जाते हैं, है ना? समझ ही नहीं आता कि थोड़ा और आगे देख लिया जाए या फिर पीछे से टर्न लिया जाए। बस राठौड़ परिवार में अभी कुछ वैसा ही माहौल है। सब ने कड़वी बातें बोल तो दी हैं और घर के बड़े यानी भगवत सिंह राठौड़ जी ने निर्देश दिया कि पहले होगी पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा, यानी लड़ाई को टेम्पररी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब ब्रेक के बाद आग और भड़केगी या फिर शांत होगी, चलिए देखते हैं।
1: जमाई सा, नाश्ता शुरू कीजिए।
2: माँ साहब, मैं बस आता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए।
1: लेकिन जमाई सा, आप कुछ तो खाइए फिर चले जाइएगा।
2: नहीं, मैं अभी बाद में लेता हूँ।
3: अरे आपके पास कौन सा काम है फला जमाई सा?
4: इधर की बात उधर करने से तो अच्छा है इंसान कोई काम ना करे।
3: क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? मैं क्या कुछ नहीं करती इस घर में? हाँ, आपको क्या पता, नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने काम पे। इस घर में मैं ना हूँ तो कोई काम ना हो ठीक से। क्या हुआ देवर जी, कोई प्रॉब्लम है का?
5: नहीं तो बड़ी भाभी, बस गले की खराश थी।
3: तो पानी पी लीजिए, नहीं तो राजकुमारी से कह के काढ़ा बनवा दे।
6: हाँ हाँ देवर जी, अभी बना लाती हूँ मैं। थोड़ा सा करेला, थोड़ा सामने वाले पेड़ की छाल और हरे नीम के पत्ते के साथ बस दो बूंद गरम घी।
5: नहीं मतलब नहीं, जरूरत नहीं है भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखिए, गा के सुनाऊं।

0: नहीं।
1: किशन, माना तुम कविता लिख लेते हो, पर तुमसे अच्छा मेरा पुराना टेप रिकॉर्डर गाता है।
2: क्या बड़े भैया, आप भी। वैसे आपका वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो खराब हो गया था ना, उसमें तो एई एई की आवाज आ रही थी।
3: पुराना टेप रिकॉर्डर आपने तो उसे कबाड़ी वाले को दे दिया था ना, जिसका मोल बड़ा कम लगाया था उस नालायक ने।
1: मतलब अरे क्या मेरी बात लेके बैठ गए, कोई जमाई साहब को तो देखो अब तक आए नहीं, हम लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं भाई।
4: शांति, जाओ जमाई साहब को लेकर आओ।
5: मैं नहीं जाऊंगी वीरेंद्र भैया, बच्चा थोड़ी है, खुद ही आ जाएगा।
6: हे राम, किस मुहूर्त में पैदा हुई थी तू, कोई अपने पति को ऐसे बोलता है क्या?
5: हाँ, आप भी मुझे ही बोलो, इस घर में मुझे कोई नहीं समझता है।
2: शांति दीदी, बस हाँ, ज्यादा फिल्मी हो रहे हैं आप, मैं जाता हूँ जीजा जी को बुलाने।
7: वैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर ये बहस सालों से चली आ रही है कि फिल्मों में वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, या फिर फिल्मों में जो देखते हैं वो समाज में होने लगता है। वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं, भाई उसका असर मन पर तो पड़ता ही है। फिलहाल शांति जी अपने दर्द को सबसे बड़ा मान बैठी हैं। आखिर उनके पति बाकी पतियों की तरह कमा जो नहीं रहे, और उनके पति सूरजमल कुछ न कर पाने का दुख और जिल्लत के बोझ को झेलकर अपने गम छुपाए कमरे में बैठे हैं। किशन उन्हें बुलाने गया है, अब देखते हैं क्या वो कामयाब होगा। चलिए
2: जीजा जी, मैं अंदर आ जाऊं।
8: किशन, अब अभी जाऊं यहाँ से।
2: जीजा जी, आप रो रहे हैं।
8: नहीं, किसने कहा? जाओ जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है।
2: जीजा जी प्लीज, मुझे अंदर आना है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो आपका भाई जैसा हूँ। जीजा जी ये लीजिए, पानी पीजिए।
8: देखो किशन, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से कोई खुश नहीं है, ऊपर से शांति भी नाराज है, वो सही कहती है, मैं ही नकारा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
2: जीजा जी, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
8: क्या फायदा इस कोशिश का जो रंग ना लाए।
4: जमाई साहब, मैं कुछ कहूं?
8: भैया, आपने तो मुझे शुरू से बहुत हौसला दिया है, लेकिन मैं
4: जमाई साहब आप रो लीजिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम आपको ससम्मान इस घर में जगह दे रहे हैं, और आपके काम करने या ना करने से ये कम ज्यादा नहीं होगा।
2: माफ कीजिएगा जीजा जी, शांति दीदी तो अशांति करके रखती है पूरे घर में, बचपन में एक बार उनको मार्केट नहीं लेके गए थे बड़े भैया, क्या हंगामा मचाया था, सारे घर के शीशे तोड़ दिए थे।
8: कोई रिफंड प्रोसेस है क्या इसका?
4: जमाई साहब, आपको तो सिर्फ उल्टा सुनना पड़ता है, मुझे तो खाना भी पड़ता है, वो भी चुपचाप।
2: इसी बात पे अर्ज किया है।
4: बोल भाई बोल।
2: वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, वो नहीं है लेकिन उनकी महक है हवाओं में, उन्हें इल्म भी नहीं बस वही है हमारे ख्यालों में।
4: हाँ? ये किसकी बात करने लगा?
2: नाश्ते की भैया, भूख लगी जोरों से और कुछ नहीं सूझ रहा अब मुझे।
4: तू भी किशन, चल चलिए जमाई साहब नाश्ता करते हैं।
9: जमाई साहब तक आए नहीं, इतनी देर हो गई।
3: जमाई साहब रो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे औरतों से ज्यादा रोने लगते हैं।
9: माँ साहब, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ।
10: माँ, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि इस शांति की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इसकी बातें इसको ही समझ नहीं आती है।
3: दीदी,
5: मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी आप।
10: वाह शांति और शांत, वाह वाह ये तो चमत्कार है। अगर तूने उन्हें खरी खोटी ना सुनाई होती तो अभी सब अच्छे से बैठ करके नाश्ता कर रहे होते।
5: दीदी वैसे तो बड़ी फेमिनिस्ट बनकर घूमती हो आप, अभी मेरा साथ नहीं दे सकती आप?
10: शांति फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि लड़की की गलती हो तो भी उसका साथ दिया जाए।
0: शांति
5: पर पापा ये
0: बस बेटा अब बस कर, अगर गलती जमाईसा की भी होती ना तब भी ऐसे ताने कसने से नहीं हो जाती, और थोड़ा सा उनका दुख समझ, कितनी बड़ी परेशानी से निकले हैं वो, अभी तुझे तो उनका साथ देना चाहिए।
5: पापा सिर्फ अभी की बात नहीं है, वहाँ पर भी घर में यही होता है, इनको समझ में ही नहीं आती है दुनियादारी।
10: और तुझे आती है?
0: तुम लोग डिसाइड कर लो, समस्या का हल चाहिए या सिर्फ नाराजगी से पेट भर लोगे?
10: हल चाहिए।
0: तो बस हो गया अब।
1: शांति रागिनी नाश्ता ठंडा हो गया है, जाओ जाके राजकुमारी की मदद करो, गरम करके लेके आओ, जाओ।
11: लो आ गए जमाईसा। जमाईसा अब बैठिए, बस नाश्ता गरम ही हो रहा है।
2: माँ माहौल तो ठंडा है ना यहाँ का, वो गरम नहीं होना चाहिए।
3: अरे कोई जमाईसा के लिए गरम गरम दाल बाटी लेके आओ। जमाईसा आप खाइए, मेरी रेसिपी है, एकदम स्वादिष्ट।
2: इनको क्या हो गया, बड़े प्यार से बात कर रही।
1: अरे भूख लगी है ना, अभी गुस्सा दिखाने से फिर जमाईसा चले गए तो दाल बाटी नहीं मिलेगी।
9: चलिए चलिए सब लोग खाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये लीजिए। हाँ बच्चों तुम लोग इधर आ जाओ।
3: अरे वाह लाओ लाओ, मुंह में पानी आ गया मेरे तो।
6: वाह राजकुमारी आज तो तूने कमाल कर दिया, बड़ी स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है।
9: थैंक यू मासा, आपसे ही तो सीखा है, इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया।
4: धन्यवाद भगवान का, बच गए।
6: चलो चलो सब लोग खाओ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। इस वक्त तो दूध वाला पेपर वाला कोई नहीं आता, अब कौन आ गया गेट पे?
4: शांति गेट खोलो।
9: अरे किशन जाओ ना गेट खोलो।
10: अरे गेट खोलो ना।
5: जाइए गेट खोलिए।
1: कोई तो जाओ।
10: अरे गेट खोलिए।
1: कोई तो जाओ।
4: शांति गेट खोल दो।
5: अरे गेट खोलो तो कोई।
10: हाँ किसी को उठ गया तो जाना नहीं है, सभी को एक दूसरे को बोलते रहते बस यही पे ऐसे ही
4: है। अरे कोई देखो बाहर कोई है।
3: अरे कौन है गेट पे?
4: पुलिस।
0: पुलिस?
4: अरे
5: कौन पुलिस?
10: यहाँ तो कोई घरेलू हिंसा भी नहीं हुई, वैसे मेंटल हैरासमेंट तो किया है इसने, ये कहीं शांति को पकड़ने तो नहीं आए?
5: क्या दीदी मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं तो कितनी मासूम हूँ।
4: ये ना जरूर किशन की घटिया पोएट्री के लिए उसे पकड़ने आए होंगे।
2: भैया कहीं परेशान होकर जीजा जी ने तो पुलिस नहीं बुला ली?
8: मैंने नहीं बुलाई, मैं तो कमरे में था।
1: अरे तुम लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ।
7: क्या लगता है आपको पुलिस क्या करने आई होगी राठौड़ परिवार में? अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है इन घर वालों के जीवन में? भाई ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे कितना कुछ हो गया ना आज, सोचिए बचपन में जब एक दूसरे से रूठते थे तो कैसे फटाफट मान भी जाते थे, काश वो मासूमियत हमेशा रहती। आज हम एक दूसरे से ऐसे नाराज होते हैं कि उनका दुख भी दिखाई नहीं देता, ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी बात मेरी परेशानी मैं सही, बस मैं ही रह जाता है। बाद में जब ये मैंपन का नशा उतरता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर दास जी ने तो कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। परिवार मतलब प्रेम, प्रेम मतलब मैं नहीं हम। खैर अब राठौड़ परिवार तो आनंद ले रहे हैं राजस्थानी पकवान का, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मेरे पेट के चूहे भी अब मुझे और बातें नहीं करने देंगे, है ना? फिर मिलेंगे जल्दी। आखिर आपको बताना भी तो है ना कि पुलिस क्यों आई है राठौड़ परिवार के दरवाजे पर। फिलहाल के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, घड़ी खम्मा दोस्तों।
9: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। छोटों को हम दोष देते हैं लेकिन छोटे वो ही करेंगे जो बड़े करते आए हैं। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, राई कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, कौन सी बीमारी ठीक करती है, जरूर जानेंगे आप। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन नाम अभी नहीं बताऊंगी, आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, आज की पहेली बहुत ही सुंदर रहेगी, बहुत ही सरल रहेगी, तो जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और आपका सही जवाब क्या है वो हम कार्यक्रम के अंत में देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि घर में जो बड़े करते आए हैं उन्हीं को छोटे भी फॉलो करेंगे, फिर हम छोटों को दोष देते हैं। तो जो बड़े करते आए हैं वो ही छोटे करेंगे, तो फिर छोटों को दोष नहीं देना है कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक लड़की का विवाह करके मतलब हो जाता है और उसका विवाह हो करके वो ससुराल में आ गई, ठीक है। तो घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। ये देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, गुरु बनती है मेरा। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसने एक उपाय सोचा। वह रोज अपना सब घर का काम निपटा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहां अधिक बैठने लगी तो यह सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहां क्यों जा बैठी, थोड़े मेरे पास भी आओ। लड़की ने कहा कि बोलो काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बतावे, तू वहां क्यों जा करके बैठती है बार बार। लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना, जो घर में बड़े बुजुर्ग है उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बुढ़े तो दादी जी है और फिर मैं किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहां हमारे घर का रिवाज नहीं चलेगा, वहां तो तेरे ससुराल का रिवाज चलेगा। मेरे को यहाँ का रिवाज सीखना है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने फिर क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती है कि ये मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा करेगी। वो बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति रिवाज सीखना। सास डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा बहू ये ठिकरी क्यों इकट्ठी की है। लड़की ने कहा, बहू ने कहा आप दादी जी को ठिकरी में भोजन देती हो ना, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को भी ठिकरी में भोजन कराएगी क्या। मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहां की रीति चलेगी, ये रीति थोड़ी ही है, तो आप फिर ठिकरे में क्यों देती हो दादी जी को भोजन। सास ने कहा थाली कौन माजे। बहू बोली थाली तो मैं माज दूंगी। तो तू थाली में दिया कर, सास बोली, ठिकरी उठा करके बाहर फेंक। अब बूढ़ी माजी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माजी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में ला करके देखने लगी। सास ने पूछा बहू क्या देखती हो। मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाता है, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। पहले भोजन कौन देवे, सास बोली आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बुढ़ी माँ जी को तो बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह बहू ताजी खिचड़ी ताजा फुलका दाल साग ले जा करके माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती, खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधन भार की तरह मूंज निकली हुई लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो। देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए, ऐसी खाट थोड़ी दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई बहू, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाते आप, तू बिछा दे दूसरी। सास बोली आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह बहू कपड़े देखने लगी, कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बुड्ढों को कपड़ा कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े दिया जाता है, ये तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना, खाना पीना सब बदल दिया। उसकी चतुराई से, उसके होशियारी से बुढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी रखे, मतलब युक्ति से चले। और इस तरह अगर घर का माहौल खराब है तो खुद सुधार सकती है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुनते हैं एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। राई राई राई पन्ना केरी को अचार, श्रोता बंधु था को काई है विचार। तो ऐसे ही मैंने मजाकिया गीत सुना दिया है। राई किस तरह फायदा करती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सी बीमारी ठीक करती है, ये आपको उपाय बताने वाली हूँ राई के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, हिचकी आती है तो 10 ग्राम राई पाव भर जल में उबालिए, ठीक है। फिर उसे छान लीजिए और उसे गुनगुना रहने पर उस पानी को पीजिएगा। तो कितनी लेनी है राई? 10 ग्राम राई पाव भर पानी में, ठीक है, 250 ग्राम पानी में उबालिएगा और ये पानी फिर छान लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, मतलब सहता सहता हम पी सके ऐसा हो जाए तो छान करके पी लीजिएगा, हिचकी बंद हो जाएगी। अगर गंजापन है तो राई के हिम या फाट से सिर धोते रहिए, इससे फिर से बाल उगना आरंभ हो जाएगा। गंजापन आ गया है तो राई के हिम या फाट से सिर धोते रहिए, इससे फिर से नए बाल उगना आरंभ हो जाएगा। गर्भाशय की वेदना है, किसी कारण से कष्ट, शूल या दर्द प्रतीत हो रहा हो तो कमर या नाभि के नीचे राई की पुल्टिस का प्रयोग बार बार करिएगा। गर्भाशय की वेदना है, किसी भी कारण से कष्ट, शूल या दर्द प्रतीत हो रहा हो तो कमर या नाभि के नीचे राई की पुल्टिस का प्रयोग बार बार करिए, इससे राहत मिलेगी। बहनों के लिए और भी बहुत ही सुंदर उपाय है। मासिक धर्म विकार में, मतलब मासिक स्त्राव कम होने की स्थिति में, टब में भरे गुनगुने गर्म पानी में पीसी हुई राई मिला करके रोगिणी को 1 घंटे कमर तक डुबोकर उस टब में बैठना है, हिप बात करना है। मतलब ऐसा करने से आवश्यक परिणाम में स्त्राव बिना कष्ट के हो जाएगा, ठीक है। और अगर बवासीर की तकलीफ है, बवासीर अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो, अर्थात खुजली चलती हो, देखने में मोटे हो और स्पर्श करने पर दुख न हो करके अच्छा प्रतीत होता हो, तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाइए। राई का तेल लगाते रहने से मस्से मुरझाने लगते हैं, ठीक है। बवासीर अर्श हो, अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो, अर्थात खुजली चलती हो, देखने में मोटे हो और स्पर्श करने पर दुख न हो करके, मतलब दुखता नहीं हो और अच्छा प्रतीत होता हो, तो ऐसे मस्सों पर राई का तेल लगाते रहिए, इससे मस्से मुरझाने लगेंगे। और अगर सफ़ेद कोड है, ठीक है, श्वेत कुष्ठ, तो पीसा हुआ राई का आटा 8 गुने गाय के पुराने घी में मिला करके चकते के ऊपर कुछ दिनों तक लेप करिए। इससे उस स्थान का रक्त तीव्रता से घूमने लगता है जिससे वे चकते मिटने लगते हैं। इसी प्रकार दाद, पामा, इन सभी पर भी आप इस तरह लगा सकते हैं। और लास्ट उपाय है, कांच या फिर काटा लग गया हो तो राई को शहद में मिला करके कांच या काटा या अन्य किसी धातु कण के लगे स्थान पर लेप कर दीजिए, इससे वह ऊपर की ओर आ जाता है और आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। तो कांच चुभ गया हो, काटा चुभ गया हो या किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तु चुभ गई हो तो राई को शहद में मिलाकर, राई के पाउडर को शहद में मिला करके आप जहां भी कांच काटा जो भी आपके लगा है वहां आप पुल्टिस बांध दीजिए, तो ये अपना आप ऊपर आ जाएगा, फिर आसानी से आप इसको खींच सकेंगे। तो ये हुए घरेलू उपाय, बहुत ही सुंदर। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
2: जी, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी जी।
1: हाँ जी मदन भाई, नमस्ते।
2: क्या बात है, रेडियो आज नहीं बज रहा, अलग बज रहा है रेडियो, मधुबनी चल रहा है मगर जो हमारा जो सोए है वो नहीं आ रहा।
1: अच्छा,
2: मतलब कहने के बाद कैसेट दूसरी डाल दिए।
1: कैसेट दूसरी नहीं, रेडियो मधुबन तो चल रहा है, आपके रेडियो में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप वहाँ होंगे ना कंपनी में?
2: नहीं नहीं नहीं, रेडियो बजा रहा हूँ, आज तो छुट्टी है मेरी।
1: अच्छा,
2: अभी चला हूँ आपको, देखो ये बज रहा है।
1: ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है मदन भाई, हम बात करेंगे। और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बहुत ही सुंदर है। ना मैं राजा ना मैं मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सूंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले किया जाता, क्या पहले लिया जाता नाम मेरा। बताओ मैं कौन। बहुत ही सुंदर और सरल पहेली है, तो आप जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं। तो आइए अभी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पारिवारिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, तो आप जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। कहते हैं ना, परिवार को संभाल कर रखना परिवार के बड़ों की जिम्मेदारी है, और उसके लिए परिवार के बड़ों को सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? और आज की पहेली भी बड़ी सुंदर है। नामे राजा नामे मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सुंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। बहुत ही सुंदर सरल पहेली है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो देखते हैं हमारे श्रोता बंधु क्या बात है। आज तो कोई त्योहार नहीं है, कहाँ व्यस्त हो गए हैं। चलिए अच्छी बात है, जितने बिजी उतने ही इजी, है ना। व्यस्त लाइफ अच्छा है, व्यर्थ नहीं आने देते। तो ये भी एक व्यस्तता ही है, आपका जनरल नॉलेज की परीक्षा है, और आप अपनी बात को रख सकते हो। बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिला है कि कैसे घर परिवार को संभालने के, मतलब डिसीजन लेने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है, लेकिन बड़े जब अन्याय करने लगे तो कहाँ जाए। कहते ना कि बाढ़ खेत को खाती है तो किसको दोष देवे। यही हो गया कि भाई घर के मुखिया मैं हूँ मान लीजिए, ठीक है, और मैं अन्याय पर उतर आई, मैं सभी के साथ अन्याय करूंगी, तो क्या वो घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह चल पाएगी। आप ही सोचिए, जो घर का मुखिया ही गड़बड़ करता है तो उस घर की गाड़ी कैसे चलेगी। कहीं कहीं पर देखते हैं कि माताएं भी थोड़े बच्चों के साथ अन्याय कर देती है, पिता कभी बीवी और बच्चों के साथ अन्याय कर देते, अब कहाँ जाएंगे बच्चे और बीवी, बच्चे कहाँ जाएंगे। कहीं कहीं पर बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं माता पिता के साथ, तो किसको दोष देंगे। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। जैसे आपने महाभारत देखी होगी कि महाभारत में कैसे कितना भी अन्याय हुआ पांडवों के साथ, लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे, यहाँ तक कि द्रौपदी का चीर भी खींचा गया, फिर भी मौन रहे। तो फिर ऐसा मौन किस काम का, ये तो मौन खतरनाक मौन हो गया ये तो, फिर है ना। तो ऐसे घर में कितनी बार ऐसा होता है कि एक के साथ अन्याय हो रहा है तो हो रहा है, बड़े अनदेखा कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि हाँ, अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के प्रति कोई मतभेद नहीं करेगा, लेकिन वही बच्चे जब मेरी उनकी हो जाती है, शादी हो जाती है, वही बच्चे काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, कहीं कहीं पर देखो पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है, तो हर एक माता पिता के बच्चे होने के बावजूद भी सबका भाग्य अलग अलग है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी 30 मार्क ही हो, कोई अप कोई डाउन चलता रहता है। तो जो अच्छा कमाता है फिर वो भले घर में अन्याय कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर बड़े भी उनका ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि भाई उनकी सैलरी बहुत है, बहुत कमा रहे हैं, भले वो घर में कुछ नहीं देवे, लेकिन फिर भी माता पिता उन्हीं की खींचेंगे। और जो सीधे चल रहे हैं, भले वो उनसे कम कमा रहे लेकिन घर पर समय पर पैसा दे रहे हैं, जो चाहिए सामान लाकर रख रहे हैं, उनको इग्नोर करेंगे। ऐसा होगा तो आप सोचिए कि घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। अब ठीक है, जो आपका कहना मान रहा है, सब कुछ ला के रख रहा है, वो आपका मान सम्मान कर रहा है, इसलिए वो चुप है। ऐसे नहीं कि वो कमजोर है, कमजोर तो वो है जो अन्याय करता है, छिटक जाना बस, हर काम से भाग जाना, हर जिम्मेदारी से मुंह चुरा लेना उसे कमजोर कहते हैं। जो आपके समय पर काम कर रहे हैं, समय पर आपको जो चाहिए लाकर दे रहे हैं, वो कमजोर नहीं है। फिर उनके साथ अन्याय कैसा? हेलो
2: हेलो हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई।
2: कंचन भाई बोल रहा।
1: हाँ कंचन भाई कैसे हो?
2: बस बाइक पे था, ये सुन रहे था मैं, एक आया है यहाँ तो खड़ा रख के बात कर रहा।
1: अच्छा अच्छा,
2: तभी सुना मैंने जो प्रश्न भी सुना जो पहले।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: आज का ये सुना जीवन का राज्य बहुत अच्छा है। बड़े क्या है, थोड़ा बाइक पे था तो
1: जिस परिवार का मुखिया अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात करूं बहन जी की, बड़ों का मानता क्यों कौन है? हमारे यहाँ मेरे घर में, हमारे कुटुंब में ही एक पूर्वज बैठाने की बात थी, ठीक है
1: जी।
2: ये सभी घर वाले कुटुंब वाले बोलते थे कि भाई बड़े है न, मैं बड़ा हूँ तो आप माफी मांग दो कि भाई जो कोई भूल चूक हुई इसको आज दिन तक क्षमा करो और मैं इस माफी मांगता हूँ सभी के।
1: जी
2: तो मैंने बोला कि भाई ठीक है मैं तैयार हूँ, बरोबर ये सब माफी मांगने के लिए, ये सब करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बात

0: बात आती है तो बड़े को बुलाओ और बड़े सब कुटुंब की माफी मांगते देव देवी देव। तो ये मैंने तुरंत सवाल उठाया था कि ये इतने तक सीमित नहीं है, बड़ों का दूसरा भी काम है। जो बड़ों ने देखी है, बड़ों ने ये सभी बातें देखी है, बड़ों की बात मानो, तो ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ सभी की बात मानने के। और ये तो ठीक है बहन जी, मैं फिर भी मैंने बोला था कि अभी नहीं किया है तो अब करना है, तो मैंने बात बताई कब तक ऐसे रखोगे
1: जी।
0: लेकिन आपने महाभारत में जो बताया ना बात
1: जी,
0: तो दूसरा तो वो तो अंध थे ही जन्म से, ठीक है ये तो थे, लेकिन दिमाग से तो ये नहीं थे ना
1: जी,
0: दिमाग तो चलता था ना उनका। और उन्होंने जो वो किया तो गांधारी ने भी पट्टी बांधी अपने आँखों पे
1: जी।
0: तो ये तो नहीं करना था ना, ये तो जन्म से ही अंध थे तो, लेकिन माइंड तो काम करता था ना
1: जी,
0: ये तो चलता था ना
1: जी जी जी जी।
0: तो इन्होंने कान भी बंद कर लिए सब बंद कर लिया और इसका परिणाम ही आया, और गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली
1: जी।
0: ये नहीं करना चाहिए बच्ची, बड़ों की बात माननी चाहिए, कुटुंब में बड़ों का बड़ा जो देखे देखा है, इन्हें समय देखा है, सभी बातें देखी है, तो ये बात माननी चाहिए और सभी को लेके चलता है तो इसको ये करना चाहिए, ठीक है मेरा तो ही
1: जी जी जी जी।
0: और विषय में तो अभी बाइक पे हूँ, खेत में जा रहा हूँ
1: जी,
0: तो बात कर लो कि ये तो गणपति की बात है।
1: अच्छा देखते हैं हाँ जी कंचन भाई, ठीक है आपने गणपति जवाब दिया है, हम देखते हैं ठीक है, कार्यक्रम के अंत में आपको जवाब देंगे ठीक है, सही गलत।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ जी। तो बहुत बहुत आभार कंचन भाई का, ये थे कंचन भाई मंडाली से, ने भी विषय को अच्छा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भाई बड़ों की बात मानते कौन है, खैर ये भी है और कहीं कहीं पर मानते भी है, आज भी ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं या माता पिता का हर जगह अपमान हो रहा है, नहीं, आज भी बहुत सारी जगह बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, और हाँ लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। तो फिर भी जहाँ पर देखे माता पिता आधे तो क्या है कि खुद अपना रिस्पेक्ट खोते हैं मौन रह करके, ये इस विषय के अनुसार बात करते हैं ठीक है, तो आधे तो अगर इस तरह अन्याय, जब एक के साथ अन्याय हो रहा होता है तो उस समय मौन नहीं रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है जो आपको सुनाना चाहूँगी कि एक भाई है, उनके दो बेटे हैं ठीक है, बड़े बेटे की शादी हुई, फिर छोटे की शादी हुई, छोटे की शादी हुई तब पिताजी बोले कि तुमको खर्चा नहीं करना है, तुम अपना इकट्ठा करो और जो चाहिए घर में मैं ला के रखूँगा ठीक है, तुमको किसी को नहीं देना है, घर खर्च नहीं चलाना है, तुम अपना अपना इकट्ठा करो। अब बड़े भाई को हो गए थे 10 साल शादी हुए, तब तक वो सब दे रहा था घर में ठीक है, और छोटा भाई तो बाद में सेठ हुआ, तो शादी होते ही ये कह दिया, तो छोटे भाई ने 1 रुपये देना बंद कर दिया, एक मतलब शुरू से तो दिया नहीं, फिर देना बंद कर दिया, दिया ही नहीं। और पिताजी ने तो कह तो दिया कि मैं ला के रखूँगा, लेकिन अब घर में कुछ भी चाहिए तो ला के नहीं रखते, और माँ है जो बड़े बेटे को ही कहते देख तेरे पिताजी ये नहीं लाते वो नहीं लाते, घर में सामान नहीं वो नहीं, तो बड़ा बेटा ला के रख देता है, कोई बात नहीं मैं ला के रखता हूँ मैं ला के रखता हूँ। तो इस तरह पहले किचन खर्चा की जिम्मेदारी, फिर लाइट बिल, फिर हर प्रकार का खर्चा, और पिताजी ने हाथ ऊपर कर दिए, वो सुने के अनसुने, मतलब हाँ ही नहीं कहे ना ही नहीं कहे। उनकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा है खर्चा मैं करूंगा तो आप ला के रखो, तो सुने का अनसुना कर लेवे, लेकिन एक पैसा घर में नहीं देवे, छोटा वाला 1 रुपया नहीं देवे। अब बड़े बेटे के तो वैसे ही तो 10 साल हो गए तो 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ, 2 बच्चे हो गए ऐसी हालत में, फिर भी 1 रुपया नहीं देना, तो भी 5 साल तो ऐसे चला ठीक है। फिर अब महिलाओं को तो लगता ही है ना कि फिर भी प्यार छोटों को ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सास का भी

0: छोटी बहू पर ही प्रेम, तो फिर बड़े वाले को लगा कि तो हम भाई, उसने अपने पति को समझाया कि अलग हो जाओ ना, नहीं लड़ना आता है, बहस नहीं करनी है तो अलग हो जाओ। जब इतने जनों का खर्चा आए गए, अब संयुक्त परिवार है चाहे अकेले है, मेहमान तो आएंगे जाएंगे और संयुक्त परिवार तो सारे यही आएंगे, छोटी बहू के भी, पियर वाले, सास के भी, सभी, तो सबको बड़े बेटे को ही करना है। तो बड़ा बेटा क्या है कि बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता था अपने माता पिता का, लेकिन फिर पत्नी के कहने पर उसने थोड़े दिन गौर किया। ठीक है, चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, अभय सिंह जी, कैसे हो आप?
1: जी मैडम जी, बढ़िया है।
0: बढ़िया
1: जी।
0: हाँ जी, तो आज इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बड़ा मौन रहता है इस विषय में मैडम जी।
0: हाँ जी, बड़े, हाँ, कि जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तो तय है। क्या कहेंगे आप?
1: जी मैडम, बिल्कुल सत्यवाद है, महाभारत उसमें तय है। बड़ा मौन तभी होता है जब जब वो कोई भी चीज उसको लगता है कि इसमें मुझे इनको समझाने की जरूरत है, तो वो अपना अथक प्रयास करने के बाद में यदि वो मौन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उनका मान सम्मान, उस बात को, वो जो कोई भी चीज, मिशन जो भी है, उसके ऊपर
0: हाँ जी,
1: वो नहीं मान रहे, तो वो अपना अपमान या अनादर ना हो और अपने कारण, मतलब खुद के ऊपर वो कारण आए, उन सब से बचने के लिए क्या है, उसने अपना मौन धारण करना है। इन सभी बातों का यदि वो नहीं बोलता है तो समझने वाले सब समझ जाते हैं पहले ही कि बड़ा मौन धारण किया हुआ है, कुछ नहीं, सहमति, असहमति, सही चीज में तो असहमति देना उनका कोई मतलब 1% भी वो नहीं है कि वो असहमति देंगे, तो जिसमें वो असहमति दे रहे हैं तो वो चीज हमारे परिवार, जो भी परिवार से ऊपर जहां भी वो मिशन है या तर्क है, वो इफेक्ट कर रहा है रिश्तेदारी को, तो वहां तक वो असर ना करे, इसलिए अपना मौन धारण करके खुद कारण ना बने, तो मौन धारण करना ही उचित समझता है। तो ये
0: मौन धारण करने से समस्या का समाधान थोड़े ना होगा?
1: समस्या का समाधान मैडम, जब कोई समझ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, और बाद में उन सब चीज का कारण वो कोई गलत हो जाए, कोई और दूसरी चीज हो जाए, तो उनका कारण फिर वो बन जाते हैं बड़े, इसलिए सब उन बातों से बचने के लिए वो, और मान सम्मान जब मैडम जी घट जाता है ना, तो बोला जाता ही नहीं किसी से भी, वो जीवन जी लेता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत कष्ट हो रहा है उन चीजों से, तभी वो मौन धारण करता है फिर, और ये भी सोचता है कि मेरे कारण से मैं कोई भी चीज करता हूं तो वो असर परिवार पे ना जाए, इसलिए वो जीवन भी मजबूरी में जीना पड़ता है उसको, और मौन धारण करके जीना पड़ता है। मैडम,
0: मौन समस्या का समाधान नहीं है, वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा या फिर उसका तोड़ निकालना पड़ेगा।
1: बोलना चाहिए मैडम जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ चीज में ऐसा होता है मैडम जी, बोल नहीं पाता है आदमी
0: जी,
1: उसमें आकर भी नहीं बोल सकता है, कंडीशन बन जाती है वो अलग अलग, तभी मौन धारण किया जाता है। अभी महाभारत का आपने उदाहरण दे ही रखा है, भीष्म पितामह में जैसे महान अस्थियां जो खाली सर को पटकते रहे, हिलाते रहे, नाराज की मुद्रा जाहिर करते रहे, मगर बोल नहीं सके मैडम
0: जी। जी,
1: हाथ पे हाथ मारते रहे, सर को हिलाते रहे, मतलब कितनी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने, कितना कष्ट सहा है उस समय
0: जी,
1: लेकिन बोल नहीं पाए मैडम
0: जी। और आज की पहेली का जवाब देंगे
1: जी मैडम? पहेली तो आज गणेश जी महाराज ही है जी मैडम जी, उसका तो
0: अच्छा उत्तर... देखते हैं, आप कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम के अंत में हम जवाब देंगे, ठीक है
1: जी मैडम जी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका अभय सिंह जी। तो ये थे जयपुर से अभय सिंह जी यादव, और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांत हैं दीदी।
0: हाँ जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: सर हम भी थोड़ा अच्छे हैं, बाहर हैं, बीच बीच मेहनत से कर चलो आपसे बात तो कर लूँ मैं।
0: हाँ अच्छा है जी,
1: बोलिए।
0: हाँ जी तो आज के विषय में क्या कहेंगे आप? विषय है जिस परिवार का मुखिया अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। क्या कहेंगे आप?
1: वो तो दीदी, हाँ वो तो दीदी सही है। मेन जो मेन जो घर में मुखी होता है वो कुछ नहीं बोलेगा, तो जो घर का आवाज थोड़ी आ रही है, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ।
0: हाँ समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ जी।
1: तो जो मुखिया ही ऐसा कोई अच्छा बात ना करे तो अच्छा न्याय ना करे तो फिर घर का जो वातावरण सब बिगड़ जाता है दीदी। तो मुखिया को जो घर में जो मुखिया होता है, मेन मुखिया होता है, इसको तो उसको ही सब कुछ संभालना पड़ता है दीदी
0: जी।
1: अगर वो नहीं संभालेगे तो घर कहते हैं ना हमारे गुजरात में एक कहवत है दीदी की जो घर का जो सदस्य कोई ऐसा नहीं होता तो घर गड्ढे पे चलता है, ऐसा गुजराती में कहवत है
0: जी।
1: तो घर का जो सब जो परिवार बिखर जाता है, घर का सब उछल पथल हो जाता है
0: जी।
1: तो बस मैं तो दीदी यही कहूंगा कि घर का जो मुखिया होता है उसको सभी संभालना पड़ता है, उसको कोई अच्छा न्याय दिलाना उसको ही पड़ता है। किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई ऐसा बन गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो उसको ही सब कुछ ठीक करना पड़ता है
0: जी। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत आभार फिर भी आप जुड़े हैं इसके लिए। ये थे सुरेश भाई जोटाना से। देखिए आप बस स्टैंड पर है फिर भी वहाँ से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर शांत एरिया में है तो आप भी जुड़ सकते हैं। बस स्टैंड पर तो कितना कोलाहल रहता है, फिर भी जुड़े हैं तो आप भी कोशिश करिएगा। विषय बहुत अच्छा है, जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन होना तय है। और आज की पहली भी बहुत ही अच्छी है, ना मैं राजा ना मैं मंत्री फिर भी प्रथम स्थान है मेरा, एक दांत है सूंडे मेरी मूषक है वाहन मेरा, जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। तो बहुत ही सुंदर आज की पहेली भी है। तो विषय के लिए मैं आपसे बात कर रही थी कि दो भाइयों का उदाहरण दे रही थी, वो एकदम हकीकत बात है। तो बहू ने कहा कि भाई अपन अलग हो जाते हैं, अपने को झगड़ा नहीं चाहिए और अपने को खर्चा ही नहीं करना, और अब वैसे ही काम तो हो ही गया है, अब तो ऐसे नहीं कि किसी की शादी ब्याह बाकी है, ननंद की करवा दी, देवर की करवा दी, हो गए 15-17 साल बहुत पिट लिए, अब चलो अलग होते हैं। फिर भी अब बड़ा बेटा को थोड़ा सा दुनियादारी की चिंता रहती है, लोग क्या कहेंगे, समाज में बातें हो जाएगी। तो थोड़े दिन उसने भी नोटिस किया कि क्या वास्तव में जो बीवी कह रही सही है, लेकिन देखा कि सारा सामान वही ला रहा है। एक बार माँ ने छोटे से कह दिया कि बेटा आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है बड़े की, तो तू ये चीज़ ला के रख दे। हाँ माँ मैं लेके आऊँगा, और दो दिन तक टालता रहा, ला करके नहीं रखा। और वो बात के नोटिस बड़े बेटे ने भी की और बड़ी बहू ने भी की। फिर बोला कि अब क्या, अब आंखों से देख रहे हो उसके बावजूद भी आप यही करोगे? लेकिन माता पिता ने नहीं कहा कि भाई बड़े की तबीयत खराब है, ला नहीं पा रहा तो तू क्यों नहीं ला रहा है, कुछ भी नहीं। तब फिर बड़े बेटे ने रेंट का घर ले लिया और फिर माता पिता को बोल दिया कि अब मैं अलग होने जा रहा हूँ, मुझे घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं अलग हो रहा हूँ, घर से कुछ नहीं लिया और रेंट पर घर लेकर के अलग हो गए। अब बच्चे हैं तो बीवी को तो थोड़ा दुख होगा कि भरा घर छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं लिया, खुद का पुश्तैनी घर है। तो बोले कि भाई पुश्तैनी घर है तो भी अभी माता पिता को तो नहीं निकाल सकते। तो बड़ा बेटा अलग हो गया। माता पिता को फिर थोड़ा सा हुआ कि हम चुप रहे इस वजह से ये हुआ, लेकिन यही बात है कि पिता अगर खर्चा नहीं करना चाहते थे तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए था कि भाई तुम अपना अपना कमा के इकट्ठा करो, खर्चा मैं करूंगा, ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी। और छोटे ने तो सोच लिया कि बस पिताजी करेंगे तो मैं क्यों करूं, और पिताजी ने किया नहीं, देख रहा था आंखों से, फिर भी कुछ नहीं कि पिताजी ने बोल दिया तो हम क्या, वो फिर ध्यान नहीं दिया। और अब माता पिता को जब परेशानी आने लगी क्योंकि बड़ा बेटा चला गया अलग, तो अब सामान की खिटपिट होने लगी, छोटा बेटा ला के ही नहीं रखे। फिर एक दिन झगड़ा हुआ तो पिताजी ने कहा कि आज दिन तक उसी ने खर्चा किया, उसके तो हमने गला ही काट दिया, तू कुछ भी नहीं लेके आएगा, अब तो तेरा ही परिवार है ना। तो बोले कि आप दोनों भी तो हो, और आपने पहले कहा ही क्यों कि मैं खर्चा करूंगा, तो करो आप। अब तो वो भी चले गए ना अलग, अब तो हम इतने से लोग हैं, करो आप खर्चा। तो ऐसा हुआ। फिर माता पिता रोते हुए बड़े बेटे के पास गए कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। फिर बड़ी बहू थोड़े इसने कहा कि अगर हमारे साथ रहना हो तो इनको किराए पर निकालो, हम आएंगे इस घर में रहने, किराया भी भरे, आपका भी देखे, और ये घर के मकान में रहे तो ऐसा नहीं होगा, हमने इतने समय बहुत खर्चा कर लिया, अब हम अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पुश्तैनी घर में रहेंगे और इनको निकालो किराए के घर में। छोटा अड़ गया, मैं क्यों निकलूं? छोटी बहू तेज मना कर दिया कि मैं तो नहीं निकलूंगी। तो इस तरह खिटपिट अभी भी उनके घर में चल रही है, कोई तोड़ नहीं निकल रहा है। माता पिता न इधर रह पा रहे न उधर रह पा रहे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते सुभाष भाई।
2: तो पहले सभी को नमस्कार, और हमारे सुरेश भाई जी और अभय सिंह जी भाई जी ने भी बहुत अच्छा कहा, आप भी अच्छा जानकारी दे रहे, लेकिन थोड़े में देखो मुखिया को तो सभी स्टाफ और सभी को खुश रखना होता है और सभी के बातें सुनना होता है, पर अगर वो सत्य को छिपा रहा है यानी असत्य का अगर संग कर रहा है और किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो जरूर उस वक्त न्याय के लिए हमको बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप मौन रखेंगे तो दोनों का नुकसान हो सकता है, स्पोर्ट भी हो सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए लेकिन शांति से नम्रता से अपनी बात उनको समझा देना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या झूठ है क्या बराबर है, तो शांति से ही मार्ग निकलता है, लेकिन मौन ने बोलना तो जरूरी है।

0: थैंक यू, शुक्रिया दीदी, ओम शांति।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज की पहेली का भी जवाब दे सकते हैं। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, प्रैक्टिकल है, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो उनके घर में अभी भी खिटपिट चालू है, लेकिन बड़ी बहू ने एक ही शर्त रख दी कि आप रहिए हमारे साथ, लेकिन हम पुश्तैनी घर में रहेंगे। आप छोटे खाली कर नहीं रहे, आप सास ससुर जाए तो जाए का, उन्हीं के साथ उनको मजबूरी से रहना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इतने समय मौन रहे, उसके बाद अगर आप कुछ बोलना चाहोगे फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। पहली बार अन्याय होते हुए देखो, तुरंत बोलिए कि यहाँ पर ये चीज गलत है। क्योंकि कितनी बार बड़ों को संकोच रहता है, मन दुख होगा, अरे कहीं झगड़ा हो जाएगा, कहीं बातें बाहर चली जाएगी, लोगों का डर, समाज का डर, आजकल तो बच्चों से भी डरते हैं, कहीं बहू चिल्लाएगी, कहीं तो बाहर आवाज जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। खैर जो भी कारण है, मौन रहेंगे। मौन रहते रहते जब पानी सिर पर चला जाता है, उसके बाद भी बोलना तो पड़ता है ना। तो जो फर्स्ट दिन से बोल गया ना, उस घर में आप देखिए शांति है। उस घर में कोई तिल तिल करके नहीं जी रहा है कि क्या करें, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए बड़ों का बोलना बहुत जरूरी है, फिर बाद में भी, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद 20 साल बाद भी बातें तो होनी ही है, तो फिर आज ही कर लो ना, ताकि वो 20 साल तक नौबत ही नहीं आवे। जब तक बड़े मौन रहेंगे, छोटों को फिर आप समझ सकते हैं, छोटों के बीच में आपस में दुश्मनी बढ़ जाएगी। अब वो भाई आपस में बोलते भी नहीं, भले बड़े भाई ने इतने साल खर्चा किया, बेटे की तरह पाला, लेकिन दोनों भाइयों के ऐसी अनबन हो गई कि वो उसका मुंह नहीं देखता, वो उसका मुंह नहीं देखता है। तो बड़े मौन रहते वहां पर भाइयों में ऐसा हो जाता है, भाई बहनों में ऐसा हो जाता है। इसलिए और बाकी तो ठीक है, कहीं कहीं पर तो कोई किसी से डरते ही नहीं है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, बस हम ही सब कुछ है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी बड़ों को कोशिश करनी चाहिए कि एक बार बोले, ठीक है। और बाकी तो हाँ, जो अन्याय करने वाले हैं ना, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अन्याय कर रहे हैं। वो 10 रोना रोएंगे लोगों के सामने, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। ऐसा भी होता देखा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि सब कुछ खाने के बाद, सब कुछ घर का लेने के बाद भी लोगों के सामने यही रोना रहता है, नहीं नहीं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। जिसको बातें बनाना आती है, जिसको झगड़ना आता है ना, वो फिर चट भी मेरी और पट भी मेरी, फिर वो किसी की चलने नहीं देगा। फिर वो तो कहते ना कि जिसको कोई नहीं पहुंचे उसको उसका पेट ही पहुंचे, फिर उसका या तो उनके बच्चे नालायक होंगे या फिर आने वाली पीढ़ी, जो भी है। खैर तो कहने का भाव यही है, यहाँ पर बड़ों की बात हो रही है, तो बड़ों को यही कहना चाहूंगी कि घर में एक के साथ अन्याय होगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे महाभारत का सृजन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कब तक इग्नोर करेगा, 5 साल 10 साल इससे अधिक नहीं। आज के समय में तो 4 दिन भी लोग सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए वहां पर आप बोलिए, अगर आप कुछ कर सको तो ही कहो कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, नहीं तो जिम्मेदारी सब पर डालिए। एक घर में मैंने देखा है, जैसे एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, जैसे ही बेटे की जॉब लगी और पिताजी ने कह दिया कि तुम्हें मंथली इतने रुपए मुझे देना है, बोले ठीक है। तो माँ ने कहा कि अरे कैसे पिता हो, अभी बच्चे की जॉब लगी है, अभी उसके सैलरी तो आने दो, अभी से पैसे क्या करोगे, बच्चा कहाँ लेके जाने वाला है। पिताजी ने कहा कि नहीं, आज से इसका एहसास करना जरूरी है कि घर में मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी का बोध कराना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज कह दिया तो अब ये हमेशा देगा, नहीं तो फिर शादी के बाद वही खिटपिट खिटपिट। तो उसकी शादी भी हो गई, तो बच्चे भी है, बड़े भी हो गए, लेकिन वो आज भी घर में अपने पिता को पैसे देता है। बच्चे हुए तो पिता ने कहा इतना नहीं, अब इतना देना पड़ेगा, तो उतना देता है, लेकिन घर में बहुत शांति। हाँ जी नमस्ते सगुना बहन। हाँ जी,
2: भी बहुत अच्छा है
1: जी।
2: घर में देखो बड़े मौन रहते हैं तो अच्छा नहीं है, कुछ गलती हो तो बोलना जरूरी है। बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो उसको बताना जरूरी है, अभी नहीं बताई ना तो आगे जाके बहुत बुरा होगा, घर में कोई अच्छा नहीं होगा कारण
1: जी।
2: कुछ भी हो तो पहले बता देना चाहिए। देखो मेरी तो प्रैक्टिकल देखी हुई बात है
1: जी।
2: एक भाई थे तो उनको तीन बेटे हैं
1: जी।
2: बड़ा बेटा तो इसे धीमे धीमे करके शराब पीने लगा। हाँ, दो छोटे वाले थे
1: जी।
2: वो झगड़ा कर रहे थे कि तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। ऐसे करते करते करते दूसरा भी चालू हो गया। हाँ,
1: अच्छा।
2: और तीसरे बेटे की शादी हो गई। वो अच्छा था, वो सब घर में चीज नहीं हो तो लाके रखता था, माँ बाप को भी ध्यान रखता था सब। जब शादी हो गई उससे तो अभी उसने तो सब छोड़ दिया। कोई कुछ भी हो घर में परिस्थिति तो उसको कुछ घर में देना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, बस घूमना फिरना बस,
1: मुझे
2: भी छोड़ दिया। अरे देखो बाप था तो बेचारा वो सहन करता था कि चलो बेटा है तो कल अच्छा हो जाएगा, तीन बेटे हैं तो अच्छा निकलेगा है ना, घर में कुछ अच्छा हो जाएगा
1: जी।
2: अभी देखो तीसरा है तो उसने भी ऐसे रास्ता अपना लिया। भाई देखो बाप तो एकदम गरीब है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता
1: जी।
2: तो ऐसे में देखो घर की हालत क्या होगी है ना, माँ बाप का क्या होगा। अभी तो देखो बचपन जैसा ही है, अभी आगे बुढ़ापे में क्या होगा माँ बाप का, बच्चे तो बड़े हो गए हैं
1: जी,
2: लेकिन माँ बाप की क्या हालत होगी। हम तो यही सोचते हैं कि बेचारे माँ बाप क्या करेंगे। घर की हालत आप देखो तो इतनी है कि अब क्या बताए
1: जी जी जी।
2: तो हम भी देखो कभी सोचते क्या करें, हम किसी को अब बताते अपने तो किसी को अच्छा नहीं लगता
1: जी।
2: अभी के बच्चे तो क्या है, बात बात से सब झूठ बोलते, सभी झूठ बोलते हैं, कोई सच्चा नहीं बोलता है कोई भी लच्चा
1: जी।
2: हाँ, हम तो सब देखा हुआ है सही में। पहले मौन नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी गलती हो तो बच्चों को तुरंत बता देना चाहिए कि ये नहीं करना ये नहीं करना है ना
1: जी।
2: नहीं
1: बिल्कुल।
2: बताते तो फिर आगे जाके तो अच्छा ही नहीं होता
1: जी जी जी।
2: और
1: जी।
2: इतना मामला खराब हो जाने के बाद तो फिर क्या मालूम कब अच्छा होगा। वही अच्छे का संग मिल जाए ना
1: जी
2: तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा
1: जी।
2: लेकिन अभी तो अच्छे का संग मिलना भी बहुत कठिन बात है ना। जो जिस रास्ते पे चलता है ना उसको ही पसंद आता है
1: जी जी।
2: कितना भी बोले ना
1: जी,
2: हाँ कोई कितना ही बोले तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। वो बोलते है कि हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, कल हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे ही चलता रहता है। तो हम तो देखते हैं बहुत अच्छा विषय रखा है आपने।
1: थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और बस विषय को यही समाप्त करते हैं, कहने का मतलब यही है कि बड़ों को मौन नहीं रहना है। जहां आपको लगे कि यह अन्याय हो रहा है तो आप तुरंत बोलिए, ताकि घर में उसी समय उस बात का तोड़ निकल जाए और वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आइए अब फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज आपको सिखाएंगे दाल मखनी। ठीक है, तो चलिए दाल मखनी तो सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आज की पहली दोहरा देते हैं। ना मैं राजा ना मैं मंत्री, फिर भी प्रथम स्थान है मेरा। एक दांत है सूंड है मेरी, मूषक है वाहन मेरा। जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम मेरा, बताओ मैं कौन। तो ये आज की पहेली है, जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
1: एकदम अच्छे और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज तो आपने पहली अच्छी पूछी है। हेलो।
0: हाँ जी, सुन रही हो।
1: हाँ, पहली का जवाब मैं देता हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेव।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। तो अब देखिए, समय बहुत कम है, आप कोई भी फोन नहीं करेंगे। तो दाल मखनी के लिए मैं आपको सामग्री पहले बता रही हूँ। आप चने की दाल लीजिएगा, इमली की चटनी लीजिएगा, दही लेना है, बारीक नमकीन लेनी है, और फिर आप हरा धनिया, नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आपको लेना है, धनिया पाउडर भी। ठीक है, और पूरी के लिए, मखनी के लिए आप लीजिएगा मैदा, और मावन के लिए तेल और नमक। अब साथ ही साथ बनाने का तरीका भी आपको सिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को छान लीजिए, छान करके आप इसमें मावन डालिए अच्छी तरह तेल का, और हल्का सा नमक डालिए, और फिर इसको पानी डाल करके आवश्यकता के अनुसार और टाइट गूंदिएगा। टाइट गूंद करके 20 मिनट इसको रख दीजिए गीले कपड़े से ढक करके। ठीक है, इधर आप चने की दाल बॉईल कर लीजिएगा। चने की दाल में पानी उतना ही लीजिए जितने उसमें आवश्यकता है, आपको बिल्कुल रस्से वाली नहीं बनानी है। दाल मखनी बनाने जा रहे हैं तो दाल लकपची होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें नमक हल्दी डाल करके चने की दाल को बॉईल कर लीजिए। अब इसको आपको तड़का नहीं लगाना है, छोकना नहीं है, बस दाल को ऐसे ही रहने दीजिए बॉईल वाली। ठीक है, फिर आप इमली की चटनी तैयार करिएगा, नमकीन और हरा धनिया, फिर ये मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जैसे हम चाट में क्या डालते हैं ऊपर से, ऐसे ही। तो इधर आपने आटा घला के रख रखा है, इसकी लोइया बनाइए, लोइया बना करके छोटी छोटी पूरियां बनाइए। ठीक है, पूरी से थोड़ी सी साइज और बड़ी रख सकते हैं बस, और तल के ब्राउन ब्राउन जब बादामी बादामी हो जाए और आप निकाल दीजिए, दोनों तरफ से कड़क हो जाए फिर आप निकाल दीजिए, तो ये बन गई मखनी। ठीक है, अब ये पूरियां निकाल के रख दीजिए। अब आप पिरसते समय एक प्लेट के अंदर एक पूरी रखिए, जो इसको हम दाल मखनी, जो मखनी कहते हैं इसको, तो इस मखनी को रखिए। अब इसके ऊपर सबसे पहले आप चने की दाल सब तरफ डालिए। ठीक है, फिर ऊपर इमली की चटनी डालिए, फिर दही डालिए, फिर नमकीन डालिए, फिर हरा धनिया डालिए। अब आपको यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालना हो तो पहले डाल दीजिए, इमली डालते दही डालते उसके बाद आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, और फिर बाद में आप बारीक सेव डालिए, हरा धनिया डालिए और पिरसिए। दीजिए ये प्लेट सजी सजाई, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये दाल मखनी। तो आप एक बार बना करके जरूर देखिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और इसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, ज़्यादा तेल की चीज़ें भी नहीं है। मखनी को तो तलना ही पड़ता है, लेकिन दाल भी खाली बॉईल की हुई है, इसलिए ज़्यादा इसमें तेल की चीज़ें भी नहीं है। तो इस तरह दाल मखनी बनाई जाती है। तो जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाइएगा, ठीक है। और फिर से एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ढूंढे चेरी पास
1: मुझे लड़का ही चाहिए।
2: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए।
3: माँ अब तो बस करो।
4: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
5: को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
6: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए। राई कैसे हमारी हेल्थ के लिए, कौन सी बीमारियां ठीक करती है वो आपने जाना है, और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और जो रेसिपी में दाल मखनी आपको बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, न मैं राजा न मैं मंत्री फिर भी प्रथम स्थान है मेरा, एक दांत है सूंड है मेरी मूषक है वाहन मेरा, जिस काम का शुभारंभ हो पहले लिया जाता नाम है मेरा, बताओ मैं कौन। तो आज तो भाई सभी ने बाजी मारी है, सभी का जवाब सही है, तो मैं एक बार सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजाऊं। नाम मैं सुना देती हूँ जो जो भी जुड़े हैं। अलका जी कपासन से, शोभा सोमानी कपासन से, नीलम राठी आबुराज से, फिर जुड़े हैं सुरेश भाई धानेराव से, आरती जी पुना से, सगुना बहन जोटाना से, दीपा सोमानी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, अभय सिंह जी जयपुर से, वेदांत उदयपुर से, सुरेश भाई झोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो आप सभी का सही जवाब है, बहुत बहुत आभार आपका। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सुरेश भाई धानेराव से, फिर अभय सिंह जी, कंचन भाई, सुभाष भाई। तो आप सभी विषय में जुड़े हैं सगुना बहन, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी बहुत ही अच्छा है, जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रख सकता है वही महान है। अब मैं आपको बड़ों के ऊपर व्यंग्यात्मक कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। बड़े होने का घमंड, कविता का शीर्षक। बड़े कहते हैं हमने दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा किसने जिंदगी सीखी है, हमारी बात मानो ये समझदारी है, अरे भाई हमारी उम्र ही हमारी तैयारी है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, मोबाइल नहीं था फिर भी काम होता था, चिट्ठी लिखते थे महीनों इंतजार करते थे, आज के बच्चे तो तोबा तोबा। बड़े बोले सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम बोले आप भी तो अलार्म से उठते हैं भैया, कहते मोबाइल से दूर रहो बच्चों, और खुद व्हाट्सएप पर सुबह

गुड मॉर्निंग भेजते हैं। बच्चे अगर कोई बात अपनी कह दे, बच्चे अगर कोई अपनी बात कह दे तो बड़े तुरंत कहते तुम्हें क्या पता, लेकिन जब मोबाइल में कुछ समझना आए तो वही बच्चा याद आता है, बेटा जरा ये देखना। बड़े कहते हमारी इज्जत करो, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बात बिल्कुल सही है, इसमें शक नहीं, बस कभी कभी लगता है बड़े होने का लाइसेंस कुछ ज्यादा ही मिल गया है। उम्र बढ़ना तो कुदरत की निशानी है, पर हर बात में अपनी ही मनमानी है। बड़प्पन उम्र से नहीं व्यवहार से आता है, जो छोटों को सम्मान दे असल में वही बड़ा कहलाता है। तो बड़े भी थोड़ा मुस्कुराए, छोटों की बात भी कभी अपनाए, रिश्तों में प्यार रहे, तकरार नहीं, क्योंकि घर वही सुंदर है जहां बड़ेपन में अहंकार नहीं, जहां बड़ेपन में अहंकार नहीं प्यार होता है।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक नया पहल है और इसमें हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है और नींद के संबंधित कई विषयों के बारे में हमने चर्चाएं की और जानकारियां भी लिया और एक गाइडेंस भी लिया कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और वो दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र जी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हर्षिता सेतिया जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हैदराबादी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं हम सभी को नई जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है इस विषय को लेकर के, सबसे पहले वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में और कार्यक्रम जागृति में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार
1: जी। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अगर मजबूत रखना है और सही रखना है तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीजों को हमें बदलाव लेके आना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में, दिन भर आप इतने सारे लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने की बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य डेली रूटीन से कैसा जुड़ा हुआ है और हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए।
3: जी, अगर हम देखें कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे हमारी डेली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारा मूड एक वो ऐसी चीज है जो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं हर काम बहुत खुशी खुशी करूंगी, घर का काम है, बच्चों को लेकर बाहर आना जाना, किसी से मिलना जुलना, सब काम मैं बहुत अच्छे से करूंगी। लेकिन अगर मेरा मूड खराब है किसी भी कारणवश, तो मैं किसी भी काम में ना तो मेरा मन लगेगा, उदास उदास रहूंगी, चिड़चिड़ा होकर बोलूंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मानसिक, मन से आ रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं मन खुश नहीं है ना। तो अगर हम मन से हर चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने जर्नल लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मैं आज चीज़ें आपके साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये आजकल हर महिला में, हर पुरुष में, हर बच्चे में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं और डॉक्टर वीरेंद्र सर कुछ इन सुझावों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो महिलाओं को और ज्यादा बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए कभी कार्य कर रहे हैं, कभी हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं, हम सुबह से लेकर रात तक कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान हमारा बहुत ही कम जाता है, अपने को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो है मी टाइम, जिसको हम एक टाइटल दे सकते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, राइट। तो हर रोज कुछ समय हम खुद के लिए निकाल सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ अपने लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ देर प्रॉपर एक आराम कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई हॉबीज हैं, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी जो, क्योंकि मी टाइम है तो मुझे क्या पसंद है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा जो मुझे हैप्पीनेस देगा, इंटरनल हैप्पीनेस देगा। तो ये एक चीज हम एड ऑन कर सकते हैं।
2: बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता जी ने। ठीक है, डेली रूटीन का और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर में रहते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को जनरली ये कम करता है। जब आपका दिन प्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता होता है कि किस चीज के बाद क्या करना है और आप एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजों से जो डेली वर्क है उनसे स्ट्रेस से और उससे एंजाइटी जो है वो कम करती है। फिर जब आपका रूटीन फिक्स रहता है, आपके उठने का और सोने का समय फिक्स है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होने लग पड़ती है। उससे आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस जो है वो दिन भर में बेहतर बना रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी वाइज पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। उसके अलावा अगर देखे जाए तो जितनी भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके अंदर में भी अगर हमारा डेली रूटीन फिक्स रहे, हम मरीजों को हमेशा बोलते हैं जो डिप्रेशन के, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है, तो उनके या स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट हैं, उनके घर वालों को बोला जाता है कि उनके एक रूटीन को बना दे। मैं जब निमैंस बैंगलोर में था तो वहाँ पर भी जितने भी पेशेंट एडमिट रहते थे तो उनका एक डेली रूटीन हम लोग बनाते थे कि सुबह से वो एडमिट पेशेंट के लिए भी उनका फिक्स रहता था कि सुबह इस समय उन्होंने खेलने के लिए जाना है, इस समय उठे, इस समय प्रार्थना करनी है, इतने समय तक रेडी हो जाए, इस समय आपको खाना मिलेगा, इस समय आपको खेलने के लिए जाना है, इस समय आपको वर्कशॉप में जाना है काम करने के लिए। तो ये सब चीजें फिक्स रहती थी उनकी, तो एक रूटीन बना रहता था। तो ये डेली रूटीन जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मदद करता है। तो एक बैलेंस डेली रूटीन अगर होगी आपकी तो मेंटल हेल्थ हमेशा वो आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे और इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर में करने पड़े तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी आप छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के अंदर में चेंजेस करें। देखिए, डेली रूटीन को अचानक से पूरा बदल देना तो पॉसिबल नहीं था, बट हम मरीजों को जो भी आप जनरल पब्लिक को भी जो गाइड करते हैं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सटल सटल से एकदम माइन्यूट से चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाएं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं।
1: जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी माइंड इतनी फोकस्ड नहीं रहती है। आजकल हम अगर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस कहे या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी हम कुछ देखना चाहते हैं, कभी फिर नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमको किसी चीज में भी आनंद नहीं आता है। फिर यही चीज जब महिलाओं की बात आती है तो फिर महिलाएं उसमें परेशान हो जाती है कि ये बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या फिर महिलाओं को भी ये रहता है कि ये भी काम करूं, वो भी काम करूं, वो भी काम करूं, फिर उस बात में फिर उनको वो टेंशन आ जाता है और फिर उनको एक प्रेशर रहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में काम करते

0: हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के पास सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और यंग के पास कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि उनको घर का काम भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है, तो उसमें बच्चे भी हैं, हर चीज कैसे मैनेज हो. तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं. हमको कहीं ना कहीं ना कहना सीखना है, जो अननेसेसरी चीजें हैं जो कोई और हैंडल कर सकता है. वहां पे इन महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने लिए अत्यधिक जिम्मेवारियां लेने की जरूरत नहीं है. कहीं ना कहीं जो चीज आजकल हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए, उनके साथ में उनकी हेल्प ली जाए. और कहीं ना कहीं ना कहना आज के टाइम पे सीखना, उन चीजों में ना कहना जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ओवरबर्डन हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है. तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें, अपनी जो जरूरतें हैं उनको सबसे पहले ध्यान दें, उनको प्रायोरिटाइज करें. अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ओल्ड एज वेमेन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, ओवर दबाव में आकर ओवर जिम्मेवारियां लेकर काम करना कोई जरूरी नहीं है. आप दूसरों से हेल्प सीख करें. अगर फिर भी आपके घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको करना ही करना है हर चीज़, सुबह से लेकर रात तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, तो स्टिल आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीखना है. आगे डॉक्टर वीरेंद्र इसमें एड ऑन करेंगे.
1: बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर हर्षिता ने. उसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर में है, आजकल जो समय की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जनरली घर के काम के अलावा फोन का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है. फोन या लैपटॉप, टीवी, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इसके लिए हम लोग जो अधिकतर बोलते हैं उनमें मरीजों को, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स करें. डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कि आपको अपना जो समय है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, लाइक फोन, लैपटॉप, टीवी, इससे थोड़ा ऑफ टाइम लेना, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर काम कर सके, और रियल लाइफ कनेक्शंस जो है वो बना के ऊपर ध्यान दे सके, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, अपने पति पर, अपने रिश्तेदारों पर, मतलब जो रियल लाइफ पीपल हैं उनके ऊपर मैं ध्यान दे सके, ना कि जो स्क्रीन में या फिर जो रियल लाइफ के लोग हैं, जैसे रील्स लगातार देखे जा रहे हैं, रियल लाइफ के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दें. तो इसके अंदर में जो मैं अधिकतर सलाह देते हैं वो ये है कि शुरू में स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें. लाइक पहले दिन 1 से 2 घंटे का डिजिटल ब्रेक लें. लाइक कुछ लोगों को सारा दिन फोन चलाने की आदत है, तो 1 से 2 घंटे का एक डिजिटल ब्रेक लें कि इस समय से इस समय के बीच में मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं. खासकर वीकेंड्स जब हैं, जब आपको ऑफिस के काम नहीं करने हैं, अगर मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी वीकेंड्स पे ज्यादा समय फोन पे बीतता है, क्योंकि वो ज्यादा फ्री होती है घर में अगर लोग होते हैं. तो वीकेंड्स पे जब आपके घर में लोग हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, तब उनके साथ समय कटाएं और वीकेंड्स के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल डिटॉक्स करें. उसके बाद बाउंड्री सेट करें, रूल बनाएं कि मैंने इस समय डिनर करना है, इस समय ब्रेकफास्ट करना है, और डिनर के समय मैं फोन चेक नहीं करूंगी, मैं फोन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाऊंगी, या घर का कोई भी सदस्य जब खाना खाने बैठ रहा है टेबल पे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा. ये रूल अगर सभी सदस्यों के लिए होंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी. बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि जब डिनर टेबल पे फोन अलाउड नहीं होते हैं, वो एक बॉक्स रखते हैं, जब खाना खाने आएंगे सब घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, और उससे पहले सभी के फोन एक बॉक्स में जमा हो जाएंगे, ताकि जब वो खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करें, जो कि हमेशा से होता आया, जिससे कि रियल लाइफ टच होता है. आप एक दूसरे की परेशानियां सुनते हैं, उसके समाधान भी निकलते हैं, किसी के मन में क्या ग्रजीज, क्या परेशानी चल रही है, किस चीज को गिल्ट चल रहा है, वो सब बाहर निकल के आता है जब आप एक दूसरे से बात करें. पर जब आप स्क्रीन पे ही रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ जो टच है वो खत्म होता जा रहा है. तो ये, और दूसरा, रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन को बंद कर देना, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, उससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है अगर आप रात को 1 घंटा पहले सोने से पहले फोन को बंद कर देंगे. उसके अलावा फोन में अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें. बहुत लोग देखे हैं कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो हमेशा उसके साथ में आता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और हम लोग बटन दबाते जाते सबके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, जिससे हमारा स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बाकी कार्यों के लिए समय नहीं मिलता, बाकी कार्य फिर हमारे पिछड़ने लग पड़ते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं.
2: जी, ये जो है, हम एक मामूली अर्बन सोसाइटी की महिलाएं, हम समझ सकते हैं कि उनकी जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल होती है उनमें ये चीजें वो इनकॉर्पोरेट करें. लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बातचीत हम करते हैं, तो उन महिलाओं के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं. ऐसे में वो कई चीज़ों से व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी देखा गया कि मोबाइल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है. ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को माप सके कि यस, मैं ये चीज़ें अवॉइड कर

0: करती हूँ तो फिर मेरे अंदर से वो चिड़चिड़ापन या फिर ये इम्पेशेंस और गुस्सा करना, ये सभी चीज़ें कम होता जाएगा। क्योंकि हम जब लाइफस्टाइल की बातचीत करते हैं, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कई बार महिलाएं कहती कि गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे मेरे को बहुत तंग करते। हो सकते वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके अंदर काम का या फिर किसी और चीज़ के जो भी मानसिक तनाव है जिस कारण से वो छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाती है, फिर वो बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना शुरू हो जाता है। तो फिर घर की माहौल जो है वो इतना हेल्दी और संतोषजनक नहीं रहता है। सो, ऐसा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात तक कि हमें मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हर काम करते समय हम अपने आप को क्या याद दिलाएं? हर्षिता जी।
1: हाँ जी, सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली हमारी ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की मी टाइम की, फिर सर ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, ये दो चीज़ें बताई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे कि हमने कई बार ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण पे ध्यान नहीं है, किसी में अगर खून की कमी है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों के लीड करती हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको अपने फिजिकल हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य और हमें अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। हम एक संतुलित आहार लें हर रोज, जो कि भरपूर होना चाहिए, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, साबुत अनाज हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, हम अपनी पानी जो है उसकी मात्रा को हम पूरा नहीं करते हैं और डिहाइड्रेशन वन ऑफ द रीजन है हमारे जो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तीसरा, हम जो अभी हमने कहा कि अगर किसी को एनीमिया है तो ये सारी चीजें आप अपना टेस्ट कराएं और इन चीजों पे भी ध्यान दें, इसकी नियमित जांच जरूर करवाएं, और जो भी अगर आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इन चीजों को हम जरूर डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी उतनी ही जरूरी है। फिर आते हैं हम आगे जो है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें मानसिक तनाव रहता है उससे हम कैसे चीजों को ठीक करें, जिससे हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हम एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक तो बहुत सरल से उपाय हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर आए, हम अपने व्यायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम कर सकते हैं, सरल सांस लेने का जो व्यायाम होता है उनको कर सकते हैं, हम इन सब चीजों को भी अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए हम अपनी भावनाओं को जरूर साझा करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी चिंताओं को जरूर बांटें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई गो टू पर्सन है तो उससे, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे जरूर बात करें। और आजकल हम महिलाओं में तो देखते हैं कि किटी पार्टीज होती हैं और गांव वालों के जरूर एक महिला मंडल बना होता है, है ना? अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो अपने महिला मंडल में जाकर जरूर अपनी बातों को साझा करें, दिल हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें, चार पांच चीजें हैं जो हम अपने अंदर लाएं। और आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, रोजगार की तरफ लीड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन योजनाओं से भी जुड़ें, क्योंकि आपका एट द एंड कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो अगर बूस्ट नहीं है, अगेन आपके मेंटल हेल्थ पे वो भी इम्पैक्ट डालता है, आप लो फील करते हैं। तो ऐसी चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ऐसी चीजें जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करने की कोशिश करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। एक महिला के लिए, जैसे हम मेल के लिए एक ईगो वर्ड यूज करते हैं कि मेल ईगो है, अगर आज आप महिलाओं में भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप है तो वो भी बहुत सशक्त फील करती हैं। ईगो वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करने की बातें हैं। तो ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में, जो रूरल में, जो ग्रामीण में महिलाएं रह रही हैं, ये सब अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर सकती हैं।
2: उसके अलावा कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अपने आप को समझाना कि मैं इस सिचुएशन, कुछ एक बात हुई, बच्चों ने कुछ तंग किया या कुछ हुआ, तो मैं इस सिचुएशन पे अभी रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं 5 या 10 मिनट का समय लेकर उस सिचुएशन में रिएक्ट करूँगी। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत बुरा होता है। और उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा निकल गया था। जब हम 10-15 मिनट का समय लेते हैं तो सेम सिचुएशन हम गहरे ढंग से या अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी काम डाउन या काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा उस समय में हम जो सलाह देते हैं वो मुझे वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जब कोई गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको बच्चे तंग कर रहे हैं, आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़े 5 से 10 डीप गहरे सांस लिए और उसके बाद बच्चों से बात करने की कोशिश करी, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करना, 100 से लेकर 1 तक अगर आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो जब तक आप 100 से शुरू करेंगे, जब तक आप 40-50 तक पहुंचेंगे तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और उस समय जो आप रिएक्शन देंगे वो आपका असली रिएक्शन होगा, ना कि गुस्से वाला रिएक्शन। और उसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बताने की कोशिश करें, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप बार बार करती रहेंगी चीज़ को तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ों को लेकर आपका रिएक्शन या गुस्सा वो कम होने लग पड़ा है। उसके अलावा डॉक्टर हर्षिता ने जैसे जो चीज़ें बताई, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, थोड़ा व्यायाम करें, शाम के समय फैमिली के साथ में थोड़ा समय बताएं, दिन के समय अगर आपको बहुत सारे काम है तो एक साथ काम का बर्डन मत लें, आधा पौना घंटा काम किया उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। बच्चों में भी मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो लगातार नहीं पढ़ने बैठना, आप 50-10 का प्रिंसिपल यूज करें, आप 50 मिनट अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। वैसे ही हमारे काम में भी ऐसा है, अगर हम 40-50 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बाद फिर से काम करने जुटे, उससे हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
0: जी, सो आज के इस कार्यक्रम को अगर हम सम अप करते हैं तो हर्षिता जी, आप क्या क्विकली वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बुलेट्स की तरह बता सकते हैं? और दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक टाइम टेबल बता दें महिलाओं की, कि हम अपनी टाइम टेबल को या अपने कार्य को कैसे डिवाइड करें जिससे वो अपना काम भी पूरा कर सके और वो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी अटेंशन दे सके, और उसके लिए कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप कहें।
1: जी, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में चीजों को सम अप करूं कि आज जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात की है तो क्या क्या चीजें आपको करनी है, सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे, दूसरा हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को शामिल करेंगे, तीसरा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जो अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, सांस लेना है, कैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उन सब चीजों पे। उसके बाद हम अपने आप को सशक्त करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद हम अपनी नींद को और आराम को भी ध्यान से हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, फिर हम अपना डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ी देर उन चीजों से बाहर रहना, उन चीजों पे हम ध्यान देंगे, कुछ टाइम अपने घर से बाहर बिताएंगे, फिर हमने जैसे शुरू में बात की थी कि हम अपना मी टाइम जरूर हर रोज निकालेंगे, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, लेकिन मुझे हर रोज अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। फिर हमने बात की थी कि हम अपनी सीमाएं तय करेंगे, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऐसे नहीं उनमें दबके रहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाकर, अपने हस्बैंड की सहायता लेकर कहीं ना कहीं ना करना हम जरूर सीखेंगे। और अभी जैसे सर ने एंगर मैनेजमेंट टेक्निक से बताई हैं हमें, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान देंगे, गहरी सांसें लेना, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना, कुछ बीच बीच में ब्रेक्स लेना, तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सर ने कहा वो करना। और एक लास्ट चीज जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ कि जब क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप हमेशा अपने आप से पूछें और फिर उस सिचुएशन को रिएक्ट करें। सबसे पहला, क्या ये स्थिति इतनी गंभीर है? दूसरा, क्या मेरा क्रोध इस समस्या को हल अभी के अभी कर देगा? तीसरा, क्या मैं इस स्थिति को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? तो ये 3 प्रश्न आप जब भी आपको क्रोध आ रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न करें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, ठीक है? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हमने ध्यान रखने हैं, और अभी टाइम टेबल हमें सर बता रहे हैं।
2: मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताने की कोशिश करता हूँ महिलाओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आइडियल है वो तो एकदम आइडियल है, पर हर आदमी को अपने हिसाब से उस टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उनकी कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको किस चीज को कितना समय देना है। जनरली जो मैं सलाह देते हैं कि सुबह 6 बजे या जल्दी उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे तो उठें, रात को अलार्म लगा के सोएं, सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें, उसके बाद 1 गिलास पानी पिया, लगभग 6:15, 6:20, 6:30 बजे तक अपने सभी एक्टिविटीज से फ्रेश हो जाएं, उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक योगा या मेडिटेशन करें और उसके अंदर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगभग 6:30 बजे तक ये सब काम हो जाए तो उसके बाद एक वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं वो करें, लगभग 30 मिनट के लिए वो ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगी तो आपका दिन का जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मेन काम है वो आपने सुबह कर दिया। अब 7 बजे आप नहाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और जो आपके डेली रूटीन के काम है वो सब करें। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखें अपना और कोशिश करें कि शुगर अवॉइड करें। अगर चाय या कॉफी लेते हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल अवॉइड करें। ये सब करते करते आपको 7:30-8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आप आज सारे दिन में क्या क्या करने वाली हैं। अपना एक डे प्लानर तैयार कर लें और उसके ऊपर में अगर आपके बच्चे स्कूल जाने हैं तो उस समय में अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें और उसके बाद 9 बजे से अपने डेली रूटीन शुरू कर दीजिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय अपने लिए रखें जब आपने अपने घर के जो काम है, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं। और कोशिश करिए अगर आप वो रिटर्न में टू डू लिस्ट बनाएंगी तो आप उसको टिक कर सकती हैं कि हाँ कपड़े धोने का काम था वो कर दिया, आयरन करने का काम था वो कर दिया, तो वो लिस्ट रहेगी। और एक घंटा काम करने के बाद में हमेशा 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, तो उससे आप काफी रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। 12:30-1 बजे के बीच में अपना लंच कर लें, वो आइडियल समय है। अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12:30-1 बजे का समय आपके लिए आइडियल टाइम है लंच करने का। 12:30-2 बजे के बीच में लंच और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अगर आप आधे पौने घंटे की नींद लेना चाहती हैं तो वो लीजिए और रिलैक्स रहें। और 2 बजे फिर से अपने रूटीन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो आपके जो बचे हुए काम है वो सब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को 4 बजे कुछ चाय कॉफी लाइट स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें कि आज सारे दिन में क्या क्या विचार आए, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, उन सबको लिस्ट आउट करना शुरू करें। शाम को 5 बजे जैसे डॉक्टर हर्षिता ने बताया अपना एक मी टाइम रखें जिसमें आप अपने लिए काम करें। अभी तक तो जो आप काम कर रही थी अपने परिवार के लिए करते, 5 बजे के बाद में अपने लिए एक मी टाइम निकालें आधा पौना घंटे का, जिसके अंदर में आप म्यूजिक सुनना, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं या दोस्तों के साथ फोन पे बात करना, जो भी है वो 1 घंटे में करें। शाम को 6 बजे एक लाइट इवनिंग वॉक करें या हल्की सी एक्सरसाइज करें और 7 बजे जब आपके परिवार के सब लोग आ जाएं तो अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें। रात का खाना तकरीबन आप 8:30-8 बजे खा लें ताकि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकें और 9:30 बजे के आसपास सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने की तैयारी का मतलब जो हमने लास्ट टाइम स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बताई थी वो सबको फॉलो करें, फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें 1 घंटा पहले और 10 बजे के आसपास आप सोने चले जाएं। तो अगर आप 10 बजे सोने चले जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आपकी 7 से 8 घंटे की एक नींद हो रही है जो कि एक बेहतरीन नींद है। और कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सोने जा रही हैं तो अपने पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं ताकि आपके आपको रात्रि जो है वो बहुत अच्छी बीतेगी, कम स्वप्न आएंगे और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगी तो फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगी। अगर आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो एक लूप की तरह आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी साइकिल में चलना शुरू कर देगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
0: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज के इस चर्चा के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को, अपनी दिनचर्या में क्या प्रायोरिटी देना है और हमारी अटेंशन किन चीज़ों पे रखना है ये बहुत समझ में आया होगा। हम अगली कड़ी में इसी के संबंधित और विषयों को साथ में लेकर के आएंगे और हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ भी होंगे। हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक, आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। नाम कितना सुंदर है, प्रोग्राम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल। जब नाम सुनते हैं अपना गांव और अपना अंचल याद आता है। रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही है, जो प्रतिभाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच एक स्टेज प्रदान करती है। आबरूड ब्लॉक के साथ साथ आज पिंडवाड़ा ब्लॉक में हम पहुंचे, क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह गतिविधि करती रहती है। तो आज हमें खुशी और हर्ष का साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन सा गांव?
1: धनारी।
0: धनारी, बोलो जो से धनारी।
2: धनारी।
0: तो आज धनारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज बारी बारी सुनने को मिलेगा, हमें खुशी है। और संस्था प्रधान को भी धन्यवाद देते हैं, जो कि विष्णु पितामह जैसे है, कर्णधार है, पूरा टीम को लेकर चलते और एक परिवार जैसे। राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिलित सहयोग से आज विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट, बच्चों का हुनर, बच्चों का भाव भावना को जन जन तक पहुंचाएगी। तो देर किस बात की, पहले संस्था का संस्था प्रधान के साथ साथ सभी को स्वागत करते, सभी अपने के लिए और सर जी के लिए ताली बजाओ जोर से बच्चे। क्या बात, आज तालियों का साथ स्वागत करते हैं। हम संस्था प्रधान को बाद में सुनेंगे, पहले हमारा होवनहार बच्चे जो कि पार्टिसिपेंट से, तो आज बारी बारी अपना प्रस्तुतियां देंगे। सर्वप्रथम हम किसको बुलाना चाहेंगे, सर आप अपना परिचय दीजिए।
3: मैं सतीश कुमार सुथार स्थानीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर हूँ। रेडियो मधुबन में आप सभी का स्वागत है, और पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से भी सर का भी हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कक्षा 9 से मनीषा कुमारी यहाँ आएगी और अपनी प्रतिभा दिखाएगी। मनीषा कुमारी कक्षा 9।
4: मनीषा कुमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी। मनुष्य

0: कोई कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत गोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
1: बहुत ही शानदार प्रस्तुति कक्षा 9 की बालिका मनीषा कुमारी के द्वारा, मनुष्य जन्म अनमोल है। आगे इसी कड़ी को हम बढ़ाएंगे,
2: जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ना चाहिए। और बढ़ने का पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति हम सुनेंगे, क्योंकि आप सब सुन रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धानारी की आवाज, जो कि पिंडवाड़ा ब्लॉक सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। तो हमारा दूरस्थ जगह में जहाँ पर अभी भी इंटरनेट नहीं है, इस माध्यम से FM का माध्यम से सुन रहे, YouTube का माध्यम से और लिंक का माध्यम से बच्चों का आवाज सुन रहे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। अगला प्रस्तुति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अपना गीत सुनिए, इसके बाद बच्चों का आवाज सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज तो स्कूल का प्रांगण ही स्टूडियो बन गया। इतना साइलेंस, अनुशासन, स्वशासन सही में देखने को मिलता है और इसका श्रेय तो विद्यालय को जाता है, क्योंकि शिक्षकगण का जो प्रयास सही में बच्चों का अंदर में देखने को मिलता है। बच्चे शांत में बैठकर अपना स्व अनुशासन में खुद का रिमोट खुद का हाथ में रखे हैं। इसीलिए सरली को भी इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। देर नहीं करते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सर जी को माइक देते हैं। सर, नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए किसको बुलाना चाहेंगे?
1: अर्जु राव, कक्षा 9 से।
0: सर, अर्जु के बारे में थोड़ा बताइए।
1: अर्जु राव कक्षा 9 में है, बड़ी ही अनुशासित बालिका है। विद्यालय के हर कार्यक्रम में ये आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है और विद्यालय के प्रार्थना सभा में भी इसका काफी सक्रिय योगदान रहता है। अब हम सुनेंगे आगे की आवाज अर्जु राव से।
0: आपका नाम क्या बताएं?
2: मेरा नाम अर्जु राव है।
0: अच्छा, कौन रखी है आपका नाम?
2: मेरे पिताजी।
0: क्या नाम है पिताजी का?
2: विक्रम जी।
0: क्या करते हैं?
2: कपड़ों की दुकान में काम करते हैं।
0: आपका अच्छा दोस्त का नाम बताएंगे? सहेली
2: खुशी।
0: वाह, क्या नाम है, अच्छा गुण है खुशी। खुश रहना है और खुशी बांटना है। खुशी आज तो खुशी हमारा सभी श्रोता मित्रों को खुशी कराएगी गीत के माध्यम से, लेकिन इसका पहले उनका खुशी का राज। खुशी को क्यों, कितने दोस्त है, कितना सहेलियां है, फिर भी खुशी को क्यों चुने? उसके पास क्या विशेषता है जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगते हैं?
2: खुशी सरल है और वो बहुत हसमुख है और वो बहुत सहायता करती है मेरी किसी भी चीज में, और सबसे खास बात उसकी वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है।
0: वाह, ये सब गुण कभी कभी चोरी किए?
2: चोरी तो नहीं किए, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
0: अच्छा, ये बात है, इसलिए उसको दोस्ती रखी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इससे दोस्ती हमेशा रहना चाहिए?
2: हाँ, हमेशा रहना चाहिए।
0: और उनका जो गुण विशेषता बताए ना,
2: हाँ?
0: नाम जैसे काम भी उस तरह करती है, हाँ? इसलिए आपको उनको दोस्ती बनाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़ा होकर तुम क्या बनेगी? तुम
2: टीचर।
0: अरे वाह, हमारे टीचर्स लोग भी सुन रहे हैं। शिक्षक, टीचर मतलब शिक्षक। शिक्षक क्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चंद्रयान में क्यों नहीं जाएगी?
2: क्योंकि टीचर जो है वही बच्चों को सिखाते हैं और वही आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हैं।
0: अरे वाह, क्या पूरा अंडरलाइन करने की बात बताई आज। शिक्षक का पास कला है, वो जैसे चाहेगी उस तरह बना पाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, राष्ट्रपति, सभी को बना देगी टीचर। बा, टीचर्स के लिए ताली बजा भाई जोर। बा, ये होना चाहिए, क्योंकि देश का जो क्या बोलते हैं, देश का जो पिलर है शिक्षक, और कौन, सैनिक, और कौन सा बच्चे बोलो, कृषक, किसान, तीन देश का पूरा रीड है, पिलर है। जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, और आप हम सब है, ठीक है। चलिए प्रस्तुत करेंगे, कोई डर
2: नहीं,
0: कोई झिझक
2: नहीं।
0: वाह, पहला बार मिले फिर भी इतना झिझक नहीं, डर नहीं, इसका राज क्या है, क्यों डरते नहीं?
2: क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है।
0: बार वाह, क्या बात, कितना साल इतना स्कूल में, हर स्कूल में जाते, लेकिन इनका जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसको देना चाहेंगे जो आपका पास इतना कॉन्फिडेंस है, किसको देना चाहेंगे?
2: मैं इसका श्रेय मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ।
0: आज तो बच्चे रोक नहीं पाते अपना तालियों को। बच्चे उमंग उत्साह देते है, क्योंकि एक क्या चाहिए बच्चों को, जो स्टेज में भाषण देते हैं बा कुछ बोलते हैं तो उनको ताली चाहिए, है कि नहीं? बहुत अच्छा, चले शुरू करते हैं।
2: चार

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला हम सुन रहे थे माता पिता का जो महत्व। अगला प्रस्तुति के लिए मैं सर जी को स्वागत करते हैं। सर नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए,
1: अगली प्रस्तुति के लिए कक्षा 10 से तुषार प्रजापत आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। तुषार प्रजापत कक्षा 10 के विद्यार्थी है। विद्यालय में हमेशा अनुशासित रहते हैं, पढ़ाई में भी काफी अच्छे हैं। आगे की प्रस्तुति तुषार।
2: तलवारों पे सर वार दिए,

है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। है मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क़ बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा इस मुँह से निकल के खून कहे।

0: ദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകി വല്ലരം. ധന്യവാദ്.
1: बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति दी. आज तो हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया, क्योंकि भक्ति, देशभक्ति और मोटिवेशनल सॉन्ग सभी माता पिता का ऊपर में सभी गीत का आज भरमार हो रहा है. इसका श्रेय तो स्कूल को जाता है, संस्था प्रधान का साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो प्रभारी है उनको भी जाता है. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम और एक प्रस्तुति सुनेंगे, क्योंकि हमें तो जाने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए और अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे. लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन.

আরে উড়া কুলার মাই তেরি চুনারিয়া লহরাই, জগ সে হারা নহি মে খুদ।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। बच्चों का आवाज बारी बारी सुनने को मिल रहा है। ब्रेक का पहले जैसे हम बताए थे सभी का आवाज आज तो गुलदस्ता सभी वैरायटी आज मिल रहा है, तो देर किस बात की, अगला प्रस्तुति के लिए मैं रोक नहीं पा रहे हैं, माइक को देते हैं सर जी नेक्स्ट प्रस्तुति।
1: अगली प्रस्तुति के लिए कक्षा 12 से हिना पुरोहित आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए।
2: मैं हिना राजपुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कक्षा 12 में अध्ययनरत। मैं आपके सामने आज नारी सशक्तिकरण के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा करें। हमारे प्राचीन भारत से ही मान्यता है कि नारी को जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और हमारे सनातन धर्म के अनुसार जहाँ पर हम नारियों की पूजा करेंगे वहीं पर वही एक देवी का रूप होती है। नारियों को हर एक महिला के पीछे देवी लगाकर हम उन्हें संबोधित करते हैं। यह देवी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के समय से या फिर हमारे सतयुग काल से ही हम देवियों को हर महिला को देवी के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि महोदय जिन्हें हमें समझाया था कि आत्मा और परमात्मा निराकार होते हैं, और उन्हीं परमात्मा यानी कि ब्रह्म ने भी शिव और शक्ति दो रूपों को बनाया है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी माँ तीनों शक्तियों को बनाया है। परंतु फिर भी आज के आधुनिक काल में देखते हैं कि बालिका और नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परंतु 1947 के समय की बात करते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था। महिलाओं को एक हीनता की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें पाव की जूती के समान समझा जाता था, उन्हें किसी भी कार्य में मिलने नहीं दिया जाता था, उन्हें किसी भी कार्य में व्यवसाय में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। परंतु आज की स्थिति में तो काफी ज्यादा सुधार हुआ है। हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास करती जाती है कि हम बालिकाओं को आगे प्रोत्साहन दें। बालिका शिक्षा के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, परंतु यह केवल सरकार के प्रयासों से ही हम इसे सफल नहीं बना सकते। इसके लिए स्वयं बालिकाओं को भी आगे आना होगा। बालिका शिक्षा के साथ साथ उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सीखना होगा, जिसके कारण वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है। हमें बालिकाओं को आगे और प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, हर एक विद्यालय में बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है, उन्हें अनेक छात्रवृत्तियों से लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ साथ बालिका भी निरंतर प्रयास करती रहती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और परंतु फिर भी हमें कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि आज भी नारियों के साथ शोषण होता रहता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। जैसे कि हमारे मणिपुर की घटना को देख सकते हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। परंतु फिर भी अगर हम भरपूर प्रयास करें तो, और सरकार भी अपने और अच्छे से अच्छे अगर कदम बढ़ाए और बालिकाओं की शिक्षा की तरफ और निरंतर प्रयास करती रहे, तो हम आज की स्थिति में और अधिक सुधार ला सकते हैं और आधुनिक भारत में हम बालिका और बालकों को एक साथ नजरिए से देख सकते हैं। धन्यवाद।
0: क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति, और खासकर वर्तमान समय का जो मांग है वो चीज को रखे अपना भाषण में, वक्तव्य में। जब दोनों बराबर हो गए और संबंध में सुधार होगा तो बुराई नहीं आएगा। जितना भी एग्जाम्पल दिए, हमारा सोच को एक पारिवारिक देखेंगे, विश्व एक परिवार है और सब आपस में जब ये संकल्प लेंगे, समझ जब आएगा, हम आपस में एक परिवार, भाई बहन वा भाई भाई, तो भाई बहन का साथ इस तरह नहीं होता। घर में कभी होता है? नहीं होता है। भाई बहन को कभी पात्र अंतर नहीं करते। जेंडर को जब देखते हैं, लड़का का जितना अधिकार है लड़की का उतना अधिकार है कि नहीं? तो आज जो संसार में थोड़ा बहुत जो है उसको हम सबका प्रयास रहेगा, जो जरूर नारियों का सम्मान हो, जिस देश में, जिस गांव में नारियों का सम्मान, जिस विद्यालय में नारियों का सम्मान मिलता है, तो वो देश अच्छा बनेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद, क्योंकि बच्चों का आवाज, बच्चों का व्यक्तित्व, बच्चों का भाव, भावना प्रस्तुत किए, और स्कूल के हमारे विद्वान टीचर्सगण और संस्था प्रधान अपना आवाज को भी नहीं रोक पा रहे हैं उनको भी एक मंच मिलेगा आज, उनका आवाज भी सुनेंगे। बच्चों का आवाज तो सुन लिए, अभी विद्यालय के जो विद्वान टीचर्सगण अपना आवाज को सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों का साथ आज तो हम भी बच्चे बन जा रहे हैं, तो सर जी को पुनः स्वागत करेंगे नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए। सर
1: बच्चों के बाद अब हम सबके लाडले और जोशीले श्रीमान रामलाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ पधारे। श्रीमान रामलाल जी, श्रीमान रामलाल जी स्थानीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत है। विद्यालय के हर कार्य में इनका सहयोग रहता है। आदरणीय श्रीमान रामलाल जी।
2: मैं रामलाल, वरिष्ठ अध्यापक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय धनारी। सावन का महीना चल रहा है, 15 अगस्त आने वाले है, तो राजस्थान की धरती की महिमा का गुणगान करने वाला एक राजस्थानी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शोभा करा इन देश रे, तो मुख सो करा बखान, सारा में सिर मोर है वो तो प्यारो राजस्थान। मारो तो कही जे ओ तो ऊंटो वालो देश, जिनरे महिमा जाने है देश विदेश। इन धरती रो मने अभिमानियो, ओ इन परवारो प्राणियो, आ धरती राजस्थान री। इन धरती रो मने अभिमानियो, ओ इन परवारो प्राणियो, आ धरती।

हररी ज्वाला में पद्मन कियो स्नानियो, ओ पद्मन कियो स्नानियो, अधरती राजस्थान री, इन धरती रो मने अभिमानियो, ओ इन परवारा प्राणियो, अधरती राजस्थान री, धोला धोला ताज महल मकराने निप जायो है, धोला धोला ताज महल मकराने निप जायो है, पूरब में पंजाब दिल्ली लोन मारो खायो है, ओ दुर्गारी तलवार कदेनी समाई म्यान में, कदेनी समाई म्यान में, अधरती राजस्थान री, इन धरती रो मने अभिमानियो, ओ इन परवारो प्राणियो, अधरती राजस्थान री, पुष्कर री धरती में देखो मोर पपैया बोले है, नसिया तारा गडरी मारा हीवड़ा में डोले है, ओ आबूरा पर्वत ने मारो।

0: જ્ઞાનીઓ ઓઈન પરવારો પ્રાણીઓ આ ધરતી રાજસ્થાન રી. બીકારો જો ધાણો અલવર જિલમિલ જોત જગાવે હે, ભારત મારે ગલે લગાવો મોતી જડિયા હાર રે. ઓ સાવણરા બાદલિયા માને ચોખા લાગે રે, એન પરવારો પ્રાણ્યો આ ધરતી રાજસ્થાન રી. એન ધરતી રો મને અભિમાનીઓ ઓઈન પરવારા પ્રાણ્યો આ ધરતી રાજસ્થાન રી, આ ધરતી રાજસ્થાન રી, આ ધરતી રાજસ્થાન રી.
1: सही में सभी को तो मन मुग्ध कर दिया और अपना बात रखे, किसी को भी नहीं छोड़ा, आप उसे लेकर पूरा भारत देश का भी वर्णन कर दिया. बहुत अच्छा इस तरह प्रस्तुत होने सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुत दिए. बचपन से प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं पर भी मिलता होगा तो इस तरह मंच मिलता है. आज रेडियो मधुबन एक मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से जन जन तक सर लोग का भी सुन रहे, क्योंकि जो हमारा श्रोता मित्र हो सकते हैं उनका दोस्त लोग भी टीचर्सगण भी सुन रहे होंगे सर को, जो जानते होंगे तो वो भी वहीं पर बैठकर ताली जरूर बजाए होंगे. तो नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हम चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए. संस्था के जो

0: ये जो मुखिया जिसको कहते हैं अपना भाषा में, लेकिन प्रिंसिपल महोदय उपस्थित है, तो उनका बिना ये कार्यक्रम अधूरा ही है। और कार्यक्रम का बारे में दो शब्द बताएंगे और उनको भी एक मंच मिलेगा, क्योंकि वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं। बच्चों का आवाज ही उनको प्रेरणा दे दिए, बच्चे इतने सुंदर प्रस्तुति दिए तो टीचर्स गण भी अपना बात को कैसे नहीं रखेंगे। तो चलिए सभी की तरफ से, सभी विद्वान टीचर्स और सभी विद्वान हमारा छोटे छोटे बच्चे के तरफ से और ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको स्वागत करते हैं। सर जी, आप में जो विशेषता है, सही में जब यहाँ पर आए मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि इस तरह अनुशासन में नीट एंड क्लीन सभी में आप कराते हैं स्टाफ का साथ। आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज।
1: मेरा नाम हिंदूराम और मैं स्थानीय सरुगंज का ही निवासी हूँ। यहाँ पर मुझे ये 8वां वर्ष है, प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पूरी टीम के पूरे सहयोग के साथ में बहुत ही अच्छे से विद्यालय संचालन हो रहा है और बालक भी यहाँ पर बिल्कुल अनुशासित है और नैतिक शिक्षा यहाँ प्रार्थना सभा में दी जाती है, शिक्षा के दौरान कालांश में भी शिक्षक देते हैं, इससे विद्यालय का माहौल बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे हमने साक्षरता के संबंध में सर्वे किया और जो निरक्षर है उनके लिए हम आकर पेड़ी लगा करके वॉलंटियर के माध्यम से उनको शिक्षित करने का कार्य करेंगे। हमने जो विद्यालय आने योग्य बालक बालिका हैं और नहीं आ रहे हैं उनका सर्वे कराया, उनका बकायदा रजिस्टर संधारण किया और उनके साथ में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है उनके लिए भी हमारा विद्यालय हमारे साथियों के सहयोग से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करता है। फिर हम सामुदायिक सेवा और स्वास्थ्य स्वच्छता के अंतर्गत सतत साफ सफाई का सार्वजनिक कार्य करते हैं, साथ में कैंप लगा करके भी विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं। प्रार्थना सभा के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी जो बच्चों के संबंध में है और परिवार को देने के संबंध में है उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही जन जागरण के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के हो उन्हें रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से हम समाज के अंदर भी ये सूचनाएं, ये जो जानकारी है वो पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के बारे में भी जो जानकारी आई तो हमने बच्चों को तो बताई, लेकिन बच्चों के मार्फत अपने परिजनों को किस प्रकार से अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए उन्हें चाहे तो पत्र लिखकर या चाहे तो अपने शब्दों द्वारा तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से निषिद्ध करने हेतु प्रेरित करने के लिए भी हमारे द्वारा कहा गया। आपने अपना जो अमूल्य समय दिया है हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का, हमारे स्टाफ का, जो मान बढ़ाया है, इनके टैलेंट को भी आगे आने का अवसर दिया है, तो मैं रेडियो मधुबन का और आप सभी बीके के जो भी पधारे हैं आगंतुकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे जो प्रस्तुति है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए।
0: जी सर, ताली बजा सर।
1: देखिए गीत तो कोई है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर स्थानीय निवासी हूँ, जैसे प्रारंभ ही मैंने बताया था, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ढोल बाजे जी रिपोग आप ही उभरेसा। तो सबसे पहले परमात्मा को याद करूंगा। सुप्रीम सोली और नेम थाउजेंड फॉर्म थाउजेंड हाउ टू राइट इनविटेशन समवन सेज यशोदा ज समवन सेज देव की ज समवन सेज नंद जी ज सम हाउ टू राइट इन्विटेशन सांवरियारा नाम हजार रूप हजार कैसे लिखू कंकु पतरी। हम तो शिक्षा विभाग से संबंधित है इसलिए शिक्षा की ही बात करेंगे। जीवन कैसा बिन शिक्षा के सोचो ना, जीवन कैसा बिन शिक्षा के सोचो।

पढ़े लिखे के चार आंख और अनपढ़ के दो नैना, हो अनपढ़ जन तो अंधे जैसा अनपढ़ कभी न रहना, खुद भी पढ़ो औरों को पढ़ाओ भाई।

करने का, प्रेरित करते तो प्रेरणा जरूर मिलती है। इस कूलर घंटी वागी टाबरिये कियो, भणो भणो भणो भणो भणो भणो भणो के

le moye phano bhano bhano bhano bhano. यहाँ पेड़ी पर बैठते हैं जो निरक्षर है, तो उनके मंदिर भी भाव जगा। बच्चा कहता है खेतर नी जावे मो तो टाटो में नी जाऊ, खेतर नी जावे मो तो टाटो में नी जाओ, धायो धायो इस कुल जाऊ म्हारी माँ, मारो मन लागो पढ़ाई में, मारो मन लागो।

बंधुड़ा हो बंधुड़ा मोरा गोमरा वे पारी सेठ वे गाया बोरे ओ माने स्कूले जावा ने असल बस तो लावो रे हे पाटी रे लावो पैन लावो बस तो लावो रे हे पाटी रे लावो पैन लावो बस तो लावो रे।

दुड़ा तुमसे चले आना चले आना तुम पढ़ने स्कूल में साढ़े साढ़े साढ़े सात बजे खेलने वाले खेलना छोड़ आ जाना तुम स्कूल दौड़ बस्ता पुस्तक और स्लेट लेकर आना साथ में जोड़ नहीं आए तो इस दुनिया में रह जाओगे पीछे चले आना तुम पढ़ने स्कूल में साढ़े साढ़े सात बजे अंत में आपके लिए

0: बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है सर, में इतना विशेषता सर के पास है, ऑलराउंडर जिसको कहते हैं, कम समय में पूरा रचना कर दिए। रचयिता जिसका साथ है रचना कितना सुंदर होगा, और रचयिता परमात्मा को याद करते हुए रचना आज जो किए प्रस्तुतियां सभी वैरायटी, सही में एक सेकंड में पूरा व्यक्ति को देखकर रचना कर देते हैं। रेडियो मधुबन का बारे में सभी का बारे में बताए।

0: प्रोग्राम का पश्चात संस्था का संस्था प्रधान साक्षी दृष्टा रूप में देख रहे थे प्रोग्राम को, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। सर, इस प्रोग्राम जो रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो हो रही है, बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा कितना आवश्यकता है, तो इस संदर्भ में आपको कैसे लगा?
1: आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है किंतु शांति नहीं है। रेडियो मधुबन में यहाँ आकर के किस प्रकार से आत्मा की शांति, मन की शांति मिले, इसके बारे में जानकारी कराई, साथ में बच्चों की टैलेंट को निखारने के लिए, टैलेंट को आगे लाने के लिए बच्चों को कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तुत करवाए गए और जिसका रेडियो मधुबन के द्वारा प्रसारण होगा। आपका ये कार्य बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए। यहाँ आपने विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के लिए हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में करने के लिए भी प्रेरित किया। केवल हमको ही नहीं, विद्यार्थियों को, जो आज का बालक कल का भविष्य है, कल का भारत है। साथ ही हम विश्व गुरु जो की बात तो करते हैं, लेकिन फिलहाल यदि मैं ऐसा कहूं कि हमारे बाप दादा ने घी खाया है, हमारी हथेलियां सूंघ लो, तो वही चरितार्थ हो रहा है। तो ये तभी होगा जब हम विश्व गुरु बनने लायक कार्य करेंगे, कृत्य करेंगे, अपने आचार विचार आचरण वो करेंगे। तो उसके लिए आपने बच्चों को ध्यान के साथ में सत्कर्म, किस प्रकार से जो आत्मा परमात्मा की जानकारी दुनिया के देश हमारे देश में आ रहे हैं, वो केवल इसीलिए, हम भले भौतिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम समृद्ध है। पहले भी हम दुनिया का मार्गदर्शन करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मैं रेडियो मधुबन का, मेरे इस विद्यालय परिवार के साथ साथ इस पूरे धनारी गांव की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें सन्मार्ग की ओर लाने के लिए एक कदम बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा यही है कि इस प्रकार से जो योग का और जो ध्यान का है, ये हमें अभ्यास के लिए वहां से कोई आ करके और प्रैक्टिकल रूप से समय समय पर कराते रहे तो उसका और ज्यादा अच्छा उपयोग होगा। अन्यथा क्या होता है, अभी आपने कराया और कुछ समय तक इसका प्रभाव रहेगा, फिर वापस बच्चे भूल जाएंगे और शिक्षक भी दूसरे कार्य में पड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आना स्वाभाविक है। तो समय समय पर आपका मार्गदर्शन और इस प्रकार से सहयोग मिलता रहे, आप यहां करके गाइड करते रहे और व्यवहारिक आप कराते रहे ध्यान, तो मैं सोचता हूं वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। साथ में आपने दूसरी बात भी बताई थी, वो भी समय समय पर बताते रहेंगे तो क्या है कि बर्तन मांजने वाली एक जैसे कहे, माता बहने जानती है कि नया बर्तन लाते हैं और उसको अपन लंबे समय तक एक जगह पड़ा रहता है तो उसकी चमक चली जाती है, लेकिन उसको मांजते हैं तो उसके अंदर वही चमक आती है, तो वही मांजना हम आपसे अपेक्षा और आशा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, किसी स्कूल के बच्चों का टैलेंट को लेकर। आज हमें बहुत खुशी है, पहला बार आए हैं, फिर भी पहले सोच रहे थे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना सुंदर रूप में हुआ क्योंकि इस तरह अनुशासन और बच्चों का शुरू से अभी तक जाने के लिए इच्छा नहीं, बच्चे पूरा एकदम शांत में बैठे हैं, इसका श्रेय तो जाता ही है। सबको धन्यवाद, खुद के लिए ताली बजाओ जोर से आप। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, सभी को नाम का साथ धन्यवाद।
2: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते
1: रहिए। सुनने वालों को नमस्कार, मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है, उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है। उस गांव का नाम आइए जानते हैं, और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
2: जी नमस्ते।
1: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
2: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
1: जी, धानपुर। जी,
2: यस
1: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
2: बिल्कुल।
1: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
2: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं, और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
1: जी
2: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
1: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
2: हाँ
1: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
2: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
1: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
2: बिल्कुल
1: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
2: बिल्कुल
1: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
2: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
1: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500

0: ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
1: हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं। और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
0: बिल्कुल
1: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
0: हाँ
1: पर्सन। तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
0: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं। और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा की कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी, आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
0: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था। और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
0: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोयल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
1: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
0: बिल्कुल
1: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
0: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
1: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
0: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है का नाम है तुषाल गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
1: जी
0: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
1: जी
0: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
1: जी
0: बिल्कुल
1: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
1: स्पोर्ट्स का
0: सेक्टर
1: क्षेत्र।
0: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
1: जी, तो आपकी
0: बिल्कुल
1: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
0: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है वो बजट के बारे में हम लोग सब

0: को डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
1: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
0: बिल्कुल
1: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं। लेकिन
0: जान
1: हमें
0: रहे हैं।
1: भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
0: बिल्कुल
1: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
0: बिल्कुल
1: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
0: बिल्कुल
1: कर
0: वही
1: सकते,
0: वही वही काम इधर इधर वही
1: अवेयरनेस
0: काम
1: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी।
0: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
1: जी
0: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
1: जी सोचा हूँ जो
0: और
1: हमसे जी
0: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
1: आपके
0: और
1: काम जी
0: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
1: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए, और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है, और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर
0: हाँ बस
1: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
0: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए, सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया, और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
1: जी
0: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
1: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
0: बिल्कुल
1: और हमारे
0: बिल्कुल
1: क्लास
0: बिल्कुल, ऐसा ही
1: के
0: मेरे साथ में हुआ है।
1: जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ।
0: हाँ
1: थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
0: हाँ उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा, तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
1: जी
0: और उनके
1: निश्चित
0: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी, इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली? आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: अच्छा,
0: और मेरी मदर।
1: जी जी तो
0: हाँ
1: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी
0: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
1: जी
0: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए। और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टि बाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही। लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूँगा।
1: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं और आज आज जय से मुलाकात हुई है और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन जी
0: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
1: कम्युनिटी हाउसिंग,
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग, क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: ये आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
1: जी,
0: सेवेंटी फाइव यस।
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है।
0: लोगों के कनेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल हो गए तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं, और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे। तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ।
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है। जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधौन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधौन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर

0: आते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है, जिससे पार पाना मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं, तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था, उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु एक जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
1: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूँ, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
0: जी
1: खासतौर पर
0: सर,
1: प्राइमरी
0: मैं
1: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
0: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था, तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने
1: जी
0: उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते, किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है, उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से, वो एक दिन मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई, तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तो मैं गया। पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको ही नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
1: जी
0: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था, वो उनने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने
1: जी
0: मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
1: जी
0: सेकंड क्लास में बैठा, तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है, और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
1: जी
0: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गई, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास
1: जी
0: में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए, जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो
1: जी
0: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया, तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बैठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स
1: जी
0: क्लास में हमने एक, जब जैसे क्या है कि फिजिक्स केम वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस, और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए है, स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड CBSE से
1: जी
0: हुई है,
1: जी
0: तो सर वहाँ पे 6th क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीजें साइंस पढ़ाने लग गए, EBS खत्म हो गई, तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है, मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो, थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया, तो वो मुझे घर पर पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो
1: जी
0: वो आए फिर 6th क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा, मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ, माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो हिंदी तो सुनाओ, तो ऐसे चीजें चली मुझे। हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब 5th 6th पढ़ लिए, तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं, तो सर मैंने 7th क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ 8th में,
1: जी
0: अब मैं डायरेक्ट 8th में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है 1 साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में 1 साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले, और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर
1: जी
0: वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं 8th क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी
1: जी
0: जगह मिली, हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे, ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे, मैं
1: जी
0: यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की।
1: जी
0: तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी,
1: जी
0: तो 8th क्लास और 9th क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने 9th क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो
1: जी
0: फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है 9th क्लास, 8th क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर 9th क्लास आई तो सर 9th क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दिए इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका।
1: जी
0: और फिजिक्स, में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो
1: जी
0: मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है।
1: जी
0: तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं 9th निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो
1: जी
0: सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं।
1: जी
0: लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी,
1: जी
0: हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके,
1: जी
0: क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं। तो थोड़ा थोड़ा
1: जी
0: पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे तो
1: जी
0: उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये CBSE में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%।
1: जी
0: अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब, मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं
1: जी
0: उसको इतना ध्यान से पढ़ता था और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और CBSE का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
1: जी
0: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी। मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में।
1: जी
0: मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो TC लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी,
1: जी आपने
0: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी।
1: अपनी
0: फिर सर
1: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
0: हाँ,
1: दे
0: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको इस चीज में मतलब एक तरीके से
1: दी। जी
0: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
1: जी
0: TC भी ले ली, दो तीन
1: जबकि
0: बच्चों की TC
1: हमारा
0: चेक
1: उद्देश्य
0: करी
1: नहीं
0: गई।
1: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
0: मेरा ऐसा नहीं था लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
1: हाँ,
0: अब मैं क्या कर सकता हूँ
1: बचपन
0: इसमें।
1: से ही, मतलब बचपन से ही लेती है ना। जी
0: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूं तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
1: जी
0: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहां पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
1: जी
0: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे और
1: जी
0: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
1: जी
0: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
1: जी
0: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
1: जी
0: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी NCERT रिवाइज हो गई उससे।
1: जी
0: अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई इधर, अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे NCERT याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, NCERT इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको। और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक PTET का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA प्लस BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कॉम्पिटिशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
1: जी
0: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
1: जी
0: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की तो इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
0: जी
1: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th 10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी
1: जी
0: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
1: जी
0: सर CBSE में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
1: जी
0: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
1: जी
0: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के, मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और
1: जी
0: एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे A+B का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी
1: जी
0: इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले आ रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे,
1: जी नहीं, निश्चित
0: और
1: रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
0: मैंने
1: चुनौती।
0: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे, इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और मैं कहूँ कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे या हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पर गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा काट दिया है नया, और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पीयर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते, लेकिन खैर वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर
1: जी
0: मैं अभी कर रहा हूँ आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी
1: जी
0: 12th क्लास से, फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये
1: जी
0: सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं आरएएस जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका
1: जी
0: समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं,
1: जी
0: क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी
1: जी
0: प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं।
1: जी
0: दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है,
1: जी
0: मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है, इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी
1: जी
0: कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल।
1: जी
0: तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप
1: जी
0: देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल
1: जी
0: देखिए। तो
1: जी मुझे तो हंसी आ रही है सकलांग लोगों पर आज।
0: हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो
1: जी
0: एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी,
1: जी
0: क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम
1: जी
0: ये भी समझे कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, और शायद हम
1: जी
0: आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो
1: जी
0: मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें, और
1: जी
0: अवश्य ही यदि हम, वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
0: जी
1: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने उनको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
0: जी
1: उन सज्जन ने उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर
0: यही
1: वापस
0: यही चीज
1: गए। तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये चाय
0: जी
1: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं
0: जी
1: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते चलते।
0: एक बार हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ
1: जी
0: थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो
1: जी
0: एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी, तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था।

world of light to the world of matter. But I keep the light.

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया तो अब

0: में पिएं या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

ओम शांति। आज है 11 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा कहते हैं, ये अंधेरा कौन सा है? ये अंधेरा अज्ञानता का है, जिस कारण मनुष्य पतित बने हैं, विकारों के वशीभूत हुए हैं। तब परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर हमें पतित से पावन बनाओ और इस अंधेरे से बाहर ले आओ। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। दूसरा बाबा कहते, तुम अंधेरे में इसलिए हो क्योंकि तुम माया रावण की मत पर चलने लग पड़े। माया कोई धन को नहीं कहा जाता है, माया रावण माना ही पांच विकार। जब पांच विकारों के वशीभूत हो गए तो अज्ञानता के अंधकार में चले गए। और इसलिए मनुष्य समझते हैं कि ये विकारों के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती है। लेकिन बाबा आकर के हम बच्चों को पवित्रता का राज समझाते हुए पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं और आकर के हम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने से और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त होने से दर दर जो भटकना था वो छूट गया, ठोकरे जो खा रहे थे वो भी छूट गया और अभी हमें परमात्मा बाप का साथ मिला है। बाबा कहते, इसीलिए तुम्हें अन्य आत्माओं पर भी रहम आता है कि मनुष्य बिचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्ञान के आधार से आत्मा को तीसरा नेत्र प्राप्त होता है और त्रिकालदर्शी बनने से हम ये समझ जाते हैं कि इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याणकारी है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम समझते हो कि इसमें दोषी कोई भी नहीं है, विनाश होना ही है, ये भी ड्रामा में प्लान्ड है। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर है, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया। दूसरा, साथ साथ रहम आता, मनुष्य बिचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। भक्त याद कर रहे हैं, हमें इस अंधेरे से बाहर निकालो, और दूसरी ओर आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते, हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो, कितना फर्क है दोनों में, कितना अंतर है।
बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा मेले मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था व राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम पांच विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पांच विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है पांच विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, माया का भी अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत, इसमें यादों और कौरों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। बाबा कहते माया जीते जगत जीत, इसमें यादों और कौरों व असुर और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। भगवान आकर कोई हिंसक लड़ाई नहीं सिखाते। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं। सिर्फ पांच विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। ये लड़ाई है ही आत्मा की माया के साथ। वहां है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम है ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा ये तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारिया है जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा, आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है, परमात्मा के श्रीमत पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्य को समझाते हैं फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑल राउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के। जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम बल कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। वो देवताई क्वालिटीज नहीं रही तो अपने को हिंदू कह देते हैं।
हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला ये तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। एक ही समय पर तीन धर्मों की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर वन। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है। सारे चक्र की नॉलेज को बाबा कहे दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसीलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके। वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते। सन्यासी अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसीलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बता सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी है जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मुसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं, वास्तव में है यह मुसल जिससे विनाश करते हैं, ना मिसाइल्स है जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वो फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा रास है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। किसको भी दोष नहीं दे सकते, विनाश के लिए किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है यह भी तुम समझ गए हो। भावी क्या है, बाबा कहते वह भी तुम समझ गए हो। ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, यह संगम युग है उत्तम पुरुष बनने का। अब सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे, अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना,
यह है सहजते सहज, झूठी कहानियां तो बहुत है, अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूं सुखधाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख, समझाने से सब समझेंगे। बाबा कहते जब समझाते हैं कि सदगति माना सुख वाली गति, दुर्गति माना दुख की गति, तो समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है, कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं, वास्तव में वहां कुछ है नहीं। भगवान वाच, वहां कुछ भी है नहीं, न मंगल पर दुनिया है, न कोई और ग्रह पर दुनिया है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, भगवान एक है, उसकी रचना भी एक है। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है, कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुखधाम। कलयुग है दुखधाम, सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे, बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़ी देंगे। दुख हरता किस लिए है, रहम की भावना है तभी तो दुख हरेगा, तो वह फिर दुख कैसे दे सकते हैं। अभी है रावण राज्य, मनुष्य में 5 विकार प्रवेश है, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है, रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे, बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं, ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो, कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कम चित्र को। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो, ऐसे भी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्य को समझ मिले। आखिरन भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है, बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा अक्षर किसको शोभता है, बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। देहत के बाप शिव ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का।
और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है, ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, यज्ञ के कुंड के चारों ओर शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहां कोई स्थूल चीज आदि तो नहीं है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है और कोई यह जानते नहीं। बेहद की आहुति पढ़नी है यह तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी, वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे ना। जो मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहां वो हद की बातें, कहां ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को न जाने वर्षा मिल न सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। अहिंसा की डेफिनेशन, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। पांच विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए। अब फिर सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण कैसे बने, ये बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्म से अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में, मनुष्य से देवता बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। जो भी आने हैं बाबा के ज्ञान में उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको। फिर है पुरुषार्थ करना, उच्च पद पाने के लिए सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम उच्च पद पाए। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अथवा तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। कितना रहम दिल बाबा है। बाबा कहते अबलाओं से क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहां तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा कहते और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। विनाश के लिए कोई भी दोषी नहीं है।
ड्रामा में नोंदा हुआ है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है, सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। आज का व्यक्ति इशारा, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, वर्तमान समय सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भगवान से कुछ न कुछ मांग रही है। सभी के मुख में व मन में यही रहता है कि यह दे दो। कोई धन के भिखारी है, कोई सहयोग के, कोई संबंध के, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के, कोई आराम व नींद के, कोई फॉलोअर्स के भिखारी है। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बन अपनी शुभ भावना की वृत्तियों से भिखारी आत्माओं की भूख मिटाओ। अच्छा, ओम।